सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: तू जो है। आप सुन रहे हैं जिले की आवाज रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।
2: राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भगवान पर अटूट विश्वास है और नाम जब भी निरंतर चल रहा है, किंतु जब जीवन में कठिन परिस्थिति आती है तो ईश्वर के ऊपर विश्वास के साथ साथ जीवन समाप्त करने का या सब छोड़कर सिर्फ भगवान की शरण में रहने की आकांक्षा होती है। महाराज जी, ऐसे में इस परिस्थिति में क्या करना?
3: निरंतर नाम चल रहा है, अभी हमें संशय है, क्योंकि निरंतर जब चलने लगेगा तो कुछ स्थिति आ जाती है। हम लोग उसी मार्ग के पथिक है ना, इसलिए एक स्थिति आ जाती है, कोई भी विपत्ति हमें परास्त नहीं कर सकती, कोई भी दुख हमको उदास नहीं कर सकता, क्योंकि नाम चल रहा है। जब ज्यादा कष्ट होता है तो ज्यादा भजन होता है, शांत। जब ऐसा लगता है शरीर छूट तो नहीं जाएगा, तो एकदम भगवदाकार वृत्ति, भगवान आ रहे हैं। तो निरंतर भजन शब्द से हम कह रहे हैं कि इस पर सुधार करो। निरंतर अभी नहीं हो रहा है, जिस दिन अव्यावृत भजना अखंड भजन होने लगेगा तो स्थिति आ जाएगी। अटूट विश्वास जब है तो टूट कैसे सकता है? कुछ भी हो, जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे, अब कुछ भी हो। अब क्या, जब आपसे प्यार किया फिर हम क्यों किसी से शिकवा करें? भगवान, अब तुम जैसा चाहो वैसा खेलो, जैसा चाहो वैसा विधान करो, मैं उसी में राजी रहूंगा जैसे तुम मुझे रखना चाहते हो। अरे मस्त, नाम जब चल रहा है तब ये मस्ती आएगी, नहीं ऐसे नहीं आएगी। नाम जब चल रहा है तो ये मस्ती आएगी, नहीं मस्ती नहीं आ सकती। इतनी विपत्तियां, मनुष्य जीवन में इतना संघर्ष है कि कदम कदम ऐसा लगता है यार अब खुशी हुए, और अगला कदम इतने दुख में पड़ जाता है कि लगता है कैसे निकल पाऊंगा इस दुख से। तो फिर एक सुख का प्रकाश आता है, फिर एक ऐसी समस्या आ जाती है, फिर ये पूरा जीवन चलता रहता है, ये पूरे जीवन। और ये सोचना कि शरीर को मिटा दें, ये कोई समस्या का हल नहीं है। शरीर मिटा देने से एक महापाप बन जाएगा और वो हमारी दुर्गति कर देगा। तो ये जो लोग सोचते हैं कि मैं कर लूं समस्या का समाधान हो गया, बिल्कुल नहीं, भारी समस्या मोल ले ली, आगे तुम्हें परिणाम पता नहीं। इसलिए आप तो कभी कोई निदान है ही नहीं, हमको लड़ना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए, हमें चाहे बेइज्जती हो, चाहे अपमान हो, चाहे दुख हो, हमें लड़ना चाहिए, हमें नहीं करनी चाहिए, आखिरी हद तक मुझे सहना चाहिए। अच्छा, सब छोड़कर भगवान की शरण, वो आप हो क्या? वेश बदल लेना भगवान की शरण है? नहीं, इस भूल में मत रहना। क्या स्थान बदल लेना भगवान की शरण है? ये अंदर की बात है, अंदर से भगवान की शरण में हो तो आप महात्मा हो, और बाहर से आप महात्मा का वेश है और अंदर से रुपया चाहिए, भोजन चाहिए, नाना प्रकार के सांसारिक सुख चाहिए, तो आप विषयी पुरुष हो, आप महात्मा नहीं हो। वो आप पैंट शर्ट में हो, मेहनत से कमाते हो, धर्म से चलते हो, नाम जप करते हो और भगवान का चिंतन कर, बढ़िया हो, आप बढ़िया हो। तो हमें लगता है कि ये कोई निदान सोचे कि मैं समस्या का समाधान बाबा जी बन करके, तो मुझे लगता है नहीं। ऐसी ऐसी समस्याएं हैं जिनका केवल निदान भगवान है, दूसरा कोई निदान नहीं। सोचो, साल, दो साल, चार साल, पांच साल, आप बोल दो कि आप ब्रह्मचर्य से रहो, कोई मनोरंजन नहीं करोगे, आप ये खाओगे, आप ऐसे रहोगे, तो एक एक दिन हम काट सकते हैं कि यार 4.5 साल रह गए, अब 4 साल रह गए, 5 साल, पूरी जिंदगी मनोरंजन नहीं कर सकते, पूरी जिंदगी कोई रिश्ता नहीं है, पूरी जिंदगी में किसी भी तरह का कोई सुख नहीं है सांसारिक। आप जरा थोड़ा विचार करके डालिए आप इस बात पर, आप विचार करो क्या साधु का जीवन है, क्या साधु का जीवन? ना कोई मनोरंजन, ना कोई व्यवहार, ना कोई रिश्ता, ना कोई संबंध। साधु का जीवन ऐसा जीवन नहीं है, बहुत खतरनाक जीवन, बहुत खतरनाक जीवन। ये न सोचो कि बहुत आनंद में जीवन कटता है, बहुत कष्ट में जीवन कटता है सच्ची साधुता के लिए, और जो निकल गया सो मुक्त हो गया, और नहीं फिसल गया तो फिर आओ नया जन्म, फिर साधना करो, फिर भजन करो। इसलिए कोई समस्या से भागे कि मैं समस्या का निदान साधु बन के पालूंगा तो भूल मत करना, बड़ी समस्या है। मतलब ये कोई ना सोचे कि संत बनना सहज है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। बाबा जी बनने का मतलब मर गए, अब मर के हम चल रहे हैं। जीवित मर जाए उलट आप में समाय, यही दिलगिरी है। मरा हुआ पुरुष महात्मा होता है, जिसका मन मरा, जिसकी इंद्रियां मरी, जिसकी कुछ नहीं चाहिए, जा ही नहीं चाहिए कबहू कछ तुम सन सहज सने। तो ये दोनों बातें आप कर लेना, या समस्या में फंस कर बाबा जी बन जाना, ये दोनों बातें समाधान नहीं है। समस्या से लड़ना समाधान है, और वो आप तभी लड़ सकते हैं जब आपका भगवान का भरोसा दृढ़ होगा और नाम जप करोगे, तो कोई न कोई रास्ता भगवान ऐसा निकाल जिससे आप समस्या से बच जाएंगे। नहीं तो समस्याएं पीस डालती है, अंदर ही अंदर खोखला कर देती है, आदमी चिंतन से परेशान हो जाता है, और जब परेशान हो जाता है तो उसे एक ही रास्ता नजर आता है, और वो रास्ता है नहीं, वो और परेशानी पैदा कर देगा अगले जन्म में जा करके। इसलिए नाम जप करो और सहन करो और लड़ना सीखो। हमको विपत्ति दुख संघर्ष करना पड़ेगा, हमको लड़ना पड़ेगा, इनसे विजय प्राप्त करना पड़ेगा। हार जाऊं तो भी लड़ना पड़ेगा, हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, हमको इन दुख विपत्तियों से लड़कर पार होना ही है।
2: मर्जी, हमें लगता है कि कोई ऐसा साधन मिल जाए जिससे तुरंत झट से हमारे दुख दूर हो जाएं।
3: अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, अपने कर्म को जीव को भोगना होगा। ये जब भगवान कह रहे हैं तो और की हम बात कैसे माने। भगवान कह रहे ना अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, भोग भोगना होगा। ये सब इधर से जंतुर बनाने से और राख लेने से और कलावा बनाने से तुम्हारे प्रारब्ध नहीं नष्ट हो जाएंगे। हाँ, पवित्र कार्य है, करना चाहिए, गृहस्थी में देव मंगल के लिए, जगत मंगल के लिए यज्ञ करना चाहिए, हवन करना चाहिए, ब्राह्मणों के द्वारा अनुष्ठान कराना चाहिए, लेकिन प्रारब्ध भोग नहीं कटता, खुली बात है। हाँ, हम ऐसी एक कला जानते हैं जो ऐसे दुखों में भी आप सह सकते हो, वो कला है भगवान का नाम, वो खुली बात कहते हैं। खूब नाम जप करो और भगवान में चित्त जोड़ो, तो चित्त भगवान से जब जुड़ा होता है तो आनंद होता है। शरीर दुख में है, भारी समस्या है, लेकिन मन आनंद में, यही यही बात है। सावई मन कृष्ण पद अरविंद, मन भगवान कृष्ण के चरणों में लगाए तो आनंद है, राधा जी के चरणों में लगाए तो आनंद है। अगर मन संसार में रहेगा तो कष्ट ही भोगना पड़ेगा। कोई ऐसा नहीं, इतने पढ़े लिखे डॉक्टर, इतने बड़े सर्जन, इतने बड़े ये सब भगवान ने तो बनाए हैं। अगर छू से होता तो बढ़िया काम बन जाता, डॉक्टरों की जरूरत क्या है। बिल्कुल इधर उधर मत भटको, किसी को कोई परेशानी है सीधे अस्पताल जाओ। जैसे हम दवा करवा रहे हैं, टेबलेट खाते हैं, डायलिसिस करवाते हैं और भगवान की शरण में पड़े और नाम जप करते हैं, बिल्कुल सीधा रास्ता है। हाँ, कुछ ऐसे मंत्र हैं यदि सकामता पूर्वक उनका अनुष्ठान किया जाए तो कुछ दर्द को कम कर सकते हैं, समस्या को कम कर सकते हैं, मिटा नहीं सकते, मिटाने की सामर्थ्य नहीं, प्रारब्ध भोग भोगना पड़ता है। नहीं, रामकृष्ण परमहंस जी इतने सिद्ध महापुरुष, उनके गले में कैंसर था, बड़े बड़े महापुरुषों के जीवन में कष्ट पाया गया, भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के हाथों में तो भी बड़े बड़े कष्ट सहने पड़े। ये छूछा से नहीं जाते भैया, खूब राधा राधा नाम जप करो, सह करके निकल जाओ, बस ये बात है।
2: मर्जी, ऐसा कहा जाता है वहां गए लड़का हो गया, यहाँ गए ये ठीक हो गया।
3: तो लड़का होना होगा तो कहीं जाओ चाहे ले जाओ हो जाए, और नहीं होना होगा तो चाहे जाओ चले जाओ नहीं होगा। वो संयोग होता है, जैसे देखो आपका कोई काम नहीं बन रहा था, आप हमारे पास आए, अब वो संयोग बन गया आपके कर्म का और काम हो गया, बोले जय बाबा की। वो प्रेमानंद से नहीं बना, वो तुम्हारे कर्म का संयोग था, वो तुम्हारे कर्म का संयोग था। बिल्कुल समझिएगा, ये नौटंकी नाटक नहीं, खुली बात है। आपका कर्म आपको सहयोग दिया तो आपका काम बन गया, आपका कर्म आपको सहयोग नहीं देगा तो काम नहीं बनेगा। एक हमारे जीवन की धारा है, उसमें दुख सुख दोनों किनारे हैं, हमारा जीवन इसमें होता हुआ जाएगा, कभी सुख कभी दुख, कभी सुख कभी दुख, ऐसा चलता रहेगा, कोई मिटा नहीं सकता यार, हमारी समझ में नहीं आता।
2: तो महात्माओं के पास क्यों जाना चाहिए महाराज जी?
3: सुकृत बढ़ते हैं, बुद्धि शुद्ध होती है, प्रारब्ध को सहने की सामर्थ्य आती है, आगामी हमारे जो कर्म है वो सुधर जाते हैं, पीछे के जो कर्म है वो भस्म हो जाते हैं, प्रारब्ध भोगने की सामर्थ्य आती है।
2: हमें तो लगता है हमारी मनोकामना पूरी हो जाएगी, चलो चलते हैं एक बार, तो क्योंकि हर कोई प्रार्थना तो करता ही है महाराज जी, 100 में से 50 तो करते होंगे हाँ मैं पास हो जाऊं।
3: तो ये कर्म है कि नहीं है? ये भी तो एक कर्म है, उनका सत्कर्म बना। वो नंगे पैर चल करके आ रहे हैं या जूता पहन करके आ रहे हैं या किस भावना से आ रहे हैं, और भावना से आए और संत दर्शन की कामना की, तो एक कर्म भी तो बना उनका। इस कर्म से उनको लाभ नहीं मिलेगा। मान लो संत दर्श को चालिए तज माया अभिमान, जीव जीव पग आगे बढ़े कोटि यज्ञ समान, तो कोई आ रहा है 1000 कोस से, कोई 500 कोस से कर सवारी में धक्का खाते हुए ऐसे, और रोड में किनारे खड़ा है रात्रि भर, तो ये उसका तपस्या नहीं बनी, ये उसका परम पवित्र कर्म नहीं बना। अब ये कर्म कामना पूर्ण कर दे तो प्रेमानंद उसमें कहाँ है, ये उसका कर्म है, ये उसकी मेहनत है, ये उसकी भावना है, ये उसकी श्रद्धा है, ना कि हम है। अब उसको लगेगा कि हम प्रेमानंद के दर्शन के हमारा काम बन गया। नहीं, तुम्हारी मेहनत, तुम जो सैकड़ों किलोमीटर चल करके आए और खड़े रहे घंटों और फिर इसके बाद दर्शन हुआ, तुम्हें आनंद लगा, ये तुम्हारा कर्म तुमको सुख दे रहा है। नहीं तो देखो, अगर हमारा कर्म बिगड़ जाए तो हम कह रहे हैं फिर हमको कोई सुख नहीं दे सकता। हमारा कर्म, संतों के पास जाना, संतों की दंडवत करना, उससे पाप नष्ट होते हैं, पुण्य बढ़ते। संत दर्श जिमि पातक टरई, पाप नष्ट हुए तो दुख का नाश हुआ, सुख बढ़ा, ये तो सिद्धांत है, इसमें कोई चमत्कार थोड़ी है, ये तो सिद्धांत है ऐसा।
0: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 9857788291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं, नंबर है 9857788291 या 9522384088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
4: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
5: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
4: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
5: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
4: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करे।
5: पता, कमला राय कॉलेज रोड नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
4: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
6: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
7: क्या चाहते हो? मैं ना जाऊं अपनी दोस्त की शादी में।
8: क्यों, क्या हुआ है?
7: तुम्ही ने तो कहा था मुझे डिजाइनर लहंगा, साड़ी और गाउन दिलाओगे।
8: अरे तो कौन सी बड़ी बात है, आज ही चलते हैं गोपालगंज में लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स, वहाँ तुम्हें तुम्हारी मन पसंद के अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाएंगे।
7: फिर ये भी ठीक है, चलो चलते हैं लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स।
9: शादी विवाह या किसी भी शुभ अवसर पर एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स, जो है मेन रोड गोपालगंज में।

का दल बल समेत और विशेषकर चतुरंगिनी सेना के साथ पर्णकुटी आने का समाचार सुन लक्ष्मण का क्रोध जाग उठा था और उन्होंने भरत का वध करने की सौगंध ले ली। तभी आकाशवाणी हुई कि कोई भी काम उचित अनुचित जानकर तथा खूब सोच समझ कर करना चाहिए। देववाणी सुनकर लक्ष्मण सकुचा गए। श्री राम ने तब उन्हें समझाया कि भरत सरीखा श्रेष्ठ पुरुष ब्रह्मा की सृष्टि में न तो कहीं सुना गया न ही देखा गया। अंधकार चाहे तरुण सूर्य को निगल जाए, आकाश भले ही बादलों में सिमट जाए, गोखुर जितने जल में अगस्त्य ऋषि डूब जाएं, पृथ्वी चाहे अपनी स्वाभाविक सहनशीलता छोड़ दे, किंतु भरत को राजमद हो ही नहीं सकता। श्री राम के वचन सुनकर देवलोक में उनकी जय जयकार होने लगी। यदि जगत में भरत का जन्म नहीं होता तो पृथ्वी पर संपूर्ण धर्मों की धुरी को कौन धारण करता।

भरत के साथ आए अयोध्यावासी मंदाकिनी तट पर ठहरे हुए हैं। माताओं, गुरु तथा मंत्री से आज्ञा लेकर भरत निषाद राज और शत्रुघ्न के साथ श्री राम के आश्रम के समीप पहुंचते हैं। माता कैकेयी की करनी का ध्यान आते ही उनके मन में संकोच उत्पन्न होता है, किंतु श्री राम की सदाशयता और उदारता के प्रति वो उतने ही आश्वस्त हैं। आश्रम और प्रकृति की शोभा देख भरत के मन में वैसे ही आनंद का संचार होता है जैसे भूखे व्यक्ति को श्रेष्ठ भोजन प्राप्त करने पर होता है। रमणीय वन, सुहावनी पर्वत श्रृंखला, मुनियों के मनोरम निवास स्थान, वन प्रांतर के पशु पक्षी मन में एक सुखद साम्राज्य की कल्पना जगाते हैं। एक ऐसा परिवेश जहां केवल आनंद और मंगल की सृष्टि हो रही है। निषाद राज एक ऊंचे भूखंड पर चढ़कर भरत को श्री राम का आश्रम दिखाते हैं।

0: तब भौजी आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नु सारा मार्केट, देख लेनी नु सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
1: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
0: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमरा साथे कमल श्री में। महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
2: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
3: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
4: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
5: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
6: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94395651 या 97-0975-75।
7: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
8: और दुल्हन का लहंगा, साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
9: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा,
10: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
11: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
9: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
8: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
9: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
5: कॉल करें 87-894-18744।

0: अरे स्टीयरिंग हिल क्यों रहा है और ये टायर जल्दी घिस क्यों रहे हैं?
1: अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा तो समझ जाइए, टायर को चाहिए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग।
2: और इसके लिए जिले में भरोसे का एक ही नाम है, मिश्रा टायर्स, अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग।
1: यहाँ होता है कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, 3D अलाइनमेंट, डिजिटल बैलेंसिंग, सब कुछ आधुनिक मशीनों से।
2: साथ ही सभी कंपनी के टायर ट्यूब बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध हैं।
1: एक बार सेवा का मौका जरूर दें। विजिट करें मिश्रा टायर्स कंप्यूटराइज्ड अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, शिव मंदिर पोखरा के सामने, NH 27 बंजारी गोपालगंज।
2: रोड सपोर्ट या जानकारी के लिए कॉल करें 8825214946।
3: ठक ठक।
4: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
5: अच्छा मिला ही नहीं।
4: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
6: जी हाँ कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
4: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
6: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
7: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है, रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
8: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
1: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
2: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
1: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
2: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
1: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
2: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
1: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा, NH 27 गोपालगंज।
2: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।

0: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
1: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
0: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
1: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
0: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
2: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
3: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
2: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
3: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
2: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
3: जानकारी है तो कॉल करें 6205162112।

0: क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-300-99-66-999।
1: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
2: तो फिर देर क्यों, चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर पी के गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
1: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
3: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
1: संपर्क करें 9939365923।
4: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
5: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
6: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
5: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगर पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82-101-87-952। नियम और शर्तें लागू।
7: जिले का गौरव, संतोष मेडिकल हॉल, घोष मोड़, दरगाह रोड, गोपालगंज।
8: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
9: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
10: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले, गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 62042434003।

0: एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
1: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
0: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
3: ओम नमः शिवाय।
4: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
3: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
4: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
3: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
4: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
3: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
4: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
3: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
4: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
3: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH 27, काली स्थान बंजारी, गोपालगंज।
4: बोलबम हर

0: घर बन रहा हो तो सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं, टाइल्स और फिटिंग्स का चुनाव भी होना चाहिए शानदार।
1: इसीलिए गोपालगंज जिले के लोगों की पहली पसंद बन चुका है बीके टाइल्स। बीके टाइल्स, यहाँ मिलेंगे सभी प्रकार के डिजाइनर टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, बेसिन, कॉमोड, बाथ फिटिंग्स और घर सजाने के कई आधुनिक प्रोडक्ट,
2: वो भी किफायती दामों पर। और खास बात, गोपालगंज जिले में हमारी 4 सुविधाजनक शाखाएं,
1: अरार मोड़ SP कोठी के पास गोपालगंज, दूसरा ब्रांच भटवा मोड़ के पास कुचाय कोट,
2: तीसरा ब्रांच इस्लामिया कॉलेज के पास मेन रोड ठावे मीरगंज, और चौथा ब्रांच बंतरिया मोड़ भोरे।
1: और अब सिवान जिले में भी हमारी 2 शाखाएं उपलब्ध हैं, सिवान ब्रांच कुशवाहा चौक हकाम बाईपास सिवान,
2: और मैरवा ब्रांच बबनौली चौक मैरवा सिवान।
1: तो आज ही अपने सबसे नजदीकी बीके टाइल्स ब्रांच पर आए और करे बेहतरीन खरीदारी।
2: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करे गोपालगंज ब्रांच में 8460571406, मीरगंज ब्रांच में 9693101611,
1: कुचाय कोट ब्रांच में 9693101602, भोरे ब्रांच में 8207856404,
2: सिवान ब्रांच में 9942071405, मैरवा ब्रांच में 8207856403।
1: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
2: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
1: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
2: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
1: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
2: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
1: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
2: कॉल नाउ 9656 या 9656 57902।
3: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य SP त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज, जैसे
4: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
3: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
2: वैद्य SP त्यागी जी से मिलने का पता,
3: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
2: जानकारी के लिए कॉल करें 9955-9494-53
3: और 9097-6160-02।
5: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
2: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
2: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलो फेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
2: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710-3092 या 9765-6750।
6: अरे ए चाची, जब आँख से साफ नहीं खेलो को तो रोडवा पर लड़खड़ा के काहे चलतनी? और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहे, ओकर का भइल?
7: अरे ए बबुओ, परेशानी तो बा लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला। सुनले बानी की आँख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
6: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू? अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आ गइल बनी। यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़फाड़ कइले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करतनी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आँख में कोनो तरह के दर्द भी ना होई और ऑपरेशन भी हो जाए।
8: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुपर सी डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से। साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर एम ए अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने रालसन होटल के पश्चिम गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99053 69 015 पे।
9: नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। प्रमंडल स्तर पर की गई विकास कार्यों की समीक्षा, जिला पदाधिकारी ने नगर परिषद कार्यालय का किया औचक निरीक्षण, लापता युवती ने रचाई समलैंगिक शादी, सिरकटी लाश का सर पुलिस ने किया बरामद, बॉक्सर रितेश कुमार प्रभात को जिला पदाधिकारी ने किया सम्मानित। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र, अब हालचाल विस्तार से। सारण प्रमंडल आयुक्त छपरा के द्वारा हाइब्रिड मोड में आयोजित प्रमंडल स्तरीय योजनाओं एवं विकास कार्यों की समीक्षा की गई, जिसमें जिला पदाधिकारी समीर सौरभ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिले के विकास कार्यों को सारण आयुक्त के समक्ष रखा। बैठक में जिले में संचालित विभिन्न विभागों की योजनाओं एवं विकास कार्यों के प्रगति की समीक्षा की गई, जिसमें भवन निर्माण विभाग, विद्युत विभाग, नहर प्रमंडल, नगर परिषद, हर घर नल का जल योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, RCD, लघु सिंचाई एवं अन्य विभागों से संबंधित कार्यों की समीक्षा की गई। आयुक्त के द्वारा संबंधित अधिकारियों से योजनाओं के अद्यतन स्थिति, पूर्ण एवं लंबित कार्यों की जानकारी ली गई तथा सभी कार्यों को निर्धारित समय सीमा के अंदर गुणवत्ता पूर्ण तरीके से पूरा करने का निर्देश दिया गया। जिला पदाधिकारी ने जिले में चल रहे विकास कार्यों के प्रगति से सारण आयुक्त को अवगत कराया एवं संबंधित विभागों के अधिकारियों को लंबित कार्यों में तेजी लाने तथा जनहित से जुड़ी योजनाओं का लाभ आम लोगों तक पहुंचाने का निर्देश दिया। बैठक में उप विकास आयुक्त गौरव कुमार, अपर समाहर्ता राजेश्वरी पांडे और संबंधित विभागों के पदाधिकारी उपस्थित रहे। जिलाधिकारी समीर सौरभ ने नगर परिषद गोपालगंज का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कार्यालय की व्यवस्थाओं, साफ सफाई, सुरक्षा व्यवस्था एवं कार्यों के संचालन का जायजा लिया। निरीक्षण के क्रम में जिला पदाधिकारी ने कार्यालय परिसर एवं भवन की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने भवन की अग्नि सुरक्षा व्यवस्था की जाँच के लिए फायर ऑडिट कराने का निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया। उन्होंने कहा कि सभी सरकारी भवनों में सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित किया जाए तथा अग्निशमन उपकरणों की उपलब्धता एवं कार्यशील स्थिति की भी नियमित जांच कराई जाए, ताकि किसी भी आपात स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटा जा सके। भोरे के एक गांव से पिछले 24 अप्रैल को एक युवती लापता हो गई थी। परिजन लगातार उसकी तलाश कर रहे थे, पर युवती का कहीं पता नहीं चल रहा था, जिसके बाद परिजनों ने अपहरण का अंदेशा जताते हुए पुलिस को सूचना दी थी। पुलिस भी लगातार युवती की जांच पड़ताल कर रही थी। इसी बीच बताया जा रहा है कि अब इस लापता युवती की जानकारी बलिया में मिली है। बलिया में यह युवती अपने एक और मित्र युवती से समलैंगिक शादी कर चुकी है। जैसे ही जानकारी परिजनों को और पुलिस को हुई तो सभी लोग हैरान हो गए। दोनों ने पुलिस के सामने भी शादी का खुलासा किया। परिजन इस घटना के बाद से आहत और परेशान है। लापता युवती अब बलिया में अपने मित्र युवती के साथ समलैंगिक शादी कर रह रही है। 12 जून को पुलिस ने बिशंभरपुर थाना क्षेत्र के दियारा से विजयपुर गांव के पास गन्ने के खेत से एक सिर कटा हुआ शव बरामद किया था। उस समय शव की पहचान कर ली गई थी। इस मामले में सिर को पुलिस ने बरामद नहीं किया था। बताया जा रहा है कि लगातार जांच पड़ताल करते हुए कल रात को पुलिस ने मृतक के सर को बरामद कर लिया। इस घटना में 2 आरोपियों की गिरफ्तारी भी हुई है। इस कांड को लेकर पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी से आज बातचीत की गई तो उन्होंने पूरे एक कांड के संदर्भ में जो आवश्यक जानकारी दी उससे लोगों का माथा हिल गया। पुलिस अधीक्षक ने क्या कहा आप खुद ही सुनिए।
10: 12 जून 2026 को बिशंबरपुर थाना में एक सिर कटा शव मिला था जिसमें सिर्फ धड़ था, शव की पहचान नहीं हो पा रही थी और स्पष्ट हो गया था कि ये हत्या की घटना है। उसके बाद बिशंबरपुर थाना में FIR दर्ज कर करके इसमें एक विशेष अनुसंधान दल बनाया गया था SDPO सदर वन के नेतृत्व में। इसमें सर्कल इंस्पेक्टर बिशंबरपुर, SHO बिशंबरपुर और DIU से इंस्पेक्टर हरेंद्र, इंस्पेक्टर ओम प्रकाश, सब इंस्पेक्टर मनी, सब इंस्पेक्टर अचल और भी अन्य लोग थे और इस टीम को ये लक्ष्य दिया गया था कि मृतक की पहचान करना और उस घटना को उद्भेदन करना। काफी जटिल घटना थी क्योंकि इसमें स्पष्ट ही नहीं हो पा रहा था कि मृतक कौन है। तो जब घटनास्थल का निरीक्षण किया गया तो जो घटनास्थल पर मृतक के धड़ में जो कपड़े थे उनके आधार पर और घटनास्थल के पास से ही एक मोटरसाइकिल भी बरामद हुई जिसके आधार पर सबसे पहले मृतक की पहचान हुई, जिनका नाम मोहम्मद मुस्तफा निकला जो कि सिरसिया थाना कुचाईकोट के रहने वाले थे। अब इस घटना का उद्भेदन करने के लिए इस टीम को मौका दिया गया था कि 10 दिनों के अंदर इसका उद्भेदन करना है। तो आज इस घटना का उद्भेदन हो गया है और अपराधियों को जेल भेजा गया है। इस पूरी घटना में जो स्पष्ट हुआ है वो इस प्रकार था कि जो मृतक थे मोहम्मद मुस्तफा, इनका जो मोबाइल डिटेल्स था, टेक्निकल डिटेल्स था, ये पूरा अनुसंधान किया गया और इसमें स्पष्ट हुआ कि मोहम्मद मुस्तफा का चरित्र काफी संदिग्ध था। और जब उनका जो संदिग्ध लोग थे उनसे पूछताछ भी की गई तो पता चला कि मोहम्मद मुस्तफा के अवैध संबंध कई महिलाओं से थे, उनके अपने परिवार की महिलाएं और उस गांव के जहां ये रहने वाले और आसपास के गांव में कई तरह से ये महिलाओं से अवैध संबंध बनाता था। मृतक पहले महिलाओं को लुभाता था, उनके साथ अवैध संबंध बनाता था और फिर उनका लगातार शोषण करता था। उसी क्रम में गांव में एक बच्ची के साथ भी इसके अवैध संबंध थे तो उसका ये लगातार शोषण कर रहा था। तो उसके पिता को रस्ते से हटाने के लिए मृतक मोहम्मद मुस्तफा ने पहले योजना बनाई अपने दोस्त लाल बाबू यादव। मोहम्मद मुस्तफा और लाल बाबू यादव दोनों दोस्त थे और दोनों ने ये स्ट्रेटजी बनाई, प्लानिंग की कि जो बच्ची है उसके पिता को रस्ते से हटाया जाए। उस बच्ची की कुछ दिन में शादी भी होने वाली थी तो उस बच्ची के पिता और होने वाले पति दोनों को रस्ते से हटाने के लिए, चूंकि मोहम्मद मुस्तफा चाहता था कि लगातार उस बच्ची का शोषण करता रहे, तो उसने ये रणनीति बनाई और लाल बाबू यादव के थ्रू उसने 3 अन्य व्यक्तियों से संपर्क किया और 2 लाख रुपए ये घटना करने के लिए ऑफर किए गए कि उस बच्चे के पिता और होने वाले पति को रस्ते से हटा दिया जाए और उनकी हत्या कर दी जाए। 2 लाख रुपए का ऑफर जब इन लोगों को मिला अपराधियों को तो इन सभी अपराधियों ने वो पैसा ले लिया। पड़ोस के गांव के ही रहने वाले थे तो इन सबको भी मृतक मोहम्मद मुस्तफा के चरित्र का ज्ञान था और उसकी हरकतों का ज्ञान था। तो इन लोगों ने आपस में रणनीति बनाई कि 2-2 मर्डर करने पड़ेंगे और 2 लाख रुपए हैं मिल ही चुके हैं तो क्यों ना मुस्तफा को ही रस्ते से हटा दिया जाए। और इस प्रकार उन्होंने रणनीति बनाई और लाल बाबू यादव, शंभू यादव और अन्य 2 अपराधी इसमें शामिल हैं जिन्होंने रणनीति बनाई और घटना के दिन मुस्तफा को लेकर के लाल बाबू यादव डियर विजयपुर में पहुंचा बिशंबरपुर थाना अंतर्गत और वहां पर 4 अपराधियों ने मिलकर के धारदार चाकू से मुस्तफा का धड़ सिर जो है वो धड़ से अलग कर दिया और उसके बाद सिर को जो है और चाकू को इन्होंने खेत में ही फेंक दिया था। घटना के समय मृतक का जो सिर है वो बरामद नहीं हुआ था, सिर्फ धड़ के आधार पर शिनाख्त की गई थी। लेकिन जब इन चारों को पकड़ा गया तो लाल बाबू यादव, शंभू यादव से पूछताछ हुई। पूछताछ में अपराधियों ने पूरी घटनाक्रम बताई कि इन्होंने कैसे घटना की, क्यों घटना की और उसके बाद ये अपराधी पुलिस को लेकर के गए। जहां वो सिर था वो सिर बरामद हुआ और उस सिर को पुलिस ने FSL ने भी जांच की है, उसको सीज कर लिया गया है, उसको फर्दर FSL जांच के लिए भेजा जा रहा है। जिस चाकू से सिर कटा था, जिस चाकू से सिर को धड़ से अलग किया गया था वो चाकू भी बरामद हुआ है। तो घटना में कुल 2 अपराधियों की गिरफ्तारी हो गई है। जो मानव खोपड़ी थी मृतक की वो बरामद की गई है, चाकू को बरामद किया गया है और पूरी घटना स्पष्ट हो गई है। ये इसका अनुसंधान बहुत ही टेक्निकल और पूछताछ के आधार पर लगभग सारे बिंदुओं पर हो चुका है। इसमें 2 अपराधी जेल गए हैं। सबसे पहले इसमें मृतक की पहचान ही जटिल थी, पहले इसमें मृतक की पहचान की गई और मृतक की पहचान के बाद मृतक के चरित्र के आधार पर और टेक्निकल साक्ष्य के आधार पर जो अभियुक्त थे उन तक पहुंचा गया और उन अभियुक्तों से पूछताछ की गई, तत्पश्चात ये घटना क्लियर हुई है। तो इसकी जो मृतक का कटा हुआ सिर और चाकू बरामद करके दोनों अपराधियों को जेल भेजा गया है और अन्य बचे अपराधियों पर भी छापेमारी चल रही है। इस घटना का जिस टीम ने उद्भेदन किया है और उस टीम को हम लोग विशेष पुरस्कार से भी रिवॉर्ड दे रहे हैं क्योंकि काफ़ी जटिल अनुसंधान था और इसमें मात्र 15 दिनों के अंदर इस पूरे घटना का उद्भेदन कर लिया गया।
9: बिहार सरकार के गृह विभाग ने राज्य की 30 जेलों में सेवा देने वाले जेल उपाधीक्षक स्तर के अधिकारियों का तबादला किया है। इसी कड़ी में गोपालगंज में भी चनावे मंडल कारा में पदस्थापित जेल उपाधीक्षक संजय कुमार शर्मा का तबादला कर दिया गया। उन्हें झंझारपुर में नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। कटिया थाना क्षेत्र के बैरिया गांव के रहने वाले बॉक्सर रितेश कुमार प्रभात को जिला पदाधिकारी ने सम्मानित किया। बताया जा रहा है कि उनके बेहतर प्रदर्शन को देखते हुए जिला पदाधिकारी ने उन्हें अपने कार्यालय में बुलाकर सम्मानित किया और उज्जवल भविष्य की कामना की। बताया जा रहा है कि रितेश कुमार के पिता जनार्दन कुशवाहा और उनकी माँ मंजू देवी ने भी बेटे की उपलब्धि पर उन्हें आशीर्वाद दिया है। रितेश हाल ही में हरियाणा में हुए राष्ट्रीय स्तर के प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन करते हुए जिले और राज्य का नाम रोशन किए हैं। उन्हें मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी सम्मानित किया है। उनके बेहतर खेल प्रतिभा को देखते हुए जिला पदाधिकारी ने सम्मानित किया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। गोपालगंज के सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ने आज अपने आवास कार्यालय पर क्षेत्र से आए लोगों की समस्याओं को सुनने के बाद उसको निष्पादित करने के लिए संबंधित पदाधिकारियों से बातचीत की। बताया जा रहा है कि कई मामलों में उन्होंने संबंधित अधिकारियों को दूरभाष एवं पत्राचार के माध्यम से आवश्यक निर्देश भी दिया। उत्पाद विभाग की पुलिस ने जलालपुर कॉलेज के पास छापेमारी करते हुए बरौली के सलोना गांव के रहने वाले दीपक रावत को 45 पीस देशी शराब के साथ गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इसकी मोटरसाइकिल और शराब को जब्त कर इस पर कार्रवाई शुरू कर दी है। इधर बलोथरी चेक पोस्ट पर भी उत्पाद विभाग की पुलिस ने एक शराब तस्कर को पकड़ा। पकड़ा गया आरोपी नगर थाना क्षेत्र के बंजारी का रहने वाला शंभू सिंह है। इसके पास से पुलिस ने बंटी बबली की 42 पीस पैकेट जब्त की है। बताया जा रहा है कि चेक पोस्ट पर वाहन जांच करते समय पुलिस ने इसके मोटरसाइकिल से शराब की पैकेटों को बरामद किया, जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार किया गया और अब इन पर भी उत्पाद अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। इधर भोरे बाजार में हीरो एजेंसी और वायरलेस मोड़ के पास एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। टक्कर के बाद कार का अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया, लेकिन कार में सवार चालक और एक शराब तस्कर मौके से फरार हो गए। बताया जा रहा है कि गाड़ी के टक्कर के बाद इस गाड़ी से भारी मात्रा में शराब की बोतलें निकलने लगी, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने इस शराब को लूटने का होड़ मचा दिया। बताया जा रहा है कि लोग जैसे तैसे अपने गमछे में, झोले में और बोरे में शराब की बोतलों को लूट कर लेकर भाग रहे थे। घटना के बाद से पुलिस को जब तक जानकारी होती और पुलिस मौके पर पहुंचती तब तक सारा शराब लोगों ने लूट लिया था। बहरहाल इसकी जानकारी जब पुलिस को हुई तो पुलिस मौके पर पहुंची। कार में सारा शराब तो लूट लिया गया था, एकाध पैकेटें पुलिस ने बरामद भी की हैं और कार को जब्त किया गया है और इस मामले में आगे की कार्रवाई पुलिस कर रही है। कुछ वीडियो भी इसके शायद वायरल हो रहे हैं, जिस वीडियो के आधार पर भी पुलिस शराब लूटने वालों की पहचान कर रही है और वहीं इस गाड़ी से शराब लेकर आने वाले लोगों की भी पहचान की जा रही है, ताकि ऐसे लोगों पर विधिक कार्रवाई की जा सके। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वाधान में नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर एक शपथ ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें तमाम न्यायाधीश गणों ने और अधिवक्ता गणों ने नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ चलने वाले इस आंदोलन में अपनी भूमिका निभाने का संकल्प लिया। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 39 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। प्रमंडल स्तर पर की गई विकास कार्यों की समीक्षा। जिला पदाधिकारी ने नगर परिषद कार्यालय का किया औचक निरीक्षण। लापता युवती ने रचाई समलैंगिक शादी। सिरकटी लाश का सर पुलिस ने किया बरामद। बॉक्सर रितेश कुमार प्रभात को जिला पदाधिकारी ने किया सम्मानित। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
11: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
12: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
13: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
14: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
13: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704 34468 पे।
15: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
16: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
15: आज ही संपर्क करें 7388894 या 9198886973।
17: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
18: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
19: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
20: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड गोपालगंज। मोबाइल नंबर 9493045651 या 9707065775।
21: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है।
22: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
20: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है, चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से।
22: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें, आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
20: पता जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 9452111001।
23: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 9857788291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं, नंबर है 9857788291 या 9528874088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
24: दोस्तों, ये है मेरा शो जिसका नाम है टाइम मशीन, माइथोलॉजिकल कहानियों का सफर। मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अब कहानी रावणेश्वर महादेव। उस आदमी के एक पैर पर खड़े हुए न जाने कितने महीने बीत गए थे। जिस तरह उसका शरीर था, लग रहा था एक एक अंग सांचे में ढला हो। लंबे घुंघराले बाल कंधों पर बेतरतीब फैले थे, दाढ़ी बढ़ाई थी, आंखें बंद तपस्या में लीन इस हठ योगी के मुंह से एक ही मंत्र बार बार निकल रहा था, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और फिर एक श्लोक गूंज

0: पर खड़ा वो भक्त लोटे से जल सामने के शिवलिंग पर चढ़ा देता। समय बीतता गया, लोटों से जल चढ़ाते और भांग, धतूरे, बेलपत्र और न जाने किन किन वनस्पतियों से महादेव की पूजा कर रहे भक्त का शायद धीरज भी चुक गया था। वो अपने एक पैर पर खड़े होने वाले आसन से उतर आया था और उसके हाथों में एक बहुत बड़ा फरसा आ गया था। मेरे देखते ही देखते उस भक्त ने अपना सर काट कर सामने के शिवलिंग पर चढ़ा दिया। मेरी तो चीख निकल गई थी, लेकिन ये क्या, उस भक्त का दूसरा सर निकल आया था। मुझे याद आया, सर काट कर चढ़ाने वाले इस भक्त को मैं जानता हूँ। अरे ये तो लंका का राजा रावण है। और शिव के इस अद्भुत भक्त ने सर काट काट कर भोले भंडारी को चढ़ाने शुरू कर दिए। एक बार, दो बार, तीन बार, आठ बार, नौ बार जब उसने सर काट कर चढ़ा दिया और दसवीं बार भी अपना ही सर काटने को उतारू था कि तभी बहुत तेज रोशनी कौंधी थी। महादेव शिव प्रकट हो गए थे। पुत्र रावण, आंखें खोलो, तुम्हारी तपस्या पूरी हुई। सामने शिव को साक्षात देखकर रावण तो जैसे मंत्रमुग्ध हो गया था, सीधे उनके पैरों पर गिर पड़ा। महादेव मुस्कुराए। कहो रावण, इतनी कठिन तपस्या करके क्या मांगना चाहते हो? लंका में सब कुशल तो है, परिवार में सब मंगल तो है, तुम्हारी प्रजा को कोई कष्ट तो नहीं? रावण पैरों पर ही लेटा रहा। बाबा, आपके आशीर्वाद से सब कुशल है। लंका में धन संपदा है, सुरक्षा है, लोग सुखी हैं, मेरा परिवार भरा पूरा है, फिर भी लंका अधूरी है प्रभो। शिव मुस्कुराए। ऐसा क्यों लंकेश रावण? आप जो नहीं वहां, मुझे आपके बिना लंका अधूरी लगत है बाबा, रावण ने तड़प कर कहा था। तो मेरे साथ चलिए महादेव। रावण ने शिव के पैर जकड़ लिए थे। रावण की मांग के बाद शिव सोच में पड़ गए। रावण था तो असली भक्त, अपना राजकाज छोड़कर कैलाश के इस बर्फीले इलाके में तपस्या कर रहा है, वरदान पर इसका अधिकार तो बनता है। शिव को सोच में पड़ा देखकर रावण ने कहा था, बाबा आप अपने इस भक्त को वरदान नहीं देना चाहते? शिव मुस्कुरा उठे। ऐसा नहीं है रावण, हम चलेंगे तुम्हारे साथ, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। मैं कैलाश से लंका तक तुम्हारे कंधों पर जाऊंगा और ये रास्ता तुम पैदल चल के पूरा करोगे। दूसरी बात, अगर रास्ते में कहीं तुमने मुझे रखा तो मैं वहीं रह जाऊंगा। तीसरी बात, मैं तुम्हारे साथ लंका अपने प्रतीक लिंग के रूप में जाऊंगा और उसी रूप में वहां रहूंगा। रावण हर शर्त मानने के लिए तैयार था। अपने आराध्य शिव को लंका तक ले जाने के लिए वो कोई भी काम कर सकता था। कैलाश से लंका तक पैदल जाना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। उसे अपनी शक्ति पर भरोसा भी था और घमंड भी। अगली सुबह शिव और रावण रवाना होने के लिए तैयार थे। पार्वती, कार्तिकेय, गणेश और नंदी समेत शिव के तमाम गणों के लिए शिव के बिना कैलाश की कल्पना करना भी मुश्किल था, लेकिन शिव तो शिव ही थे। पौ फटते ही रावण शिव को बड़े काले पत्थर के लिंग के रूप में लिए लंका के लिए निकल पड़ा। धरती पर हाहाकार मच गया। देवों के देव महादेव अब देवों के दुश्मन खेमे में जाके स्थापित होने वाले थे। पहले तो देवताओं को लगा था कि उत्तर में हिमालय से कंधे पर शिव को लेकर चला रावण बीच में थक जाएगा, लेकिन रावण डेढ़ दिन तक लगातार चलता रहा और न तो थका न रुका, और देवताओं की चिंता बढ़ गई। चिंतित देवता सीधे भगवान विष्णु के पास जा पहुंचे। ब्रह्मा, विष्णु और महेश यानी शिव, इन त्रिदेवों की तिकड़ी ने इस सृष्टि को, इस दुनिया को रहने लायक बनाने में अपना योगदान दिया था, इसे सभ्य बनाया था, लेकिन इस तिकड़ी के सबसे काबिल और फक्कड़ देवता शिव देवताओं के दुश्मन यानी राक्षसों के पक्ष में उनकी राजधानी में जा बैठने के लिए लाचार हो गए थे। अपने ही भक्त को दिए वरदान से लाचार। समस्या गंभीर थी। क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर लेटे भगवान विष्णु के माथे पर भी चिंता की लकीरें खिंचाई थीं। शिव अगर लंका चले गए तो पहले से ही राक्षसों से पिट रहे देवता और भी कमजोर हो जाएंगे। शिव ने हमेशा दोनों पक्षों में तटस्थ सलाहकार की भूमिका निभाई थी। भगवान विष्णु को लगा शिव को लंका जाने से रोकना ही होगा हर हालत में। उधर रावण मस्ती में कंधे पर शिव को बिठाए शिव तांडव स्त्रोत का पाठ करता तेजी से कदम बढ़ाता उस इलाके में पहुंच गया था जहां मैदानी इलाका खत्म और जंगलों से भरा पठारी इलाका शुरू हो जाता है। भगवान विष्णु रावण को खोजते पूछते उस जगह तक पहुंच ही गए। वही इलाका था जो आज का झारखंड है, जंगल झाड़ जंगली जीवों से भरा हुआ। लेकिन इससे रावण को क्या डर, खुद पशुपति नाथ उसके कंधे पर जो बैठे थे, अब भगवान विष्णु छिप छिप कर रावण का पीछा किए जा रहे थे। विष्णु इस बात से खुश थे कि रावण के लिए पैदल चलने की शर्त लगाकर शिवजी ने देवताओं को सोचने के लिए कुछ वक्त दे दिया था ताकि वो जुगत लगाकर रावण को रोक लें। विष्णु जानते थे कि शिवजी ने यह वक्त सिर्फ उनके लिए ही दिया है। उनके साथ ही हरहराती गंगा भी थी। गंगा देवताओं की नदी थी और शिवजी की जटा होकर ही धरती पर उतरती थी, वो भी हिमालय में। लेकिन अब वहां शिव ही नहीं तो धरती पर कैसे उतरेंगी भला। गंगा भी यही चाहती थी कि वो खूबसूरत हिमालय में ही धरती पर उतरें, न कि राक्षसों की राजधानी लंका जाकर। अचानक भगवान विष्णु ने गंगा को कुछ संकेत किया कि गंगा झटाके में एक पतली लकीर सी बन गई और तेजी से हवा की तरह रावण की ओर बढ़ी। रावण को लगा कि उसके कान में कुछ सुरसुरी सी हुई है। उसने आंखें उठाकर अगल बगल देखा तो उसे कुछ दिखा तो नहीं। जंगल में सब कुछ ठीक ठाक नजर आ रहा था। साल के पेड़ आंखें मीचे रावण को जाने का रास्ता दे रहे थे और बस रावण के भारी भरकम खड़ाओं के नीचे सूखी पत्तियों की चर चर की आवाज ही आ रही थी। अचानक रावण को लगा कि उसे लघु शंका हो रही है, लेकिन उसने अपनी इस शंका को दबा दिया। इसके लिए उसको कहीं रुकना होता और शिवलिंग को कहीं रखना होता, ये उसके लिए मुमकिन नहीं था। शिवजी ने शर्त ही रखी थी, शिवलिंग को लंका से पहले कहीं भी नहीं रखना है। रावण चलता गया चलता गया। इस बीच न जाने कितने टीलों पे चढ़ा, कितने नदी नाले पार किए, कितने आदिवासियों के छोटे घरौंदों जैसे घरों वाले गांव और पुरवे आए। रावण ने इन लोगों की सीधी सादी जिंदगी को गौर से देखा, हर चीज की मन ही मन तारीफ की ताकि उसका दिमाग बाकी चीजों में बटा रहे। लेकिन कोई उपाय काम नहीं आ रहा था। लघु शंका का दबाव बढ़ता जा रहा था। लग रहा था जैसे रावण की वीरता धरी की धरी रह जाएगी। रावण बेबस नजर आ रहा था। रावण कंधे पर शिवलिंग उठाए तकरीबन भागने लग गया था। कोई तो दिखे, कोई तो हो जो इस शिवलिंग को थोड़ी देर के लिए पकड़ ले। जंगल खत्म हो गए थे और कुछ खुले मैदान का इलाका शुरू हो गया था। रावण ने देखा आसपास गायें चर रही थीं। मवेशी हैं तो चरवाहा भी जरूर होगा, रावण ने सोचा और इधर उधर निगाहें दौड़ाकर किसी भी आदमी की तलाश करने के लिए पल भर को रुक गया। हरे भरे मैदान में गायें चर रही थीं। उसकी निगाहें खेत की हरी भरी मेड़ पर लेटे एक चरवाहे पर जा टिकी। रावण जब उसके पास पहुंचा तो देखा वो ऊंग रहा था।
1: अरे ओ चरवाहे उठ,
0: रावण ने लगभग डांटती आवाज में कहा। चरवाहे ने लेटे लेटे ही जवाब दिया,
1: क्या चाहिए और सुनो, बैद्यनाथ नाम है हमारा, घरवाले प्रेम से बैजू बुलाते हैं, तुम कौन हो?
0: रावण का जबड़ा गुस्से से भिज गया। इस अदने से चरवाहे की यह हिम्मत, लंका के राजा रावण से लेटे लेटे बात कर रहा है। रावण का मन हुआ कि इस चरवाहे को एक लात मारे। रावण ने आदेश देने की आवाज में कहा,
1: अरे मूर्ख चरवाहे उठ के बैठ, मेरी मदद कर, इस शिवलिंग को पकड़।
0: चरवाहा फिर भी नहीं उठा। मदद लेने आए हो तो विनम्रता से बात करो, कपड़ों से तो अच्छे खानदान के लगते हो, बात करने का तरीका नहीं आता। रावण का पारा सातवें आसमान पे चला गया।
1: मैं लंकेश रावण हूं,
0: उसने गरज कर कहा था।
1: बैजू जोर जोर से हंसने लगा, अरे तुम राजा हो तो मेरी मदद क्यों चाहिए, और मांगने वाला तो यहाँ देने वाले के सामने गरज रहा है। सोचो कभी मैं तुम्हारे दरबार में आकर ऐसे ही गरज कर तुमसे हजार सोने के सिक्के मांगू तो दोगे, अरे उल्टा मुझको हाथियों के पैरों के नीचे कुचलवा दोगे।
0: रावण को तुरंत अपनी गलती का एहसास हुआ।
1: तुरंत उसकी आवाज में मिश्री घुल गई। सुन रे बैजू, मदद कर मेरी, थोड़ी देर तो पकड़ ले ये शिवलिंग, ज्यादा भारी नहीं है रे, बस जरा लघु शंका से निपटाऊं। हंसता हुआ बैजू धूल झाड़ता हुआ उठ खड़ा हुआ। जाओ राजा, शंका का निवारण कर आओ। और कहते कहते बैजू ने रावण के हाथों से शिवलिंग ले लिया। बैजू ने जैसे ही शिवलिंग पकड़ा, उसे पत्थर के शिवलिंग के वजन का एहसास हो गया। अरे राजा सुनो सुनो, तनिक जल्दी आना महाराज, ये भगवान जी तो बहुत ही भारी हैं, नीचे रख दें साफ जगह पर थोड़ी देर। रावण तुरंत उल्टे पैर आया। अरे मूरख, थोड़ी देर पकड़ ले, माला माल कर दूंगा सोने से, नीचे मत रखना बस। फिर रावण दौड़ता हुआ चला गया। रावण तो लपकता हुआ झाड़ियों की आड़ में चला गया और बैजू ने पत्थर का शिवलिंग उठाए रखा, लेकिन रावण जो गया सो गया ही रह गया। बैजू की बाहों में दर्द हो गया और शिवलिंग था कि हर पल और अधिक भारी होता जा रहा था। बैजू ने परेशान होकर पुकारा, अरे ओ राजा कहाँ चले गए? रावण बैजू से अधिक दूरी पर नहीं था। बैजू की परेशान आवाज उस तक भी पहुंची, लेकिन उसकी लघु शंका अभी खत्म हुई नहीं थी। वो खुद हैरान था कि 2 घंटे से ज्यादा समय बीत गया था और अभी भी लग रहा था कि उसके पेट की थैली में न जाने कितना पानी भरा हो। हैरान परेशान सा रावण अपने सामने बनती झील को देख रहा था। यही तो जहनू ऋषि का आश्रम था, जहां गंगा जहनू ऋषि के कान में घुस गई थी और फिर जाह्नवी कहलाई थी। रावण को गंगा की इस कहानी की याद आई तो चौंक गया, कहीं ये बदमाशी गंगा की तो नहीं। रावण को यकीन हो गया कि जरूर देवताओं ने गंगा के साथ मिलकर उसके साथ धोखा किया है। उधर बैजू ने हैरान होकर फिर से पुकारा, ओ राजा, अब भगवान जी हमारे हाथों से फिसलने लगे हैं, संभाले नहीं संभल रहे। रावण को खुद पर बहुत चिढ़ हो रही थी। फिर बैजू की आवाज और उसकी पुकार आनी बंद हो गई। रावण को इस परिस्थिति पर हंसी भी आ रही थी, देहाती कहीं का तुरंत परेशान हो जाता है। और देखिए उसको पेशाब आना भी बंद हो गया। रावण तुरंत दौड़ता हुआ उस जगह पहुंचा जहां उसने बैजू को शिवलिंग दिया था, लेकिन बैजू वहां नहीं था। रावण का जी धक से रह गया। अरे बैद्यनाथ, ओ बैद्यनाथ! रावण चिल्लाता हुआ जंगल की तरफ दौड़ा। 2 फरलांग भी आगे नहीं गया होगा कि देखता क्या है, शिवलिंग एक साफ जमीन पर रखा है, लेकिन बैजू का कहीं पता नहीं। रावण गुस्से से थर थर कांपने लगा। उसने गुस्से से शिवलिंग पर जोर का मुक्का मारा। शिवलिंग एक तरफ से धरती में थोड़ी धंस गई। भगवान ने भक्त का गुस्सा सहन कर लिया था, लेकिन अब क्या हो सकता था। शिव की शर्त के मुताबिक अब शिवलिंग वहीं स्थापित होना था। आसपास की जमीन को साफ सुथरा करके रावण ने वहीं आसन लगा लिया था। उसे पता था कि देवताओं ने शिव को लंका ले जाने की उसकी योजना पर पानी फेरने के लिए गंगा की मदद ली थी। रावण निराश तो था, लेकिन उसको अपनी भक्ति पर भरोसा भी था। उसने आसपास की चट्टानों को काट कर उसका मंदिर बनाया। शिव का जलाभिषेक भी जरूरी था, तो जल कहां से आए। शिव जी की पूजा के लिए रावण ने वहां एक कुआं भी खोदा, जंगल से फूल बेलपत्र चुन कर लाया और फिर शुरू हुई शिव आराधना।

0: गंभीर भारी आवाज में शिव की स्तुति शुरू हुई तो जंगल में शांति हो गई। हवा ने तेज बहना बंद कर दिया, झरनों के पानी ने शोर मचाना बंद कर दिया। पूरे जंगल के परिंदे उसी जगह इकट्ठे होने लगे। रावण ने विश्वकर्मा को बुलाया और कहा कि रात ही रात में उस जगह शिवजी का मंदिर बन जाना चाहिए। रावण के बनाए अस्थाई चबूतरे नुमा मंदिर के पास ही विश्वकर्मा ने शाम ढलते ही काम शुरू कर दिया। पहले शिव का मंदिर तैयार हुआ, फिर बाकी 22 देवताओं के, और अंत में बन रहा था गौरी का मंदिर। पौ फटने वाली थी। रावण ने ऊंचे स्वर में शिव की उपासना शुरू की। सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। ये लो, सुबह हो गई, बस सूरज की किरण नहीं निकली। विश्वकर्मा जी ने काम रोक दिया। दिन में विश्वकर्मा काम नहीं किया करते थे। गौरी का मंदिर शिव के बराबर बनना था, लेकिन आधी ऊंचाई का ही बन पाया। रावण ने अपने बनाए कुएं के जल से जलाभिषेक कर मंदिर में शिवलिंग की पूजा की। जिस बैजू यानी बैद्यनाथ ने जमीन पे शिवलिंग रख दिया था, उसे ही मंदिर की देखभाल का जिम्मा सौंपा और निकल पड़ा लंका की ओर, भोले भंडारी शिव की मोहिनी सूरत को दिल में बसाए हुए। रावण और वैद्यनाथ के नाम पर ही झारखंड राज्य में आज के देवघर शहर में स्थापित 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक शिवलिंग को रावणेश्वर वैद्यनाथ महादेव कहा जाता है। कहा जाता है कि आज भी सिर्फ बैजू के खानदान के लोग ही साफ सफाई के लिए मंदिर के शिखरों पर चढ़ सकते हैं। मान्यता है कि रावण का खोदा हुआ कुआं आज भी मंदिर के अहाते में मौजूद है और उसी के जल से शिवलिंग का जलाभिषेक होता है। रावण के मूत्र से बनी झील भी मौजूद है, जिसको शिवगंगा कहा जाता है। रावण जैसे भक्त के मुक्के से टेढ़ी हुई शिवलिंग आज भी टेढ़ी ही है। हर हर महादेव। दोस्तों, ये कहानी बस इतनी ही। आप जब चाहेंगे, जितनी बार चाहेंगे, मैं आपको यही मिलूंगा एक और नई माइथोलॉजिकल कहानी सुनाने को तैयार, क्योंकि ये है टाइम मशीन।
1: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
2: सुनिए,
3: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
2: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
3: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
2: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
4: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
5: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
4: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
5: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
4: या अभी कॉल कीजिए 92899-22567 या 97-7-14-86-164।
6: ठक ठक।
7: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
8: अच्छा मिला ही नहीं।
7: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
2: जी हाँ, कमल श्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
7: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
2: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।

0: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
2: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज।

0: 8765-65750।
1: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरा कान का झुमका ला।
2: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
1: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
2: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
3: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
2: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
3: तो अगर आपको कुछ अच्छा कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
2: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
3: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं। तो अब रामू काका, हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
4: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लेके आओ तनी बाबू।
3: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
4: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
3: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
4: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लिए या दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कैले से का फायदा?
5: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
3: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
6: गुला एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
7: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
6: आज ही संपर्क करें 7388894 या 9198886973।

0: अरे स्टीयरिंग हिल क्यों रहा है और ये टायर जल्दी घिस क्यों रहे हैं?
1: अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा तो समझ जाइए, टायर को चाहिए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग।
2: और इसके लिए जिले में भरोसे का एक ही नाम है, मिश्रा टायर्स, अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग।
1: यहाँ होता है कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, 3D अलाइनमेंट, डिजिटल बैलेंसिंग, सब कुछ आधुनिक मशीनों से।
2: साथ ही सभी कंपनी के टायर ट्यूब बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध हैं।
1: एक बार सेवा का मौका जरूर दें। विजिट करें मिश्रा टायर्स कंप्यूटराइज्ड अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, शिव मंदिर पोखरा के सामने, NH 27 बंजारी गोपालगंज।
2: रोड सपोर्ट या जानकारी के लिए कॉल करें 8825214946।
3: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
4: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
1: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
2: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूर्व भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
1: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
2: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेष द्वारा।
1: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता, MBBS, MS, सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा, MBBS, MD, DNB, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
2: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD, IPD, ICU, मॉड्यूलर OT, अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
1: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा, NH 27 गोपालगंज।
2: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
5: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
6: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में। आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
5: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
6: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ 1 रुपए प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99 399 66 999।

0: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
1: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
0: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
1: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
0: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
2: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
3: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
2: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
3: आज ही एडमिशन के लिए आए चैनपट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
2: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
3: जानकारी है तो कॉल करे 6205-62112 पे।
4: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
5: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
4: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
5: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
4: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
6: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा गोपालगंज। शाखा राजापुर बाजार गोपालगंज। CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
7: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
6: तो देर मत कीजिए,
7: सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा गोपालगंज। कॉल अस 9939721308।
8: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
9: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 8604-48652 पे।
10: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।

0: से भी बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ ही कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने की सलाह दी है। अमरीकी सेना ने लगातार दूसरे दिन ईरान के कई ठिकानों पर हमले किए। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या 1430 हो गई है और किदाम्बी श्रीकांत अमरीकी ओपन बैडमिंटन के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइनी के साथ बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय सहयोग की व्यापक समीक्षा करेंगे और आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की राष्ट्रीय असेंबली को संबोधित करेंगे और वहां रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी रोशकेमन में आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार समारोह में भारतीय रक्षा बलों का एक दल और भारतीय नौसेना के 2 युद्धपोत भी भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस और स्वतंत्रता के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हो रहे हैं। यह यात्रा भारत और सेशल्स के बीच मजबूत और लंबे समय से चले आ रहे मित्रतापूर्ण संबंधों को और मजबूत करने का है। साथ ही यह दोनों देशों की हर क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग और संबंधों को आगे बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी होगा। हिन्दी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि भारत ने पिछले 12 वर्षों में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है और वो सभी के लिए स्वास्थ्य कवरेज के व्यापक लक्ष्य की ओर अग्रसर है। इसका उद्देश्य प्रत्येक नागरिक के लिए सुलभ, किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करना है। एक निजी मीडिया चैनल के कार्यक्रम के 9वें डॉक्टर्स डे कॉन्क्लेव में सुश्री पटेल ने कहा कि सरकार ने स्वास्थ्य दृष्टिकोण को बीमारों की देखभाल से उनके बेहतर स्वास्थ्य की ओर तथा उपचारात्मक देखभाल से मरीजों के व्यापक कल्याण की ओर मोड़ दिया है।
2: Today we have a new national health policy.
3: आज हमारे पास एक नई राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति है। यह रोग के उपचार से स्वास्थ्य सुरक्षा की ओर एक परिवर्तनकारी कदम है, जिसमें बीमारी की रोकथाम को केंद्र में रखा गया है। भारत सरकार ने इन 12 वर्षों में कई योजनाएं शुरू की हैं। इनमें सबसे परिवर्तनकारी योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है। इसे दुनिया का सबसे बड़ा स्वास्थ्य कार्यक्रम माना जाता है, जिसके दायरे में लगभग 62 करोड़ लोग शामिल हैं।
2: 62 करोड़ इंडिविजुअल्स।
0: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा TET पेपर लीक मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल बनाने का आदेश दिया है। इस टीम की अगुवाई ठाणे के संयुक्त पुलिस आयुक्त पंजाब राव उगले करेंगे। मुख्यमंत्री ने स्कूल शिक्षा मंत्री दादा भूसे और पुलिस महानिदेशक सदानंद दाते से भी बातचीत की और गिरोह में शामिल सभी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया। मुंबई अपर आयुक्त अशोक दुबे ने बताया कि पेपर लीक मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
4: महाराष्ट्र में जो TET की एग्जाम होने वाली है, उस एग्जाम में जो पेपर आने वाले थे, वो पेपर भिवंडी में बेचने के लिए कुछ लोग आने वाले हैं। ये इन्फॉर्मेशन यहाँ के DCP जोन 2 पवन बंसोड़ इनको मिले थे। वहाँ पे 3 लोगों को टीम ने हिरासत में लिया। उनके पास से कुछ मोबाइल, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, कुछ पैसे बरामद किए। कल इस्तेमाल होने वाले TET के 4 पेपर जब्त किए हैं। आगे की जाँच हमारी चल रही है।
0: इस घटना के बाद आज होने वाली TET परीक्षा स्थगित कर दी गई है। परीक्षा की नई तारीख की घोषणा बाद में की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को सलाह दी है कि वे सभी आवश्यक दस्तावेज होने पर ही कैलाश मानसरोवर की यात्रा करें। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मंत्रालय ने यह परामर्श उन भारतीय नागरिकों के सहायता अनुरोध के बाद जारी किया है जो निजी टूर ऑपरेटरों के माध्यम से चीन के लिए आवश्यक प्रवेश परमिट और बिना वीजा के नेपाल में फंस गए हैं।
5: विदेश मंत्रालय ने कहा है कि कुछ भारतीय श्रद्धालु निजी टूर ऑपरेटरों के जरिए कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए नेपाल तो पहुंच गए, लेकिन उनके पास चीन में प्रवेश के लिए जरूरी वीजा और परमिट नहीं थे। इस कारण कई श्रद्धालुओं को यात्रा के समय समस्याएं पेश आई हैं और उन्होंने मंत्रालय से मदद मांगी है। मंत्रालय ने कहा है कि श्रद्धालु सभी जरूरी यात्रा दस्तावेज मिलने के बाद ही यात्रा शुरू करें। उसने कहा है कि केवल इस उम्मीद में यात्रा शुरू न करें कि आगे चलकर परमिट या वीजा मिल जाएगा, क्योंकि इससे यात्रा के दौरान परेशानी हो सकती है। मंत्रालय ने श्रद्धालुओं से कहा है कि यात्रा पर जाने से पहले यह सुनिश्चित कर ले कि उनका टूर ऑपरेटर पंजीकृत और अधिकृत है। मंत्रालय का कहना है कि इस सलाह का उद्देश्य श्रद्धालुओं की यात्रा को सुरक्षित, सुगम और परेशानी से मुक्त बनाना है। रोहन के साथ अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: चार धाम यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सेवा का पहला चरण पूरा हो गया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बताया कि इस दौरान हर दिन लगभग 400 हेलीकॉप्टर उड़ानें भरी गईं। जम्मू कश्मीर में 3 जुलाई से शुरू होने वाली 57 दिन की वार्षिक अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू के पुरानी मंडी स्थित श्रीराम मंदिर अमरनाथ यात्री आधार शिविर में साधुओं का आगमन शुरू हो गया है। इससे पहले सुरक्षा एजेंसियों ने बहुस्तरीय व्यापक सुरक्षा व्यवस्था का अभ्यास किया। हमारी विशेष श्रृंखला प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत आज हम छत्तीसगढ़ के गार्बेज कैफे के प्रभारी रितेश सैनी के साथ परिचर्चा प्रसारित कर रहे हैं। अंबिकापुर नगर निगम द्वारा संचालित इस कैफे में प्लास्टिक कचरे के बदले में भोजन उपलब्ध कराया जाता है।
6: मन की बात में जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका उल्लेख किया, उसके बाद क्या प्रभाव पड़ा?
7: उसके बाद ये प्रभाव पड़ा कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे अंबिकापुर का नाम आना, उससे बहुत सारे लोग थे जो गार्बेज कैफे के बारे में जान पाए।
8: हमारे यहाँ डोर टू कलेक्शन हो रहा, प्रतिदिन 50 से 55 टन कचरे का हम प्रोसेसिंग कर रहे हैं। विश्व के समस्त देशों तक गार्बेज कैफे वर्ल्ड जो है वो अंबिकापुर से वहां तक पहुंच गया। सबसे महत्वपूर्ण पहलू होता है प्लास्टिक रिसाइकलिंग का, कि प्लास्टिक की गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए। प्लास्टिक यदि नालियों में चला गया, मिट्टी में चला गया या वो खाद्य पदार्थ से मिक्स हो गया, उसकी रिसाइकलिंग करना कठिन हो जाती है।
0: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ। ये कार्यक्रम आज सुबह 9:10 पर आकाशवाणी के FM गोल्ड 100.1 MHz पर प्रसारित किया जाएगा। पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने सरिस्का बाघ अभयारण्य में बाघों के पुनर्स्थापना के 18 वर्ष पूरे होने पर देशवासियों और प्रकृति प्रेमियों को बधाई दी है। अमरीकी सेना ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर लगातार दूसरे दिन ईरान में कई ठिकानों पर हमले किए हैं। सेना ने कहा कि उसने लगातार दूसरे दिन ईरान के कई ठिकानों पर हमले किए हैं, इससे दोनों पक्षों के बीच हुए संघर्ष विराम समझौते को लेकर अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न हो गई है। सोशल मीडिया पोस्ट में अमरीका की सेंट्रल कमान ने कहा है कि शुक्रवार को तेल से लदे एक व्यापारिक पोत कीकू पर हुए हमले के जवाब में अमरीका ने ईरान के सैन्य ढांचों, संचार प्रणालियों, वायुसेना के अड्डों, ड्रोन और बारूदी सुरंग बिछाने के क्षमताओं को निशाना बनाया। वेनेजुएला में भूकंप में से मरने वालों की संख्या 1430 हो गई है। वेनेजुएला में बुधवार को 7.2 और 7.5 तीव्रता के 2 शक्तिशाली भूकंप आए थे, जिसमें काफी नुकसान हुआ है। देश में करीब 68,900 से अधिक लोगों के लापता होने की खबर है। लागवेरा क्षेत्र में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज सुबह कांगो ने उज्बेकिस्तान को 3-1 से हरा दिया। इसके साथ ही कांगो की टीम इतिहास रचते हुए पहली बार प्रतियोगिता के नॉकआउट चरण में पहुंच गई है। एक अन्य मुकाबले में आज पुर्तगाल और कोलंबिया के बीच मैच बिना कोई गोल के ड्रॉ पर समाप्त हुआ। अब राउंड ऑफ 32 में शुक्रवार को पुर्तगाल का सामना क्रोएशिया से होगा, जबकि शनिवार को कोलंबिया और घाना आमने सामने होंगे। इससे पहले अमरीका के न्यूजर्सी में खेले गए ग्रुप एल के मैच में इंग्लैंड के जूड बेलिंगहम और हैरी केन के एक एक गोल की बदौलत आज इंग्लैंड ने भी पनामा को 2-0 से हराया। इसके साथ ही इंग्लैंड ग्रुप एल में शीर्ष पर पहुंच गया है। इसी ग्रुप के एक अन्य मैच में क्रोएशिया ने घाना को 2-1 से पराजित किया। क्रोएशिया ग्रुप में दूसरे, जबकि घाना तीसरे स्थान पर है। और अब खेल की अन्य खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बर
9: जी। लवली, इन खेल खबरों में शुरुआत करते हैं बैडमिंटन से। भारत के किदाम्बी श्रीकांत अमरीकी ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गए हैं। अमरीका के कैलिफोर्निया के टाइटन जिम में श्रीकांत ने सेमीफाइनल में जापान के युदाई ओकोमोतो को 22-20, 15-21 और 21-19 से हराया। इस बीच पुरुष सिंगल्स के एक अन्य सेमीफाइनल में आज भारत के रौनक चौहान का मुकाबला चीनी ताइपे के सूली यांग के साथ होगा। महिला सिंगल्स में भारत की देविका सिहाग सेमीफाइनल मुकाबले में डेनमार्क की की लाइने क्रिस्टोफर सेन से हार गयी। उधर क्रिकेट का मक्का कहे जाने वाले लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में आज आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप ए के अपने अंतिम मैच में भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। और अगर बात करें शतरंज की बाजी की तो गोवा के 14 वर्षीय एथन वाज ने बोस्निया और हर्जेगोविना में आयोजित साराजेवो जीएम मिक्स शतरंज टूर्नामेंट में तीसरा और अंतिम ग्रैंड मास्टर नॉम हासिल कर लिया है और वे भारत के 96वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। जी लवलीन, खेल जगत से बस आज इतना ही।
0: मौसम विभाग ने असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में आज तेज वर्षा तथा कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी है। बिहार, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, कोंकण, गोवा, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल, तेलंगाना, विदर्भ, लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अगले 2 दिन में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया गया है। दक्षिण पश्चिम मानसून गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में अगले 2 से 3 दिन में आगे बढ़ सकता है। आंध्र प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में कल तक बिजली कड़कने और तेज हवा का अनुमान व्यक्त किया गया है। इस बीच दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार में आज लू चलने के आसार हैं। अमेरिका के वाशिंगटन में भारतीय दूतावास ने कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपिडार, वाणिज्य विभाग तथा डुपोंट सर्कल बिजनेस इम्प्रूवमेंट डिस्ट्रिक्ट के सहयोग से वार्षिक आम महोत्सव का आयोजन किया। इसमें अल्फांसो, केसर, दशहरी, लंगड़ा और बैंगनपल्ली जैसी लोकप्रिय भारतीय आम की किस्मों का प्रदर्शन किया गया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे newzoneair मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
3: धन्यवाद लवलीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेशल्स यात्रा को अमर उजाला ने मैत्री संबंध बताते हुए लिखा है, हिंद महासागर पर बढ़ेगा सहयोग। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, सेशल्स में प्रधानमंत्री ने मेड इन इंडिया गस्ती पोत सौंपा। पत्र आगे लिखता है, श्री मोदी 194 साल के कछुए जोनाथन से मिले। अयोध्या में श्रीराम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले में कुछ और लोगों के इस्तीफे की खबर हिन्दुस्तान सहित सभी अखबारों में है। पत्र ने ट्रस्ट की तरफ से इस आश्वासन को दिया है कि श्रद्धालुओं के मूल्यवान समर्पण सुरक्षित हैं। अमेरिका और ईरान के बीच भिड़ंत शीर्षक से दैनिक जागरण ने संपादकीय में लिखा है कि दोनों देशों के बीच शांति समझौता होने के 10 दिन के भीतर ही फिर से सैन्य झड़पें शुरू हो जाना पश्चिम एशिया और साथ ही विश्व के लिए बुरी खबर है। अफगानिस्तान में कल आए भूकंप की खबरें सभी अखबारों में हैं। देशबंधु कहता है, दिल्ली एनसीआर तक डोली धरती। उधर राजस्थान पत्रिका ने वेनेजुएला में भूकंप के बाद तबाही से जीवन की किरण शीर्षक से लिखा है, मलबे से 18 दिन के नवजात को निकाला, राहत और बचाव कार्य तेज। इसरो ने सेमी क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया, देशबंधु की खबर है। पत्र ने इसे भारत की अगली पीढ़ी के प्रक्षेपण यान के विकास में महत्वपूर्ण उपलब्धि बताते हुए लिखा है, अब गगनयान मिशन की तैयारियां तेज। अमर उजाला की खास खबर है, सितंबर में रोशन हो जाएगा लद्दाख, सियाचिन तक पहुंची बिजली। पत्र ने इसे बुनियादी ढांचे और स्थानीय विकास के मोर्चे पर मील का पत्थर बताते हुए लिखा है कि इससे सेना और सुरक्षा बलों को मिलेगी बड़ी ताकत। राजधानी दिल्ली में शनिवार को भीषण गर्मी और उमस पर हिंदुस्तान कहता है, 51 डिग्री सेल्सियस तापमान जैसी तपिश महसूस हुई। दैनिक भास्कर की खास खबर है, इस साल रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के बीच बाजारों में छाछ, लस्सी अपना बाजार मजबूती से बना रही है। पत्र कहता है, अब कोल्ड ड्रिंक्स पीछे, छाछ और लस्सी की बिक्री में चौगुनी वृद्धि।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइनी के साथ वार्ता करेंगे। वे सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित करेंगे और भारतीय समुदाय के लोगों से भी बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ ही कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने की सलाह दी। अमरीकी सेना ने लगातार दूसरे दिन ईरान के कई ठिकानों पर हमले किए और किदाम्बी श्रीकांत अमरीकी ओपन बैडमिंटन के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: सवा चार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजिम 90.4 एफएम पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
1: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
2: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
1: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
2: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
1: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
2: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
1: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
3: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527888291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527888291 या 95238 74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
4: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
5: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
4: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
5: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी या दाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
4: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554 97644।

0: रोज रोज का पेट दर्द।
1: अरे तो उसे डांटते क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
2: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
3: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
2: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
0: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
4: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
5: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
4: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
5: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
4: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
5: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
4: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
5: कॉल नाउ 9056-59536 या 9056-57902। नमः शिवाय।
4: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
5: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
4: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
5: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
4: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
5: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
4: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
5: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
4: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
5: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH 27, काली स्थान बंजारी, गोपालगंज।
4: बोलबम, हर हर महादेव।
6: ठक ठक।
7: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
8: अच्छा मिला ही नहीं।
7: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
2: जी हाँ, कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
7: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
2: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
9: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है।
5: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
4: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
5: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
4: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।

0: क्या चाहते हो? मैं ना जाऊँ अपने दोस्त की शादी में?
1: क्यों, क्या हुआ है?
0: तुम्ही ने तो कहा था मुझे डिजाइनर लहंगा, साड़ी और गाउन दिलाओगे।
1: अरे तो कौन सी बड़ी बात है, आज ही चलते हैं गोपालगंज में लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स। वहाँ तुम्हें तुम्हारी मन पसंद के अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाएंगे।
0: फिर ये भी ठीक है, चलो चलते हैं लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स।
2: शादी विवाह या किसी भी शुभ अवसर पर एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स जो है मेन रोड गोपालगंज में।
3: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
4: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
5: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा।
6: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
7: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
5: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा साड़ी सूट पीस, हर डिजाइन हर रंग हर बजट में।
4: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
5: मुरारी लाल विजय कुमार मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
7: कॉल करे 87894 18744।
8: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
0: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 86034 48652 पे।
9: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
10: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
11: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
12: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
11: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704 34468 पे।

0: घर बन रहा हो तो सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं, टाइल्स और फिटिंग्स का चुनाव भी होना चाहिए शानदार।
1: इसीलिए गोपालगंज जिले के लोगों की पहली पसंद बन चुका है बीके टाइल्स। बीके टाइल्स, यहाँ मिलेंगे सभी प्रकार के डिजाइनर टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, बेसिन, कॉमोड, बाथ फिटिंग्स और घर सजाने के कई आधुनिक प्रोडक्ट,
2: वो भी किफायती दामों पर। और खास बात, गोपालगंज जिले में हमारी 4 सुविधाजनक शाखाएं,
1: अरार मोड़ एसपी कोठी के पास गोपालगंज, दूसरा ब्रांच भटवा मोड़ के पास कुचाई कोट,
2: तीसरा ब्रांच इस्लामिया कॉलेज के पास मेन रोड थावे मीरगंज, और चौथा ब्रांच बंतरिया मोड़ भोरे।
1: और अब सिवान जिले में भी हमारी 2 शाखाएं उपलब्ध हैं, सिवान ब्रांच कुशवाहा चौक हकाम बाईपास सिवान,
2: और मैरवा ब्रांच बबनौली चौक मैरवा सिवान।
1: तो आज ही अपने सबसे नजदीकी बीके टाइल्स ब्रांच पर आए और करे बेहतरीन खरीदारी।
2: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें गोपालगंज ब्रांच में 8460571406, मीरगंज ब्रांच में 9693101611,
1: कुचाई कोट ब्रांच में 9693101602, भोरे ब्रांच में 8207856404,
2: सिवान ब्रांच में 9942071405, मैरवा ब्रांच में 8207856403। नमः शिवाय।
1: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
2: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
1: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
2: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
1: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
2: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
1: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
2: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
1: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
2: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
1: बोलबम, हर हर महादेव।
3: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
4: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
5: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
4: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 8211-87952। नियम और शर्तें लागू।
6: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
5: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
6: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहां पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
5: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।

0: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
1: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
0: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
1: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
0: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
2: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
3: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
2: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
3: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम एक डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
2: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
3: जानकारी है तो कॉल करे 6052 62112 पे।
4: तो भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नु सारा मार्केट, देख लेनी नु सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
5: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
4: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में।
2: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
6: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
7: अरे मुन्नी, तुम आ गई, चल मेरे कान का झुमका ला।
8: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
7: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
8: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
2: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी।
8: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
2: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
8: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
2: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
9: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य SP त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज, जैसे
10: सभी प्रकार के नशा, जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंताएं और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
9: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
11: वैद्य SP त्यागी जी से मिलने का पता
9: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड, भी मार्केट के बगल में, कृष्णा जी के मकान में।
11: जानकारी के लिए कॉल करें।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप रचना सहाय से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में आज पंचायत विकास दिवस का हो रहा है आयोजन। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी मुंगेर जिले के टेटिया पंचायत से करेंगे शुभारंभ। विदेश मंत्रालय ने निजी टूर ऑपरेटरों के माध्यम से कैलाश मानसरोवर यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए परामर्श जारी किया। और केंद्रीय चयन पर्षद की ओर से आज बिहार पुलिस की 993 पदों के लिए सिपाही भर्ती परीक्षा का किया जा रहा है आयोजन। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, AIR न्यूज की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। साथ ही AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी इसका सीधा प्रसारण होगा। मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर भी सुना जा सकता है। इसके तुरंत बाद मैथिली भाषा में इसका प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया जाएगा। इसी प्रसारण को दोबारा रात्रि 8 बजे से भी सुना जा सकता है। राजस्व सरकार की पहल पर पंचायती राज विभाग की ओर से अब प्रत्येक महीने के अंतिम रविवार को सभी ग्राम पंचायतों में पंचायत विकास दिवस का आयोजन किया जाएगा। इस माह कार्यक्रम का विषय है महिला हितैषी ग्राम पंचायत। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज मुंगेर जिले के टेटिया बंबर प्रखंड की टेटिया पंचायत से इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। पंचायत विकास शिविर का उद्देश्य है ग्रामीण विकास से जुड़े मुद्दों पर जन भागीदारी बढ़ाना और योजनाओं की समीक्षा के माध्यम से पंचायत को सशक्त बनाना है। इस कार्यक्रम के माध्यम से स्वस्थ पंचायत, बाल हितैषी पंचायत, जल पर्याप्त पंचायत समेत सुशासन युक्त पंचायत का लक्ष्य हासिल करना भी है। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेडियो कार्यक्रम मन की बात का सीधा प्रसारण भी सुना जाएगा। विदेश मंत्रालय ने निजी टूर ऑपरेटरों के माध्यम से कैलाश मानसरोवर यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए परामर्श जारी किया है। मंत्रालय ने कहा है कि उसे कैलाश मानसरोवर की यात्रा के दौरान नेपाल में फंसे कई भारतीय नागरिकों से सहायता के अनुरोध प्राप्त हुए हैं। इनके पास चीन के लिए आवश्यक प्रवेश पत्र और वीजा नहीं है। मंत्रालय ने नागरिकों को सलाह दी है कि वे सभी आवश्यक यात्रा दस्तावेज प्राप्त होने तक भारत से यात्रा शुरू न करें। श्रद्धालुओं को यह भी सुनिश्चित करने की सलाह दी जाती है कि उनका टूर ऑपरेटर पूरी तरह पंजीकृत और अधिकृत हो। इस बीच 20 जून को कैलाश मानसरोवर यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं का पहला जत्था नाथुला दर्रे पर भारत चीन सीमा के रास्ते चीन में प्रवेश कर गया। राज्यपाल सह कुलाधिपति लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन ने सभी विश्वविद्यालयों को समय पर डिग्रियां बांटने का निर्देश दिया है। उन्होंने नालंदा खुला विश्वविद्यालय, बिहार कृषि विश्वविद्यालय और बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय को छोड़कर प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को भेजे निर्देश में कहा है कि डिग्री की छपाई और उनके वितरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने लंबित डिग्रियों को अभियान चलाकर वितरित करने का निर्देश दिया। राज्यपाल ने कहा कि 30 सितंबर तक सभी लंबित डिग्रियों को छात्र छात्राओं को उपलब्ध करा दिया जाए। राज्य सरकार ने जमीन मापी की नई दर तय की है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्य मापी के लिए प्रति खेसरा ₹1,000 तथा अधिकतम ₹4,000 शुल्क निर्धारित किया गया है। तत्काल मापी के लिए प्रति खेसरा ₹2,000 और अधिकतम ₹8,000 शुल्क देना होगा। विभाग ने कहा है कि शहरी क्षेत्रों में सामान्य मापी का शुल्क प्रति खेसरा ₹2,000 तथा अधिकतम ₹8,000 तय किया गया है। वहीं तत्काल मापी के लिए प्रति खेसरा ₹4,000 और अधिकतम ₹18,000 शुल्क निर्धारित किया गया है। शुल्क भुगतान की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। साथ ही अमीन को आवेदन प्राप्त होने के 2 दिनों के भीतर मापी की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्ण ने कहा है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमआई क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भारत में यह क्षेत्र पहली पीढ़ी के उद्यमियों के साहस और उद्यमशीलता का प्रतीक है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि एमएसएमआई क्षेत्र देश के कुल निर्यात में लगभग 50% योगदान करता है और उच्च गुणवत्ता के मानक बनाए हुए हैं। इस अवसर पर एमएसएमआई मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि केंद्रीय बजट से एमएसएमआई क्षेत्र के लिए सरकार की प्राथमिकता और प्रतिबद्धता का पता चलता है।
1: आपने देखा होगा जो 2024-25 का बजट था और 25-26 का बजट था, एमएसएमई के बारे में जितनी चिंताएं की गई है उस बजट में, उसके पहले हमारे सेंट्रल बजट में चिंताएं नहीं हुई थी। ये दर्शाता है कि प्रधानमंत्री जी एमएसएमई को आगे ले जाना चाहते हैं।
0: उपराष्ट्रपति ने देश में एमएसएमआई को सशक्त बनाने के उद्देश्य से क्रांतिकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म, पोर्टल और पुस्तकों का भी विमोचन किया। बिहार पुलिस ने स्पेशल मीडिया पर कानून व्यवस्था को प्रभावित करने वाले आपत्तिजनक और भ्रामक पोस्ट अपलोड करने वाले 128 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पिछले 4 महीनों में 16 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 9 सोशल मीडिया हैंडल, आईडी और चैनलों को हटाया गया है। पुलिस ने कहा है कि आम जनता की जागरूकता और सहभागिता से फर्जी और भ्रामक सूचनाओं पर रोक लगाई जा सकती है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_Patna को फॉलो कर सकते हैं। केंद्रीय चयन परिषद की ओर से आज प्रदेश भर में 544 केंद्रों पर बिहार पुलिस की सिपाही भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। 993 पदों के लिए परीक्षा आयोजित की जा रही है। परीक्षा दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक आयोजित की जाएगी। परीक्षार्थियों को 11 बजे के बाद परीक्षा केंद्रों में प्रवेश नहीं मिलेगा। परिषद ने कहा है कि अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर ई प्रवेश पत्र के साथ वैध पहचान पत्र लेकर आना अनिवार्य होगा। इधर पूर्व मध्य रेलवे परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए परीक्षा विशेष ट्रेन चला रहा है। गन्ना विकास मंत्री संजय पासवान ने कहा है कि प्रदेश के लोगों को अब मजदूरी के लिए बाहर नहीं जाना होगा। मुंगेर में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए श्री पासवान ने कहा कि प्रदेश में आने वाले दिनों में 25 गन्ना फैक्ट्री समेत कई कल कारखाने खोले जाएंगे।
1: मेरी सरकार ने आदरणीय सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने एक पॉलिसी लाया गन्ना उद्योग विभाग का, जो मॉडल कॉम्प्लेक्स चीनी मिल होगा। आने वाले दिनों में 25 की 25 चीनी मिल खुलेंगे और बिहार से पलायन को रोकना है तो सरकार यहीं पे रोजगार देने का, बिहार में ही रोजगार देने का संकल्प लिया है और जनता के वादे पर खड़े उतरेगी।
0: राज्य सरकार ने 10वीं और 12वीं की परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों पर अपार आईडी अनिवार्य कर दिया है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के सचिव ने जिलाधिकारियों को लिखे पत्र में 30 जून तक सभी विद्यार्थियों को अपार आईडी बनाने का निर्देश दिया है। निर्देश में कहा गया है कि अपार आईडी के बिना परीक्षा के लिए निबंधन नहीं कराया जा सकेगा। गौरतलब है कि अपार आईडी छात्रों का डिजिटल शैक्षणिक पहचान है, जो उनकी पूरी शिक्षा का रिकॉर्ड सुरक्षित और सुगम बनाती है। प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं के लिए कल रात 8 बजे से आज रात 8 बजे तक विद्युत संबंधित सभी ऑनलाइन सेवाएं अस्थायी रूप से बंद कर दी गई हैं। ऊर्जा विभाग ने कहा है कि इस दौरान स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं का रिचार्ज नहीं होने की स्थिति में भी बिजली आपूर्ति नियमित बनी रहेगी। राज्य के अधिकतर भागों में दक्षिण पश्चिम मॉनसून की सक्रियता दिख रही है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले 5 दिनों में प्रदेश के अधिकांश भागों में मॉनसून सक्रिय हो जाएगा। विभाग ने अगले 48 घंटों के दौरान मधेपुरा, पूर्णिया, भागलपुर, कटिहार और सिवान समेत कई जिलों में कुछ स्थानों पर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इधर पिछले 24 घंटों के दौरान पूर्णिया, मधेपुरा, कटिहार, बांका, रोहतास और मधुबनी समेत राज्य के उत्तर मध्य और उत्तर पूर्व भागों में अनेक स्थानों पर दोपहर बाद तेज हवा के साथ मध्यम दर्जे की बारिश दर्ज की गई है। इससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। मधेपुरा के पुरैनी में सबसे अधिक 76.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। आज सुबह पटना और आसपास के क्षेत्रों में भी कई स्थान पर हल्की बारिश हुई है। पश्चिम चंपारण जिले के बैरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत हाट सरैया में एक युवक की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। बेतिया SDPO रजनीश कांत प्रियदर्शी ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का खुलासा हो सकेगा। अररिया जिले के फॉरबिसगंज थाना क्षेत्र के भाग कोहलिया गांव में SSB और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 31 ग्राम से अधिक मादक पदार्थ ब्राउन शुगर के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के तहत अब तक 11,25,606 सोलर लाइट लगाई जा चुकी है। पंचायती राज विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार ये लक्ष्य का लगभग 96% है। पटना जंक्शन से रेलवे पुलिस ने यात्रियों से ठगी करने वाले अंतर राज्यीय गिरोह के 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि ये लोग नकली नोटों का बंडल दिखाकर यात्रियों को ठगते थे। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले से दरभंगा के रहने वाले कृष्णा राय और प्रशांत को गिरफ्तार किया गया है। हनुमानगढ़ के पुलिस अधीक्षक नरेंद्र सिंह मीणा ने बताया कि गिरफ्तार व्यक्ति पाकिस्तान में रह रहे शहजाद भट्टी को संवेदनशील जानकारी भेजता था। वो पिछले कई दिनों से इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के माध्यम से शहजाद भट्टी के संपर्क में था। कृष्णा राय के खिलाफ 24 जून को प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। आयरलैंड के वेलफास्ट में दो मैचों की T20 श्रृंखला का दूसरा और अंतिम मैच आज खेला जाएगा। मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 6 बजे से शुरू होगा। श्रृंखला का पहला मैच आयरलैंड ने भारत को 34 रन से हरा दिया। गौरतलब है कि आज के मैच में बिहार के वैभव सूर्यवंशी को टीम 11 में जगह मिलने की उम्मीद है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के हवाले से लिखा है, पटना का मिलर स्कूल प्रेरणा का मॉडल बनेगा। दैनिक जागरण ने राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से जुड़े विवाद पर लिखा है कि अटकलों पर विराम, चंपत राय और अनिल मिश्रा का ट्रस्ट से इस्तीफा। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, बिहार के परीक्षा माफिया ने अब महाराष्ट्र TIT के पेपर लीक कराया, 3 गिरफ्तार। प्रभात खबर ने बिजली से जुड़ी खबर पर लिखा है, 6 जिलों में बिना ग्रिड मिलेगी निर्बाध बिजली। राष्ट्रीय सागर की सुर्खी है, PMCH प्रचार्य हटाए जाने के मामले की होगी हाई लेवल जांच, पूर्व प्रचार्य की प्रेस वार्ता से स्वास्थ्य विभाग नाराज। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। प्रदेश के सभी ग्राम पंचायतों में आज पंचायत विकास दिवस का हो रहा है आयोजन। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी मुंगेर जिले के टेडिया पंचायत से करेंगे शुभारंभ। विदेश मंत्रालय ने निजी टूर ऑपरेटरों के माध्यम से कैलाश मानसरोवर यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए परामर्श जारी किया। और केंद्रीय चयन पर्षद की ओर से आज बिहार पुलिस की 993 पदों के लिए सिपाही भर्ती परीक्षा का किया जा रहा है आयोजन। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजिम 90.4 एफएम पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
1: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527 88291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527 88291 या 95238 74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
2: अरे ए चाची, जब आँख से साफ नहीं खेलो को तो रोडवा पर लड़खड़ा के काहे चलतनी? और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
3: अरे ए बबुओ, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला। सुनले बानी की आँख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
2: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू? अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आ गइल बनी। यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीर फाड़ कइले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करतनी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा? आँख में कोनो तरह के दर्द भी ना हुई और ऑपरेशन भी हो जाए।
4: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुपर सिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से। साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर एम ए अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने रालसन होटल के पश्चिम गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99053 69015 पे।
5: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
4: सुनिए,
6: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
4: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
6: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
4: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
0: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
7: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
4: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराएं नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहां है डॉक्टर कुंदन सिंह एमबीबीएस एमएस जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
8: हमारे यहां दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
4: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9478434468 पे।
9: तो रामू काका, हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
10: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लेके आओ तनी बाबू।
9: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
10: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
9: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
10: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लिए या दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कैले से का फायदा?
8: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
4: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
11: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
12: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
11: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
12: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
11: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
4: श्री भारती एकेडमी, जो है सीबीएसई नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
13: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
4: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
13: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम, एक डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
4: हमारा जूनियर ब्रांच सर सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
13: जानकारी है तो कॉल करे 6052 62112 पे।
14: Now pick your phone up. Hello? Pick it up, pick it up. Hello? Now pick your phone up.

0: हेलो, नमस्ते, नमस्कार, कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूं आप सबकी दोस्त भारती और आप सुन रहे हैं रेडियो रंजन 90.4 FM। और समय हो चुका है हेलो माय चॉइस कार्यक्रम का, तो बिल्कुल समय के साथ हाजिर हूँ। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो नंबर है 8029-94911। जी हाँ, 8029-94911 पर कॉल करके जुड़ सकते हैं और अपनी फरमाइश सुन सकते हैं। और बढ़ते हैं आगे और लेते हैं पहला कॉल और सुनते हैं इनकी फरमाइश।
1: हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 FM में।
2: नमस्ते।
1: नमस्ते,
2: क्या हाल है?
1: मेरा बढ़िया, आप अपना बताइए।
2: हम भी आते हैं, और सब बताइए।
1: और सब तो बढ़िया है। आप बताइए क्या हो रहा है?
2: खाना बना खा लिए।
1: तो बताइए कौन सा गाना सुनना है आज?
2: गाना नहीं है, मेरी गाड़ी मेरी बंगला सब कुछ तेरा सरकार, मेरा भी कुछ भी नहीं।
1: ओके, सॉन्ग कितनी डेडिकेट भी है। ओके, और सब बढ़िया है ना?
2: सब ठीक है।
1: चलिए बढ़िया है, फिर गाना प्ले कर रहे हैं और सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रंजन 90.4 FM।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रेंज 90.4 FM में।
0: नमस्कार मैडम।
1: नमस्कार
0: जी। यार वैसे ही लगाते हैं फोन, और हमारे साथी वो भी लगा रहे थे, उनका भी नहीं लगा
1: जी। कॉल तो आ ही रहे हैं।
0: हिंदी गाना सुनाइएगा, हिंदी कोई भी सुना दीजिएगा, बढ़िया अपना पसंद का।
1: हम अपने पसंद का आप नहीं बताइएगा?
0: नहीं, आप ही
1: कोई भी हिंदी सॉन्ग।
0: हाँ जी, हिंदी कोई भी बढ़िया
1: जी। जी, सॉन्ग किसी को सुनाएंगे जी?
0: सारे जो जितना रेडियो रेंज सुनते हैं सभी के लिए, आपको और इधर हमारे बिजली महतो भी है, संतोष कुमार गोपाल वैसे कुछ आए कुछ ही है। ठीक है जी,
1: चलिए फिर गाना प्ले करते हैं और सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रेंज 90.4 FM।

0: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
1: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
2: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
0: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
2: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
2: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
2: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
0: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com। ओम नमः शिवाय।
2: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
0: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे सुल्तानगंज देवघर बासुकीनाथ राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
2: दूसरा रूट थावे सुल्तानगंज देवघर बासुकीनाथ तारापीठ जगन्नाथपुरी गंगा सागर कालीघाट कोलकाता रजरप्पा राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
0: तीसरा रूट थावे सुल्तानगंज देवघर बासुकीनाथ गया बोधगया वाराणसी अयोध्या गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
2: चौथा रूट थावे सुल्तानगंज देवघर बासुकीनाथ गुवाहाटी माँ कामाख्या धाम दार्जिलिंग सिलीगुड़ी गंतोक जनकपुर अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
0: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
2: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
0: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
2: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
0: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज उपशाखा NH 27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
2: बोलबम हर हर महादेव।
3: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे शुगर नायका कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स होम डेकोरेशन टॉयज एंड गिफ्ट्स ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5 से 25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो इससे अच्छी जगह कोई नहीं श्रृंगार वाटिका।
4: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज या कॉल करें 86034648652 पे।
2: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज शाखा राजापुर बाजार गोपालगंज। CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा नर्सरी से क्लास 10वीं तक कंप्यूटर एजुकेशन बस फैसिलिटी रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
5: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता उन्हें तराशा जाता है।
2: तो देर मत कीजिए
5: सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज कॉल अस 9939721308।
6: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
7: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
6: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
8: अरे मुन्नी तुम आ गई चल मेरे कान का झुमका ला।
9: ओ माई गॉड आज फिर से भूल गई।
8: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
9: सॉरी यार कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
10: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी।
11: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
10: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
11: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
10: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
12: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
13: हेलो,
14: नमस्ते मैम।
13: नमस्ते
14: मैम, हमको गाना सुनना है।
13: नाम बता दीजिए अपना।
14: एक सारा दादी डिप्लोमा के बुक रहा है, बहुत बार फोन लगाने पर लगा है।
13: कोई नहीं, कॉल तो आ रहे हैं इसीलिए थोड़ा टाइम लग जाता है कभी कभी। और बताइए कैसे हैं आप?
14: मैं ठीक हूँ, आप बताइए अपना।
13: हम भी अच्छे हैं। कौन सा सॉन्ग बता दीजिए?
14: क्या मैं मोहम्मद का प्यारा नहीं हूँ,
13: यही सॉन्ग। और सॉन्ग किसी को डेडिकेट दिया है?
14: मैम आपको और रेडियो परिवार।
13: ओके,
14: आज नहीं बजेगा,
13: आज ये वाला नहीं बजेगा, कल बजेगा।
14: ओके,
13: चलिए फिर गाना प्ले कर रही हूँ, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिंगटोन 90.4 FM।

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
1: नमस्कार मैम।
0: नमस्कार,
1: मैं सुवीर को बोल रहा हूँ, कोई जिला देवघर झारखंड से मैं।
0: कैसे हैं आप?
1: बिल्कुल ठीक है मैम, आप कैसे हैं?
0: हम भी अच्छे हैं।
1: गोपालगंज का मौसम कैसा है मैम?
0: इधर अभी गर्मी है, आपकी तरफ?
1: हमारे तरफ कल बारिश हुई थी, मौसम कुछ सुहाना हुआ है।
0: बढ़िया। और बताइए, कौन सा गाना सुनना है आपको?
1: आज सुना दीजिए मैम, पुरानी नसीब फिल्म का गाना सुना दीजिए मैम, गीत के बोले जिंदगी इम्तिहान लेती है।
0: और सॉन्ग किसी को डेडिकेट भी है?
1: जी, सबसे पहले मैम आपको और जितने भी रेडियो के लिसनर हैं सबको सुनाना चाहता हूँ। कोई फ्रेंड से हैं उनको डेडिकेट करना चाहता हूँ। विष्णु प्रसाद यादव हैं, मदन कोल हैं, कृष्ण कोल हैं, कमली कोल हैं, राजकुमारी हैं, जुगल कोल हैं, इन सब सारे साथियों को डेडिकेट करना चाहता हूँ।
0: तो गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो 90.4 FM।
1: थैंक यू मैम।

0: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
1: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
0: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहाँ पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
1: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
2: अरे स्टीयरिंग हिल क्यों रहा है और ये टायर जल्दी घिस क्यों रहे हैं?
3: अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा तो समझ जाइए, टायर को चाहिए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग।
4: और इसके लिए जिले में भरोसे का एक ही नाम है, मिश्रा टायर्स, अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग।
3: यहाँ होता है कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, 3D अलाइनमेंट, डिजिटल बैलेंसिंग, सब कुछ आधुनिक मशीनों से।
4: साथ ही सभी कंपनी के टायर ट्यूब बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध हैं।
3: एक बार सेवा का मौका जरूर दें। विजिट करें मिश्रा टायर्स कंप्यूटराइज्ड अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, शिव मंदिर पोखरा के सामने, NH 27 बंजारी, गोपालगंज।
4: रोड सपोर्ट या जानकारी के लिए कॉल करें 8825214946।
5: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
6: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
7: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
6: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
7: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
6: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
7: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
6: संपर्क करें 84710309 या 9765665750।
8: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
9: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
8: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
9: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है, माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी, संपर्क करें 99399-66999।
10: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
8: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं, कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं, अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
10: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
11: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
10: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
12: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
13: नमस्कार मैडम।
14: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 9.4 एफएम।
13: जी, हमको गाना सुनना है मैडम।
14: बता दीजिए कौन सा गाना सुनना है।
13: तो गाना सुनना है रंग भरे मौसम के रंगों की रात से, और उसके बाद क्या है तेरी मांग में सिंधु सजा के एक जगह बनवाइए मैडम। आरती जी बोल रही है। तो कैसा है मन में जाएगा, तो लगता है 42 डिग्री हो जाएगा ना
14: टेम्परेचर। लग तो रहा है, गर्मी तो बढ़ रहा है,
13: हालत खराब है।
14: अभी तो 11:30 हो रहा है देखिए, और 12 बजे तक कितना बढ़ता है।
13: अरे बाबा, तो हमको भी बाजार में डर लग रहा है। हाँ, गर्मी की क्या बताए, लाइट चला जाता है तो और हालत खराब।
14: ये तो है, लाइट नहीं रहती तो बहुत
13: हवा
14: बैठा तो अच्छा लगता है।
13: पुराना वाला दिन आएगा और सब ठीक है।
14: हाँ हाँ, मेरा ठीक है, आप ठीक है ना।
13: ऊपर वाले के रहम करम से अच्छे हैं, और साथ भी ऊपर वाला रहम करम से आपको भी अच्छा रखे।
14: जी जी,
13: ठीक है, गाना सुना दीजिएगा ये वाला।
14: ओके ओके, चलिए गाना प्ले कर रहे हैं, सुनते रहिए रेडियो रंजन 90.4।

0: हेलो
1: नमस्कार मैडम जी।
0: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 एफएम में।
1: जी मैडम जी, मैं सुनील साहू बोल रहा हूँ, मधुसूदनगढ़ जिला गुना से।
0: जी कैसे हैं आप?
1: बढ़िया है बहन जी, और आपके जिन सुन रहे हैं।
0: अच्छा जी,
1: जी
0: बता दीजिए आज कौन सा गाना सुनेंगे आप?
1: जी पिक्चर का नाम है अंडा कानून।
0: और सॉन्ग?
1: और सॉन्ग भी यही है, ये अंडा कानून टाइटल सॉन्ग है ये।
0: ओके, और सॉन्ग किसी को डेडिकेट भी रहेगा?
1: जी जी मैडम जी, सबसे पहले आपको डेडिकेट है, हमारे मांगीलाल जी है चंदेल, मांगीलाल जी धाकड़ है, गोपाल ओझा है ककवासा से, गजराज सिंह लोधी है रेलाई से, के लिए गाना डेडिकेट है।
0: चलिए बढ़िया है, फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रंजन 90.4 FM।
1: धन्यवाद।

0: नमः शिवाय।
1: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
0: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
1: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
0: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
1: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
0: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
1: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
0: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
1: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
0: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
1: बोलबम हर हर महादेव।
2: ठक ठक।
3: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
4: अच्छा मिला ही नहीं।
3: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
4: जी हाँ, कमल श्री। याद रखे, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
3: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
4: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
5: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
6: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
0: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
1: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड गोपालगंज। मोबाइल नंबर 9439456 या 9707065।
7: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है।
0: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं, उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
1: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से।
0: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
1: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास गोपालगंज। कॉल करें 9452111001।
8: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
9: Now pick your phone up.
10: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
11: हेलो
12: जी, गुड मॉर्निंग।
11: गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
12: जी भारती जी।
11: हाँ जी
12: जी, साथ मास्टर धना से।
11: कैसे हैं?
12: ठीक है ना?
11: जी जी, आपका फर्स्ट ही कॉल है
12: जी। और जो है, यार मसाज चलेगा कि नहीं? कल नहीं चला था।
11: नहीं।
12: तो मौसम कैसा है? आप
11: मौसम ठीक ही है।
12: बोल रहे हैं, आज सुबह जब मैं जागा तो तेरी कसम ऐसा लगा तूने मेरा नाम लिया है, तूने मुझे याद किया है। आज और 16 मूवी का
11: जी
12: और सबसे पहले आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ और जितने रेडियो सभी लोग सुनेंगे और हम लोग धनाव से रोशन ट्रेलर में सुनेंगे।
11: जी चलिए और सब बढ़िया,
12: खूब बढ़िया
11: जी बढ़िया होना चाहिए। चलिए फिर गाना प्ले करती हूँ, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रंजन 91.4 FM।

0: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंगून 90.4 FM में।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार,
1: कैसे हैं?
0: मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं?
1: चल रहा है, एक दिन से
0: चल रहा है।
1: और क्या, एक दिन चल रहा है,
0: कट हो रहा है एक एक दिन।
1: और थोड़ा अपना सुनाइए।
0: हमारा ठीक है, आप अपना बताइए।
1: मैं बता नहीं रहा हूँ, 11 बजे से कॉल करते करते 12 बज गया।
0: अच्छा जी, टाइम हो ही है, 12 बज गया है।
1: तो 12 बज गया है, 12:30 बजे तक चलेगा ना आपका?
0: आधा घंटा और।
1: तो मैं वही सोचा कि क्या पता 12 बजे लग रहा है कि नहीं लग रहा है।
0: शुरुआत में नहीं लगता है तो लास्ट में लग ही जाता है।
1: आपका क्लास थोड़ी नहीं लग पाया, चलिए फिर तो आप आज ही फरमाइश अपने तरफ से कर रहे हैं, क्योंकि सुना नहीं, पता नहीं चला है कि नहीं चलाया।
0: तो आप सुनिएगा।
1: हाँ हाँ, आप ही ट्राई।
0: अच्छा चलिए,
1: पूरी नहीं सुनाना, अपने ट्राई से सुनाना। ओके,
0: करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रंजन 90.4 FM।

0: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलता पूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
1: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टैबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, साइटिका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
0: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलता पूर्वक करते हैं।
2: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता
0: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
2: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554493
0: और 90971602।
3: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
4: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
5: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर एमडी सादाब के पास जो है ईएनटी स्पेशलिस्ट।
6: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर एमडी सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुँचिए इस्मत ईएनटी केयर सेंटर सिसवन ढाला के उत्तर आरके मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
7: अरे ए चाची, जब आँख से साफ नहीं खेलो को तो रोड पर लड़खड़ा के कहे चलते नहीं, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
8: अरे ए बबुओ, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला, सुनले बानी की आँख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
7: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू, अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आगल बनी, यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़ फाड़ कैले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करतनी, तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आँख में कोनो तरह के भी ना हुई और ऑपरेशन भी हो जाए।
9: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुप्रसिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से, साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर एम ए अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने रालसन होटल के पश्चिम गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99053 69015 पे।
10: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
11: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है, चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से।
10: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें, आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
11: पता जंगलिया मोहल्ला नूर मेडिकल के पास गोपालगंज, कॉल करें 94512-11001।
12: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94911। जी हाँ, 8029-94911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
13: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 एफएम में। नमस्ते। मेरा बढ़िया है, आप अपना बताइए। और बताइए क्या हो रहा है?
14: पहचान रहे हैं मेरे?
13: गणेश नाम है
14: जी, गणेश नाम है। आप धीरे धीरे पहचान रहे हैं क्या? चलिए ठीक है, पहचाना
13: जी।
14: और सब बताइए?
13: और सब बढ़िया है, आप ठीक है?
14: बिल्कुल ठीक। आप सब बढ़िया ठीक? धूप में घूम कर अभी आ रहे हैं। और सब बताइए, खाना वाना खा कर आए की?
13: नहीं, हम खाना खा के आते हैं। आते हैं लोग और लेकर भी आते हैं लोग, जब मन करता है तब कैसे खा लेते हैं लोग।
14: आज मेरे गाना सुनना है, आज हिंदी सॉन्ग बजाइए।
13: बता दीजिए।
14: चोरी चोरी भोजपुरी में नहीं है?
13: कौन सा?
14: ये बोल रजत पायल का बाबा करता है।
13: अच्छा,
14: डीडीके रहेगा सबसे पहले आपको पूरा रेडियो रंजन का, तब लिखा रहेगा।
13: चलिए ठीक है।
14: धूप निकल गया?
13: धूप तो बहुत हुआ है।
14: चलिए ठीक है,
13: गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो रंजन 90.4 एफएम।

0: हेलो,
1: हाँ नमस्कार सुनिधि
0: नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 एफएम में।
1: जी नमस्ते। नहीं बोल रहे हैं
0: नहीं
1: भारती जी? कॉल नहीं लग रहा था 11 बजे से, कुछ भी बता ही नहीं रहा था, नहीं बिजी कुछ भी नहीं बता रहा था, कट जाता था।
0: नहीं, कॉल तो 11 बजे से लगातार आ रहे हैं, अभी तो 12:08 हो गया।
1: तो हम कॉल कर रहे थे तो कुछ भी बोल भी नहीं करता, होता है ना कि बस बताता है, बस भी नहीं बोलता है, कट जाता था फोन।
0: तो नेटवर्क आपके उधर नेटवर्क फुल है ना?
1: हमको नेटवर्क कोई दिक्कत नहीं है। हम तो कॉल किए थे लास्ट में, सोचे थे कि अब लगेगा कि नहीं लगेगा, टाइम तो पारे हो गया है, फिर प्रयास करता हूँ तो लग गया।
0: चलिए बढ़िया, लग गया तो।
1: आपसे बात ही करना बहुत दिन हो गया था।
0: अच्छा।
1: एक दो बार आपको आई थी इसको में, तब एक ही दो बार आपसे बातें हुई और तीसरा बार बात हो रहा है।
0: नाम क्या है आपका?
1: मेरा नाम विमलेश कुमार शर्मा।
0: अच्छा।
1: गोपालगंज जिला पड़ता है और गांव मेरा पड़ता है जिगना गोपाल। जिगना मठ प्रसिद्ध है, हनुमान जी का मंदिर बहुत जबरदस्त
0: है।
1: जिस मठ पे रहता हूँ उस पर 24 घंटे राम नाम चलता है, सीताराम।
0: हाँ जी जी, अच्छा लगता होगा।
1: उसमें 6 घंटे हम ड्यूटी देते हैं, 3 घंटा नाइट में, 3 घंटा सुबह दिन में। यहीं पर रहते हैं, कभी कभी जाते हैं घर पे, नाइट पूरा नाइट में तो रात में तो यहीं पर रहते हैं।
0: और सब बताइए क्या हो रहा है?
1: बस अब घर से जा रहा हूँ वहाँ पे।
0: अच्छा, तो भोजन तो अभी किए नहीं होंगे?
1: नहीं, भोजन तो हो गया, दोबारा होगा 1 बजे।
0: हाँ हाँ, चलिए बढ़िया।
1: तो भोजन तो हो गया था 8 बजे।
0: बताइए आज कौन सा गाना सुनेंगे आप?
1: गाना सुनेंगे कहोना प्यार है कि टाइटल सॉन्ग सुना दीजिए।
0: ओके, सॉन्ग किसी को डेडिकेट भी रहेगा? सॉन्ग किसी को डेडिकेट भी रहेगा? बता दीजिए।
1: डेडिकेट रहेगा, गुड़िया जी है, निर्मला जी है, नेहा जी है, खुशबू जी है, और अनिल जी है, और रामा जी प्रसाद है, और मनोज शर्मा जी है, और मेरा दोस्त है तपे जी, और आप हैं सुनी जी हैं, और जितना रिजन सुनने वाले हैं सबको साथ।
0: ओके, तो गाना प्ले करते हैं
1: जी। धन्यवाद,
0: सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रंजन 90.4 FM।

0: घर बन रहा हो तो सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं, टाइल्स और फिटिंग्स का चुनाव भी होना चाहिए शानदार।
1: इसीलिए गोपालगंज जिले के लोगों की पहली पसंद बन चुका है बीके टाइल्स। बीके टाइल्स, यहाँ मिलेंगे सभी प्रकार के डिजाइनर टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, बेसिन, कॉमोड, बाथ फिटिंग्स और घर सजाने के कई आधुनिक प्रोडक्ट,
2: वो भी किफायती दामों पर। और खास बात, गोपालगंज जिले में हमारी 4 सुविधाजनक शाखाएं,
1: अरार मोड़ एसपी कोठी के पास गोपालगंज, दूसरा ब्रांच भटवा मोड़ के पास कुचाई कोट,
2: तीसरा ब्रांच इस्लामिया कॉलेज के पास मेन रोड थावे मीरगंज, और चौथा ब्रांच बंतरिया मोड़ भोरे।
1: और अब सिवान जिले में भी हमारी 2 शाखाएं उपलब्ध हैं, सिवान ब्रांच कुशवाहा चौक हकाम बाईपास सिवान,
2: और मैरवा ब्रांच बबनौली चौक मैरवा सिवान।
1: तो आज ही अपने सबसे नजदीकी बीके टाइल्स ब्रांच पर आए और करे बेहतरीन खरीदारी।
2: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें गोपालगंज ब्रांच में 8460571406, मीरगंज ब्रांच में 9693101611,
1: कुचाई कोट ब्रांच में 9693101602, भोरे ब्रांच में 8207856404,
2: सिवान ब्रांच में 9942071405, मैरवा ब्रांच में 8207856403।
3: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
4: अरे तो उसे डांटते क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
5: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीरा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
6: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
5: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक थावे रोड गोपालगंज।
3: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9166664498 पे।
7: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
8: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ, इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
9: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा,
10: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
11: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
9: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
8: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
9: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
2: कॉल करें 87894 18744।
12: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
13: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
12: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहां पर 24 घंटे आईसीयू इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
13: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
14: Now pick it up, pick it up.
15: Hello.
14: Now pick your phone up.
15: Hello.
14: Pick it up, pick it up.
15: Hello.
14: Now pick your phone up.
15: Hello.
16: Jab phone ghanti bajti hai to kehte hain hello.
17: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
15: हेलो
18: हेलो
15: हेलो,
18: मुझे बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिम 90.4 एफएम में।
15: थैंक यू मैम। मैं मुझे एक गाना सुनना है।
18: नाम बता दीजिए अपना।
15: ईशा कुमारी।
18: और ईशा जी कहाँ से हैं आप?
15: जी
18: हाँ। कैसी हैं आप? कैसी हैं आप?
15: अच्छी हूँ, आप कैसी हैं?
18: मैं भी अच्छी हूँ। वैसे क्या करती हैं आप?
15: पढ़ाई करते हैं छोटे ना अभी।
18: हाँ हाँ, किस क्लास में हैं आप?
15: अभी मैं थर्ड क्लास में हूँ।
18: अच्छा जी, पढ़ाई कैसी चल रही है?
15: आज छुट्टी, मम्मी बोली घर पे रह जाओ, इसलिए धूप पड़ रहा है ना इसलिए।
18: धूप तो बहुत तेज है। चलिए कोई नहीं। और बताइए कौन सा गाना सुनना है आपको?
15: दिल्ली से मनाली ये वाला।
18: दिल्ली से मनाली।
15: हाँ।
18: सॉन्ग है?
15: हाँ।
18: सॉन्ग ही ना है?
15: हाँ।
18: अच्छा, कुछ लाइन याद है इसका?
15: दिल्ली से मनाली मन आपको, अजय भी रेडियो रेंजी के दस है उनको और मेरे भाई बहन है इन लोग को।
18: ओके, तो फिर गाना प्ले कर रही हूँ, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रेंजी 90.4 FM।
15: ठीक है।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिम 90.4 एफएम।
0: अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम।
0: कौन मैम बोल रही है? सोनी मैम?
1: नहीं,
0: सोनी मैम बोल रही है?
1: नहीं, सोनी मैम नहीं बोल रही हूँ।
0: भारती मैम कैसे हैं?
1: मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं?
0: हम तो ऐसे है वार्ड नंबर 1 है।
1: क्या आप किए हैं नाना सा पानी?
0: हाँ, हम लोग तो किए हैं।
1: चलिए बढ़िया।
0: दोनों लोग का आवाज एक ही जैसा हो रहा है रेडियो इंजिन में। सोनी मैम के आवाज के तरह आपका भी आवाज लग रहा है।
1: ऐसा है?
0: सोनी मैम नहीं ना बोल रही है?
1: नहीं नहीं,
0: आज गाना सुनना है जान मूवी से।
1: हम
0: ऐसे करेंगे प्यार की दुनिया याद करे।
1: ओके, सॉन्ग किसी को डेडिकेट भी है?
0: हाँ, सबसे पहले तो आप हो और मेरी वाइफ है करी जी, उनको, इमरान भाई को, राघव भाई को, दिलीप भाई को, और जो भी इंजिन जहाँ से भी सुन रहे हैं रेडियो इंजिन सभी।
1: चलिए फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ। 90.4 FM। वालेकुम अस्सलाम।

0: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल घोष मोड़ दरगाह रोड गोपालगंज।
1: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
2: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
3: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 6200042434 03 6200042434 03।
4: तो भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
5: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना?
4: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमरा साथे कमल श्री में।
3: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आएं और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
6: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
7: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
8: भरोसे वाले से लेंगे,
7: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
8: और कीमत भी।
7: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
9: एसपी ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
10: प्योरिटी यानी मामी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन तो मेरा सर्टिफिकेशन।
3: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए एसपी ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
11: 22 कैरेट, 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
3: आज यहाँ एसपी ज्वेलर्स, जो है डीएवी गर्ल्स स्कूल के सामने स्टेशन रोड गोपालगंज।
12: और अब एसपी ज्वेलर्स का नया ब्रांच मेन रोड गोपालगंज, इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
3: कॉल करें 8570-32042 पे।
13: ओम नमः शिवाय।
14: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
13: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
14: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
13: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
14: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
13: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
14: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
13: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
14: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
13: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH 27, काली स्थान बंजारी, गोपालगंज।
14: बोलबम, हर हर महादेव।
15: अरे मुन्नी, तुम आ गई, चल मेरे कान का झुमका ला।
16: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
15: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
16: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
3: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी।
16: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
3: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
16: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
3: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
17: Now pick it up, pick it up.
18: Hello.
17: Now pick your phone up.
18: Hello.
17: Pick it up, pick it up.
18: Hello.
17: Now pick your phone up.
18: Hello.
19: जब फोन की घंटी बजती है तो कहते हैं हेलो, हेलो, हेलो, हेलो, हेलो, हेलो।
2: ब्रेक के
18: बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
20: हेलो
21: हेलो
20: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रेंज 90.4 एफएम में।
21: पार्थिव जी नमस्कार, राजा से गाना प्रवाइज करे
20: कीजिए। बिल्कुल,
21: फिल्म का नाम है दोस्ती
20: और सॉन्ग कौन सा?
21: सॉन्ग सुना दीजिएगा, चाहे मनोज दुख चिंता क्यों सताती है तू अपना साथ। सुनाती है सुजाती है आदमी है जाती है तू अपना। और जाना डेडिकेट रहेगा माधे रामा भाई को, ओम साई टेलर राघव जी भाई को और मनान भाई और आरंभी खादर आप लिए रोनी मैडम। चलिए ठीक है, बजाइएगा तो धन्यवाद।
20: जी जी बिल्कुल बजाएंगे, ऐसा थोड़ी है कि नहीं बजाएंगे, आपका छोड़ देंगे।
21: माता जी का कृपा और लंबी उम्र है,
20: आपकी दुआ है।
21: दुआ है, दुआ रहेगा जब जीवित रहेंगे तो। बच्चों लोगों को हम यही आशीर्वाद देंगे।
20: जी जी बिल्कुल।
21: चलिए ठीक, गर्मी तो जान दे रहा।
20: हाँ, गर्मी तो इतना है कि
21: धन्यवाद।
20: ओके, फिर गाना प्ले कर रहे हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रेंज 90.4 FM।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंकी 90.4 एफएम में।
0: थैंक यू जी। मुझे गाना सुनना है।
1: नाम बता दीजिए, आप अपना नाम बता दीजिए।
0: मेरा नाम है कविता।
1: कहाँ से हैं कविता जी?
0: मैं गोपालगंज में ही रहती हूँ।
1: अच्छा जी, गोपालगंज में किधर रहती हैं?
0: गोपालगंज में बीएम फील्ड के पास।
1: ओ, बढ़िया है फिर। और सब?
0: और आप कैसी हैं?
1: मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं?
0: मैं भी ठीक हूँ।
1: क्या हो रहा है अब?
0: अभी कुछ नहीं हो रहा है, खाना पीना खा के अपना बैठे हैं।
1: चलिए बढ़िया। बता दीजिए कौन सा गाना सुनना है?
0: मुझे अनोखा बंधन में का जो गाना है, क्योंकि तू इतनी दूर क्यों है।

0: अरे स्टीयरिंग हिल क्यों रहा है और ये टायर जल्दी घिस क्यों रहे हैं? अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा तो समझ जाइए, टायर को चाहिए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग।
1: और इसके लिए जिले में भरोसे का एक ही नाम है, मिश्रा टायर्स, अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग।
0: यहाँ होता है कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, 3D अलाइनमेंट, डिजिटल बैलेंसिंग, सब कुछ आधुनिक मशीनों से।
1: साथ ही सभी कंपनी के टायर ट्यूब बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध हैं।
0: एक बार सेवा का मौका जरूर दें। विजिट करें मिश्रा टायर्स कंप्यूटराइज्ड अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, शिव मंदिर पोखरा के सामने, NH 27 बंजारी गोपालगंज।
1: रोड सपोर्ट या जानकारी के लिए कॉल करें 8825214946।
2: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
3: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
4: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
0: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94395461 या 97-0-97-06-575।
5: सोहन मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को

0: कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूं?
1: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
0: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
1: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
2: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
3: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
2: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
3: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
2: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमलाराय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
3: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
2: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
3: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
4: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
0: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
4: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
0: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
4: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99-554-97-644।
5: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
6: हेलो
7: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 FM में।
6: जी मैम नमस्कार, सुनील कुशवाहा बात कर रहा हूँ मैम, मेयर MP।
7: और कैसे हैं आप?
6: बस ठीक है मैम, बस बैठे थे आपका शो का इंतजार करते हुए। जी जी जी मैम, और मैम वहाँ का मौसम का क्या हाल चाल है?
7: मौसम तो अभी गर्मी है, आपके वहाँ मौसम कैसा है?
6: इसलिए हमारे यहाँ तो अभी मैम गर्मी है ही है, धूप है मैम, बारिश तो अभी नहीं है मैम, तो बारिश का इंतजार है।
7: तो बता दीजिए कौन सा गाना सुनेंगे आप?
6: जी आज हमको सुनवा दीजिएगा गाने के बोले मेरे सपनों का वो राजा, मेरे दिल का रोहित कुमार। और सुनवाएंगे कितने रेडियो रंजन दोस्त लोग सुनते, सभी दोस्तों के साथ।
7: ओके तो चलिए फिर गाना प्ले कर रहे हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रंजन में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: घटा
1: घटा सावन की घटा
0: घटा सावन की घटा।
2: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रेंजिंग 90.4 FM में। नमस्कार
3: जी, भारती मैम बात कर रहे हैं ना? कहिए हाल चाल मैम, क्या हाल है
2: जी?
3: सब ठीक है ना?
2: हाँ हाँ सब ठीक है, आप बताइए आप कैसे हैं? आप कैसे हैं? आप ठीक है ना?
3: जी जी, आप लोगों को आशीर्वाद से हम देखे।
2: बड़ी टाइम पे फोन लगाए हैं।
3: हाँ, बंद होने वाला था। देख रहे थे कि आज कर लेते हैं।
2: अच्छा जी,
3: और वहाँ का मौसम कैसा है मैम?
2: इधर का तो मौसम अभी बहुत गर्मी पड़ रहा है।
3: यहाँ से इधर से तो बहुत गर्मी है। कल तो पत्थर बरस गया हमारे इधर।
2: आपके इधर?
3: हाँ, दो पत्थर हमारे मुड़ी पर भी गिरे।
2: अच्छा जी, बाहर थे क्या आप?
3: नहीं नहीं, घर में।
2: घर में थे? अच्छा,
3: छत के तो नहीं मगर करकट के जरूर छेद कर दिया है।
2: ज्यादा पत्थर गिरा है क्या?
3: हाँ लगभग, मानिए ना कि आधा किलो गिरा।
2: तो मौसम उधर का तो अभी ठंडा होगा?
3: मौसम ठंडा नहीं है मैडम।
2: हाँ,
3: मौसम तो इतना बिजोर है गर्मी के, जो अगर मान लीजिए कि 2 मिनट अगर धूप में कोई अगर खड़ा हो जाए ना तो पहले ही मर जाए। सब बात छोड़िए, गाना सुनवा दीजिए।
2: अच्छा जी, बता दीजिए कौन सा गाना सुनेंगे?
3: गर्मी वाला गाना सुनवा दीजिए।
2: गाने का कुछ लाइन बता दीजिए।
3: आना तो ये भी गाना सुनवा दीजिए, ये साल दूसरा था ये वो साल दूसरा है।
2: ओके, सॉन्ग किसी को डेडिकेट भी है?
3: थोड़ा सा आप सुन लीजिएगा।
2: अच्छा चलिए, गाना प्ले कर रही हूँ, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो 90.4।

0: पर मेरी आकर क्योंकि
1: न्यूज पॉडकास्ट्स साथ में दूरदर्शन के लाइव चैनल्स भी द बेस्ट ऑफ एंटरटेनमेंट इंफॉर्मेशन एजुकेशन अब आपके एक उंगली के इशारे पर कहीं भी कभी भी रहे हरदम अपडेट आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: बोल बोल के थक गया।
4: क्या हुआ?
3: नया किट बैग चाहिए।
4: तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से।
3: करेक्ट।
4: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पे शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी नामंजूर। चले ले आ गया नया किट बैग।
5: RBI कहता है
1: पहले अपना बैंक फिर RBI ओम्बुड्समैन।
6: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात साझा करेंगे, तो आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री जी से मन की बात।
2: मेरे प्यारे देशवासियों नमस्कार। मन की बात में एक बार फिर आप सब से जुड़कर मुझे अत्यंत आनंद हो रहा है। 2026 का आधा साल बीतने को है। इन 6 महीनों में हमने मन की बात में देशवासियों की अनेक उपलब्धियों पर चर्चा की है। जून में भी देश ने कुछ ऐसी उपलब्धियां हासिल की हैं जो हर देशवासी को गर्व से भर देती हैं। ये सफलताएं देश की सुरक्षा और आत्मनिर्भरता से जुड़ी हैं। हाल ही में मुझे कोलकाता में नौसेना से जुड़े एक कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिला। वहां INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय को भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया। इन शिप्स की डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग तक सब कुछ स्वदेशी है। साथियों जून के महीने में ही एविएशन सेक्टर में भी देश ने एक बड़ी सफलता पाई। C-295 यह विमान मेड इन इंडिया है और C-295 विमान ने अपनी पहली उड़ान पूरी की है और ऐसे 40 विमान भारत में ही बनाए जा रहे हैं। इससे MSME और एरोस्पेस सेक्टर को नई शक्ति मिल रही है, रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं और आत्मनिर्भर भारत का संकल्प भी मजबूत हो रहा है। इसी महीने DRDO ने स्वदेशी लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया है। इसको DRDO की लेबोरेटरीज और इंडियन इंडस्ट्री पार्टनर्स ने मिलकर बनाया है। यानी आज समुद्र से लेकर आकाश तक हमारा भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। साथियों जून में एक और आयोजन हुआ जिसमें पूरी दुनिया भारत के प्रयासों से जुड़ी और यह कार्यक्रम था अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। इस बार दुनिया के 2500 से अधिक स्थानों पर योग के अनेक विविध कार्यक्रम हुए। हमारे देश में करोड़ों लोगों ने स्थान स्थान पर योग कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। इस महीने अहमदाबाद में आयोजित विश्व योगासन चैंपियनशिप की भी बड़ी चर्चा हुई। इसमें भारत ने कुल 114 पदक जीते, इनमें 102 गोल्ड मेडल भी शामिल है। भारत इस चैंपियनशिप की पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा। मैं सभी विजेता खिलाड़ियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों किसी भी राष्ट्र की आत्मा उसके लोग होते हैं और जब उस देश के लोग कोई संकल्प लेते हैं तो कोई भी शक्ति उन्हें अपने लक्ष्य से डिगा नहीं पाती। राष्ट्र निर्माण में जन भागीदारी की यह ताकत भारत की बहुत बड़ी पूंजी है और इस जन भागीदारी का हम बार बार अनुभव कर रहे हैं। साथियों, पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कुछ आग्रह किए थे। मैंने कहा था कि जहां तक संभव हो कुछ समय के लिए गोल्ड सोना खरीदने से बचें। लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें। मैंने लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी। मैंने किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। साथियों, मैं देश के हर नागरिक का आभारी हूं कि मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं। मुझे कई परिवारों ने संदेश भेजकर अपने अनुभव साझा किए हैं। कितने ही परिवारों ने तय किया है कि घर के विवाह में इस बार सोना नहीं खरीदेंगे, जरूरत पड़ी तो पुराने सोने को रिसाइकल करके नए गहने बना लेंगे। कितने ही लोगों ने सोशल मीडिया पर यह भी लिखा है कि कैसे उन्होंने इस बार विदेश यात्रा को टाल दिया है। साथियों, कार पुलिंग को लेकर भी लोगों ने अनेक अनुभव साझा किए हैं। जो लोग हर दिन एक ही दिशा में अपने अपने वाहनों से जाते थे वे अब साथ जाने लगे हैं। लोग हर संभव बस और मेट्रो का उपयोग कर रहे हैं, इससे पेट्रोल और डीजल की बचत हो रही है। इसी तरह देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृतिक खाद की खपत बढ़ने की भी खबरें आ रही हैं। साथियों, मुझे इस बात की खुशी है इस ग्लोबल क्राइसिस का हम भारतीय मिलकर मुकाबला कर रहे हैं। मुझे विश्वास है जन भागीदारी की यही शक्ति हमें मजबूती देगी, हमें सफल बनाएगी। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में जन्मदिन, शादी ब्याह, पारिवारिक कार्यक्रम होने के साथ ही पूरे समाज का भी उत्सव होता है। हर परिवार चाहता है कि उसकी खुशियां दूसरे के साथ भी साझा हो। लोग मेहमानों को उपहार भी देते हैं। साथियों, महाराष्ट्र के नांदेड़ में एक परिवार ने अपनी खुशियां बांटने के लिए ऐसा काम किया है जो चर्चा का विषय बन गया है। यहां नांदेड़ के बहादुरपुरा गांव में पेटकर परिवार रहता है। इस परिवार ने सोचा कि अगर खुशी बांटनी ही है तो ऐसी चीज दी जाए जो मुश्किल समय में किसी परिवार का सहारा बने। अपने घर में विवाह के अवसर पर इस परिवार ने गांव के लगभग 3,500 लोगों के लिए दुर्घटना बीमा की व्यवस्था की। हर व्यक्ति को 1,00,000 रुपए का बीमा कवर दिया गया। इस पहल के पीछे की भावना बहुत स्पर्श करने वाली है। परिवार ने देखा था कि दुर्घटना के बाद परिवारों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसे समय में एक छोटी सी सहायता भी बहुत बड़ा संबल बन जाती है। साथियों, सरकार देश के करोड़ों परिवारों तक सुरक्षा का कवच पहुंचा रही है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत केवल 20 रुपये के सालाना प्रीमियम, यानी केवल एक साल के 20 रुपये का प्रीमियम, उस पर 2,00,000 रुपये तक का दुर्घटना बीमा मिलता है। अब तक इस योजना से 58 करोड़ से अधिक लोग जुड़ चुके हैं। इनमें करीब 28 करोड़ हमारी माताएं, बहनें, बेटियां हैं, महिलाएं हैं। इस योजना से पीड़ित परिवारों को अब तक जो हिसाब मिला है 3,700 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता मिल चुकी है। साथियों, उसी प्रकार से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना भी उतनी ही अहम है। ये योजना व्यक्ति की दुखद मृत्यु होने पर उसके परिवार को 2 लाख रुपए का बीमा कवर देती है। इसका वार्षिक प्रीमियम सिर्फ 436 रुपए है, मतलब एक दिन का मुश्किल से 1.5 रुपया। इस योजना से अब तक 27 करोड़ से अधिक लोग जुड़े हैं। इसके तहत देश के करीब 11 लाख परिवारों को करीब 22,000 करोड़ रुपए की सहायता मिल चुकी है। ये आंकड़े बहुत बड़े हैं। इन आंकड़ों के पीछे लाखों परिवारों की अपनी अपनी कहानी है। कहीं किसी माँ को बच्चों की पढ़ाई जारी रखने में सहायता मिल गई, कहीं किसी पत्नी को घर की जिम्मेदारियां संभालने का सहारा मिल गया। साथियों, कई बार बहुत बड़ी सुरक्षा की शुरुआत बहुत छोटी राशि और एक छोटे से कदम से हो सकती है। छोटा सा भी निर्णय बहुत बड़ा बदलाव करता है। मेरा आप सभी से आग्रह है कि अपने परिवार में इन योजनाओं की जानकारी जरूर साझा करें। मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात में अब बात एक ऐसे विषय की जो हजारों साल पुराना है। हजारों साल से मानव समाज में घर कर करके बैठ गया है। ये विषय है अंधविश्वास का। अंधविश्वास कई बार केवल एक गलत धारणा नहीं होता, वो डर पैदा करता है। और जब डर मन पर हावी हो जाता है तो इंसान सच को देखना ही बंद कर देता है। अंधविश्वास में डूबे लोग फिर बिना तर्क के, बिना सत्य जाने ऐसे फैसले लेने लगते हैं जिनका बड़ा नुकसान होता है। वहीं समाज में ऐसे लोग भी होते हैं जो विज्ञान, अनुभव और तर्क के आधार पर उन धारणाओं को चुनौती देते हैं। अंधविश्वास से विश्वास तक की ये यात्रा आसान नहीं होती। और आज मैं ऐसी ही एक सफल यात्रा के बारे में आपको जरूर बताना चाहता हूँ। साथियों, असम में एक पक्षी पाया जाता है। उस पक्षी का नाम है हरगीला। हरगीला एक दुर्लभ पक्षी है। ये प्रकृति को स्वच्छ रखने में अहम भूमिका निभाता है। लेकिन असम के कुछ इलाकों में लंबे समय तक इसे अशुभ माना जाता था। लोग इसे अपने आसपास देखना पसंद नहीं करते थे। कई बार उन पेड़ों को भी काट दिया जाता था जिन पर हरगीला के घोंसले बने होते थे। सोचिए, एक ऐसा पक्षी जो पर्यावरण की सफाई में मदद करता है, वही हरगीला लोगों के डर का शिकार बन गया था। इसी दौरान जीव वैज्ञानिक पूर्णिमा देवी बर्मन ने ये सब देखा। उन्होंने लोगों के मन में बैठी गलत धारणा को बदलने का संकल्प लिया। उन्होंने महिलाओं से बात की, उन्होंने लोगों को विज्ञान के आधार पर समझाया। धीरे धीरे महिलाएं इस अभियान से जुड़ने लगी। फिर एक बड़ा बदलाव शुरू हुआ। जिस पक्षी को कभी अशुभ मानकर भगाया जाता था, वही गांवों की पहचान बनने लगा। हजारों ग्रामीण महिलाएं हरगीला को बचाने के लिए आगे आई। आज उन्हें हरगीला आर्मी के नाम से जाना जाता है। इन महिलाओं ने समाज के साथ संघर्ष भी किया, समाज को समझाने के लिए दिन रात काम किया और अंधविश्वास को पीछे छोड़ करके रहे। उन्होंने दिखाया है, जब सही जानकारी पहुंचाई जाती है तो वर्षों पुरानी सोच भी बदल सकती है। साथियों, मैं अक्सर कहता हूं, जो खेलता है वो खिलता है। आज देश में ऐसे युवाओं की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, जो खेल भी रहे हैं और खिल भी रहे हैं। पहले की तुलना में अब कहीं अधिक युवा खेलों को कैरियर के रूप में अपना रहे हैं। मुझे नागालैंड के दो ऐसे प्रयासों के बारे में जानकारी मिली है जो बहुत दिलचस्प है। पहला प्रयास है नागालैंड बेबी लीग। नाम सुनकर आपको जरूर लगता होगा कि ये बहुत छोटे बच्चों की कोई साधारण लीग होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ये 5 से 10-12 साल की आयु के छोटे छोटे बच्चे, फूल जैसे बच्चों की एक असाधारण लीग है। और इन बच्चों के फुटबॉल खिलाड़ियों की एक ऐसी लीग है जो उनके रफ्तार को और प्रतिभा के लिए उनको प्रेरित भी करती है और उनकी पहचान भी बनाती है। इसकी शुरुआत नागालैंड के अधिक बच्चों को फुटबॉल से जोड़ने के लिए हुई थी। 5 से 12 वर्ष तक के लड़के और लड़कियां इसमें हिस्सा ले सकते हैं। ये लीग अब अपने 3 वर्ष पूरे कर चुकी है। इस लीग का बच्चों के मन पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा है। साथियों, नागालैंड में एक और अच्छा प्रयास हो रहा है। इसका नाम है नागालैंड विमेन फुटसल लीग। हो सकता है आपके लिए ये फुटसल एक नया नाम होगा। मैं आपको बताता हूं, फुटसल को इंडोर फुटबॉल भी कहा जाता है। इसमें एक टीम में केवल 5 खिलाड़ी होते हैं। खेल का मैदान भी फुटबॉल के मैदान से बहुत छोटा होता है। इस कारण खिलाड़ियों को तेज फैसले लेने होते हैं। उन्हें अपनी टेक्निक और स्किल का बेहतर इस्तेमाल करना पड़ता है। नागालैंड की विमेन फुटसल लीग हमारी बेटियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अच्छा अवसर दे रही है। मैं ऐसी पहलों के लिए नागालैंड के लोगों की सराहना करता हूं। ऐसे प्रयास देश के दूसरे हिस्सों को भी प्रेरणा देते हैं। साथियों, ये टेक्नोलॉजी का युग है। हर दिन नई रिसर्च हो रही है, नए नए AI इनोवेशन सामने आ रहे हैं। इस दौर में एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, लोगों की क्रिएटिविटी को कैसे बचाए रखा जाए। नई टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ते हुए हम अपनी जड़ों से कैसे जुड़े रहें, इन सवालों का समाधान खोजा है नालंदा विश्वविद्यालय ने। हजारों साल पुरानी हमारी नालंदा विश्वविद्यालय अब नए अवतार के रूप में भारत का भाग्य घड़ रही है। 2 साल पहले मुझे नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर के लोकार्पण का अवसर मिला था। नालंदा विश्वविद्यालय ने शास्त्रार्थ की हमारी प्राचीन परंपरा को फिर से जीवन किया है। शास्त्रार्थ केवल अपनी बात रखने का माध्यम नहीं है, ये वाद, संवाद और मंथन की एक अनुशासित प्रक्रिया है। इसमें तर्क के साथ, तथ्य के साथ अपनी बात कहना बहुत जरूरी होता है और उसमें आपकी महारत होनी चाहिए। दूसरों के विचारों को धैर्य से सुनने और समझने की सीख भी इस शास्त्रार्थ की प्रक्रिया से मिलती है। मुझे खुशी है कि नालंदा विश्वविद्यालय ने इसे अपने दीक्षांत समारोह का हिस्सा बनाया। इसमें भाग लेने वाले करीब आधे स्टूडेंट्स अन्य देशों से आए थे। एक प्राचीन परंपरा को आज के समय से जोड़ने का ये प्रयास बहुत सराहनीय है। मैं इसके लिए नालंदा विश्वविद्यालय को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं देश के दूसरे विश्वविद्यालयों से भी आग्रह करूंगा कि वे ऐसी पहल पर विचार करें। साथियों, जड़ों से जुड़े रहकर युवाओं को नई टेक्नोलॉजी के लिए तैयार करने का एक और अच्छा प्रयास हो रहा है। दिल्ली में स्थित सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस में बीटेक प्रोग्राम शुरू करने जा रही है। ये आधुनिक टेक्नोलॉजी को भारत के पारंपरिक ज्ञान से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे भारतीय भाषाओं के लिए नए एआई टूल्स तैयार करने में मदद मिलेगी। हमारे प्राचीन ग्रंथों और पांडुलिपियों को डिजिटल रूप में संरक्षित करने के काम को भी नई गति मिलेगी। मैं सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी को इस प्रयास के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज भारतीय संस्कृति दुनिया के अलग अलग हिस्सों तक पहुंच रही है। हमारे गीत, संगीत और आध्यात्म को दुनिया भर के लोग जान रहे हैं और अपना रहे हैं। भारत से हजारों किलोमीटर दूर कैरिबियन सागर में डोमिनिकन रिपब्लिक नाम का एक देश है। वहां भारतीयों की संख्या करीब 100 है, शायद उससे भी कम होगी। इसके बावजूद भारतीय संस्कृति और अध्यात्म से जुड़ा एक बहुत अच्छा प्रयास वहां हो रहा है। वहां स्पेनिश बोलने वाले कुछ लोगों ने एक टीम बनाई है। इस टीम का नाम है ब्रह्म कमल डोमिनिकाना। टीम के सदस्य मिलकर वैदिक साहित्य का अध्ययन करते हैं। वे वैदिक मंत्रों का उच्चारण भी सीख रहे हैं। उन्हें इसकी कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं मिली है, लेकिन उन्होंने ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनकर वैदिक मंत्रों का सही उच्चारण सीखा है। आज वे कई मंत्रों का बहुत अच्छे से जाप कर लेते हैं। इनमें पुरुष सूक्तम, श्री सूक्तम, श्री रुद्रम, दुर्गा सूक्तम और देवी महात्मा शामिल है। भारत से इतनी दूर रहकर हमारी परंपराओं को सीखने का उनका यह प्रयास बहुत प्रेरक है। मैं ब्रह्म कमल डोमिनिकाना वहां के सभी सदस्यों को उनके प्रयासों के लिए शुभकामनाएं देता हूं। मैं ऐसे सभी लोगों की हृदय से सराहना करता हूं जो भारतीय संस्कृति को दुनिया भर में लोकप्रिय बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, मेघालय की पहचान बादलों से है, खूबसूरत नजारों से है। जो मेघालय जाता है उसे वहां के लोगों का अपनापन भी लंबे समय तक याद रहता है। लेकिन मेघालय की एक और विशेषता है जिसकी मैं आज मन की बात में आपसे चर्चा करना चाहता हूं। ये है मेघालय के रूट ब्रिज। रास्ता वाला रूट नहीं, जड़ों वाला रूट। इन रूट ब्रिजों की कहानी बहुत रोचक है। ये ब्रिज कुछ दिनों या कुछ वर्षों में नहीं बनते, इन्हें तैयार होने में कई दशक लगते हैं। रबर के पेड़ों की जड़ों को धीरे धीरे दिशा दी जाती है। इन जड़ों को जल धाराओं के पार ले जाया जाता है। समय के साथ वही जड़ें एक मजबूत ब्रिज का रूप ले लेती हैं। इन ब्रिजों की एक और विशेषता है, ये जीवित ब्रिज है। समय बीतने के साथ ये और मजबूत हो जाते हैं। इनमें मेघालय के लोगों की सृजनशीलता दिखाई देती है। इनके पीछे वर्षों का धैर्य और प्रकृति के प्रति गहरा सम्मान है। ये ब्रिज बताते हैं कि मनुष्य प्रकृति के साथ मिलकर कितनी अद्भुत चीजें बना सकता है। ये हमारे देश की, इस धरती की धरोहर है। अब भारत ने मेघालय के रूट ब्रिजों को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट नेटवर्क में शामिल कराने के लिए आवेदन किया है। साथियों, क्लाइमेट चेंज के कारण इन रूट ब्रिजों के सामने कई चुनौतियां भी आती हैं। ऐसे समय में मेघालय के लोगों ने इस प्राकृतिक धरोहर के संरक्षण की जिम्मेदारी भी बखूबी निभाई है। पहले ये पता लगाना भी आसान नहीं था कि ऐसे ब्रिजों की संख्या कितनी है। स्थानीय लोगों ने खुद इनकी गिनती शुरू की। इसके बाद समुदायों ने इन ब्रिजों की देखभाल की जिम्मेदारी भी संभाली। आज स्थानीय लोग 120 से अधिक रूट ब्रिजों की देखरेख कर रहे हैं। कुछ टीमें हर साल इन पुलों की स्थिति की जांच करती हैं। कुछ लोगों ने आसपास के क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए नर्सरी भी तैयार की है। इस तरह के इनके संरक्षण के लिए एक पूरा इकोसिस्टम तैयार हो गया है। आपने देखा होगा इस वर्ष हैली वारजी को पद्म अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उन्होंने अपने जीवन के 50 से अधिक वर्ष इन रूट ब्रिजों की देखभाल में लगाए हैं। उनका समर्पण हम सभी के लिए प्रेरणादायक है। साथियों, आपने कभी इन रूट ब्रिजों की यात्रा की हो तो उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर जरूर साझा कीजिए। आपकी तस्वीरें दूसरे लोगों को भी मेघालय की इस अनोखी धरोहर के बारे में जानने के लिए प्रेरित करेगी। मेरे प्यारे देशवासियों, हम सभी चाहते हैं कि हमारा गांव साफ सुथरा हो, हमारा शहर सुंदर दिखे, लेकिन शायद ही कभी रुककर ये सोचा जाता है कि हमारे आसपास जो कचरा जमा होता है कौन उसे साफ करता है। ज्यादातर लोग तो यही मानकर चलते हैं कि किसी और की जिम्मेदारी है और वो ही सफाई करेगा। लेकिन हमारे बीच कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो अपनी सोच से हमें बहुत प्रेरित करते हैं। मुझे मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के ब्यावरा की कुछ बहनों के बारे में जानने का अवसर मिला। उन्होंने अपने आसपास फैले प्लास्टिक कचरे को हटाने का संकल्प लिया। ये नहीं सोचा कि कोई आकर बदलाव लाएगा। उन्होंने खुद शहर भर से प्लास्टिक कचरा और खाली बोतलें इकट्ठा करना शुरू किया। धीरे धीरे ये प्रयास आगे बढ़ता गया और फिर उस प्लास्टिक को इको ब्रिक्स में बदला जाने लगा। आज इन्हीं इको ब्रिक्स का उपयोग सार्वजनिक स्थानों को सुंदर बनाने में किया जा रहा है। राजगढ़ में पिछले कुछ महीनों में सैकड़ों किलो प्लास्टिक को रिसाइकल करके उनका बेहतर उपयोग किया गया है। यानी जो प्लास्टिक पहले शहर में प्रदूषण फैलाता था, आज वही इन बहनों के प्रयास से शहर की सुंदरता बढ़ाने में योगदान दे रहा है। मैं ब्यावरा की सभी बहनों और इस अभियान से जुड़े साथियों को बधाई देता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, मुझे कई लोगों ने पत्र लिखकर एक खास विषय पर बात करने का सुझाव भेजा है। ये विषय गणेश उत्सव से जुड़ा है। वैसे तो गणेश उत्सव में अभी काफी समय बाकी है, लेकिन लोगों ने ये आग्रह किया है कि इस विषय पर अभी ही बात होनी चाहिए। दरअसल गणेश जी की मूर्तियां बनाने का काम बहुत पहले शुरू हो जाता है। मूर्ति बनाने वाले, मूर्तियों के व्यापार से जुड़े लोग अभी से सक्रिय हो जाते हैं। इसलिए मेरा आप सभी से एक आग्रह है, आप प्रयास करें कि आपके घर, सोसाइटी या आसपास की जगहों पर गणपति बप्पा की जो मूर्ति स्थापित हो वो हमारे देश की मिट्टी से बनी हो। वो हमारे अपने कुम्हारों और स्थानीय कलाकारों के हाथों तैयार हुई हो। जो लोग गणेश जी की मूर्तियां बनाते हैं उनसे भी मेरा आग्रह है कि वे मिट्टी की मूर्तियों को प्राथमिकता दें, और जो लोग मूर्तियां खरीदते हैं वे भी यह जरूर देखें कि गणपति बप्पा की मूर्ति किससे बनी है और किस देश में तैयार हुई है। प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी मूर्तियां बिल्कुल न खरीदे। साथियों, मिट्टी की मूर्तियां पूजा के बाद सहज रूप से पानी में विलीन हो जाती हैं। इससे हमारी नदियां, तालाबों और पर्यावरण की रक्षा होती है, हमारी आस्था भी बनी रहती है और प्रकृति के प्रति हमारा दायित्व भी पूरा होता है। जब हम स्थानीय कारीगरों से मूर्ति खरीदते हैं, हम वोकल फॉर लोकल के संकल्प को मजबूत करते हैं। मुझे विश्वास है इस बार गणेश उत्सव में और ऐसे हर उत्सव में हम ऐसी सारी बातों पर जरूर गंभीरता से सोचेंगे और देश हित में कदम भी उठाएंगे। साथियों, हमारे देश की सबसे बड़ी शक्ति हमारे देश के लोग हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में हो रहे छोटे बड़े प्रयास हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। ये प्रयास बताते हैं कि जब मन में संकल्प हो और समाज का साथ मिले तो कोई भी बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। आप अपने आसपास हो रहे ऐसे प्रयासों के बारे में मुझे जरूर लिखते रहिए, अपने विचार और अपने सुझाव भेजते रहिए। हो सकता है आपके आसपास की कोई छोटी सी पहल पूरे देश के लिए प्रेरणा बन जाए। अगले महीने हम फिर मिलेंगे, देशवासियों के कुछ नए प्रयासों की चर्चा करेंगे। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए और हाँ, जल संचय तो करना ही करना है, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। कैच द रेन, ये अभियान जरा भी ढीला नहीं होने देना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
6: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बातें साझा कर रहे थे। हम आपको बता दें कि माननीय प्रधानमंत्री के इस प्रसारण के बाद मन की बात के क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से तथा संस्कृत भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज और एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर अभी किया जाएगा। मन की बात के क्षेत्रीय भाषाओं का पुनः प्रसारण आज रात 8 बजे आकाशवाणी के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से और अंग्रेजी अनुवाद का प्रसारण एफएम रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज पर किया जाएगा। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
5: मम प्रियाः देशवासिनः,
7: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
8: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
7: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
8: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
7: या अभी कॉल कीजिए 92899-22567 या 97-714-86-164।
9: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
10: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
9: आज ही संपर्क करें 7388889470 या 9198886973।
11: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
12: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
11: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहां पर 24 घंटे आईसीयू इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
12: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
13: तब भौजी आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नु सारा मार्केट, देख लेनी नु सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
14: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है पर कोनो जचल है ना।
13: ई बात बा, तो ऐसा करी कि अब चली सीधे हमरा साथे कमल श्री में, महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
15: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर,

0: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा कर इलाज कराकर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
1: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टैबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, साइटिका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंताएं और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोरायसिस तथा
0: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
2: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता
0: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
2: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
0: और 90971602।

0: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, शाखा राजापुर बाजार गोपालगंज। CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
1: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
0: तो देर मत कीजिए,
1: सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, कॉल अस 9939721308।
2: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
3: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
2: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक

हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।

0: सुनिए सुनिए,
1: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
2: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
1: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
2: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
3: ठक ठक।
4: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
5: अच्छा, मिला ही नहीं
4: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें। अब चलिए सीधे कमल श्री में।
2: जी हाँ, कमल श्री, याद रख।

0: रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमल श्री बारी मार्केट गोपालगंज।
0: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
2: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
3: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
2: आज ही संपर्क करें 7388889470 या 9198886973।
4: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
5: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
4: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
5: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
4: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
5: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
4: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
5: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902।
6: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
7: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
8: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
7: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
8: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
7: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 9955 57644।

0: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
1: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
2: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
3: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
4: ठक ठक।
5: काजी आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
6: अच्छा मिला ही नहीं
5: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
6: जी हाँ कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
5: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
6: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
3: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा गोपालगंज, शाखा राजापुर बाजार गोपालगंज। CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
2: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
3: तो देर मत कीजिए,
2: सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा गोपालगंज, कॉल अस 9939721308।
7: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
8: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
7: आज ही संपर्क करें 7388-89470 या 9198-88-6973।

0: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
1: मैं बनूंगा।
2: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
0: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 8029294921 पे,
2: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
0: ओनली ऑन रेडियो रमझेम 90.4 अमरजैट पर।
3: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
4: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
5: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
4: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगर पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82-101-87-952। नियम और शर्तें लागू।
6: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
7: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
8: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
9: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
8: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
6: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
10: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
11: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
10: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
11: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ 1 रुपए प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
12: दिल बोले म्यूजिक, म्यूजिक, म्यूजिक बोले दिल। दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4
13: रेडियो रमजम,
12: सुनो दिल से।

0: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
1: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
0: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
1: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी चैन पट्टी गोपालगंज,
0: या अभी कॉल कीजिए 92899-22567 या 97714-86164।
2: अरे स्टीयरिंग हिल क्यों रहा है और ये टायर जल्दी घिस क्यों रहे हैं?
0: अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा तो समझ जाइए, टायर को चाहिए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग।
1: और इसके लिए जिले में भरोसे का एक ही नाम है, मिश्रा टायर्स, अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग।
0: यहाँ होता है कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, 3D अलाइनमेंट, डिजिटल बैलेंसिंग, सब कुछ आधुनिक मशीनों से।
1: साथ ही सभी कंपनी के टायर ट्यूब बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध हैं।
0: एक बार सेवा का मौका जरूर दें। विजिट करें मिश्रा टायर्स कंप्यूटराइज्ड अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, शिव मंदिर पोखरा के सामने, NH 27 बंजारी गोपालगंज।
1: रोड सपोर्ट या जानकारी के लिए कॉल करें 8825214946।
3: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
4: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करे 86034-48652 पे।
5: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।

0: प्रसाद क्लिनिक।
1: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
0: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंग स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज।
1: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
2: ओम नमः शिवाय।
3: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
2: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
3: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
2: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
3: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
2: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
3: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
2: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
3: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
2: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH 27, काली स्थान बंजारी, गोपालगंज।
3: बोलबम हर हर महादेव।
4: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
5: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
4: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
5: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
4: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
6: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
7: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
6: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
7: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
6: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
7: जानकारी है तो कॉल करें 6052 62112 पे।
8: आप सुन रहे हैं जिले की आवाज़ रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो

0: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
1: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टैबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, साइटिका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
0: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
2: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता
0: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
2: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
0: और 90971660।
3: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
4: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
3: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहां पर 24 घंटे आईसीयू इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
4: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
5: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
6: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करे।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करे 9006978856 या 6203139564।
1: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा, गोपालगंज। शाखा राजापुर बाजार, गोपालगंज। CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
0: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
1: तो देर मत कीजिए,
0: सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा, गोपालगंज। कॉल अस 9939721308।
2: ध्वनि के तरंग 90.4 पर आप जिले की आवाज रेडियो रिमझिम को सुन रहे हैं।

0: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
1: मैं बनूंगा।
2: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
0: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 8009294921 पे,
2: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
0: ओनली ऑन रेडियो रमझे 90.4 पर।
3: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
4: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं।
3: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
4: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
3: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
5: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
6: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
7: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
8: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
7: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड, गोपालगंज।

0: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
1: मैं बनूंगा।
2: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?

0: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 80 029 94 921 पे,
1: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
0: ओनली ऑन रेडियो रमझे 90.4 आमज जैट पर।
2: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
3: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
4: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
5: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
4: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
2: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
6: ठक ठक।
7: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
8: अच्छा मिला ही नहीं।
7: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
4: जी हाँ, कमल श्री। याद रखे, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
7: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
4: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है। सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता, रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है, सुनो दिल से।

0: नमः शिवाय।
1: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
0: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
1: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
0: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
1: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
0: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
1: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
0: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
1: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
0: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
1: बोलबम हर हर महादेव। नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
0: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
1: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
0: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
1: या अभी कॉल कीजिए 9289922567 या 9779746164।
2: तो भौजी आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
3: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है पर कोनो जचल है ना।
2: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमरा साथे कमल श्री में।
4: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
5: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
6: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो, रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

0: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
1: मैं बनूंगा।
2: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
0: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 8029-94921 पे,
2: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
0: ओनली ऑन रेडियो रमझेम 90.4 AMZ पर।
3: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
4: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
5: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
3: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
5: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
3: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
5: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
3: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
5: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
3: कॉल करे 70-70-75-6300 या 70-70-72-4200 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करे www.shalyamhospital.com।
6: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
7: भरोसे वाले से लेंगे,
6: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
7: और कीमत भी।
6: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
8: SP ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
9: प्योरिटी यानी मम्मी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन तो मेरा सर्टिफिकेशन।
10: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए SP ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
11: 22 कैरेट 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
10: आज यहाँ SP ज्वेलर्स जो है DAV गर्ल्स स्कूल के सामने स्टेशन रोड गोपालगंज,
12: और अब SP ज्वेलर्स का नया ब्रांच मेन रोड गोपालगंज इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
10: कॉल करें 85070-32042 पे।
13: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
14: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
13: आज ही संपर्क करें 7388-89470 या 9198-88-6973।
15: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
10: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
15: सुनो दिल से।

0: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल घोष मोड़ दरगाह रोड गोपालगंज।
1: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
2: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयां भी मिलती हैं।
3: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 6200042434 03 6200042434 03।
4: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
5: मैं बनूंगा।
3: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
4: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 8029294921 पे,
3: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
4: ओनली ऑन रेडियो रमझे 90.4 अमरजैट पर।
6: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
7: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
6: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
7: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
6: या अभी कॉल कीजिए 92899225 67 या 97714861 64।
8: अरे ए चाची, जब आँख से साफ नहीं खेलो को तो रोडवा पर लड़खड़ा के कहे चलता नहीं, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
9: अरे ए बबुओ, परेशानी तो बा लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला, सुनले बानी की आँख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
8: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू, अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आ गइल बनी। यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीर फाड़ कइले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करतनी, तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आँख में कोनो तरह के दर्द भी ना हुई और ऑपरेशन भी हो जाए।
3: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुपरसिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से, साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर MA अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने रालसन होटल के पश्चिम गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99053 69015 पे।
10: दिल बोले म्यूजिक, म्यूजिक म्यूजिक बोले दिल, दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4
11: रेडियो रिमझिम
10: सुनो दिल।

0: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
1: मैं बनूंगा।
0: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर? अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 8009294921 पे, हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में, ओनली ऑन रेडियो रमझेम 90.4 AMZ पर।
2: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
3: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
2: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
3: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
2: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
3: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
2: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
3: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902।
4: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
5: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
6: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
7: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
8: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
7: आज ही आए JB हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
5: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9166664498 पे।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
9: ठक ठक।
10: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
11: अच्छा, मिला ही नहीं
10: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें। अब चलिए सीधे कमल श्री में।
0: जी हाँ, कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
10: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
0: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
10: क्या चाहते हो, मैं ना जाऊँ अपनी दोस्त की शादी में?
0: क्यों, क्या हुआ है?
10: तुम्ही ने तो कहा था मुझे डिजाइनर लहंगा, साड़ी और गाउन दिलाओगे।
0: अरे तो कौन सी बड़ी बात है, आज ही चलते हैं गोपालगंज में लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स। वहाँ तुम्हें तुम्हारी मन पसंद के अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाएंगे।
10: फिर ये भी ठीक है, चलो चलते हैं लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स।
0: शादी विवाह या किसी भी शुभ अवसर पर एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स, जो है मेन रोड, गोपालगंज में।
12: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
13: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में। आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
12: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
13: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ 1 रुपए प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी, संपर्क करें 9939966999।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।

0: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा गोपालगंज, शाखा राजापुर बाजार गोपालगंज। CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
1: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
0: तो देर मत कीजिए,
1: सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, कॉल अस 9939721308।
2: अरे स्टीयरिंग हिल क्यों रहा है और ये टायर जल्दी घिस क्यों रहे हैं?
0: अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा तो समझ जाइए, टायर को चाहिए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग।
1: और इसके लिए जिले में भरोसे का एक ही नाम है, मिश्रा टायर्स, अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग।
0: यहाँ होता है कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, 3D अलाइनमेंट, डिजिटल बैलेंसिंग, सब कुछ आधुनिक मशीनों से।
1: साथ ही सभी कंपनी के टायर ट्यूब बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध हैं।
0: एक बार सेवा का मौका जरूर दें, विजिट करें मिश्रा टायर्स कंप्यूटराइज्ड अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, शिव मंदिर पोखरा के सामने, NH 27 बंजारी गोपालगंज।
1: रोड सपोर्ट या जानकारी के लिए कॉल करें 8825214946।
3: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
4: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ, इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
0: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा,
1: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी। अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
0: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा साड़ी सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
4: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
0: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
1: कॉल करे 87894-18744।
5: आप सुन रहे हैं जिले की आवाज़, रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो।

0: अरे स्टीयरिंग हिल क्यों रहा है और ये टायर जल्दी घिस क्यों रहे हैं?
1: अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा तो समझ जाइए, टायर को चाहिए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग।
2: और इसके लिए जिले में भरोसे का एक ही नाम है, मिश्रा टायर्स, अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग।
1: यहाँ होता है कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, 3D अलाइनमेंट, डिजिटल बैलेंसिंग, सब कुछ आधुनिक मशीनों से।
2: साथ ही सभी कंपनी के टायर ट्यूब बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध हैं।
1: एक बार सेवा का मौका जरूर दें। विजिट करें मिश्रा टायर्स कंप्यूटराइज्ड अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, शिव मंदिर पोखरा के सामने, NH 27 बंजारी गोपालगंज।
2: रोड सपोर्ट या जानकारी के लिए कॉल करें 8825214946। ओम नमः शिवाय।
1: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
2: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
1: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
2: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
1: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
2: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
1: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
2: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
1: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
2: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उप शाखा NH 27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
1: बोलबम, हर हर महादेव।
3: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
4: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
3: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
5: टॉप रामू काका, हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
6: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लेके आओ तनी बाबू।
5: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
6: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
5: हम तो अपना नौका घर

आदमी जब जन्म लेला तो ओकर बरही होला, अमर जाला तो ओकर लोग तेरही कर देला। द्वार पर बाबूजी कपड़ा बिना तरसता रहे, दवाई बिना मरता रहे, खाना तिकवता रहे। जब बेटा नात पतो दिया स बाकीर मर गईला के बाद लोग नौ गुना खड़ा करेला।

0: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
1: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
0: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
1: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी चैन पट्टी गोपालगंज,
0: या अभी कॉल कीजिए 92899-22567 या 97714-86164।
2: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें बातें सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
0: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
2: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
0: पता जंगलिया मोहल्ला नूर मेडिकल के पास गोपालगंज, कॉल करें 94512-11001।
3: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान, पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सीरिया रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
4: अरे ए चाची, जब आंख से साफ नहीं खेलो को तो रोड पर लड़खड़ा के काहे चलतनी, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
5: अरे ए बबुओ, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला। सुनले बानी की आंख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
4: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू। अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आगल बनी, यहाँ के आंख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़फाड़ कइले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आंख के ऑपरेशन करतनी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आंख में कोनो तरह के भी ना हुई और ऑपरेशन भी हो जाए।
6: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुपर सिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से, साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर MA अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने रालसन होटल के पश्चिम गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99053-69015 पे।
7: के तरंग 90.4 पर आप जिले की आवाज रेडियो रिमझिम को सुन रहे हैं।

0: हो जी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई लकी ना?
1: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना?
0: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमरा साथे कमल श्री में। महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
2: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
3: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है, रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
4: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
5: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
6: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूर्व भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
5: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
6: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेष द्वारा।
5: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
6: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
5: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा, NH 27 गोपालगंज।
6: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
7: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
8: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
9: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
5: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94 3945 651 या 97 097 06 575।

हेलो हाय नमस्ते नमस्कार प्रणाम सलाम वेरी वेरी गुड आफ्टरनून कैसन बानी रउआ सबे। उम्मीद करता नहीं कि रउआ सबे ठीक होके मर रउआ सुन रहल बानी रेडियो रिमझिम 90.4 और हम बानी रउआ सबे के रेडियो दोस्त आरजे सोनी रउआ सबे के बीच एकदम हाजिर हो चुकल बानी अपन पसंदीदा कार्यक्रम भोजपुरिया एक्सप्रेस के लेके। 2:02 हो चुकल बा स्टूडियो घड़ी में और अभी से लेके शाम के 5 बजे तक हम रउआ सबे के साथे बानी, रउआ सबे के फरमाइश के साथे बानी। तो अगर शो में जुड़े के चाहते नहीं, सफ़र करे के चाहते नहीं आज के इस सफ़र में, तो नंबर बाटे 98-527-88-291 पे व्हाट्सएप मैसेज करी या फिर व्हाट्सएप ना यूज करे नहीं तो कॉल के माध्यम बाटे और ओकरा खातिर नंबर बाटे 72-77-16-65-96 पे कॉल करी और जुड़ जाए भोजपुरी एक्सप्रेस कार्यक्रम से। तो चलिए बिना देरी के लिए आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते नहीं और प्ले करते नहीं एगो बढ़िया सा गाना करीना पांडे की आवाज़ में। तब तक रुआ सभी अपन मैसेज और फरमाइश पहुंचाई और जब तक रुआ सभी के फरमाइश पहुंचाता तब तक एंजॉय कर जाओ करीना पांडे और सविता पांडे की आवाज़ में ये बढ़िया सा गाना रेडियो रिमझिम 90.4 FM पर।

90.4 रिमझिम सुन रहा वानी रोवा सभी और कार्यक्रम बाटे भोजपुरी एक्सप्रेस के और यहाँ 2:07 हो चुका भोजपुरी घड़ी में और एक बार फिर से रोवा सभी के बहुत बहुत स्वागत करता नहीं रोवा सभी का अपन पसंदीदा कार्यक्रम भोजपुरी एक्सप्रेस में। और अगर रुआ भी जुड़े के चाहते नहीं शो में तो शो में जुड़े खातिर माध्यम बाटे व्हाट्सएप और कॉल। रुआ जौन माध्यम से चाहिए शो में जुड़ सकता नहीं और यहाँ व्हाट्सएप मैसेज की तरफ रुख करें और काफी सारा मैसेज हमारा पास पहुँचल बाटे। और यहाँ संतोष पटेल जी बानी लिखा था नहीं कि बहुत ही बढ़िया सॉन्ग, बहुत बहुत स्वागत बाटे शो में। और आगे यहाँ मैसेज बाटे लिखा था नहीं कि हेलो जी नमस्ते प्रणाम जय माता दी और सागर दीवाना जी बानी जमीन कश्मीर से और कहता नहीं सबके बोल दें गुड आफ्टरनून। बिल्कुल बोल दे बानी और गाने के फरमाइश व रुपुआ सलोना ये धनिया और डेडिकेट बाली कहता नहीं कि सबसे पहले आपके और सुनने वाला सभी लिस्नर लोग के। तो चलिए राहुल गाना प्ले करें बहुत बहुत स्वागत बटे। और यहाँ एक और मैसेज पहुँचल बा अनिश यादव जुड़ चुकल बनी दुमरा यदवंशी टोला से बहुत बहुत स्वागत बटे। सरफरोज अली आकिल टोला से, उमर शंकर जी दिल्ली से, दिलीप कुमार ठाकुर मिर्जापुर वाली पंजाब से, मनीष रुजाक फाजिल नगर कुशनगर उत्तर प्रदेश से बहुत बहुत स्वागत बटे आप सभी के। धनेश मिश्रा जी दिल्ली से बहुत बहुत स्वागत बटे। और श्री राम जी सासाराम टू दिल्ली से बहुत बहुत स्वागत करते हैं रोवा के भी। एक और यहाँ मैसेज पहुँचल बटे और लिखा था नहीं हमू मुन्ना जी दिल्ली से जुड़ चुकल बनी भोजपुरी एक्सप्रेस में और हम लोग टिकट कन्फर्म कर दी। बिल्कुल राउट भी टिकट कन्फर्म करें बने रही हमने के साथ सुनत नहीं रेडियो रिमझिम के। फिलहाल यहाँ प्रमुख जी लुधियाना पंजाब से जुड़ चुकल बनी बहुत बहुत स्वागत बटे शो में और पहला टिकट कन्फर्म करें। और गाने के फरमाइश बटे रुपवा सलोना ये धनिया और गाने के फरमाइश करे वाला बानी शिव सागर दीवाना जी जम्मू एंड कश्मीर से। इंजॉय करिए अपन गाने के रेडियो रिमझिम पर।

0: चार रेडियो रिमझिम सुन रहा बनी रुआ से भी और कार्यक्रम बैठे भोजपुरी एक्सप्रेस के और अभी गाना सुनत ने संग गाने का फरमाइश करे वाला रनिया श्री सागर दीवाना जी जम्मू एंड कश्मीर से बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ के तरफ से भी मैसेज पहुँचल बाटे और लिखा तनी कि गाना में गुनगुनाए खातिर भी धन्यवाद बटे जय माता दी मैडम जी। और आगे बढ़े मियाँ व्हाट्सएप मैसेज के तरफ अनिल जी जुड़ चुकल बानी छोटपुर से लिखा तनी प्रणाम सोनी जी हम भी जुड़ गल बानी बहुत बहुत स्वागत बटे। और यहाँ एक और मैसेज बटे राकेश शर्मा जी जुड़ चुकल बानी अहमदनगर से बहुत बहुत स्वागत बटे रुआ के भी। और एक और यहाँ गाने के फरमाइश पर रिलिया रे बिल्कुल और भी फरमाइश प्ले करें। और आरजे अमन जी जुड़ चुकल बानी बहुत बहुत स्वागत बटे रुआ के भी। और यहाँ 2:13 हो चुकल बा स्टूडियो घड़ी में और अब रुआ सुबह से मिला था नहीं दोपहर समाचार के बाद तो कहीं मत जाए सुनत नहीं रेडियो रिमझिम 90.4 FM के और फिर मिला था नहीं और बाकी के फरमाइश जौन बाद दोपहर समाचार के बाद तब तक सुनत नहीं रेडियो रिमझिम 90.4 FM के।
1: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे शुगर नायका कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां साथ ही साथ डिजाइनर पर्स होम डेकोरेशन टॉयज एंड गिफ्ट्स ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो इससे अच्छी जगह कोई नहीं श्रृंगार वाटिका।
2: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज या कॉल करे 86034 48652 पे।
3: घर बन रहा हो तो सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं टाइल्स और फिटिंग्स का चुनाव भी होना चाहिए शानदार।
4: इसीलिए गोपालगंज जिले के लोगों की पहली पसंद बन चुका है बीके टाइल्स। बीके टाइल्स यहाँ मिलेंगे सभी प्रकार के डिजाइनर टाइल्स मार्बल ग्रेनाइट बेसिन कॉमोड बाथ फिटिंग्स और घर सजाने के कई आधुनिक प्रोडक्ट
5: वो भी किफायती दामों पर। और खास बात गोपालगंज जिले में हमारी 4 सुविधाजनक शाखाएं
4: अरार मोड़ SP कोठी के पास गोपालगंज दूसरा ब्रांच भटवा मोड़ के पास कुचायको
5: तीसरा ब्रांच इस्लामिया कॉलेज के पास मेन रोड थावे मीरगंज और चौथा ब्रांच बंतरिया मोड़ भोरे।
4: और अब सिवान जिले में भी हमारी 2 शाखाएं उपलब्ध हैं सिवान ब्रांच कुशवाहा चौक हकाम बाईपास सिवान
5: और मैरवा ब्रांच बबनौली चौक मैरवा सिवान।
4: तो आज ही अपने सबसे नजदीकी बीके टाइल्स ब्रांच पर आए और करे बेहतरीन खरीदारी।
5: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करे गोपालगंज ब्रांच में 8460571406 मीरगंज ब्रांच में 9693101611
4: कुचाई कोट ब्रांच में 9693101602 भोरे ब्रांच में 8207856404
5: सिवान ब्रांच में 9942071405 मेरवा ब्रांच में 8207856403।
6: से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत समुद्र से लेकर आकाश तक अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। उन्होंने देश में निर्मित C-295 विमान की पहली उड़ान को बड़ी उपलब्धि बताया। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने सोने की खरीदारी से बचने विदेश यात्रा न करने और कार पूलिंग को बढ़ावा देने की उनकी अपील का समर्थन करने के लिए देशवासियों का आभार व्यक्त किया। भारत और सेशल्स ने विक्टोरिया में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद स्वास्थ्य कृषि वित्त और अंतरिक्ष सहित कई क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर किए। सरकार ने लोगों से सभी आवश्यक यात्रा दस्तावेजों के बिना कैलाश मानसरोवर यात्रा नहीं करने को कहा। अमेरिका और ईरान के बीच नए सैन्य हमलों से पश्चिम एशिया में सुरक्षा स्थिति बिगड़ी और लंदन में महिला T20 विश्व कप में भारत अंतिम ग्रुप मैच में ऑस्ट्रेलिया से खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत समुद्र से लेकर आकाश तक अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। आकाशवाणी से आज मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि जून महीने में स्वदेशी C-295 विमान की पहली उड़ान के साथ ही भारत ने विमानन क्षेत्र में एक बड़ी सफलता हासिल की है।
7: C-295 यह विमान मेड इन इंडिया है और C-295 विमान ने अपनी पहली उड़ान पूरी की है और ऐसे 40 विमान भारत में ही बनाए जा रहे हैं। इससे एमएसएमई और एरोस्पेस सेक्टर को नई शक्ति मिल रही है। आज समुद्र से लेकर आकाश तक हमारा भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है।
8: श्री मोदी ने कहा कि इसी महीने कोलकाता में 3 युद्धपोतों का जलावतरण किया गया और डीआरडीओ ने लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है।
7: कोलकाता में INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय को भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया। इन शिप्स की डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग तक सब कुछ स्वदेशी है। इसी महीने डीआरडीओ ने स्वदेशी लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया है। इसको डीआरडीओ की लेबोरेटरी और इंडियन इंडस्ट्री पार्टनर्स ने मिलकर बनाया है।
8: प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की चर्चा की जिसे दुनिया भर में मनाया गया। इस बार ये आयोजन 2500 से अधिक जगहों पर हुआ। भारत में करोड़ों लोगों ने योग दिवस में भागीदारी की। श्री मोदी ने अहमदाबाद में विश्व योगासन चैंपियनशिप में पदक विजेता एथलीटों को बधाई दी।
7: विश्व योगासन चैंपियनशिप की भी बड़ी चर्चा हुई। इसमें भारत ने कुल 114 पदक जीते, इनमें 102 गोल्ड मेडल भी शामिल है। भारत इस चैंपियनशिप की पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा।
8: प्रधानमंत्री ने पश्चिम एशिया में युद्ध के दौरान उनकी अपील पर देशवासियों के समर्थन और सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया।
7: पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कहा था कुछ समय के लिए सोना खरीदने से बचें, लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें, लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी, किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं।
8: प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र के नांदेड़ में पेठकर परिवार की चर्चा की जिसने लगभग 3500 ग्रामीणों का दुर्घटना बीमा कराया है। इनमें से प्रत्येक व्यक्ति को 1,00,000 रुपए का बीमा मिला है। श्री मोदी ने कहा कि ये भावना हृदय को छूने वाली है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने पीड़ित परिवारों को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में अब तक 3,700 करोड़ रुपए से अधिक और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में लगभग 22,000 करोड़ रुपए की सहायता दी है।
7: सरकार देश के करोड़ों परिवारों तक सुरक्षा का कवच पहुंचा रही है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत केवल 1 साल के 20 रुपये का प्रीमियम, उस पर 2,00,000 रुपये तक का दुर्घटना बीमा मिलता है। उसी प्रकार से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना भी उतनी ही अहम है। ये योजना व्यक्ति की दुखद मृत्यु होने पर उसके परिवार को 2,00,000 रुपये का बीमा कवर देती है। इसका वार्षिक प्रीमियम सिर्फ 436 रुपये है।
8: प्रधानमंत्री ने कहा कि समाज में अंधविश्वास सदियों से गहरे बैठा हुआ है। श्री मोदी ने बताया कि असम में अशुभ माने जाने वाले हरगिला पक्षी को बचाने के लिए हजारों महिलाएं सामने आई हैं।
7: हरगिला एक दुर्लभ पक्षी है। ये प्रकृति को स्वच्छ रखने में अहम भूमिका निभाता है, लेकिन असम के कुछ इलाकों में लंबे समय तक इसे अशुभ माना जाता था। फिर एक बड़ा बदलाव शुरू हुआ। हजारों ग्रामीण महिलाएं हरगिला को बचाने के लिए आगे आई। आज उन्हें हरगिला आर्मी के नाम से जाना जाता है। इन महिलाओं ने समाज के साथ संघर्ष भी किया, समाज को समझाने के लिए दिन रात काम किया और अंधविश्वास को पीछे छोड़ कर के रहे।
8: प्रधानमंत्री ने नागालैंड बेबी लीग और नागालैंड महिला फुटसल लीग की चर्चा की।
7: देश में ऐसे युवाओं की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है जो खेल भी रहे हैं और खिल भी रहे हैं। अब कहीं अधिक युवा खेलों को कैरियर के रूप में अपना रहे हैं। नागालैंड के 2 ऐसे प्रयासों के बारे में जानकारी मिली है। पहला प्रयास है नागालैंड बेबी लीग, जो उनके रफ्तार को और प्रतिभा के लिए उनको प्रेरित करती है। नागालैंड की विमेन फुटसल लीग हमारी बेटियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अच्छा अवसर दे रही है।
8: प्रधानमंत्री ने कहा कि नालंदा विश्वविद्यालय में शास्त्रार्थ की प्राचीन परंपरा को फिर से जीवित किया गया है।
7: नालंदा विश्वविद्यालय ने शास्त्रार्थ की हमारी प्राचीन परंपरा को फिर से जीवन किया है। दूसरों के विचारों को धैर्य से सुनने और समझने की सीख भी इस शास्त्रार्थ की प्रक्रिया से मिलती है। मुझे खुशी है कि नालंदा विश्वविद्यालय ने इसे अपने दीक्षांत समारोह का हिस्सा बनाया।
8: प्रधानमंत्री ने दिल्ली के केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के आधुनिक प्रयास की चर्चा की।
7: जड़ों से जुड़े रहकर युवाओं को नई टेक्नोलॉजी के लिए तैयार करने का एक और अच्छा प्रयास हो रहा है। दिल्ली में स्थित सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस में बीटेक प्रोग्राम शुरू करने जा रही है। ये आधुनिक टेक्नोलॉजी को भारत के पारंपरिक ज्ञान से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे भारतीय भाषाओं के लिए नए AI टूल्स तैयार करने में मदद मिलेगी।
8: श्री मोदी ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि भारतीय संस्कृति दुनिया भर में पहुंच रही है।
7: कैरिबियन सागर में डोमिनिकन रिपब्लिक नाम का एक देश है, वहाँ भारतीयों की संख्या करीब 100 है। भारतीय संस्कृति और अध्यात्म से जुड़ा एक बहुत अच्छा प्रयास वहाँ हो रहा है। वहाँ स्पेनिश बोलने वाले कुछ लोगों ने एक टीम बनाई है। इस टीम का नाम है ब्रह्म कमल डोमिनिकाना। टीम के सदस्य मिलकर वैदिक साहित्य का अध्ययन करते हैं। भारत से इतनी दूर रहकर हमारी परंपराओं को सीखने का उनका यह प्रयास बहुत प्रेरक है।
8: प्रधानमंत्री ने देशवासियों से गणेश उत्सव पर गणपति बप्पा की मिट्टी की मूर्ति को प्राथमिकता देने की अपील की। अंत में प्रधानमंत्री ने जल संरक्षण के संबंध में कहा कि वर्षा जल की एक एक बूंद को बचाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कैच द रेन अभियान में ढिलाई नहीं होने देनी चाहिए। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हिंद महासागर की सुरक्षा और समृद्धि भारत और सेशेल्स की साझा जिम्मेदारी है। सेशेल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइनी के साथ विक्टोरिया में द्विपक्षीय वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े।
7: मेरी यात्रा ऐसे ऐतिहासिक अवसर पर हो रही है जब सेशल अपनी स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे कर रहा है और हम भारत सेशल राजनयिक संबंधों की भी 50वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। इन 50 वर्षों की यात्रा में हमने मित्रता को विश्वास में, विश्वास को सहयोग में और सहयोग को जन कल्याण में बदला है। हिंद महासागर ने भारत और सेशल के संबंधों को सींचा है।
8: दोनों देशों के बीच कृषि, वित्त, अंतरिक्ष और स्वास्थ्य सहित कई क्षेत्रों में समझौतों का आदान प्रदान भी हुआ। सेशेल्स के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी को उनके दूरदर्शी नेतृत्व तथा सतत विकास और जलवायु लचीलेपन के प्रति प्रतिबद्धता के लिए देश के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री मोदी आज सेशेल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित करेंगे, भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात करेंगे और राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को सलाह दी है कि वे सभी आवश्यक दस्तावेज होने पर ही कैलाश मानसरोवर यात्रा करें। मंत्रालय ने यह परामर्श उन भारतीय नागरिकों के सहायता अनुरोध के बाद जारी किया है जो निजी टूर ऑपरेटरों के माध्यम से चीन के लिए आवश्यक प्रवेश परमिट और बिना वीजा के नेपाल में फंस गए हैं। ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत भेजी गई भारतीय सहायता वेनेजुएला पहुंच चुकी है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने विश्वास व्यक्त किया कि फील्ड अस्पताल इकाई, 30 टन राहत आपूर्ति, 6 टन औषधि और चिकित्सा उपकरण वेनेजुएला में भूकंप के बाद जारी राहत प्रयासों को बढ़ावा देंगे। अमरीकी सेना ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर लगातार दूसरे दिन ईरान में कई ठिकानों पर हमले किए हैं। इससे दोनों पक्षों के बीच हुए संघर्ष विराम समझौते को लेकर अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न हो गई है। सोशल मीडिया पोस्ट में अमेरिका की सेंट्रल कमान ने कहा कि शुक्रवार को तेल से लदे एक व्यापारिक पोत किको पर हुए हमले के जवाब में अमेरिका ने ईरान के सैन्य ढांचों, संचार प्रणालियों, वायुसेना के अड्डों, ड्रोन और बारूदी सुरंग बिछाने की क्षमताओं को निशाना बनाया। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण को साकार करने में गांवों की मुख्य भूमिका का उल्लेख किया है। नई दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन में श्री चौहान ने कहा कि ग्रामीण विकास में तेजी लाने के लिए विकसित भारत ग्रामीण योजना के अंतर्गत राज्यों के योगदान सहित 1,51,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है।
9: गांव केवल भारत का भूगोल नहीं है, भारत की आत्मा है, भारत की अर्थव्यवस्था है, भारत की अस्मिता है। गांव केवल बसाहट नहीं है, वे भारत की सभ्यता है, संस्कृति है, जीवन मूल्य है, परंपराएं हैं और समृद्धि के केंद्र रहे हैं। हमारी ताकत भी गांव है और हमारी संभावना भी गांव में। गांव हमारे लोकतंत्र की सबसे मजबूत इकाई भी है और ये आज का सम्मेलन ग्रामीण समृद्धि का मंथन है।
8: पश्चिम बंगाल में कोलकाता के तारातला भवन हादसे की जांच तेज हो गई है। जादवपुर विश्वविद्यालय और आईआईटी खड़गपुर के विशेषज्ञों की टीमें आज घटनास्थल का निरीक्षण करेंगी। इससे पहले फोरेंसिक विशेषज्ञों की टीम भी मौके से नमूने एकत्र कर चुकी है। निर्माणाधीन गोदाम ढहने से हुए हादसे में अब तक 17 लोगों की मौत हो चुकी है। लंदन के लॉर्ड्स में महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में आज शाम 7 बजे भारतीय टीम अंतिम लीग मैच में ऑस्ट्रेलिया से खेलेगी। भारत ग्रुप में दूसरे और ऑस्ट्रेलिया पहले स्थान पर है। भारतीय टीम को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए ये मैच जीतना होगा। उधर बेलफास्ट में दूसरे टी20 पुरुष क्रिकेट मैच में आज शाम 6 बजे भारत का मुकाबला मेजबान आयरलैंड से होगा। 2 मैचों की श्रृंखला में आयरलैंड ने पहले मैच में भारत को 34 रन से हराया था। किदांबी श्रीकांत यूएस ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गए हैं। श्रीकांत ने सेमीफाइनल में जापान के युदाई ओकिमोतो को हराया। अर्जेंटीना के फुटबॉलर लियोनेल मेसी लगातार 7 विश्व कप मैचों में गोल करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। आज अंतिम मुकाबले में अर्जेंटीना ने जॉर्डन को 3-1 से हराया। इसके साथ ही विश्व कप में उनके गोलों की संख्या 19 हो गई है। और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों के दौरान बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, कर्नाटक, कोंकण, गोवा, तमिलनाडु, तेलंगाना, विदर्भ, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी तेज वर्षा की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत समुद्र से लेकर आकाश तक अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। उन्होंने देश में निर्मित C-295 विमान की पहली उड़ान को बड़ी उपलब्धि बताया। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने सोने की खरीदारी से बचने, विदेश यात्रा न करने और कार पूलिंग को बढ़ावा देने की उनकी अपील का समर्थन करने के लिए देशवासियों का आभार व्यक्त किया। भारत और सेशल्स ने विक्टोरिया में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद स्वास्थ्य, कृषि, वित्त और अंतरिक्ष सहित कई क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर किए। सरकार ने लोगों से सभी आवश्यक यात्रा दस्तावेजों के बिना कैलाश मानसरोवर यात्रा नहीं करने को कहा। और लंदन में महिला टी20 विश्व कप में भारत अंतिम ग्रुप मैच में ऑस्ट्रेलिया से खेलेगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
10: दोपहर न्यूज के बाद स्वागत है आप सभी का रेडियो रिमझिम 90.4 FM पर। आइए सुनते हैं आगे का प्रसारण।
11: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल घोसमोड़ दरगाह रोड गोपालगंज।
12: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
13: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
14: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 6200042403 6200042403।
15: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
16: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
17: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
18: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में NH-27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
17: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
18: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञ विशेषज्ञों द्वारा।
17: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
18: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
17: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
18: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
19: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरे कान का झुमका ला।
20: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
19: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
20: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
21: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
20: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
21: तो अगर आपको कुछ अच्छा कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड एक्सिस बैंक के सामने तड़कुल के पास गोपालगंज।
20: याद रहे, शादी विवाह जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है,
21: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
22: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
23: भरोसे वाले से लेंगे,
22: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
23: और कीमत भी।
22: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
24: SP ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
25: प्योरिटी यानी मामी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन तो मेरा सर्टिफिकेशन।
21: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए SP ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
20: 22 कैरेट 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर की करें खरीदारी।
21: आज यहाँ SP ज्वेलर्स जो है DAV गर्ल्स स्कूल के सामने स्टेशन रोड गोपालगंज,
26: और अब SP ज्वेलर्स का नया ब्रांच मेन रोड गोपालगंज इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
21: कॉल करें 85070 32042 पे।

खबर समाचार के बाद एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत बटे रेडियो रिमझिम 90.4 FM में रुवा सभी ज्ञापन कार्यक्रम भोजपुरी एक्सप्रेस में। 2:35 हो चुके वेस्टुडे घड़ी में और 5 बजे तक कार्यक्रम में हम रुवा सभी के साथ बानी, रुवा सभी के फरमाइश के साथ बानी। और यहाँ व्हाट्सएप मैसेज की तरफ बढ़े तक काफ़ी सारा फरमाइश और मैसेज पहुँच चुकल बटे। और यहाँ अभी मैसेज पहुँचल बा राकेश शर्मा जी बानी, सदाम जी मुंबई से जुड़ चुकल बानी, बहुत बहुत स्वागत बटे। एक और यहाँ मैसेज बटे लिखा था कि रंजन कुमार जी बानी तमकुही रोड कुशनगर उत्तर प्रदेश से, बहुत बहुत स्वागत बटे, फरमाइश बात बिल्कुल प्ले करे के कोशिश बटे। एक और मैसेज वही यहाँ लिखा था नमस्कार मैडम जी, गुड आफ्टरनून मैडम जी, प्रीति रैदास विलेज लकड़ी दरगाह डिस्ट्रिक्ट सिवान से जुड़ चुकल बानी, बहुत बहुत स्वागत बटे। लिखा था कि और आज हमके भी गाना सुनने के बाद पायलिया बाजे छम छम, और सिंगर देवी जी की आवाज़ में बिल्कुल गाने का फरमाइश पर प्ले करें, बहुत बहुत स्वागत बटे शो में। और आज के अगला फरमाइश की तरफ बढ़े और अगला फरमाइश जोन हमारा पास पहुँचल बटे। और गाने का फरमाइश करे वाला बानी अनिश यादव जी दुमरा यदवंशी टोला सिवान से, तो चलिए राउर टिकट कन्फर्म हो गल बा गाना सुने के वक्त लाल की आवाज़ में। बस इतने करिए राम जी, तो इन्जॉय करिए अपन गाना के रेडियो रिमझिम 90.4 FM पर।

0: 90.4 रेडियो रंजन सुनराल बनी रोवा सबे और कार्यक्रम बाटे भोजपुरिया एक्सप्रेस के। और अभी हमने का गाना सुनाते हैं सन अनिश यादव जी के फरमाइश रहे दुमरा यदुवंश टोला सिवान से। और यहाँ की तरफ से मैसेज भी पहुँच गया लिखा तनी के थैंक यू सो मच गाना बजावे खातिर। एक और यहाँ मैसेज बाटे लिखा तनी की धर्मेंद्र कुमार जी बानी अयोध्या से नाइस सॉन्ग बहुत बहुत स्वागत धर्मेंद्र जी रोवा के भी। और आगे हैं एक और मैसेज बा लिखा तनी के हाय मैम हम भी जुड़ चुकल बानी और दिल कमल के आवाज़ में गाना सुने के बाद मनोज कुमार सिवान से जुड़ल बानी बहुत बहुत स्वागत बाटे। और यहाँ गुरु नानक पूरा बठीठा पंजाब से किशोर साबलनिया जी सवित्री साबलनिया और सुमन साबलनिया बेटी अंशु के साथ जुड़ चुकल बानी बहुत बहुत स्वागत बटे रोवा के भी शो में। और लिखा तनी कि कोई भी गीत में शामिल कर ली बिल्कुल और सब गीत में रोवा के शामिल कर तनी बहुत बहुत धन्यवाद बटे शो में जुड़े खातिर। और अगला फरमाइश की तरफ बढ़े और अगला फरमाइश यहाँ कॉल के माध्यम से पहुँचा था तो बात कर जाओ देखा जाओ के बानी कहाँ से। और यहाँ कॉल रिसीव करते ही कर चुकल बा फिर से रिटर्न आ गए कॉल तो चली बात कर जाओ देखा जाओ के बानी और कहाँ से। हेलो
1: जी पचपरा से बोला बोलते हैं
0: जी बहुत बहुत स्वागत बटे
1: क्या समाचार बा।
0: बिल्कुल बढ़िया रो बताए कैसन बानी।
1: ठीक बानी।
0: तब लंच हो गई।
1: हाँ लंच तो हो गई।
0: चली बढ़िया बा
1: जी।
0: तो रो उन्हें धूप निकलल बा का
1: बहुत धूप निकलल बा इन्हें लाइट भी नहीं है।
0: ओहो तब तो ये तो और बड़का जुलम बाटे
1: बहुत गंजन हो गई बा।
0: जी बिल्कुल गाना प्ले कर दिले बनी राहुल
1: जी
0: बहुत बहुत धन्यवाद सो में कॉल करनी।
1: नमस्ते
0: नमस्ते।

0: और यहाँ अंकित कुमार जी जुड़ल बनी, बहुत बहुत स्वागत बटे। और यहाँ के भी गाना सुने के बाद जोगी वाला सॉन्ग बजा दी मैम, तो रुआ भी अपन गाना के एंजॉय करी रहा और भी टिकट कंफर्म होता। बहुत बहुत धन्यवाद शो में जुड़ने।
1: ए गांव ए वो गांव जा के भिक्षा मांग के भजन गा के लोगन के ज्ञान बताई ले।

90.4 रेडियो रिमझिम सुन रहल बानी और कार्यक्रम बाटे भोजपुरी एक्सप्रेस के। और अभी गाना सुनत नेशन कॉल के माध्यम से गाना के फरमाइश रहे भोला जी रनिया पछफेरा से, और यहाँ व्हाट्सएप पे भी गाना के फरमाइश सही रहे अंकित कुमार जी के तरफ से। और दोनों जन अपन गाना सुन ले बानी, बहुत बहुत धन्यवाद बेटे शो में जुड़े खातिर। और अगला फरमाइश के तरफ पढ़े, उससे पहले यहाँ धनेश मिश्रा जी बानी दिल्ली से लिखा था नहीं कि हमने पे ध्यान दी सोनी जी, बिल्कुल ध्यान बटे रुआ पे भी। और अगला टिकट हम कन्फर्म करें सरफरोज अली अबानी अकिल टोला से, और यहाँ के सुने के बैठे नाम धैले भी है खुशी और नील कमल का आवाज़ में। तो चलिए राउ टिकट भी कन्फर्म हो गए, एंजॉय करिए।

और यहाँ सरफरोज अली जी की तरफ से मैसेज पहुंच गया, बल्ली कहता नहीं थैंक यू मैम गाना बजाओ खातिर, लेकिन बहुत देर हो गई। देर बिल्कुल ना भाई, दोपहर समाचार के टाइम हो गया और दोपहर समाचार के बाद तुरंत गाना प्ले कर ले। फिलहाल इंजॉय करिए अपन गाना।

0: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं। दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
1: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
2: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा।
3: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
4: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या? मुरारी लाल विजय कुमार,
2: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा साड़ी सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
1: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
2: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
4: कॉल करे 87894-18744।
5: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
6: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में। आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
5: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
6: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोप्राइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399-66999।
7: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
8: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
7: आज ही संपर्क करें 7388-89470 या 9198-88-6973।

एक बार फिर से रुआ सभी के बहुत बहुत स्वागत बाटे भोजपुरिया एक्सप्रेस में रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में। और यहाँ व्हाट्सएप मैसेज की तरफ बढ़े तो काफ़ी सारा मैसेज बा, अगर हुआ भी जुड़े के चाहते नहीं भोजपुरिया एक्सप्रेस से तो नंबर बाटे 9857788291 पे व्हाट्सएप मैसेज करी या फिर कॉल करी 7277165696 पे। और यहाँ व्हाट्सएप मैसेज की तरफ बढ़े तो दिलीप कुराम जुड़ चुकल बानी दिल्ली से, बहुत बहुत स्वागत बाटे गाना के फरमाइश के साथे बानी और बहुत लोग के डेडिकेट कर ले बानी गाना के जब प्ले करें हम डेडिकेट कर नाम भी ले लें। फिलहाल मुस्तफ़ा जी जुड़ चुकल बानी बहुत बहुत स्वागत बाटे लिखतनी गुड आफ्टरनून। और एक और यहाँ मैसेज बाटे और लिखतनी कि हमरो टिकट कन्फर्म कर दी बिल्कुल कर दें सदाम जी बानी मुंबई से, थोड़ा वेट करी। और आगे है एक और मैसेज बा लिखतनी कि हमरो गाना बजा दी राकेश शर्मा जी बानी बिल्कुल सबके गाना एक एक करके प्ले करें। और आगे हैं इरशाद मास्टर जी जुड़ल बानी धनाव से लिखतनी कि भोजपुरिया प्रणाम बा मास्टर रोशन टेलर धनाव से आपकी भी भोजपुरिया प्रणाम बटे और हम जुड़ चुकल बानी बहुत बहुत स्वागत बटे इरशाद जी रोवा के भी। और आगे है एक और मैसेज बटे और नाम मेंशन नहीं किया तो नाम ज़रूर बताइए अपन की के बानी और कहाँ से। बहुत बहुत स्वागत बटे यहाँ पल्लवी पांडे जुड़ चुकल बानी भेड़िया से, बहुत बहुत स्वागत बटे रुआ के भी। और फरमाइश पवन सिंह की आवाज़ में तब बिल्कुल राहुल भी टिकट कन्फर्म हुई, थोड़ा इंतजार करी और आगे बढ़े अगला फरमाइश की तरफ। और अगला फरमाइश हमारा पास पहुँचा थोड़ा मिर्जापुर वाली पंजाब से और गाना का फरमाइश करे वाला बानी दिलीप ठाकुर जी तो चली राउ टिकट कन्फर्म हो गए, एंजॉय करिए अपन गाना के रेडियो रिमझिम पर।

और यहाँ दिलीप कुमार ठाकुर जी के तरफ से मैसेज पहुँच गया, लिखा था नहीं धन्यवाद सोनी मैडम जी गाना बजाए खाते। और यहाँ दिलीप राम जी दिल्ली से बानी, लिखा था नहीं कि सिनोरवा से बानी दिल्ली से नहीं कि अभी गांव में बानी, दिलीप राम जी की तरफ से मैसेज बांटे, बहुत बहुत धन्यवाद बताए खातिर। और यहाँ मनीष पांडे जी जुट चुकल बानी, बहुत बहुत स्वागत बटे। और लिखा था नहीं कि हेलो नमस्ते नमस्कार गुड आफ्टरनून हैप्पी बर्थडे सोनी जी, और मैसेज के लिए उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद रुआ के। और सुनत रहे रेडियो 90.4 FM के।

और यह मैसेज बाटे धनेश मिश्रा जी बानी लिखा तनी कि राजा पिया जने गाजा हो खराब हो जाइबा। बढ़िया गाना बाटे मैडम जी, तो बिल्कुल एंजॉय करी बढ़िया गाना के रेडियो रिमझिम पर।

90.4 रेडियो रिमझिम सुन रहलबानी और कार्यक्रम भोजपुरी एक्सप्रेस का और अभी गाना सुनते हैं। संगाना का फरमाइश रहे दिलीप कुमार ठाकुर जी के तरफ से और अगला फरमाइश हम यहाँ प्ले करें। हमारा पास पहुँचल बा गाना के फरमाइश और दिल्ली से बाटे धनेश मिश्रा जी बानी और यहाँ के सुने के बाद गाना तोहराला केहू जियला करीना पांडे की आवाज़ में। तो चली राव टिकट भी कन्फर्म होता है। इन्जॉय करिए अपन गाना के रेडियो रिमझिम।

90.4 रेडियो रिमझिम 90.4 सुन रहल बानी रउवा सबे और कार्यक्रम बाटे भोजपुरी एक्सप्रेस का और अभी हमनी के गाना सुनत नहीं सन गाने के फरमाइश करे वाला रनिया धनिश मिश्रा जी दिल्ली से और यहाँ के गाना सुन ले बानी लिखा था नहीं कि गाना के साथ में गुनगुनाई है बहुत ही मज़ा आया और बहुत बहुत धन्यवाद बटे रुआ के भी शो में जुड़ने और आगे ही मैसेज बटे लिखा था नहीं कि भोजपुरी प्रणाम बा धर्मेंद्र सहानी समस्तीपुर से जुड़ चुकल बानी बहुत बहुत स्वागत बटे रुआ के भी यहाँ इरफान जी जुड़ चुकल बानी दुबई से बहुत बहुत स्वागत बटे लिखा था नहीं नमस्ते नमस्कार सोनी डियर सोनी बहन जी का हाल बा हम तो हर पल मस्त बिंदास और हर पल झकास रहे वाला और आज हमरो एगो गाना के फरमाइश बा ओकर लिंक नीचे भेज देले बानी लेकर दम बिल्कुल गाने के फरमाइश बा लिखा था नहीं कि स्पेशल में डेडिकेट बाटे रुखसाना खातून आयशा खातून सगुफा फिरदौस शिल्पी निशा भारती सुधा भारती हाजरा खातून और रेडियो रिमझिम सुनने वाला सब कही के और आगे लिखा था सोनी डियर सोनी बहन जी का हाल बा और गर्मी में मिजाज नीमन बानो बिल्कुल नीमन बाटे एकदम बढ़िया झकास बाटे हमरो और बहुत बहुत स्वागत बाटे शो में और यहाँ एक और मैसेज बा लिखा था नहीं कि म्यूजिक तो इतना तेज बाजा था भोजपुरी एक्सप्रेस के ऐसा लगा था कि सच में ट्रेन आ गई बिल्कुल ट्रेन आ चुकल भी और अपन अपन सीट पे बैठ के एकदम इंतजार करी लो इन्हें उन्हें जाए के कोशिश ना करें हम लोग ना तो फिर पता चली कि पहले के मैसेज बाटे और कहम कि फिर पहले के मैसेज में हमारे बात के गाना बाज गल और हमारा ना बाजल तो जी जहाँ बाटे वही जे सबर से बैठा रही और आगे यहाँ एक और मैसेज बाटे और मैसेज बाटे लिखा था नहीं कि मैडम जी मैसेज के शामिल कर ली और लाइव शो में लिखा था नहीं कि हैप्पी बर्थडे टू यू डियर लवली सिस्टर एंड मैडम सी मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न ऑफ द डे गॉड ब्लेस यू मैडम सी और हैप्पी बर्थडे टू यू मैसेज करे वाला बानी प्रीति रविदास जी बहुत बहुत स्वागत बाटे और बहुत बहुत धन्यवाद रुआ के भी और आगे यहाँ मनीष पांडे जी बानी लिखा था नहीं कि आज मेरे यार का बर्थडे है गाने की फरमाइश प्ले कर दीजिए बिल्कुल प्ले कर देंगे और लिखा था नहीं गाना और बताएं कि आपके अच्छा लागल कि ना बिल्कुल बढ़िया बाटे गाना और चली रहा और टिकट भी कंफर्म करता नहीं एंजॉय करी अपन गाना के और ये गाना हमरा लवा तो हम सुना था नहीं और रो अभी इंजॉय करी बहुत बहुत धन्यवाद सुमे जुड़े खातिर

90.4 रेडियो रिमझिम सुन रहा बानी और कार्यक्रम भोजपुरी एक्सप्रेस के और अभी गाना सुनते से मनीष पांडे जी के फरमाइश रहे और बहुत बहुत धन्यवाद गाना के फरमाइश करे खातिर हमरा खातिर। और आगे यहाँ अगला टिकट कन्फर्म करेम सासाराम टू दिल्ली से जुड़ल बानी श्री राम जी। चलिए अपन गाना के इन्जॉय करी रेडियो रिमझिम पर और टिकट भी कन्फर्म होता। और अभी कॉल वाला लोग कहाँ बानी रोगा सबे कॉल भी करी और शो से जुड़ी चली इन्जॉय करी अभी गाना श्री राम जी के फरमाइश पर रेडियो रिमझिम पर।

और जे लोग भी वॉइस भेजले बाटे वो लोग से कहे के बाटे ये कि रुआ वॉइस ना भेजी और गाना के फरमाइश बता गाना के नाम लिख के भेज दी, आज हम वॉइस शामिल नहीं कर सकत। तो जिकरा भी गाना सुने के बाद गाना के नाम लिख के भेज दी, साथ में अपन नाम पता जरूर मेंशन करी।

0: बकरी सॉन्ग वेरी नाइस। और गाने को फरमाइश करे वाला बनी श्री राम जी सासाराम टू दिल्ली से लिखा सोनी जी हमारे गाना सुनावे खातिर बहुत बहुत धन्यवाद बटे। और अभी के साथ बड़े मंगला फरमाइश के तरफ और अगला फरमाइश हमारा पास पहुंचल बा कॉल के माध्यम से। तो चलिए बिना देरी के लिए बात कर जाओ के बानी और कहां से। हेलो हेलो
1: जी नमस्कार।
0: जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत बटे रेडियो रिमझिम में।
1: जी भोजपुरिया प्रणाम।
0: जी जी हेरो के भी प्रणाम बटे।
1: रख दिल बनी ना वेट करी 15 मिनट। चली बोली का हाल चाल।
0: बढ़िया बार हुआ बताई कैसन बानी।
1: अरे हम यो के दो दिन तो हरासमेंट हो गेला मुहर्रम भीतर सब बढ़िया से। दो दिन बहुत थकावट हो गेला।
0: तभी आज तीजा है कि तीजा भी बीत गया।
1: आज तीजा सुबह खत्म हो गेला मुझे।
0: अच्छा आज तीजा खत्म हो गेला, अभी 40 बाकी बा।
1: 40 तो हमें के बहुत कम रखा ला।
0: अच्छा कम रखा ला, मतलब सुन ले बानी हम 40 भी होला
1: बोला घरे अपन जन करती बा पूजा पाठ होला। लेकिन 9-10 ज्यादा हमने के फिर हमने के जाय के होला 3-4 किलोमीटर दूर ना नासरीगंज ना बाजार पर ना बाजार पार करके पहलाम पहलाम करे।
0: चली त्योहार बीत गए, तब तो लगन शुरू हो जाए कि लगन 40 के बाद शुरू हुई।
1: हाँ लगन हमने के शुरू हो जी
0: लगन शुरू हो गई।
1: बस मोहरम शुरू
0: चली बढ़िया बा, फिर तरह और काम धंधा के जो प्रेशर बा बढ़ जाए।
1: मैडम जी इतना गर्मी लगत है ना क्या करल जाए, रहो दुनिया से हल बा।
0: तो बताई हमने के दूर थोड़े बानी सब ज्यादा।
1: अरे बाप रे भवनी के तो इतना हालत खराब है।
0: हां अभी वे हाल बटे। तो गाना कौन सुना दी बता दी।
1: गाना सुनाए के हमने के दुलाए गंगा पार में बिके। तोहरे सपनवा में डूबल रही ले तोहार क्रिए, प्यार तुझसे करी ले तोहार क्रिए। सुनाए के रामा जी प्रसाद के
0: जी।
1: आओ जितने रेडियो रेंजिंग सुनने वाले बारे सब कोई के आई जो हमने के धना से सब कुछ सुनम जाए जा सिराज बड़न बोल बड़न ए जो बनी जे हवा खाते ने बहरी और प्रोग्राम चलता है।
0: और क्रिया के कर खाता नहीं रामा जी के
1: वाली ना वहां के बड़ी सुनाई ना अपन हैन वहां के सालियो ले हैन वहां के
0: जरे सुनने का। चलिए ठीक बात है, गाना प्ले कर देले बनी।
1: चलिए ठीक बात,
0: ठीक बहुत बहुत धन्यवाद समय कॉल के लिए।
2: तोहरे सब

0: 90.4 रेडियो रिमझिम सुन रहल बानी और कार्यक्रम भोजपुरिया एक्सप्रेस के और अभी गाना सुनतने से निषाद मास्टर जी के फरमाइश रहे धनाव से फिलहाल बड़े मगला फरमाइश के तरफ उसे पहले यहाँ एक मैसेज पहुँचल बा तो चलिए सुनल जाओ कि का कहे कि चाहदानी आरजे अमन जी।
1: डियर आरजे सुनी जी, 28 जून सिर्फ कैलेंडर की एक तारीख नहीं है, यह उस खूबसूरत आवाज का जन्मदिन है जिसने न जाने कितने लोगों की जिंदगी में मुस्कान, सुकून और खुशियां बांटी है। रेडियो पर बहुत सी आवाजें सुनाई देती हैं, लेकिन कुछ आवाजें ऐसी होती हैं जो सीधे दिल में घर बना लेती हैं। आपकी आवाज उन्हीं में से एक है। जब आप माइक के सामने होती हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई अपना दोस्त, अपना हमसफर हमसे बातें कर रहा हो। आप शायद नहीं जानती हैं कि आपकी एक मुस्कान, एक शायरी, एक गीत और आपका एक हेलो भी किसी के दिन को बेहतर बना सकता है। यही आपकी सबसे बड़ी खूबसूरती है। इस जन्मदिन पर मेरी दुआ है कि जिस तरह आप हर दिन अपने श्रोताओं की जिंदगी में खुशियों के रंग भरती हैं, उसी तरह भगवान आपकी जिंदगी को प्यार, सफलता और सम्मान और अनगिनत खुशियों से भर दे। और अंत में बस इतना कहना चाहूंगा कि तारों को चमकने के लिए आसमान चाहिए, कि तारों को चमकने के लिए आसमान चाहिए, फूलों को महकने के लिए बाग चाहिए, लेकिन हमारी मुस्कुराहट के लिए बस आरजे सोनी जी आपकी प्यारी सी आवाज चाहिए। जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं आरजे सोनी जी, हमेशा खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और यूं ही लाखों दिलों की धड़कन बने रहिए। हैप्पी बर्थडे टू यू। वैसे तो आज भोजपुरिया एक्सप्रेस है, लेकिन आज आपके लिए मेरे दिल से निकली एक छोटी सी भेंट है। मैं चाहता हूँ कि आपके जन्मदिन पर एक ऐसा गीत बजे जो मेरे जज्बात भी कह दे और आपकी मुस्कान भी बढ़ा दे। फिल्म क्या यही प्यार है से है। हैप्पी हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी हैप्पी बर्थडे

0: मेरी हर खुशी। एक बार फिर से दिल से हैप्पी बर्थडे आरजे सोनी जी।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपको आरजे अमन जी, मेरा बर्थडे विश करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिल से। और आपकी तरफ से गाने की फरमाइश है, ऐसे तो भोजपुरिया एक्सप्रेस के कार्यक्रम बाटे और फिर भी हम थोड़ा सा कोशिश कर सकते बनी, पूरा गाना तो ना लेकिन थोड़ा सा प्ले कर सकते नहीं, और उम्मीद बाटे कि रुआ खराब ना लगी। फिलहाल प्ले करता नहीं हम और गाना के एंजॉय करी और हमरा खातिर बा हम तो सुनते बानी। बहुत बहुत धन्यवाद बटे, एक बार फिर से दिल से तहे दिल से धन्यवाद बटे रुआ के।

90.4 रेडियो रिमझिम सुनाल वाणी रुवा सभी और कार्यक्रम बाटे भोजपुर एक्सप्रेस के और अभी भी गाना के फरमाइश के लिए रनिया आरजे अमन सी और एक बार फिर से तहे दिल से रुवा के धन्यवाद बटे और बहुत बहुत धन्यवाद बटे रुवा के की रुवा आज हमारे जन्मदिन के मौका पर जन भी शुभकामनाएं आत्मीय शुभकामना देनी हमरा के दिल से छू गल इसने और अपनापन खातिर एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद बारी अपनापन हमेशा याद रखें रउआ भी और हम भी और भगवान करे कि रउआ भी ऐसे ही खुश रहें स्वस्थ रहें और सफल के सफलता के नया नया ऊंचाई के ऐसे ही छुअत रहें। और यहाँ बड़े मागे तो काफ़ी श्रोता लोग के तरफ से भी हैप्पी बर्थडे के मैसेज बटे तो सभी श्रोता परिवार के भी दिल से आभार बटे बहुत बहुत धन्यवाद बटे और हमारी जन्मदिन के खास बनाए खातिर रउआ सभी के एक बार फिर से तहे दिल से बहुत सारा धन्यवाद बटे और शुक्रिया बाटे रुआ सभी भी खुश रहें स्वस्थ रहें मस्त रहें जहाँ भी बनी और अपन ऊंचाई के अपन सफलता के छुअत रहें। फिलहाल यहाँ बड़े मागे अगला फरमाइश की तरफ और अगला फरमाइश हमारा पास पहुँचल बाटे व्हाट्सएप के माध्यम से और मनीष सुजाग जी बानी फाजिलनगर कुशीनगर उत्तर प्रदेश से तो चली रहो टिकट भी कन्फर्म हो गल बा आवाज़ पहुँचा था अपन गाना की इंजॉय करी रेडियो रिमझिम 90.4 FM पर।

0: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल घोष मोड़ दरगाह रोड गोपालगंज।
1: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
2: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
3: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 6200042403 6200042403।
4: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत बटे रेडियो टिमटिम 90.4 FM में और कार्यक्रम भोजपुरी एक्सप्रेस में। और यहाँ मनीष जाग जी बानी लिखा था नहीं कि हैप्पी बर्थडे सोनी जी, बहुत बहुत धन्यवाद बटे रुआ के भी। और यहाँ और भी सारा मैसेज पर हुआ सभी के बहुत बहुत धन्यवाद बटे। फिलहाल अगला टिकट कन्फर्म करें प्रीति रैदास जी बानी। और यहाँ के सुने के बाद गाना अले मोरे राजा लेके ढोल बाजा देवी की आवाज़ में, तो चली रहा टिकट कन्फर्म हो गए। एंजॉय करिए अपन गाना के रेडियो रिमझिम पर।

0: 90.4 रेडियो रिमझिम सुरल वाणी और कार्यक्रम बाटे भोजपुरिया एक्सप्रेस के और अभी गाना सुनत ने संप्रीति रविदास जी के फरमाइश रहे और या मेंटोस चौरसिया जुड़ल वाणी आदमापुर रघुनाथपुर सिवान बिहार से बहुत बहुत स्वागत बटे एक बार फिर से और लिखा तनी की जन्मदिन के ढेर सारी बधाई बहुत बहुत धन्यवाद बटे रुआ के भी और रुआ तरफ से जोन गाना के फरमाइश बा हमने की प्ले कर सकत अगर गाना के फरमाइश चेंज कर दे तो ज़्यादा अच्छा हुई और यहाँ दिलीप कुमार ठाकुर वाणी लिखा तनी की हैप्पी बर्थडे मैडम जी और जन्मदिन के हार्दिक शुभकामनाएं बटे भगवान से प्रार्थना बा और प्रार्थना करें कि आपके जीवन में हमेशा खुशियाँ बन रहे बहुत बहुत धन्यवाद बटे रुआ के भी और आगे यहाँ और मैसेज बटे लिखा तनी कि सोनी जी हमारे पूरा परिवार के तरफ से रुआ के जन्मदिन के हार्दिक शुभकामनाएं बटे हैप्पी बर्थडे टू यू और मैसेज करे वाला बानी श्री राम जी सासाराम टू दिल्ली से बहुत बहुत धन्यवाद बटे और यहाँ जम्मू से जुड़ चुकल बानी महादेव जी लिखा तनी कि सॉरी महादेव जी ना है नाम का बाटे राउर नाम मेंशन करी सुनील जी बानी और बहुत बहुत धन्यवाद बटे शो में जुड़े खातिर लिखा तनी कि हैप्पी बर्थडे सोनी जी महादेव ब्लेस यू हो बहुत बहुत धन्यवाद बटे रुआ के भी और अगला फरमाइश की तरफ बढ़े मैं और अगला फरमाइश से पहले एक और यहाँ मैसेज बा मैडम जी हमरो मैसेज बटे बिल्कुल और सब कोई कि हम एक ही बार बोला तनी बहुत बहुत धन्यवाद बटे सब कोई हैप्पी बर्थडे बोले बटे और यहाँ दिनेश मिश्रा जी बानी लिखा तनी कि हैप्पी बर्थडे टू यू सोनी जी और आज राहुल जन्मदिन रहे और हमके पता ना रहे पता तो यहाँ कोई के भी ना रहे कोई कोई के पता रहे जे कि हमके पहले से जाना तटे और अगला फरमाइश जौन हमरा पास पहुँचल बाटे वो बाटे दिलीप राम जी जुड़ल बानी अपना गांव सिहोरनवा से तो चली राहुल टिकट भी कंफर्म होता अपन गाने के एंजॉय करी रेडियो रिमझिम 90.4 FM पर
1: जब के कहू कि कौनो चीज बेकार हो गेला तो लोग साइड से मजा लेवेला सेम एगो मेहरारू के साथ सही भूल बा कह तरी कैसे

प्रीति जी कहते नहीं कि मैडम जी बता दी सभी के कि आज सबसे पहले रउआ के हम विश कहनी है, और बिल्कुल सबसे पहले विश रउआ कहनी है। और प्रीति रेदास जी बानी भी ले लकड़ी दरगाह डिस्ट्रिक्ट सिवान से बहुत बहुत धन्यवाद बटे रउआ के।

0: 90.4 रेडियो रिमझिम सुन रहा अलवानी और कार्यक्रम बाटे भोजपुरी एक्सप्रेस का। और अभी हमने के गाना सुनत रहे, सन गाना के फरमाइश पहुंचा रहे सिनोरवा से। और यहाँ मैसेज पहुंच गया लिखा था नहीं कि शुक्रिया जी, और पूरा चला दी तो पूरा हम नहीं कि चला सकत, कहे कि गाना काफ़ी लंबा बाटे और मैसेज करे वाला बने दिलीप राम से। और अगला टिकट कन्फर्म करे कॉल के माध्यम से, कॉल पहुँचल बा तो चलिए बात कर जाओ, देखल जाओ के बानी और कहाँ से। हेलो,
1: हाँ नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत बाटे भोजपुरी एक्सप्रेस में।
1: थैंक यू मैम, हैप्पी बर्थडे टू यू।
0: बहुत बहुत धन्यवाद। करिश्मा बात करते नहीं का
1: नाम
0: तो आवाज़ तो इसे ही लगा था, नाम बताइए अपन। हेलो हेलो
1: हेलो
0: जी, अभी राउर आवाज कटे लगल, कहाँ रहनी अभी? अभी जहाँ रही पहले वही जे चल जाए। हेलो,
1: हाँ हेलो,
0: हाँ अब बोलिए, अब आवाज अच्छा होता।
1: हम प्रिया कुमारी
0: सिवान से,
1: सिंहोरवा
0: से। अच्छा जी, क्या हाल चल बा?
1: ठीक
0: रात शो में पहला बार कॉल के लिए बनी।

0: हजम कहे कि पसंद है कहीं गोला
1: ना
0: ना चलिए समय कम बा बता दी कौन गाना प्ले करी हम जल्दी से
1: ना हिंदी सॉन्ग बजा दे बट
0: हिंदी नहीं की बजा सकत
1: अच्छा भोजपुरी
0: जी
1: ठीक
0: एक आवाज में बता बजा दी सबके आवाज में बाटे बताई
1: भोजपुरी सॉन्ग ना सुने नहीं
0: वाला लो आसपास में केहू बा पूछ सकत नहीं
1: ना हम अकेले बने
0: अकेले बने
1: हाँ
0: फिर भी कुछ तो सुन ले होगा ना
1: ना हम बस पूरे सॉन्ग ना सुने नहीं और सॉन्ग याद नहीं
0: अच्छा तो दूसरे गाने के फरमाइश कर ली
1: ना बर्डिंग के गान सॉन्ग बजाए
0: चलिए तो गाना प्ले कर दे बनी सुन ली ठीक बा
1: ठीक
0: बहुत बहुत धन्यवाद सुमे कॉल के लिए

0: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल सासामूसा गोपालगंज, शाखा राजापुर बाजार गोपालगंज। CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
1: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
0: तो देर मत कीजिए,
1: सेंट जॉन स्कूल सासामूसा गोपालगंज, कॉल अस 9939721308।
2: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड गोपालगंज।
0: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS MS, एक्स रेसिडेंट KGMU लखनऊ।
2: और महिलाओं के लिए

0: डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी,
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करे।
1: पता: कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करे 9006978856 या 6203139564।
2: अरे ए चाची, जब आँख से साफ नहीं खेलो को तो रोड पर लड़खड़ा के कहे चलता नहीं, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
3: अरे ए बबुओ, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुत डर लगेला। सुनले बानी की आँख में सुई लगेला, काफी दर्द होत होइनु।
2: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू। अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आगल बनी। यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़ फाड़ कइले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करत नी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आँख में कोनो तरह के दर्द भी ना हुई और ऑपरेशन भी हो जाए।
4: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुपर सिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से, साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर MA अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड, यमहा शोरूम के सामने, रालसन होटल के पश्चिम, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9903369015 पे।
5: एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत बटे रेडियो 90.4 FM में रुआ सभी के अपन कार्यक्रम भोजपुरी एक्सप्रेस में, और यहाँ 3:54 हो चुके हैं स्टूडियो घड़ी में, और बड़े मागे यहाँ व्हाट्सएप मैसेज की तरफ तो बहुत सारा मैसेज बैठे मैडम जी, मुँह बानी बिल्कुल रुआ सभी बानी और सबके शामिल करता नहीं। और फिलहाल यहाँ एक और मैसेज बैठे लिखा था नहीं कि शत्रुधन गुप्ता जुड़ चुकल बनी, बहुत बहुत स्वागत बटे रुआ के भाई, फरमाइश बात बिल्कुल प्ले करे के कोशिश बा, थोड़ा वेट करी। और आगे यहाँ एक और मैसेज भी लिखा था नहीं, हैप्पी बर्थडे मैडम जी, और मैसेज करे वाला बनी अयोध्या से धर्मेंद्र कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद बटे। और यहाँ लालगंज से MD नौसाद जी चुचुकल बनी, बहुत बहुत स्वागत बटे रुआ के भाई, और लिखा था नहीं हैप्पी बर्थडे मैडम जी, बहुत बहुत धन्यवाद बटे। और बजाजी रोड लालगंज से जुड़ल बानी और अभिनंदन टेलर के सभी लोग बानी, बहुत बहुत धन्यवाद बटे रुआ सभी के। एक और यहाँ मैसेज भी लिखा था नहीं कि हमरों के शामिल कर ली भोजपुरी एक्सप्रेस में, बिल्कुल शामिल कर ले बानी। और लिखा था नहीं कि रुआ के जन्मदिन के बहुत बहुत धन्यवाद बधाई बटे, और आप जी ही 1000 साल, बहुत बहुत धन्यवाद बटे रुआ के भी। और मैसेज करे वाला बानी विनोद जी मठनिया से, बहुत बहुत धन्यवाद बटे रुआ के भी, फरमाइश बात प्ले करे के पूरा कोशिश बा, थोड़ा वेट करी। फिलहाल यहाँ बढ़े मागे और मैसेज बटे लिखा था नहीं कि मैडम जी ट्रेन वहाँ छूट जाएगा, बिल्कुल ना छूटी, दीपक दिलदार के आवाज़ में गाना सुने के बटे। और मैसेज करे वाल बानी निशुकांत राज जी, बहुत बहुत धन्यवाद बटे, फजफेरा से जुड़ल बानी, और बिल्कुल ट्रेन ना छूटी और गाना के फरमाइश बात प्ले करे के पूरा कोशिश बा। और यहाँ अगला फरमाइश हम प्ले करें मदद इरफान जी बानी फ्रॉम दुबई से, और यहाँ के सुने के बाद गाना लिखा था नहीं कि सोनी बहन जी छोटा मोटा पार्टी तब बना तटे का ख्याल बरा और बताएं जरूर, और ना होके तो कंटीन के जलेबी भिजवा दी पार्सल, हमरा के इंतजार रही बिल्कुल। और छोट मोट पार्टी का अगर हुआ आए नहीं जी तो ले लें पार्टी, फिलहाल तो हम दुबई अगर भेजा था नहीं कंटीन के जलेबी, जाते जाते पता चली कि ख़राब हो गए, तो उससे अच्छा बात कि इंतजार करते हैं तो थोड़ा और इंतजार कर ली, जब घर आए ताकि पार्टी ले लें। बहुत बहुत धन्यवाद बटे और गाने के फरमाइश बटे, तो चली रहा टिकट कंफर्म हो गल, एंजॉय करी गाना के, तू दिल्ली के रानी हम बिहार के राजा।

पहुंच गया लिखा था नहीं तहे दिल से शुक्रिया पार्टी और सोनी बहन जी, बिल्कुल पटना में हम डायरेक्ट फ्लाइट से पटने आओत मनी, बिल्कुल इंतजार बटे, बहुत बहुत धन्यवाद बटे शो में जुड़े खातिर। और यहाँ मैसेज पर लिखा था नहीं कि हमारे गनवा ना बाजी क्या, बिल्कुल बाजी। एक और यहाँ मैसेज पर लिखा था नहीं कि हैप्पी बर्थडे टू यू सोनी जी, और दिल से बहुत बहुत धन्यवाद बटे संजय यदुवंशी जी जुड़ल बानी, और बहुत बहुत स्वागत बटे सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से बानी। फरमाइश बात है, बिल्कुल प्ले करें, थोड़ा वेट करी और सुनत रही रेडियो रंसिम के।

0: 94.4 रेडियो रिमझिम सुन रहा बानी और कार्यक्रम भोजपुरी एक्सप्रेस के और अभी गाना सुनत रहे इरफान जी के फरमाइश रहे और अगला फरमाइश हम लेम कॉल के माध्यम से कॉल पहुंचल बा तो चलिए बात कर जाओ के बानी कहाँ से और फरमाइश का बा। हेलो
1: अस्सलाम वालेकुम। नमस्कार
0: जी। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत स्वागत बाटे।
1: हाँ हम जावेद आलम ग्राम धनखड़ से बोलते नहीं मैडम
0: जी। क्या हाल चाल बा?
1: सब बढ़िया बा। रुगल करसी बात बा कृपा बा। काफी समय बाद कार्यक्रम में जुड़ल बानी।
0: जी जी वो तो दिखा ताटे कि काफी समय बाद आइल बानी।
1: का करे मैम आजकल समय भी नहीं मिलत और आदमी के पास टाइम भी नहीं रहत ला कि बहुत पुराना हम लिसनर हैं ये कार्यक्रम के। लेकिन आज बेहद खुशी बा ये कार्यक्रम में जुड़ के रउआ से बात करके। काहे कि हमरा दिल में हमेशा ही खुशी रहेला कि रेडियो रिमझिम दिन पे दिन प्रगति करे और अपना गोपालगंज धड़कन और रेडियो रिमझिम के ऊंची आवाज में लेके चले। बहुत अच्छा लगेला ये कार्यक्रम में जुड़ला से भी। बड़ा खुशी होला कि अपना गोपालगंज जिला में रेडियो रिमझिम बा। आज तो मैडम देखल जाओ कि हर कार्यक्रम चाहल जाते इंडिया में रह के चाहे देश विदेश के कोनो भी कोना में रह के आदमी सुन सकेला। और दिल से स्वागत बा हम करे के चाहत हनी कृपा शंकर श्रीवास्तव जन चाचा और बाप माँ के समान बानी डायरेक्टर सर वहाँ के। और हमें गाना सुने और सुनावे के चाहत हनी। मिले खाति दिल बेकरार काहे होला। मिले खाति दिल बेकरार काहे होला। प्यार में लोगवा बीमार काहे होला। का चकी मैम बहुत पुराना ही गाना है और जहाँ तक हमरा सुन के भी अच्छा लगी है। जितना कार्यक्रम में जुड़े लालो अपना इंडिया के चाहे विदेश के कोनो कोना में रखे सबके हम सुनावे और डेडिकेट करे के चाहत गाना पसंद आई हमारा तरफ से।
0: जी जी।
1: और आज के लिए अनुमति और इजाजत लेवे के चाहत रउआ से। फिर कभी समय मिली तो कार्यक्रम में जरूर हम जुड़े।
0: बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद बटे शो में कॉल के नी और जब भी समय मिले जरूर जुड़ी।
1: जी मैम। जी मैम। नमस्कार।
0: नमस्कार।

90.4 रेडियो रिमझिम सुनरालवानी कार्यक्रम भोजपुरी एक्सप्रेस का, और अभी काफी खूबसूरत गाने के फरमाइश रहे निरहुआ रिक्शा वाला फिल्म से, और जावेद आलम जी के फरमाइश रहे। फिलहाल बड़े में आगे और अगला फरमाइश की तरफ, उससे पहले यहाँ मैसेज बैठे लिखा था नहीं कि सुपर सॉन्ग वेरी नाइस भोजपुरी आवाज में, और मैसेज करे वाला बानी नाम बटे यहाँ के निशा भारती जी, बहुत बहुत स्वागत बटे शो में, वजलिया से जुड़ल बानी और फरमाइश बात बिल्कुल प्ले करे के पूरा कोशिश बैक। और यहाँ मैसेज बै लिखा था नहीं कि प्यार में लोगवा बीमार पिटैला भी ना होला, और इरफान जी बानी, और यहाँ एक और मैसेज बै लिखा था नहीं कि जन्मदिन के बहुत बहुत बधाई बटे सोने जी, इरशाद मास्टर जी बानी धनाव से बहुत बहुत धन्यवाद बटे। यहाँ एक और मैसेज बै लिखा था नहीं कि सोनी मैडम जी भोजपुरी एक्सप्रेस प्रोग्राम में हमके भी शामिल कर ली, और आपके बहुत बहुत धन्यवाद हुई प्रोग्राम हमरा के बहुत ही बढ़िया लागत बटे। और मैसेज करे वाला वानी गुरु नानक पूरा बटीटा पंजाब से किशोर सबलनिया जी, और पूरा फैमिली के साथ जुड़ा तनी इनका साथे बानी सवित्री सबलनिया, सुमन सबलनिया, बेटी अंशु के साथ जुड़ल बनी, बहुत बहुत धन्यवाद बटे रउआ सबे के। और यहाँ एक और मैसेज बटे लिखा तनी, हेलो जी हैप्पी बर्थडे मैम, का हाल बा? तो बिल्कुल बढ़िया बा रउआ, बताई कैसन बानी और नाम जरूर बताई के बानी और कहाँ से फरमाइश बात, बिल्कुल प्ले करे के कोशिश बाटे। और यहाँ अनिल जी बानी लिखा तनी कि लागत है कि हम दूसरा प्लेटफॉर्म पर बैठ गए बानी, बिल्कुल ना दूसरा प्लेटफॉर्म पर नहीं कि थोड़ा वेट करी और रउआ पास भी हम पहुँचा तनी। फिलहाल यहाँ अगला टिकट कन्फर्म करें, हमारा पास गाना के फरमाइश पहुँचल बा सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से संजय यदवंशी जी बानी, और यहाँ के सुने के बाद गाना तो चली रहा और टिकट भी कंफर्म होता है। एंजॉय करिए अपन गाना के रेडियो रिमझिम 90.4 FM पर।

90.4 रेडियो रंजन सुनराल बानी और कार्यक्रम बटे भोजपुरी एक्सप्रेस के। और अभी हमने के गाना सुनते हैं, गाने का फरमाइश पहुंचा रहे संजय यदुवंशी जी के फरमाइश रहे। और अभी यहाँ के उत्तर प्रदेश के रहे वाला बानी, हिमाचल के सोलन से जुड़ल बानी। और बहुत बहुत धन्यवाद बटे शो में जुड़े खातिर। और अगला फरमाइश की तरफ बढ़े, और अगला फरमाइश जौन बाटे हमरा पास पहुँचल बाटे और गाने के फरमाइश के लिए बनी अनिल जी छोटपुर से। यहाँ के सुने के बाद गाना तो चली राउ, टिकट भी कंफर्म होता है। और गाना सुने के बाद आई हुदादा सजा पौनी प्यार के लिए कहते, इंजॉय करिए अपन गाना के रेडियो रिमझिम पर।

और यह मैसेज वाला लिखा था कि प्रेम में तड़पत आदमी भला का कर सकेला। बहुत बहुत धन्यवाद गाना बजाए खातिर अनिल जीवानी चोटपुर से, बहुत बहुत धन्यवाद रहुआ के भी शो में जुड़े खातिर। फिलहाल एंजॉय करी काफी खूबसूरत गाने का फरमाइश बस सैड सॉन्ग के, और सुनत रही रेडियो रिमझिम 90.4 FM के। और यह एक और मैसेज भी लिखा था नहीं, काफी प्यारा सैड सॉन्ग, माय फेवरेट सॉन्ग। और मैसेज करे वाला बानी निशा भारती सुकुलवा से, बहुत बहुत धन्यवाद बटे रुआ के भी शो में जुड़े खाते।

0: घर बन रहा हो तो सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं, टाइल्स और फिटिंग्स का चुनाव भी होना चाहिए शानदार।
1: इसीलिए गोपालगंज जिले के लोगों की पहली पसंद बन चुका है बीके टाइल्स। बीके टाइल्स, यहाँ मिलेंगे सभी प्रकार के डिजाइनर टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, बेसिन, कॉमोड, बाथ फिटिंग्स और घर सजाने के कई आधुनिक प्रोडक्ट,
2: वो भी किफायती दामों पर। और खास बात, गोपालगंज जिले में हमारी 4 सुविधाजनक शाखाएं,
1: अरार मोड़ एसपी कोठी के पास गोपालगंज, दूसरा ब्रांच भटवा मोड़ के पास कुचाई कोट,
2: तीसरा ब्रांच इस्लामिया कॉलेज के पास मेन रोड थावे मीरगंज और चौथा ब्रांच बंतरिया मोड़ भोरे।
1: और अब सिवान जिले में भी हमारी 2 शाखाएं उपलब्ध हैं, सिवान ब्रांच कुशवाहा चौक हकाम बाईपास सिवान
2: और मैरवा ब्रांच बबनौली चौक मैरवा सिवान।
1: तो आज ही अपने सबसे नजदीकी बीके टाइल्स ब्रांच पर आए और करे बेहतरीन खरीदारी।
2: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें गोपालगंज ब्रांच में 8460571406, मीरगंज ब्रांच में 9693101611,
1: कुचाई कोट ब्रांच में 9693101602, भोरे ब्रांच में 8207856404,
2: सिवान ब्रांच में 9942071405, मैरवा ब्रांच में 8207856403।
3: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज, जैसे
4: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
3: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
5: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता
3: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
5: जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
3: और 9097160602।
6: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सीरिया रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
7: ब्रेक के बाद एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत बटे रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में और भोजपुरी एक्सप्रेस के कार्यक्रम में। फिलहाल यहाँ व्हाट्सएप मैसेज की तरफ बढ़े, हम तक काफ़ी सारा मैसेज वाली कहता नहीं कि हेलो जी, और नाम जरूर मेंशन करी के वानी कहाँ से, और ज्योति जी जुड़ल वानी लिखा था नहीं कि का हलवा बिल्कुल बढ़िया। बहुत बहुत स्वागत बटे ज्योति जी, और नाम पता जरूर मेंशन करी, हम बार बार एक ही बात बोले नहीं और नाम पता रुआ से भी मेंशन ना करे नहीं। और यहाँ एक और मैसेज बटे लिखा था नहीं कि हैप्पी बर्थडे मैडम जी, आप जियो हजार साल। और विनोद कुमार चौहान वाली विलेज कहीं से बहुत बहुत स्वागत बटे शो में और बने रही साथ में। और यहाँ मैसेज बटे सावन शर्मा जी जुड़ चुकल वानी, बहुत बहुत स्वागत बटे, फरमाइश बात है, बिल्कुल प्ले करे के कोशिश बटे। और आगे यहाँ एक और मैसेज बटे लिखा था नहीं कि हम लोग टिकटवा कन्फर्म कर दी प्लीज, और गाना सुने के बाद हमने तुमको दिल दे दिया। तो हम हिंदी गाना का फरमाइश नहीं कि पूरा कर सकते, गाना सुने के बाद तो भोजपुरी गाना का फरमाइश करी और अपना नाम पता जरूर मेंशन करी के बानी और कहाँ से। फिलहाल यहाँ अगला टिकट कंफर्म करे में हमारा पास कॉल पहुँचल बात, चलिए बोले बात कर जाओ के बानी कहाँ से और गाने का फरमाइश का बा। हेलो
8: हेलो
7: जी, बहुत बहुत स्वागत बैठे रेडियो रिमझिम में।
8: थैंक यू मैम।
7: जी नाम बता दी। कहाँ से बात करते नहीं नेहा जी? जी कैसन बानी, का हाल चल रहा?
8: हेलो
7: जी, कहते नहीं का हाल चल रहा?
8: ठीक बापन बताई का होता
7: रोज सुबह से बात होता टे रोज सुबह के फरमाइश प्ले करते नहीं का करें।
8: गाना सुने बचे
7: जी, बिल्कुल बता दी कौन गाना सुनवा दे रुआ के आज?
8: मेरी भतीजी बोलेगी, बोलिए।
7: बिल्कुल बताएं।
9: हेलो।
7: हाँ हेलो।
9: नमस्ते।
7: नमस्ते। नाम का बार और बता दी।
9: कैसन बानी।
7: हम बिल्कुल बढ़िया बानी। रोवा बताएं कैसन बानी।
9: ठीक बानी।
7: जी नाम बता दी अपन का नाम पड़ी राहुल। तन्या कुमारी। तो कौन गाना सुने के बाद तन्या जी रोवा। तो भोजपुरी में कौन गाना सुने के बाद बता दी।
9: कौन सिंह के।
7: कौन सिंह के गाना के नाम बताएं।
8: कोई भी सुना दीजिए।
7: कौन सिंह के कोई भी। हेलो।
8: हेलो।
7: हाँ बोलते नहीं। पवन सिंह के कोई भी गाना।
8: हाँ सुना दीजिए। पवन सिंह का कोई भी गाना।
7: अहो राजा सुनवा दी।
8: सुना दीजिए।
7: चलिए तो एंजॉय करी पवन सिंह की आवाज में। अहो राजा।
8: ठीक है।
7: ठीक बहुत बहुत धन्यवाद।

90.4 रेडियो रिमझिम सुन रहा हलवानी और कार्यक्रम भोजपुरी एक्सप्रेस के और अभी गाना सुनत ने संगाने के फरमाइश कॉल के माध्यम से रहे और यहाँ बड़े मागे अगला टिकट कंफर्म करें और विराज जुड़ल बनी यहाँ के सुने को गाना ओढ़नी के रंग पियल तो चलिए राव टिकट भी कंफर्म होता है एंजॉय करिए अपन गाना के रेडियो रिमझिम।

90.4 रेडियो रिमझिम सुन रहा हलवानी और कार्यक्रम भोजपुरिया एक्सप्रेस का। और अभी गाना सुनत रहे विराज जी के फरमाइश रहे और बढ़े मागे अगला टिकट कंफर्म करें अगला गाना के फरमाइश जोन हमरा पास बा तमकोई रोड कुशीनगर उत्तर प्रदेश से पहुंचल बा रंजन कुमार जी का। और यहाँ के सुने के बाद गाना कोना देवता के गढ़ल सवारल हो। तो चलिए रॉयल टिकट भी कन्फर्म हो गल बा आवाज पहुंचाता था अपन गाने के एंजॉय करी।

रेडियो रिमझिम सुन रहल बानी और कार्यक्रम बाटे भोजपुरी एक्सप्रेस के और अभी गाना सुनत रहे सर रंजन कुमार जी के फरमाइश रहे तमकुही रोड कृष्णनगर उत्तर प्रदेश से और यहाँ के तरफ से मैसेज पहुँच गल बाली खतनी की धन्यवाद एक और यहाँ मैसेज बाली खतनी की नाइस सॉन्ग मैडम जी धर्मेंद्र कुमार जी बानी और आगे यहाँ मैसेज बाटे लिखा तनी कि गाना खास करके रुआ खाती रहला और मनीष पांडे जी बानी एक और यहाँ मैसेज बाटे और काफ़ी दिन बाद शो में जुड़ल बनी निशा भारती जी बानी सुकुलवा से और यहाँ के सुनने के बाद गाना तो थोड़ा और वेट करी राहुल टिकट भी कंफर्म करें फिलहाल यहाँ अगला टिकट हम कंफर्म करें हमारा पास गाने के फरमाइश पहुँचल बा और ज्योति जी बानी यहाँ के सुने के बाद गाना तो चली राहुल टिकट भी कन्फर्म हो गल बा अपन गाने के एंजॉय करी और सुनत रहे रेडियो रिमझिम 90.4 FM के

और ये इरफान जी ने लिखा था निकी सुपर सॉन्ग, एक और यहाँ मैसेज बैक मैडम जी गौरी गाना सुनवा दी। बिल्कुल ना, अभी सिंगल गाना ही नहीं के प्ले हो पाओ, काफी सारा फरमाइश बात और दूसरा गाना कैसे प्ले कर दिया। और मैसेज करे वाला बानी नाम भाई के विराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद बेटे शो में जुड़े खातिर और कल जुड़े योर वॉइस योर चॉइस में। कोशिश करें कि कल राहुल गाने के फरमाइश जरूर प्ले करें।

0: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
1: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
0: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
1: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
0: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
0: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
1: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902।
2: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है।
1: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
0: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
1: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय 10:00 से 2:00 PM।
0: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
3: ठक ठक।
4: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
5: अच्छा मिला ही नहीं।
4: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
6: जी हाँ, कमल श्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
4: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
6: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
7: ब्रेक के बाद एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत बटे रेडियो रिमझिम 90.4 FM में सभी का अपन कार्यक्रम भोजपुरी एक्सप्रेस में। और यहाँ बिना देरी के लिए अगला फरमाइश की तरफ बढ़े, और अगला फरमाइश हमरा पास बा निशा भारती जी जुड़ल बनी और यहाँ के उजलिया से। तो चली राव टिकट कंफर्म करते नहीं, आवाज़ पहुँचाता तो अपन गाने के एंजॉय करिए और सुनत रही रेडियो रिमझिम 90.4 FM के।

0: 90.4 रेडियो रंजन सुन रहा हलवानी और कार्यक्रम बटे भोजपुरी एक्सप्रेस के और अभी गाना सुनत ने सन निशा भारती जी की फरमाइश रहे फिलहाल बड़े मांगे और यहाँ कॉल पहुँचल बात अगला टिकट कॉल के माध्यम से बात कर जाओ के वानी और कहाँ से हेलो
1: हेलो
0: जी बहुत बहुत स्वागत बटे भोजपुरी एक्सप्रेस में
1: जी मैम नमस्कार
0: जी नमस्कार
1: हम गाना सुनने का चाहते नहीं
0: जी बिल्कुल गाना सुनाए नाम बता दी पहले और कहाँ से वानी
1: हमार आवाज अली ग्राम धनखर से बोला था नहीं
0: जी तो कौन गाना सुना दी रहो के बताई आज
1: आज हम गाना सुनने के और सुनावे के चाहता नहीं अफसर भैया के सोनू भैया के ऑल रेडियो रिज्यूम टीम के और काफी समय बाद कार्यक्रम में जुड़ी ले कभी टाइम मिला ना जुड़ी ले लेकिन आज राहुल कार्यक्रम सुन के बहुत खुशी भइल हते कार्यक्रम में आज हम जुड़ल बानी
0: अच्छा अच्छा
1: बड़ा अच्छा से चलावत ने कार्यक्रम के हम दिल से स्वागत करे के चाहत हैं
0: जी बहुत बहुत धन्यवाद बटे रोगा के भी
1: जी जी और गाना थोड़ा सा हम गुनगुनाए के चाहत हैं
0: बिल्कुल
1: प्यार नहीं बुझेला सॉरी गाना हम दूसर सुनने के चाहते हैं बनला के दस गो साथी बिगड़ला के कोई ना आपन बनैब कैसे कोई तोहार होई ना
0: ये गाना सुनने के बाद
1: सबके डेडिकेट करे के चाहत नहीं जहाँ तक अच्छा लगी तो थोड़ा बहुत हमारे दोस्त और रेडियो के यही साथ देला मैसेज थोड़ा बहुत करके डेडिकेट करके हम सुने के चाहत नहीं
0: अच्छा
1: जी बहुत बहुत शुक्रिया बार हुआ कॉल उठानी बात भाई फिर ये कार्यक्रम में जुड़े जी मैम नमस्कार
0: नमस्कार गाना प्ले कर दिल बनी एंजॉय करी

काफी बढ़िया गाना के फरमाइश पहुंचा रहे कॉल के माध्यम से, और अभी गाना सुनत नहीं आसान और रोवा सभी सुन रहा बनी रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम के। और यहाँ मैसेज बैठे लिखा तनी कि सुपर लाजवाब सॉन्ग निशा भारती जी, और सुन के मन मस्त हो गए। और मैसेज करे वाला बानी मोहम्मद इरफान जी दुबई से, और यहाँ निशा भारती जी की तरफ से भी मैसेज आगल बा लिखा तनी कि थैंक यू मैम दिल से गाना सुनाया खातिर। यहाँ रंजीत कुमार जुड़ चुकल बानी अम्बाला कटिया हरियाणा से, बहुत बहुत स्वागत बटे शो में। और शिल्पी राज की आवाज़ में गाना सुनने के बाद थोड़ा इंतजार करिए, और आगे यहाँ एक और मैसेज बटे कि हमारा दूसरा गाना बजा दे, बिल्कुल दूसरा गाना ना बजाए, कहे कि पहले गाना अभी क्योंकि नहीं क्या पूरा भेल। और फिलहाल यहाँ अगला टिकट कन्फर्म करें पाजी जुड़ल बनी यूपी 54 से, तो चली रहा और टिकट भी कन्फर्म होता, आवाज़ पहुँचाता, अपन गाने के इन्जॉय करिए और सुनत नहीं रेडियो रिमझिम के, भगवान हमके कहे न ओढ़निया बना ले तुहार तो।

90.4 रेडियो रंजन सुन रहा बानी और कार्यक्रम बटे भोजपुरी एक्सप्रेस के और अभी गाना सुनत नहीं सम पाजी यूपी चौहान से रनिया और यहाँ की तरफ से गाना के फरमाइश रहे और गाना यहाँ के सुन ले बानी बढ़े मागे यहाँ मैसेज बटे निशा भारती जी बानी लिखा तनी कि जाते जाते एक बार फिर से इरफान जी के बोल दें बाय बाय और झकास सॉन्ग और बाय बाय मैडम जी बहुत बहुत धन्यवाद रोगा के भी शो में जुड़े खातिर और अगला टिकट हम कन्फर्म करें हमारे पास गाना के फरमाइश पहुँचल बटे अगला और मनीर आलम जी बानी विनोद मठिनिया से तो चली रहा टिकट भी कंफर्म होता आवाज़ पहुंचा था अपन गाना के एंजॉय करी रेडियो रिमझिम 90.4 FM पर।

0: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
2: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
3: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
4: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
1: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 9493045651 या 9707065575।
5: अरे, स्टीयरिंग हिल क्यों रहा है और ये टायर जल्दी घिस क्यों रहे हैं?
1: अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा तो समझ जाइए, टायर को चाहिए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग।
0: और इसके लिए जिले में भरोसे का एक ही नाम है, मिश्रा टायर्स, अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग।
1: यहाँ होता है कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, 3D अलाइनमेंट, डिजिटल बैलेंसिंग, सब कुछ आधुनिक मशीनों से।
0: साथ ही सभी कंपनी के टायर ट्यूब बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध हैं।
1: एक बार सेवा का मौका जरूर दें, विजिट करें मिश्रा टायर्स कंप्यूटराइज्ड अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, शिव मंदिर पोखरा के सामने, NH 27 बंजारी, गोपालगंज।
0: रोड सपोर्ट या जानकारी के लिए कॉल करें 8825214946।
6: ब्रेक के बाद एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत बटे रेडियो रिमझिम 90.4 FM में और वस्ते पे का अपन कार्यक्रम भोजपुरी एक्सप्रेस में। और मैसेज बटे लिखा था नहीं कि स्पेशल में चाय और बिस्कुट हमारा तरफ से सोनी जी, और सोनी बहन जी बर्थडे पार्टी वाला जिलेबी कब तक भेजा था नहीं, और ओकरे हिसाब से रात के खाना खाएं। तो इतना जल्दी तो दुबई में ना चल जी, जलेबी अगर पार्सल भी कर तनी तो आज तो बिल्कुल नहीं कि भेजा, जहिया आए तहिया हमारा से ले लें। जलेबी पार्टी बोलें तो जलेबी पार्टी, और कुछ और के पार्टी चाहिए खाना वाना, कहीं और रेस्टोरेंट जाए कोई तो भी बोलें हम जरूर दें पार्टी फिलहाल, लेकिन जलेबी हम भिजवा नहीं की सकत पार्सल। और आगे यहाँ मैसेज बाटे लिखा था नहीं कि हमरो गाना बजा दे, बिल्कुल और भी गाना बजाएं, थोड़ा वेट करी और यहाँ अगला टिकट कंफर्म करें हम गाना के फरमाइश पहुँचल बाटे। दीपक दिलदार के आवाज़ में गाना के फरमाइश बा, और गाना के फरमाइश करे वाला बानी नाम बाटे यहाँ के

90.4 रेडियो रिमझिम सुनरालवानी और कार्यक्रम बटे भोजपुरी एक्सप्रेस के और अभी गाना सुना चाहिए सन गाने के फरमाइश पहुंचे रहे हमरा पास निशुकांत राय जी का और बढ़े आगे अगला टिकट कंफर्म करें मनोज कुमार जी जुड़ल बनी और यहाँ के सुने के बाद गाना सिवान से बानी काला चश्मा लगा लीजिए नीलकमल के आवाज में तो चली रहा टिकट भी कन्फर्म हो गई आवाज पूछा

और यहाँ धनेश मिश्रा जी की तरफ से मैसेज में लिखा था नी की सोनी मैम जी है ना पार्टी देवे नहीं है ना लेवे नहीं बिल्कुल ना हम कहू के खाएम ना खियाम बात बराबर रही। बहुत ही बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश जी शो में जुड़े खातिर।

और अभी गाना सुना था सामने के मनोज जी के फरमाइश बटे और यहाँ काफी सारा मैसेज बटे और सबके कहना बाकी हमारे और यहाँ मैसेज बटे और लिखा था अनिल जी के लिए जलेबी ली और मांगा तनी तब फॉरवर्ड कर दी और अनिल जी के तरफ से जलेबी पहुंच चुकल बा तो वहाँ के ही जलेबी ना चाहिए, वहाँ के कंटीन के जलेबी चाहिए और कंटीन के जलेबी हमने कह जी के गोपालगंज के फेमस हटे। और आगे यहाँ मुस्तफा जी बानी बिल्कुल अगला टिकट राउल कंफर्म करें और जाते जाते राउल टिकट कंफर्म करके जाए और यहाँ मैसेज कर दें कि आज के सो एकदम से मिजाज हरियर हो गए सोनी जी। और मैसेज करे वाला बानी इरफान जी फ्रॉम दुबई से बहुत बहुत धन्यवाद बटे और यहाँ और भी सारा मैसेज बा और सब कोई की तरफ से मैसेज बटे हैप्पी बर्थडे के एक बार फिर से हुआ सभी के दिल से धन्यवाद बटे और इतना प्यार और सपोर्ट बनाए खातिर और जेकर भी गाना आज फरमाइश प्ले नहीं कर पहले वो लोग हमरा के माफ करे और कोशिश रही कि अगला संडे हम रुवा सभी के गाने के फरमाइश जौन बा फिर से प्ले करें। फिलहाल जाते जाते यहाँ मुस्तफा जीवानी सऊदी से और यहाँ की तरफ से गाने के फरमाइश बात चली रहा और टिकट कंफर्म करके जाते नहीं इंजॉय करिए अपन गाना के रेडियो रूम से 90.4 FM पे और ये गाना के साथ रुवा सभी दी आज की शो से हमके जाए कि जाजा स्वस्थ रही मस्त रही रखी अपन ख्याल अपनों के ख्याल और सुनत रहें रेडियो रिमझिम के। नमस्कार।

0: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
1: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
0: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: यहां सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9939365923।
3: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
4: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
3: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहां पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
4: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
5: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
6: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
5: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
7: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
8: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
7: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
8: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है, माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी, संपर्क करें 99399-66999।
9: नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम के रोमांचकारी खेल हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में। तो दोस्तों, हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में भाग लेने के लिए आपको कॉल करना होगा हर रविवार 12 बजे से हमारे स्टूडियो के नंबर 8029-94-91 8029-94-91 पर। तो दोस्तों, आइए जान लेते हैं रेडियो रिमझिम के इस रोमांचकारी खेल के रूल्स को। इस हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में आपसे पूछे जाएंगे 10 प्रश्न, हर प्रश्न के होंगे 3 ऑप्शन, जिसमें से होगा एक सही जवाब और आपको मिलेंगे 10 सेकंड का समय। यदि आप 10 सेकंड में जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो आप इस खेल से बाहर हो जाएंगे। 10 प्रश्न के सही जवाब देने वाले प्रतिभागी को मिलेगा रेडियो रिमझिम के तरफ से एक एक्साइटिंग गिफ्ट और हमारे स्टूडियो में आने का मौका। तो दोस्तों, आपको अपने तरफ से इस बात का ध्यान रखना होगा कि आपके मोबाइल में पर्याप्त बैलेंस हो, साथ ही हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट के दौरान शांत जगह से कॉल करें, और सबसे महत्वपूर्ण बात, किसी से सहायता ना ले और इंटरनेट पर जवाब सर्च ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं रेडियो रिमझिम के रोमांचकारी खेल हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट को और लेते हैं पहले प्रतिभागी का कॉल।
10: हेलो
11: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम के कार्यक्रम हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में।
10: आपको सोनी जी नमस्कार।
11: जी, नाम बता दीजिए।
10: लाल बहादुर प्रसाद
11: जी। कैसे हैं लाल बहादुर जी?
10: ठीक है, आप कैसे हैं?
11: हम भी बढ़िया हैं। तो लाल बहादुर जी, आप अपने मम्मी पापा का नाम बता दीजिए।
10: रतन प्रसाद अवासी रात्रि देवी
11: जी। तो पढ़ाई कहाँ तक हुई है लाल बहादुर जी आपकी?
10: प्लस वन
11: तक। तो आप हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में कॉल किए हैं, तो तैयार है आप आज के पहले प्रश्न के लिए?
10: जी
11: जी। तो लाल बहादुर जी, आपसे आज का पहला प्रश्न ये है

0: पौधे में भोजन बनाने की प्रक्रिया कहाँ होती है? पौधे में भोजन बनाने की प्रक्रिया कहाँ होती है? ऑप्शन ए जड़, बी पत्ती, सी तना। आपका समय श्रोता है अब।
1: जड़ में होता है।
0: श्योर है?
1: श्योर है।
0: लॉक कर दे?
1: लॉक कर दीजिए।
0: ओके, तो चलिए लाल बहादुर जी, आपके पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए जड़ को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर ही गलत है। सही उत्तर होगा पत्ती।
2: हेलो
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो के कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में।
2: गुड मॉर्निंग।
0: गुड मॉर्निंग, नाम बता दीजिए अपना और कहाँ से?
2: मैं हीर मकरियार बदली से, नाम आर्यन गुप्ता।
0: आर्यन जी कहाँ से बात कर रहे हैं, एक बार फिर से बताइए।
2: हीर मकरियार बदली।
0: ये कहाँ पड़ता है आपका गाँव?
2: सिवान में।
0: सिवान में, तो क्या करते हैं आर्यन जी आप?
2: पढ़ाई करता हूँ अभी।
0: अच्छा, किस क्लास की पढ़ाई करते हैं आप?
2: सेवन।
0: पढ़ाई कैसे चल रही है आपकी?
2: अभी तो अच्छी चल रही है।
0: अभी अच्छी चल रही है। तो आप हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में इससे पहले कॉल किए हैं?
2: नहीं,
0: नहीं किए हैं। तो आपको हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का नंबर कहाँ से मिला?
2: मामी से।
0: मामी से। इससे पहले इसका प्रसारण सुने हैं आप?
2: नहीं,
0: प्रसारण भी नहीं सुने हैं। तो आप हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल किए हैं, तो आप तैयार हैं आज के पहले प्रश्न के लिए?
2: हाँ।
0: आप जहाँ हैं वहाँ अकेले हैं ना, शांति है ना? ऐसा नहीं है ना कि कोई बीच में आकर डिस्टर्ब करेगा।
2: ओके,
0: तो लिया जाए पहला प्रश्न आपसे।
2: हाँ।
0: ओके,

0: अच्छा आर्यन जी, आपसे आज का पहला प्रश्न ये है, पौधों में भोजन बनने की प्रक्रिया जो है वो कहाँ होती है? पौधों में भोजन बनने की प्रक्रिया कहाँ होती है?
1: पत्तों में।
0: चोर है?
1: हाँ।
0: लॉक कर दूँ?
1: हाँ लीव।
0: चलिए तो चलिए आर्यन जी, आपके पहले प्रश्न का उत्तर पत्ता लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार हैं आप दूसरे प्रश्न के लिए?
1: हाँ।
0: आपसे आपका दूसरा प्रश्न ये है, विद्वान शब्द का सही विलोम क्या होगा? विद्वान शब्द का सही विलोम क्या होगा? ऑप्शन ए ज्ञानी, बी मूर्ख, सी शिक्षक। आपका समय शुरू होता है अब।
1: ज्ञानी।
0: श्योर है?
1: हाँ।
0: चलिए तो लॉक करते हैं आपके प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए ज्ञानी आर्यन जी।
1: हाँ।
0: और आपको बता दें कि आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर बिल्कुल गलत है। सही उत्तर होगा मूर्ख। हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में समय हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं आप सबसे हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में। सुनते रहे रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
3: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
4: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
3: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
4: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
3: या अभी कॉल कीजिए 92899225567 या 97746164। 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, शाखा राजापुर बाजार गोपालगंज। CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
4: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
3: तो देर मत कीजिए,
4: सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, कॉल अस 9939721308। ओम नमः शिवाय।
3: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
4: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
3: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
4: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
3: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
4: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
3: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
4: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
3: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
4: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH 27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
3: बोलबम हर हर महादेव।
5: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल घोष मोड़ दरगाह रोड गोपालगंज।
6: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
7: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयां भी मिलती हैं।
8: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 6200042403 6200042403।
2: ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है रेडियो रिमझिम के रोमांचकारी खेल हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में। अगर आप भी हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में भाग लेना चाहते हैं और आजमाना चाहते हैं अपने ज्ञान और लक को, तो हर रविवार दोपहर 12 बजे से कॉल करें 8029294921 8029294921 पर। आइए लेते हैं अगले प्रतिभागी का कॉल।
9: नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंकिंग के कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में।
9: जी सर। मैम, मैं मनोज कुमार प्रयागराज से बोल रहा हूँ।
0: जी, कैसे हैं मनोज जी?
9: मैं अच्छा हूँ मैम। मैम
0: जी, तो मनोज जी एक बार बता दीजिए, पढ़ाई कहाँ पे किए हैं आप?
9: मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ है।
0: अच्छा।
9: इसी साल ग्रेजुएशन मेरा कम्प्लीट हुआ है।
0: तो आप अपने मम्मी पापा का नाम बता दीजिए।
9: ये मम्मी का नाम है दुलारी देवी, राम दुलारी देवी, और पापा का नाम है अनुरुद्ध सिंह।
0: जी, तो हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल किया, तैयार है आप आज के पहले प्रश्न के लिए?
9: यस मैम।
0: तो मनोज जी, आपसे आज का पहला प्रश्न ये है

0: भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? ऑप्शन ए रोहिणी, बी आर्यभट्ट, सी भास्कर। आपका समय शुरू होता है अब।
1: मैम आर्यभट्ट।
0: क्यों रहे?
1: यस मैम।
0: लॉक कर दो।
1: यस मैम।
0: ओके, तो चलिए मनोज जी, आपके पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी आर्यभट्ट को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार है आप दूसरे प्रश्न के लिए?
1: यस मैम।
0: आपसे आपका दूसरा प्रश्न ये है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? ऑप्शन ए सहारा मरुस्थल, बी थार मरुस्थल, सी गोबी मरुस्थल। आपका समय शुरू होता है अब।
1: मैम सहारा मरुस्थल।
0: श्योर है?
1: यस मैम।
0: लॉक कर दो।
1: यस मैम।
0: ओके, चलिए मनोज जी, आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर सहारा मरुस्थल को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार है आप तीसरे प्रश्न के लिए?
1: यस मैम।
0: आपसे आपका तीसरा प्रश्न ये है, किस नियम के अनुसार हर क्रिया के बराबर और विपरीत प्रक्रिया होती है? किस नियम के अनुसार हर क्रिया के बराबर और विपरीत प्रक्रिया होती है, प्रतिक्रिया होती है? ऑप्शन ए न्यूटन का प्रथम नियम, बी न्यूटन का द्वितीय नियम, और सी न्यूटन का तृतीय नियम।
1: मैम न्यूटन का तृतीय नियम।
0: श्योर है?
1: तीसरा। यस मैम।
0: लॉक कर दो।
1: यस मैम।
0: ओके, तो चलिए मनोज जी, आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी न्यूटन का तृतीय नियम लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार है आप चौथे प्रश्न के लिए?
1: यस मैम।
0: आज से आपका चौथा प्रश्न ये है, निम्न में से कौन सा तत्व अक्रिय गैस है? निम्न में से कौन सा तत्व अक्रिय गैस है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, बी हीलियम, सी नाइट्रोजन। आपका समय शुरू होता है अब।
1: मैम नाइट्रोजन।
0: क्यों है?
1: मैम 50-50% चांस।
0: 50-50 है। लॉक कर दो।
1: यस मैम।
0: ओके, तो आपके चौथे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी नाइट्रोजन को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके चौथे प्रश्न का उत्तर गलत है। सही उत्तर होगा हीलियम, ना कि नाइट्रोजन। ओके, हेलो ब्यूज कॉन्टेस्ट में कॉल किए, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू मैम।
0: वेलकम। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंगिंग के कार्यक्रम में, ब्यूज कॉन्टेस्ट में।
2: नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, नाम बताइए अपना और कहाँ से?
2: शालू कुमारी से टोला।
0: कैसी हैं शालू जी?
2: हम ठीक है, आप बताइए आप कैसी?
0: हम भी बढ़िया है। तो क्या हो रहा था शालू जी अभी?
2: अभी कुछ नहीं, कॉल लगा रहे थे।
0: पढ़ाई कहाँ तक हुई है आपकी?
2: अभी 9th class में।
0: अच्छा 9th class। पढ़ाई कैसी चल रही है?
2: अच्छी चल रही है, अभी तो समर वेकेशन है, अभी छुट्टी है स्कूल।
0: तो छुट्टी में कहीं घूमने उमने गई कि नहीं?
2: गए थे मौसी के घर, फिर आ गए।
0: तो स्कूल से होमवर्क मिला है घर पे बनाने के लिए कि नहीं मिला अभी?
2: नहीं, हम लोग का क्लास चल रहा था ना सारा, 10 days बस छुट्टी मिला हुआ है।
0: अच्छा अच्छा, तो आप अपने मम्मी पापा का नाम बता दीजिए सालू जी।
2: मम्मी का नाम है श्रीमती निर्मला देवी, पापा का नाम बलिंद्र कुमार प्रसाद
0: जी। तो तैयार हैं आप आज के पहले प्रश्न के लिए?
2: यस मैम।
0: ओके,

0: तो सालू जी, आपसे आज का पहला प्रश्न ये है, राष्ट्रीय पशु क्या है? ऑप्शन ए शेर, बी बाघ, सी हाथी। आपका समय शुरू होता है अब।
1: ऑप्शन बी बाघ।
0: श्योर है?
1: यस मैम।
0: लॉक कर दें?
1: यस मैम।
0: ओके, तो चलिए सालू जी, आपके पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी बाघ को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार हैं आप दूसरे प्रश्न के लिए?
1: यस मैम।
0: आपसे आपका दूसरा प्रश्न ये है, पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया कहाँ होती है? पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया कहाँ होती है? ऑप्शन ए जड़, बी पत्ती, सी तना। आपका समय शुरू होता है अब।
1: ऑप्शन बी क्या था?
0: ऑप्शन बी पत्ती।
1: ऑप्शन बी।
0: श्योर है?
1: यस मैम।
0: लॉक कर दूं?
1: यस मैम।
0: ओके, तो चलिए सालू जी, आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी पत्ती को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार हैं आप तीसरे प्रश्न के लिए?
1: यस मैम।
0: तो सालू जी, आपसे आपका तीसरा प्रश्न ये है, पृथ्वी का कौन सा भाग सबसे अधिक जल से ढका है? पृथ्वी का कौन सा भाग सबसे अधिक जल से ढका है? ऑप्शन ए उत्तरी गोलार्ध, बी दक्षिणी गोलार्ध और सी भूमध्य रेखा क्षेत्र। आपका समय शुरू होता है अब।
1: उत्तरी गोलार्ध।
0: जी क्या बोली आप?
1: उत्तरी गोलार्ध।
0: श्योर है?
1: यस मैम।
0: लॉक कर दूं?
1: श्योर तो नहीं है, लेकिन लॉक कीजिए।
0: ओके, तो चलिए सालू जी, आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए उत्तरी गोलार्ध को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर जो है वो बिल्कुल गलत है। सही उत्तर होगा दक्षिणी गोलार्ध, न कि उत्तरी गोलार्ध। ओके, हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में समय हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं आप सबसे हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में। सुनते रहे रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
3: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527-88291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527-88291 या 95238-74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
4: घर बन रहा हो तो सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं, टाइल्स और फिटिंग्स का चुनाव भी होना चाहिए शानदार।
5: इसीलिए गोपालगंज जिले के लोगों की पहली पसंद बन चुका है बीके टाइल्स। बीके टाइल्स, यहाँ मिलेंगे सभी प्रकार के डिजाइनर टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, बेसिन, कॉमोड, बाथ फिटिंग्स और घर सजाने के कई आधुनिक प्रोडक्ट,
6: वो भी किफायती दामों पर। और खास बात, गोपालगंज जिले में हमारी 4 सुविधाजनक शाखाएं,
5: अरार मोड़ SP कोठी के पास गोपालगंज, दूसरा ब्रांच भटवा मोड़ के पास कुचायको,
6: तीसरा ब्रांच इस्लामिया कॉलेज के पास मेन रोड थावे मीरगंज और चौथा ब्रांच बंतरिया मोड़ भोरे।
5: और अब सिवान जिले में भी हमारी 2 शाखाएं उपलब्ध हैं, सिवान ब्रांच कुशवाहा चौक हकाम बाईपास सिवान
6: और मैरवा ब्रांच बबनौली चौक मैरवा सिवान।
5: तो आज ही अपने सबसे नजदीकी बीके टाइल्स ब्रांच पर आए और करे बेहतरीन खरीदारी।
6: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें गोपालगंज ब्रांच में 8460571406, मीरगंज ब्रांच में में 9693101611।
5: कुचाई कोट ब्रांच में 9693101602। भोरे ब्रांच में 8207856404।
6: सिवान ब्रांच में 9942071405। मेरवा ब्रांच में 8207856403।
7: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
8: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोरायसिस तथा
7: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
9: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता
7: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
9: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9955-9494-53
7: और 9097-6160-02।
2: ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है रेडियो रिमझिम के रोमांचकारी खेल हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में। अगर आप भी हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में भाग लेना चाहते हैं और आजमाना चाहते हैं अपने ज्ञान और लक को, तो हर रविवार दोपहर 12 बजे से कॉल करें 8029-94-921 8029-94-921 पर। आइए लेते हैं अगले प्रतिभागी का कॉल।
0: हेलो।
1: हेलो, नमस्ते।
0: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंगटोन के कार्यक्रम हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में।
1: थैंक यू मैम
0: जी। नाम बता दीजिए अपना और कहाँ से?
1: नाम सलोनी कुमारी, बंजारी बर्मस्थान गोपालगंज से।
0: ठीक, कैसी हैं सलोनी जी?
1: ठीक हूँ, आप बताइए।
0: मैं भी बढ़िया हूँ। क्या हो रहा था अभी?
1: कुछ नहीं।
0: नहीं, पढ़ाई कैसी चल रही है आपकी सलोनी जी?
1: अच्छी चल रही है।
0: चलिए, और किस क्लास में पढ़ती हैं आप?
1: बीए फाइनल हुई है।
0: बीए फाइनल हो गया है।
1: हाँ।
0: आगे का क्या प्लान है?
1: आगे प्लान है, तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिशन की।
0: चलिए, तो मम्मी पापा का नाम बता दीजिए।
1: मम्मी का नाम है सरिता देवी और पापा जी का नाम है सुंदर लाल था।
0: तो लिया गया पहला प्रश्न आज का आपसे।
1: आज

0: तो सुनिधि आपसे आज का पहला प्रश्न ये है, बिहार राज्य का कौन सा प्रमंडल छोटा है? बिहार राज्य का कौन सा प्रमंडल छोटा है? ऑप्शन ए सारण प्रमंडल, बी कोसी, सी भागलपुर। आपका समय शुरू होता है अब।
1: ऑप्शन फिर से दीजिएगा।
0: ऑप्शन ए सारण, बी कोसी, सी भागलपुर।
1: सारण
0: सारण कोसी भागलपुर।
1: सारण लगाइए।
0: हाँ
1: सारण
0: सारण लगाऊं? श्योर है?
1: हाँ,
0: तो लॉक कर दूं?
1: हाँ लॉक कर दीजिए।
0: चलिए तो सुलोनी जी, आपके पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए सारण को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर जो है बिल्कुल गलत है। सही उत्तर होगा भागलपुर। हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल की बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो
2: नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत आपका रेडियो रिंगिंग के कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में।
2: मैं सचिन कुमार बोल रहा हूँ।
0: सचिन कुमार
2: पचरुखी।
0: सचिन नाम बताया आपने?
2: जी
0: जी। पचरुखी से बात कर रहे हैं? पचरुखी सिवान।
2: जी जी
0: जी। क्या करते हैं सचिन जी?
2: 12वीं क्लास में पढ़ाई करता हूँ।
0: अच्छा, 12वीं क्लास में
2: जी।
0: और आगे क्या करने का प्लान है, सोचा है कुछ आपने?
2: हाँ, तैयारी करते हैं मैम।
0: किस चीज़?
2: गवर्नमेंट जॉब।
0: अच्छा, तो पढ़ाई कैसे चल रही है आपकी?
2: बढ़िया चल रही है।
0: चलिए बढ़िया की बात है। आप अपने मम्मी पापा का नाम बता दीजिए।
2: पिताजी का नाम दिनेश ठाकुर और मम्मी का नाम उषा देवी।
0: जी। और क्या करते हैं पापा जी आपके?
2: फार्मर हैं।
0: ओके। आप इससे पहले हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल किए हैं?
2: जी जी किया।
0: तो आज के पहले प्रश्न के लिए तैयार हैं आप?
2: जी
0: जी।

0: तो सचिन जी आपसे आज का पहला प्रश्न ये है, बिहार राज्य का कौन सा प्रमंडल सबसे छोटा है? ऑप्शन ए सारण, बी कोसी, सी भागलपुर। आपका समय शुरू होता है अब।
1: क्या मुझे ऑप्शन एक बार और बोलोगी?
0: ऑप्शन ए सारण, बी कोसी, सी भागलपुर।
1: भागलपुर फिर कीजिए मैं।
0: क्यों है
1: जी?
0: ओके, तो चलिए सचिन जी आपके पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी भागलपुर को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार है आप दूसरे प्रश्न के लिए?
1: जी।
0: आपसे आपका दूसरा प्रश्न ये है, बिहार केसरी के नाम से किस महान पुरुष को जानते हैं? ऑप्शन ए जयप्रकाश नारायण, बी श्री कृष्ण सिंह और सी कर्पूरी ठाकुर। आपका समय शुरू होता है अब।
1: ऑप्शन बी
0: श्री कृष्ण सिंह।
1: जी।
0: क्यों रहे? लॉक कर दो।
1: जी।
0: तो चलिए सचिन जी आपके दूसरे प्रश्न के उत्तर ऑप्शन बी श्री कृष्ण सिंह को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर भी सही है। तैयार है आप तीसरे प्रश्न के लिए?
1: जी।
0: आज से आपका तीसरा प्रश्न ये है, पश्चिमी चंपारण का जिला मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए मोतिहारी, बी बेतिया, सी मुजफ्फरपुर। आपका समय शुरू होता है अब।
1: बेतिया फिक्स कीजिए मैं।
0: श्योर है?
1: जी।
0: लॉक कर दो।
1: जी।
0: तो चलिए सचिन जी आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी बेतिया को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर भी सही है। तैयार है आप चौथे प्रश्न के लिए?
1: जी।
0: आपसे आपका चौथा प्रश्न ये है, एक त्रिभुज के दो कोणों का योग 108 डिग्री है तो तीसरा कोण कितने डिग्री का होगा? ऑप्शन
1: 72 डिग्री।
0: क्यों है?
1: 108 बोली मैम।
0: जी 108 बोले हैं।
1: हाँ।
0: तो लॉक कर दो।
1: जी।
0: तो सचिन जी आपके चौथे प्रश्न का उत्तर 72 डिग्री को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके चौथे प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार हैं आप पांचवे प्रश्न के लिए?
1: जी।
0: आज से आपका पांचवा प्रश्न ये है, भ्रष्टाचार और भारत छोड़ो पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए इंदिरा गांधी, बी किरण बेदी और सी अमृत प्रीतम। आपका समय शुरू होता है अब।
1: ऑप्शन सी फिक्स कीजिए।
0: अमृत प्रीतम।
1: जी।
0: क्यों रहे?
1: नहीं है।
0: चलिए तो चलिए सचिन जी आपके पांचवे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी अमृत प्रीतम को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके पांचवे प्रश्न का उत्तर गलत है। सही उत्तर होगा किरण बेदी।
1: ठीक है मैम।
0: ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल।
2: हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में समय हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं आप सबसे हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में। सुनते रहे रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
3: अरे ए चाची, जब आंख से साफ नहीं खेलो को तो रोडवा पर लड़खड़ा के काहे चलतनी? और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
4: अरे ए बबू, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला। सुनले बानी की आंख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
3: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू? अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आगल बनी। यहाँ के आंख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़ फाड़ कइले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आंख के ऑपरेशन करतनी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आंख में कोनो तरह के दर्द भी ना होई और ऑपरेशन भी हो जाए।
5: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुपर सिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से। साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर एम ए अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने रालसन होटल के पश्चिम गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99053 69015 पे।
6: ओम नमः शिवाय।
7: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
6: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
7: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
6: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
7: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
6: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
7: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
6: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
7: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
6: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH 27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
7: बोलबम हर हर महादेव।
8: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
2: ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है रेडियो रिंजन के रोमांचकारी खेल हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में। अगर आप भी हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में भाग लेना चाहते हैं और आजमाना चाहते हैं अपने ज्ञान और लक को, तो हर रविवार दोपहर 12 बजे से कॉल करें 8029494921 8029494921 पर। आइए लेते हैं अगले प्रतिभागी का कॉल।
1: हेलो
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो के 90.4 एफएम में।
1: जी नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, नाम बता दीजिए अपना और कहाँ से?
1: निरंजन कुमार बोल रहे हैं, बता दे।
0: जी कैसे हैं निरंजन जी?
1: ठीक है, अपना सुनाइए।
0: हम भी बढ़िया हैं जी। तो क्या करते हैं निरंजन जी आप?
1: जी बाहर आते हैं।
0: जी पढ़ाई कहाँ तक हुई है आपकी?
1: इंटर तक हुई है।
0: इंटर तक हुई है
1: जी।
0: जी तो अभी पढ़ाई छोड़ दिए हैं आप?
1: हाँ पढ़ाई छोड़ दिए हैं।
0: कोई नहीं, आप अपने मम्मी पापा का नाम बता दीजिए।
1: माता जी का नाम है श्रीमती चन्मती देवी और पिताजी का श्री सुमनमा
0: जी। क्या करते हैं पापा जी आपके?
1: वो भी सूरत में रहते हैं।
0: और आप क्या काम करते हैं?
1: मैं ट्रेडिंग का काम करता हूँ।
0: तो हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल किए हैं तो तैयार हैं आप आज से पहले प्रश्न के लिए?
1: जी

0: जी आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है।
1: हेलो
0: जी, तो निरंजन जी आपसे आज का पहला प्रश्न ये है
1: जी,
0: बिहार राज्य का कौन सा प्रमंडल छोटा है, बिहार राज्य का कौन सा प्रमंडल छोटा है? ऑप्शन ए सारण, बी कोसी, सी भागलपुर। आपका समय शुरू होता है अब।
1: बिहार राज्य का प्रमंडल
0: कौन सा प्रमंडल छोटा है?
1: कोसी होगा।
0: कोसी होगा, क्यों रहे हैं?
1: कौन सा नहीं है
0: तो लॉक करें?
1: नहीं तो भागलपुर कर दी।
0: भागलपुर को लॉक करें
1: जी।
0: कंफर्म है ना?
1: हाँ कर दीजिए कंफर्म। नहीं
0: चलिए, तो चलिए निरंजन जी आपके पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी भागलपुर को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार हैं आप दूसरे प्रश्न के लिए?
1: जी।
0: आपसे आपका दूसरा प्रश्न ये है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी जय प्रकाश नारायण, और ऑप्शन सी लाल बहादुर शास्त्री। आपका समय शुरू होता है अब।
1: लाल बहादुर शास्त्री होगा।
0: क्यों है
1: जी?
0: लॉक कर दूं
1: जी।
0: चलिए, तो चलिए निरंजन जी आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी लाल बहादुर शास्त्री को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तो तैयार है आप तीसरे प्रश्न के लिए?
1: जी
0: जी। आपसे आपका तीसरा प्रश्न ये है, पश्चिमी चंपारण का जिला मुख्यालय कहाँ है? पश्चिमी चंपारण का जिला मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए मोतिहारी, बी बेतिया, सी मुजफ्फरपुर। आपका समय शुरू होता है अब।
1: मोतिहारी होगा।
0: क्यों रहे हैं?
1: पश्चिमी चंपारण
0: का जिला मुख्यालय
1: बेतिया होगा।
0: बेतिया में?
1: हाँ बेतिया में।
0: क्यों रहे हैं?
1: कंफर्म नहीं है।
0: लॉक कर दें?
1: हाँ कर दीजिए।
0: चलिए, तो निरंजन जी आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी बेतिया को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार है आप चौथे प्रश्न के लिए?
1: जी।
0: आपसे आपका चौथा प्रश्न ये है, चार्ल्स वेवेज ने किस मशीन का आविष्कार किया था? ऑप्शन ए टेलीविजन, बी रेडियो, सी कंप्यूटर। आपका समय शुरू होता है अब।
1: कंप्यूटर।
0: कंफर्म है?
1: हाँ कंफर्म है।
0: लॉक कर दूं?
1: कर दीजिए।
0: चलिए।

0: प्रीतम आपका समय शुरू होता है अब।
1: क्वेश्चन आप सुनिएगा। भारत
0: भ्रष्टाचार और भारत छोड़ो पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए इंदिरा गांधी, बी किरण बेदी और सी अमृत प्रीतम।
1: अमृत प्रीतम होगा।
0: कंफर्म है?
1: कंफर्म नहीं है।
0: लॉक कर दो?
1: हाँ लॉक कर दो।
0: चलिए तो निरंजन जी आपके पांचवें प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी अमृत प्रीतम को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके पांचवें प्रश्न का उत्तर जो है बिल्कुल गलत है। सही उत्तर होगा किरण बेदी।
1: किरण बेदी होगा
0: जी। हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल किया आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: तो ये रहा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का आज का एपिसोड। अगर आप भी हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में भाग लेना चाहते हैं और आजमाना चाहते हैं अपने ज्ञान और लक को तो हर रविवार दोपहर 12 बजे से कॉल करें 8029294921 8029294921 पर और बने हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के विनर और हमें दीजिए अब जाने की इजाज़त और रखिए अपना ख्याल। सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM। नमस्कार।
3: अगर आपको हो रहा है घुटने हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर कमला राय कॉलेज रोड गोपालगंज।
4: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन MBBS MS एक्स रेसिडेंट KGMU लखनऊ।
3: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ MBBS MS ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
4: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
3: ध्यान दे हर शुक्रवार को है फ्री OPD तो देर किस बात की आज ही संपर्क करें।
4: पता कमला राय कॉलेज रोड नियर रालसन होटल गोपालगंज।
3: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
5: राधा तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
6: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
7: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
8: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
7: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9847434068 पे।
9: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
10: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD शादाब के पास जो है ENT स्पेशलिस्ट।
11: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD शादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुंचिए इस्मत ENT केयर सेंटर सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
12: दिल बोले म्यूजिक म्यूजिक म्यूजिक बोले दिल, दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4 रेडियो रिमझिम। सुनो दिल से।

0: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
2: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
2: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
2: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710309 या 9765665750।
3: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
1: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
3: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
1: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
4: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
5: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
6: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
7: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
6: आज ही आए JB हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
4: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
8: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से। All right.

0: गोपालगंज अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
1: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
0: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
1: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
0: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
0: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
1: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902।
2: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
3: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
1: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
0: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94 3945 651 या 97 0975 0675।
1: ओम नमः शिवाय।
0: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, गोपालगंज।
1: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
0: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
1: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
0: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
1: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
0: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
1: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
0: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
1: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उप शाखा NH 27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
0: बोलबम हर हर महादेव।
4: आप सुन रहे हैं जिले की आवाज, रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
5: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
6: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
5: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
6: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
5: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99 5 57 97 6 44।
7: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98 527 88 291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98 527 88 291 या 95 238 74 088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
8: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
9: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, साइटी का, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
8: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
1: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता
8: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
1: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554493
8: और 9097160602।
10: अरे ए चाची, जब आँख से साफ नहीं खेलो को तो रोड पर लड़खड़ा के कहे चलतनी, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
11: अरे ए बबुओ, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लगेला, सुनले बानी की आँख में सुई लगेला, काफी दर्द होत होइनु।
10: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू, अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आगल बनी। यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़ फाड़ कैले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करतनी, तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आँख में कोनो तरह के दर्द भी ना हुई और ऑपरेशन भी हो जाए।
12: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुपर सिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से, साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर एम ए अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने रालसन होटल के पश्चिम गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99053 69015 पे।
13: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
2: और दुल्हन का लहंगा, साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
3: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा,
4: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
5: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
3: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
2: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
3: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
5: कॉल करें 87894 1844।
6: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
7: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं, कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं, अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
6: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलता पूर्वक किया है।
7: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
6: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
8: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
6: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर एमडी सादाब के पास, जो है ईएनटी स्पेशलिस्ट।
9: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान, नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर एमडी सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान, नाक, गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुंचिए इस्मत ईएनटी केयर सेंटर, सिसवन ढाला के उत्तर आरके मॉडल स्कूल के बगल, सिवान में।
10: ओम नमः शिवाय।
3: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
10: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
3: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
10: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
3: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
10: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
3: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
10: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
3: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
10: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH 27, काली स्थान बंजारी, गोपालगंज।
3: बोलबम, हर हर महादेव।
11: ध्वनि के तरंग 90.4 पर आप जिले की आवाज रेडियो रिमझिम को सुन रहे हैं।

0: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
1: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
2: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
3: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
2: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
4: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
5: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
4: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
5: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
4: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
2: श्री भारती एकेडमी, जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
6: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
2: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
6: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
2: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
6: जानकारी है तो कॉल करें 6052-62112 पे।
7: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
8: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
7: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय 10:00 से 2:00 तक।
8: पता, जंगलिया मोहल्ला नूर मेडिकल के पास गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001। गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
7: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर X और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
8: ग्लैमर X, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
7: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
8: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
7: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
8: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
7: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
9: उत्तर बिहार का गौरव,
10: सारण प्रमंडल की शान,
9: गोपालगंज की धड़कन
10: और अपने भाषा की पहचान,
9: रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
10: सुनो दिल से।
11: सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट फ्रॉम टिप्स ऑफिशियल।

0: बेटा, बहू घर आने वाली है। सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
1: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स। BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
2: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
3: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94395461 या 97-0-97-06-575।
4: ठक ठक।
5: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
6: अच्छा, मिला ही नहीं
5: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें। अब चलिए सीधे कमल श्री में।
7: जी हाँ, कमल श्री। याद रखे, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
5: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
7: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
8: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
9: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
8: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
9: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
10: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
11: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर, डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
10: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
3: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
10: संपर्क करें 99393-65923।
12: सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता, रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है, सुनो दिल से।

0: रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
1: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
0: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
2: कॉल करे 87894-18744।
3: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
4: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
3: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहां पर 24 घंटे आईसीयू इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
4: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
5: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
6: वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
5: आज ही संपर्क करें 7388894703 या 9198886973।
7: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है, रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
8: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
0: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
2: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड, गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
0: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
2: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
0: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता, MBBS, MS, सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा, MBBS, MD, DNB, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
2: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD, IPD, ICU, मॉड्यूलर OT, अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
0: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा, NH 27, गोपालगंज।
2: कॉल करें 7070-7563-100 या 7070-7542-400 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
9: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
10: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
9: सुनो दिल से।

0: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
1: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
0: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
1: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी चैन पट्टी गोपालगंज,
0: या अभी कॉल कीजिए 92899-22567 या 97-714-86-164।
2: प्रसाद क्लिनिक,
3: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
2: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंग स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज,
3: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
0: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, शाखा राजापुर बाजार गोपालगंज। CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
1: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
0: तो देर मत कीजिए,
1: सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, कॉल अस 9939721308।
4: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो, रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

0: For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/venus.
1: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 9857788291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 9857788291 या 9528374088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
2: घर बन रहा हो तो सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं, टाइल्स और फिटिंग्स का चुनाव भी होना चाहिए शानदार।
3: इसीलिए गोपालगंज जिले के लोगों की पहली पसंद बन चुका है बीके टाइल्स। बीके टाइल्स, यहाँ मिलेंगे सभी प्रकार के डिजाइनर टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, बेसिन, कॉमोड, बाथ फिटिंग्स और घर सजाने के कई आधुनिक प्रोडक्ट,
4: वो भी किफायती दामों पर। और खास बात, गोपालगंज जिले में हमारी 4 सुविधाजनक शाखाएं,
3: अरार मोड़ SP कोठी के पास गोपालगंज, दूसरा ब्रांच भटवा मोड़ के पास कुचायकोट,
4: तीसरा ब्रांच इस्लामिया कॉलेज के पास मेन रोड ठावे मीरगंज, और चौथा ब्रांच बंतरिया मोड़ भोरे।
3: और अब सिवान जिले में भी हमारी 2 शाखाएं उपलब्ध हैं, सिवान ब्रांच कुशवाहा चौक हकाम बाईपास सिवान,
4: और मैरवा ब्रांच बबनौली चौक मैरवा सिवान।
3: तो आज ही अपने सबसे नजदीकी बीके टाइल्स ब्रांच पर आए और करे बेहतरीन खरीदारी।
4: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करे गोपालगंज ब्रांच में 8460571406, मीरगंज ब्रांच 9693101611,
3: कुचायकोट ब्रांच में 9693101602, भोरे ब्रांच में 8207856404,
4: सिवान ब्रांच में 9942071405, मैरवा ब्रांच में 8207856403।
5: अरे ए चाची, जब आँख से साफ नहीं खेलो को तो रोड पर लड़खड़ा के कहे चलते नहीं, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
6: अरे ए बबू, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला। सुनले बानी की आँख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
5: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू। अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आगल बनी, यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़ फाड़ कैले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करतनी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आँख में कोनो तरह के भी ना हुई और ऑपरेशन भी हो जाए।
7: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुप्रसिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से, साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर MA अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने रालसन होटल के पश्चिम गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9903569015 पे।
8: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान, पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
9: पराक्रम की, ऐसे योद्धाओं की जिन्होंने अपने प्यारे देश के लिए बिना झिझके अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। ये कहानी है असीम वीरता की, गाथा है अमर बलिदान की, ये कथा है एक ऐसे देश की जो संकट में एकजुट हुआ। कहानी करगिल की।

ऊंचे ऊंचे पहाड़ों का सीना चीरती ये सड़क पहुंचती है सरहद पर बसे एक शहर में। सुरु नदी के किनारे बसा ये शहर करीब 8,000 फीट की ऊंचाई पर है। इसके चारों तरफ ऊंची ऊंची पहाड़ी चोटियां हैं। देश की राजधानी दिल्ली से करीब 1,000 किलोमीटर से भी दूर मौजूद इस छोटे से शहर का नाम है करगिल। जी हाँ, वही करगिल जिसका नाम सुनते ही जहन में खास तस्वीर उभर आती है। तस्वीर एक ऐसे युद्ध की जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता।

0: आज यहां न गोलियों की गूंज है न युद्ध के निशान। सरहद पर होने की वजह से सेना की मौजूदगी जरूर देखी जा सकती है, लेकिन बाजारों में वैसी ही हलचल है जैसी दूसरे शहरों में होती है। वक्त के साथ जिंदगी आगे बढ़ चुकी है, लेकिन हवा में लहराता ये तिरंगा अब भी सुनाता है करगिल की वो कहानी जो भारतीय सेना के वीरों ने अपने लहू से लिखी थी। श्रीनगर से लेह को जोड़ने वाला हाईवे हो या यहां मौजूद चोटियां, ये सब करगिल की कहानी का अहम हिस्सा है। बर्फ से ढकी ये पहाड़ी चोटी कभी दुश्मनों के कब्जे में थी, लेकिन जब भारतीय सेना के जवानों ने इस चोटी पर तिरंगा लहराया तो ये तस्वीरें यादगार बन गई। करगिल के चारों तरफ मौजूद हर चोटी की ऐसी ही कहानी है।
1: 26 जुलाई 1999 ये वही दिन था जब भारत ने पाकिस्तान पर विजय हासिल की थी। इसी दिन करगिल की जंग खत्म हुई थी। भारतीय सेना ने पाकिस्तानी फौज को ऐसा सबक सिखाया कि उनके लिए जान बचाकर भागना भी मुश्किल हो गया था। ये भारत और पाकिस्तान की चौथी लड़ाई थी। पाकिस्तान हमेशा से ही भारत के साथ धोखा करता आ रहा है, लेकिन 1999 में पाकिस्तान ने किया सबसे बड़ा विश्वासघात।
2: My message to the people of Pakistan will be short and simple. Put aside the bitterness of the past. Together, let us make a new beginning.
0: इस संदेश के साथ शुरू हुआ साल 1999। भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने पाकिस्तान के साथ रिश्तों की एक नई शुरुआत की अपील की। भारत पाकिस्तान की सीमा पर घट रही इस ऐतिहासिक घटना पर पूरी दुनिया की नजर थी। लाहौर में पाकिस्तान ने जिस गर्मजोशी से भारत की दोस्ती का हाथ थामा, भारत ने उतनी ही आत्मीयता से पाकिस्तान को गले लगाया। दिल्ली से लाहौर तक जाने वाली ये बस न सिर्फ दो पड़ोसी मुल्कों को जोड़ रही थी, बल्कि उनके बीच भरोसे की एक नई कहानी लिख रही थी। अटल बिहारी वाजपेयी ने यह वादा किया था कि उस साल के अंत तक दोनों मुल्क मिल बैठकर कश्मीर मसले का हल निकाल लेंगे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने भी इस नए रिश्ते को पूरी शिद्दत से निभाने का वादा किया था।
3: Underscore to Prime Minister Vajpayee the immense potential of building a mutually beneficial cooperative relationship once we achieve a final settlement of Jammu and Kashmir issue.
0: Aman, chain aur dosti ki ummeed se bhare is mahol mein 21 फरवरी 1999 को दोनों देशों ने लाहौर घोषणा पत्र जारी किया। लेकिन जिस वक्त लाहौर में यह सब हो रहा था, उसी वक्त पाकिस्तानी जमीन पर भारत के खिलाफ एक खतरनाक साजिश रची जा रही थी। ये साजिश थी भारत की सीमा में घुसकर हमले की। भारत को इस बात की भनक भी नहीं थी कि जिस पाकिस्तान को वो गले लगा रहा है, वो उसकी पीठ में खंजर भोंकने की तैयारी कर रहा है। पाकिस्तान के इस छल का खुलासा हुआ मई 1999 में।
4: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
5: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
4: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
5: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीठ की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
4: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99 554 97 644।
5: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
6: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
5: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
6: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
5: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
6: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
5: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
7: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
8: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिनो फेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
9: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
8: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
9: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
8: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलो फेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
9: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
8: संपर्क करें 8470103992 या 9765665750।
0: कहानी कारगिल की, अमन, चैन और दोस्ती की उम्मीद से भरे इस माहौल में 21 फरवरी 1999 को दोनों देशों ने लाहौर घोषणा पत्र जारी किया। लेकिन जिस वक्त लाहौर में ये सब हो रहा था, उसी वक्त पाकिस्तानी जमीन पर भारत के खिलाफ एक खतरनाक साजिश रची जा रही थी। ये साजिश थी भारत की सीमा में घुसकर हमले की। भारत को इस बात की भनक भी नहीं थी कि जिस पाकिस्तान को वो गले लगा रहा है, वो उसकी पीठ में खंजर भोंकने की तैयारी कर रहा है। पाकिस्तान के इस छल का खुलासा हुआ मई 1999 में।
10: 1999 की करगिल जंग की शुरुआत बटालिक सेक्टर से हुई थी। इस समय हम बटालिक सेक्टर में हैं और मेरे ठीक पीछे पाकिस्तानी नियंत्रण वाले कश्मीर का गांव है। लेकिन जो जंग लड़ी गई थी वो इन पहाड़ियों के ऊपर लड़ी गई थी। जब बटालिक के एक शख्स ने अपनी भेड़ बकरियां लेके ऊपर इस पहाड़ की तरफ गए थे, तो यहाँ पे उनको पाकिस्तानी घुसपैठिए दिखाई दिए थे, जिसकी खबर बाद में उन्होंने मई महीने में ही सेना को दी थी। यानी जो पहले घुसपैठिए देखे गए थे करगिल जंग में, वो इन्हीं पहाड़ियों में दिखे थे।
0: बटालिक सेक्टर के इसी गरकुन गांव के कुछ गडेरियों ने सबसे पहले पाकिस्तानी घुसपैठियों को देखा। उनके मुताबिक पठान सूट पहने कुछ लोग बंकर खोद रहे थे। इस खबर के बाद सेना की कुछ गश्ती टुकड़ियों को भेजा गया, लेकिन भारत को तब यह अंदाजा नहीं था कि जिन्हें वो घुसपैठिया समझ रहे हैं, वो दरअसल पाकिस्तानी फौज के सिपाही हैं। पाकिस्तान के धोखे का पता तब चला जब कैप्टन सौरभ गालिया की पेट्रोलिंग टीम लापता हो गई।
11: ये जो पहले पहले जो खबर इन लोगों को मिली यहाँ पर लोकल फॉर्मेशंस को, यूनिट्स को, तो उन्होंने ये समझा कि कुछ घुसपैठिए आ गए हैं यहाँ पर, क्योंकि वो उन्होंने काले कपड़े पहने हुए थे। लोकल फॉर्मेशन ने समझा कि हम इनको निकाल फेंकेंगे और इनके पास ज़्यादा हथियार नहीं होंगे। जब ये असेसमेंट को चेंज किया गया, जब हमको खुद आर्मी को लगा के नहीं, ये घुसपैठिए नहीं है, ये तो रेगुलर आर्मी के लोग हैं, तो उस वक्त हमको पूरा का पूरा स्ट्रेटजी और टैक्टिक्स सब बदलनी पड़ी।
1: जब तक भारत को पता चल पाता, तब तक पाकिस्तान ने भारत की करीब 150 वर्ग किलोमीटर की जमीन पर कब्जा कर लिया था। पाकिस्तानी सेना ने उन चौकियों पर कब्जा किया था जिन्हें भारतीय सेना सर्दियों में खाली कर देती थी और गर्मियों में वापस जाया करती थी। लेकिन 1999 में भारतीय सेना की उन चौकियों पर जाने से पहले ही पाकिस्तानी फौज ने उन चौकियों पर अपना कब्जा जमा लिया था। जाहिर है इसके लिए पाकिस्तान ने एक बड़ी तैयारी की होगी। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि क्या फरवरी 1999 में जब नवाज शरीफ अटल बिहारी वाजपेयी से लाहौर में मिल रहे थे तो क्या उन्हें इस घुसपैठ की जानकारी थी।
12: नवाज शरीफ खुद ये दावा करते रहे हैं कि उन्हें पाकिस्तान की साजिश की भनक भी नहीं थी। खुद को इस मामले से पूरी तरह अलग करते हुए शरीफ ने यहां तक कह डाला कि उन्हें तो अटल बिहारी वाजपेयी के फोन से मालूम चला कि पाकिस्तानी फौज भारत में घुस चुकी है।
13: मेरे भाई मुशर्रफ ने कारगिल पे हमला किया और उस फौजी हमले का मुझे इल्म नहीं था। मैंने उसका नोटिस लिया और नोटिस मैंने तब लिया जब वाजपेयी साहब का मुझे टेलीफोन आया मुझे कहने के नवाज शरीफ साहब ये आपने क्या कर दिया हमारे साथ। मैं तो थोड़े दिन पहले आपके पाकिस्तान से होके आया हूँ, इतना अच्छा जज्बा लेके मैं हिंदुस्तान वापस आया हूँ और आपने हमारे ऊपर हमला कर दिया है। तो मैंने कहा क्या हुआ वाजपेयी साहब? कहने आपको मालूम नहीं क्या हुआ है, आपकी फौज ने हमारी फौज पे हमला कर दिया। मैंने मुशर्रफ साहब से बात की और फिर हकायक जो वाजपेयी साहब कह रहे थे उसके बिल्कुल ऐन मुताबिक निकले और फिर मैंने कहा कि आपने ये सब कुछ क्या किया।
12: परवेज मुशर्रफ, जिन्होंने बाद में नवाज शरीफ का तख्ता पलटकर पाकिस्तान की सत्ता अपने हाथ में ले ली, उस वक्त पाकिस्तानी सेना के प्रमुख हुआ करते थे। जानकारों के मुताबिक 1998 में पाकिस्तानी सेना की कमान संभालते ही मुशर्रफ ने भारत पर हमले की योजना बना ली थी। नवाज शरीफ को इस घुसपैठ के बारे में कितना इल्म था इस सच का पता तो नहीं चल सका, लेकिन ये बात अब पूरी दुनिया जानती है कि करगिल का मास्टरमाइंड कौन था।
2: अनऑक्युपाइड एरिया में इंडिया सियाचिन में आ गया, यहाँ हम चले गए, ये हमें और हमने मैं आई से विद कॉन्फिडेंस हमने हिंदुस्तानी फोर्स को गले से पकड़ लिया और मैं रिपीट कर रहा हूं उनको गले से पकड़ लिया क्योंकि हम उन जगहों में चले गए जहां उनकी जो मेन आर्टरी है जो श्रीनगर से द्रास कारगिल और लद्दाख ले जाती है उसको हम डोमिनेट कर गए। उस पे गाड़ी नहीं चल सकती थी अगर हम ना चाहते।
12: इससे पहले की तीन लड़ाइयों में भारत से मुंह की खाने के बाद भी 1999 में पाकिस्तान ने भारत पर हमले की हिमाकत की। उसकी सबसे बड़ी वजह थी 1998 के न्यूक्लियर टेस्ट। उस साल दोनों ही मुल्क एटमी हथियारों से लैस हो चुके थे। जानकारों के मुताबिक पाकिस्तान एटमी हथियारों का डर दिखाकर ऐसा कुछ करना चाहता था जिससे कश्मीर के मुद्दे पर भारत पर दबाव डाला जा सके।
14: इन न्यूक्लियर टेस्ट के बाद पाकिस्तान में एक ह्यूबरिस की स्थिति आई कि साहब अब तो हम एटमी ताकत बन गए हैं, भारतवर्ष हिम्मत नहीं करेगा अगर हम कोई प्रोवोकेशन करते हैं सब कन्वेंशनल दर्जे पे तो भारत में हिम्मत नहीं होगी कि उसका वो जवाबी कार्रवाई कर सके और इसी के चलते उन्होंने कारगिल का युद्ध जो है छेड़ दिया था।
12: जनरल परवेज मुशर्रफ का प्लान बिल्कुल साफ था, लद्दाख को जम्मू कश्मीर से काट कर सियाचिन में भारत की पकड़ कमजोर करना।
15: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
16: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
17: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
18: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
17: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9478434268 पे।
19: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
20: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
19: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
20: पता जंगलिया मोहल्ला नूर मेडिकल के पास गोपालगंज। कॉल करें 9451211001।
21: ठक ठक
22: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
23: अच्छा मिला ही नहीं
22: तो
3: घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
21: जी हाँ, कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
3: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
21: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है। सुनिए सुनिए सुनिए,
22: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
21: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
22: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
21: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
23: कहानी करगिल की। जनरल परवेज मुशर्रफ का प्लान बिल्कुल साफ था, लद्दाख को जम्मू कश्मीर से काट कर सियाचिन में भारत की पकड़ कमजोर करना। मुशर्रफ ने बेहद खुफिया तरीके से यह साजिश रची। पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार नजम सेठी के मुताबिक, करगिल में घुसपैठ के सीक्रेट ऑपरेशन में मुख्य तौर पर पाकिस्तानी सेना के चार ऑफिसर शामिल थे।
24: आर्मी चीफ जनरल मुशर्रफ, कमांडो, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल अजीज, हेड ऑफ कश्मीर, जिहाद, ये वो सारा कुछ। आईएसआई में जब वो थे तो अब वो चीफ ऑफ जनरल स्टाफ बन गए। जनरल महमूद, कोर कमांडर, 10 कोर, और हमारा फॉर्मर एम्बेसडर टू अमेरिका ब्रिगेडियर जावेद हसन, इंचार्ज ऑफ नॉर्दर्न इन्फेंट्री फोर्स कमांड, नॉर्दर्न इन्फेंट्री, जो कि इन इलाकों के, ये थे द फोर पीपल हु कंसीव्ड द गैंग ऑफ फोर। अक्टूबर नवंबर 98, अभी बस डिप्लोमेसी शुरू भी नहीं हुई थी, तो इन्होंने फैसला किया कि कुछ करते हैं, देखते हैं। उस वक्त कुछ रिपोर्ट्स आ रही थी कि इंडिया इस सेक्टर के अंदर कुछ अग्रेसिव शेलिंग हो रही है, इंडिया के कुछ प्लान्स बन रहे हैं, कोई और ना कुछ सीज कर ले एलओसी के ऊपर। तो इन्होंने ब्रिगेडियर साहब को कहा कि जी, क्योंकि वो इंचार्ज थे, कि आप जाके चेकआउट तो करें वहां इंडिया के क्या इरादे हैं, हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो ये जब ब्रिगेडियर साहब गए उस इलाके में रेकी करने, तो देखा वहां तो बंदा ना बंदे की जात, थोड़ा और आगे गए तो बंदा ना बंदे की जात। सोचे कोई तो रास्ता खुला है, तो है ही कुछ नहीं, पता नहीं चलना किसी को। वहां से ये प्लान बना।
23: मुशर्रफ के इस प्लान को नाम दिया गया ऑपरेशन बद्र। नजम सेठी के मुताबिक 1999 के जनवरी फरवरी महीने में मुजाहिदीनों की शक्ल में पाकिस्तान के करीब 200 सैनिक लाइन ऑफ कंट्रोल को लांग कर करगिल की सुनसान पहाड़ियों में घुस गए। धीरे धीरे इन सैनिकों की संख्या बढ़ती गई और मार्च अप्रैल तक उन्होंने भारत की 140 से ज्यादा पोस्ट पर कब्जा कर लिया। इतना ही नहीं, उस वक्त पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशन डायरेक्टोरेट में रहे कर्नल अशफाक हुसैन ने अपनी किताब विटनेस टू ब्लंडर में लिखा है कि हमले से पहले परवेज मुशर्रफ खुद एलओसी क्रॉस करके भारतीय नियंत्रण रेखा में 11 किलोमीटर अंदर तक गए और वहां एक रात भी गुजारी।
1: करगिल की लड़ाई का ये पहला चरण था। पाकिस्तान की नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री यानी एनएलआई के फौजी ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर अपनी पोजीशन ले चुके थे, लेकिन भारत को इसकी खबर तक नहीं थी। करगिल, द्रास और बटालिक सेक्टर की ऊंची ऊंची पहाड़ियां करीब 16 से 18 हजार फीट तक की हैं और यहां पर बैठे पाकिस्तानी सैनिकों के सीधे निशाने पर था नेशनल हाईवे नंबर 1A, यानी वो रास्ता जो कि लद्दाख को श्रीनगर से जोड़ता है। पाकिस्तान की योजना ये थी कि इस हाईवे पर लगातार फायरिंग कर लद्दाख को बाकी के जम्मू कश्मीर से काट दिया जाए।
23: लद्दाख, जम्मू कश्मीर का सबसे शांत इलाका। लद्दाख पर पाकिस्तानी कब्जा ऑपरेशन बद्र का पहला लक्ष्य था। इसी रणनीति के तहत करगिल की चोटियों पर बैठे पाकिस्तानी सैनिक नेशनल हाईवे पर जबरदस्त गोले बरसा रहे थे।
25: उनका इरादा मेरे ख्याल से ये भी था कि एक बार अगर श्रीनगर से लद्दाख का रोड कम्युनिकेशन को काट दिया जाए तो उसके बाद वो शायद सियाचिन मुद्दे के ऊपर भी भारत के ऊपर दबाव डाल सकते हैं और उसके बाद भारत को एक कमजोर स्थिति से फिर पाकिस्तान के साथ बात करनी पड़ेगी।
23: शुरुआत में भारत यही समझता रहा कि हमला करने वाले पाकिस्तानी आतंकवादी हैं, लेकिन जैसे ही भारत को इस बात के सबूत मिलने लगे कि आतंकवादियों की शक्ल में पाकिस्तानी सेना गोले बरसा रही है, भारत ने मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी शुरू कर दी। दुनिया के इतिहास में पहली बार महाविनाशक एटॉमिक हथियारों से लैस दो देश युद्ध के मैदान में आमने सामने थे।
2: इस समय देश के सामने युद्ध जैसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई है। कारगिल में, उसके आसपास के क्षेत्र में बड़ी तादाद में पाकिस्तान से सशस्त्र घुसपैठी आए।
23: भारत एक एक कदम फूंक फूंक कर रख रहा था। उसे ऐसा जवाब देना था जिससे पाकिस्तान को सबक भी सिखाया जा सके और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर माहौल उसके पक्ष में रहे। यही वजह थी कि 24 मई को CCS यानी कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक में एक बड़ा फैसला लिया गया। भारत ने पाकिस्तानी हमले का जवाब देने के लिए ऑपरेशन विजय शुरू किया, लेकिन सेना को किसी भी हाल में लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस न करने की हिदायत दी।
14: बहुत लोग चाहते थे कि हम पलटवार करें, लाइन ऑफ कंट्रोल को जाके पार करें, लेकिन मैं ये समझता हूं कि हमारी जो पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट का ये फैसला था LC।
4: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा किए, कहा नालंदा विश्वविद्यालय भारत का भाग्य गढ़ रहा है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मुंगेर के टेटिया बंबर में पंचायत विकास दिवस का शुभारंभ किया, कहा प्रधानमंत्री की प्रेरणा से हो रहा है पंचायतों का विकास। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच राज्य के विभिन्न केंद्रों पर केंद्रीय चयन परिषद की सिपाही भर्ती परीक्षा संपन्न। और मौसम विभाग ने भागलपुर, किशनगंज, कटिहार और रोहतास जिले में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। भीषण गर्मी के मद्देनजर पटना और भोजपुर में 8वीं कक्षा तक के स्कूल 30 जून तक बंद। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत समुद्र से लेकर आकाश तक अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने आज कहा कि जून महीने में स्वदेशी C-295 विमान की पहली उड़ान के साथ ही भारत ने विमान क्षेत्र में एक बड़ी सफलता हासिल की है। उन्होंने कहा कि इससे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र को तेजी मिल रही है।
5: C-295 यह विमान मेड इन इंडिया है और C-295 विमान ने अपनी पहली उड़ान पूरी की है और ऐसे 40 विमान भारत में ही बनाए जा रहे हैं। इससे MSME और एरोस्पेस सेक्टर को नई शक्ति मिल रही है। आज समुद्र से लेकर आकाश तक हमारा भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है।
4: प्रधानमंत्री ने पश्चिम एशिया में युद्ध के दौरान उनकी अपील पर देशवासियों के समर्थन और सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने आशा व्यक्त की है कि भारतीयों के सामूहिक प्रयास से हम विकट स्थितियों में भी हमेशा विजयी रहेंगे। श्री मोदी ने प्रसन्नता व्यक्त की कि भारतीय लोग इस वैश्विक संकट का मिलकर मुकाबला कर रहे हैं।
5: पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कहा था कुछ समय के लिए सोना खरीदने से बचें, लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें, लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी, किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं।
4: प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना के तहत पीड़ित परिवारों को लाभ पहुंचाया है। श्री मोदी ने लोगों से अपील की कि वे इन स्कीमों के बारे में अपने परिवारों के साथ चर्चा करें।
5: सरकार देश के करोड़ों परिवारों तक सुरक्षा का कवच पहुंचा रही है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत केवल एक साल के 20 रुपये का प्रीमियम, उस पर 2,00,000 रुपये तक का दुर्घटना बीमा मिलता है। उसी प्रकार से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना भी उतनी ही अहम है। ये योजना व्यक्ति की दुखद मृत्यु होने पर उसके परिवार को 2,00,000 रुपये का बीमा कवर देती है। इसका वार्षिक प्रीमियम सिर्फ 436 रुपये है।
4: मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने नालंदा विश्वविद्यालय की चर्चा करते हुए कहा कि एक नए अवतार के रूप में ये भारत का भाग्य गढ़ रहा है। श्री मोदी ने 2 वर्ष पूर्व नालंदा विश्वविद्यालय परिसर का लोकार्पण किया था। उन्होंने कहा कि नालंदा विश्वविद्यालय में शास्त्रार्थ की प्राचीन परंपरा को फिर से जीवित किया गया है। उन्होंने इस पहल के लिए नालंदा विश्वविद्यालय को बधाई दी और दूसरे विश्वविद्यालयों से भी ऐसी पहल पर विचार करने का आग्रह किया।
5: नालंदा विश्वविद्यालय ने शास्त्रार्थ की हमारी प्राचीन परंपरा को फिर से जीवन किया है। दूसरों के विचारों को धैर्य से सुनने और समझने की सीख भी इस शास्त्रार्थ की प्रक्रिया से मिलती है। मुझे खुशी है कि नालंदा विश्वविद्यालय ने इसे अपने दीक्षांत समारोह का हिस्सा बनाया।
4: प्रधानमंत्री ने कहा कि जलवायु परिवर्तन की समस्या आज एक बड़ी चुनौती बन गई है। उन्होंने देशवासियों से पर्यावरण संरक्षण की दिशा में लगातार प्रयास करने की अपील की है। अंत में प्रधानमंत्री ने जल संरक्षण के संबंध में कहा कि वर्षा जल की एक एक बूंद को बचाया जाना चाहिए।
5: जल संचय तो करना ही करना है, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। कैच द रेन, ये अभियान जरा भी ढीला नहीं होने देना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
4: भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि मन की बात कार्यक्रम जन जन की भावनाओं का आधार बन चुका है। नई दिल्ली में मन की बात कार्यक्रम सुनने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री नवीन ने कहा कि ये देश भर में अलग अलग स्थानों पर हो रहे सकारात्मक प्रयासों को सामने रखने का एक प्लेटफॉर्म है।
0: पूरे देश के अलग अलग स्थानों पर जो सकारात्मक प्रयास होते हैं, उन प्रयासों को माननीय प्रधानमंत्री जी के शब्दों में जो प्लेटफॉर्म मिलता है, कहीं ना कहीं पूरे देश के और दुनिया के लोग जान पाते हैं कि भारत के लोग स्वतः कितने सारे प्रयास करते हैं, उन प्रयासों से समाज को कितना बड़ा प्रेरणा मिलता है। और मैं मानता हूं कि आज जो उन्होंने एक शब्द दिया है कैच द रेन, मैं मानता हूं कि अपने आप में ऐसे शब्द हैं जो निश्चित रूप से जलवायु संरक्षण और जल संरक्षण को एक बहुत बड़ा एक मैसेज है।
4: भाजपा के वरिष्ठ नेता और सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि प्रधानमंत्री की मन की बात कार्यक्रम दुनिया का सबसे प्रभावी और प्रेरणादायी कार्यक्रम बन गया है।
6: प्रधानमंत्री के मन की बात का कार्यक्रम दुनिया का सबसे प्रभावी प्रेरणादायी कार्यक्रम बन चुका है। और आपने देखा होगा, इसमें राजनीति की एक बात नहीं कर प्रेरणा की बात कर, देश के विभिन्न भागों में जो स्वस्फूर्त प्रेरणादायी काम कर रहे हैं उसकी चर्चा करते हैं।
4: कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच आज राज्य के विभिन्न केंद्रों पर केंद्रीय चयन परिषद की सिपाही भर्ती परीक्षा संपन्न हो गई। विभिन्न जिला प्रशासन ने कदाचार मुक्त परीक्षा के लिए व्यापक प्रबंध किए थे। वहीं रेलवे अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए आज 7 परीक्षा स्पेशल ट्रेन चला रहा है। हमारे बांका संवाददाता ने बताया कि जिले में 1,123 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए। अररिया जिले के 19 केंद्रों पर एक पाली में परीक्षा का आयोजन किया गया। अन्य जिलों में भी कदाचार मुक्त वातावरण में परीक्षा संपन्न हो गई। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज मुंगेर जिले के टेटिया बंबर प्रखंड के टेटिया पंचायत से पंचायत विकास दिवस कार्यक्रम की शुरुआत की। इस अवसर पर सभा को संबोधित करते हुए श्री चौधरी ने कहा कि प्रत्येक महीने पंचायत स्तर पर इस दिवस के आयोजन से पंचायतों के समग्र विकास का मार्ग प्रशस्त होगा।
1: आज पंचायत विकास दिवस के अवसर पर हम लोगों ने जो पूरी व्यवस्था खड़ा किया है कि साल में 12 बार बैठक होगी। साथियों, अभी तक टाइम फिक्स नहीं होता था, कभी 2 अक्टूबर कभी 26 जनवरी ये सब हम लोग समय तय करते थे, लेकिन अब पंचायत विकास दिवस के अवसर पर प्रत्येक जो अंतिम इतवार होगा उस दिन पंचायत विकास दिवस मनाने का काम हमारी सरकार करेगा। साथ
0: मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले महीने उनके नेतृत्व में राज्य सरकार के 100 दिन पूरे होने पर महिला रोजगार योजना के तहत शेष बचे लाभार्थियों को भी राशि दी जाएगी।
1: इस पंचायत विकास दिवस के अवसर पर महिलाओं के उत्थान की चिंता किया है। महिला रोजगार से जोड़कर लगभग 1,81,00,000 महिलाओं को रोजगार योजना के तहत उनको राशि दिया, अब आगे भी दूसरा इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं। अगले महीने जब कोई हमारे प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी जब बिहार आएंगे और हमारा 100 दिन भी आपके आशीर्वाद से जब पूरा होगा, तो हम लोगों ने तय किया है जो महिलाएं छूट गई है उनके खाते में भी राशि देने का काम हमारी सरकार करेगा। साथियों,
0: मुख्यमंत्री श्री चौधरी ने अपराध को लेकर सरकार की नीति स्पष्ट करते हुए कहा कि अपराधियों के खिलाफ सफाई अभियान जारी रहेगा।
1: बिहार में जो कचरा भगाने का काम किया जा रहा है ना, वो भगाता ही रहेंगे। अब हम छोड़ नहीं सकते, जो अपराधी है उसको नेपाल जाना ही होगा, कोई रोक नहीं सकता है।
0: प्रदेश के विभिन्न भागों में पंचायत विकास दिवस का आयोजन किया गया। विभिन्न पंचायतों में विकास शिविर लगाकर ग्रामीणों की समस्याओं का निदान किया गया। एक रिपोर्ट।
2: महिला हितैषी ग्राम पंचायत विषय को लेकर आज प्रदेश के विभिन्न भागों में पंचायत विकास दिवस का आयोजन किया गया। ये आयोजन प्रत्येक माह के अंतिम रविवार को किया जाएगा। मधुबनी जिले के महिनातपुर पंचायत में आयोजित कार्यक्रम में जिले की प्रभारी मंत्री लेशी सिंह ने ग्रामीणों की समस्याओं को सुना। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि पंचायतें हमारी लोकतंत्र की आधारशिला है, इनका विकास अत्यंत आवश्यक है।
3: पूरे राज्य में पंचायत विकास दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, ताकि हमारा जो पंचायत है सबसे नीचे की इकाई और सबसे मजबूत इकाई सशक्त हो, जनप्रतिनिधि और प्रशासन के बीच में समन्वय स्थापित हो और हमारा पंचायत इकाई मजबूत हो।
2: दरभंगा के हायाघाट प्रखंड अंतर्गत आनंदपुर सहोरा मध्य विद्यालय में आयोजित विकास शिविर का उद्घाटन पथ निर्माण सह जिले के प्रभारी मंत्री कुमार शैलेंद्र और वन एवं पर्यावरण मंत्री रामचंद्र प्रसाद ने संयुक्त रूप से किया। मधेपुरा के मानिकपुर पंचायत में जिले की प्रभारी मंत्री शीला मंडल ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। शेखपुरा जिले की सभी 49 पंचायतों में पंचायत विकास शिविर आयोजित किया गया। शिवहर, सुपौल, अररिया, किशनगंज, रोहतास, औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद और गया समेत विभिन्न जिलों के पंचायतों में विकास दिवस पर शिविर लगाकर पंचायतों में छूटे हुए विकास कार्यों पर चर्चा हुई और पंचायतों के समग्र विकास का संकल्प लिया गया। समाचार कक्ष से निधि श्री।
0: राज्य के अधिकतर भागों में दक्षिण पश्चिम मानसून की सक्रियता से हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले 24 घंटों के दौरान सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, सुपौल, अररिया, कटिहार, बांका, भागलपुर समेत राज्य के उत्तर पूर्वी भागों में कई स्थानों पर तेज हवा के साथ बारिश की संभावना है। विभाग ने भागलपुर, किशनगंज, कटिहार और रोहतास जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।
4: राज्य के समस्त उत्तर भाग एवं दक्षिण पूर्व भाग के जिलों में मेघ गर्जन वज्रपात के साथ हवा की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के दक्षिण मध्य एवं दक्षिण पश्चिम भाग के जिलों में मेघ गर्जन वज्रपात के साथ हवा की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के भागलपुर, कटिहार, किशनगंज एवं रोहतास जिलों में भारी वर्षा होने की संभावना है।
0: बक्सर, भोजपुर, भभुआ, पटना, जहानाबाद और गया समेत राज्य के दक्षिण पश्चिम और दक्षिण मध्य भागों में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। पटना के जिलाधिकारी कुंदन कुमार ने भीषण गर्मी के मद्देनजर 8वीं कक्षा तक के स्कूलों में पठन पाठन 30 जून तक बंद रखने के आदेश दिए हैं। इधर भोजपुर जिला प्रशासन ने 8वीं कक्षा तक जिले के सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में पठन पाठन 30 जून तक स्थगित कर दिया है। जहानाबाद जिला प्रशासन ने स्कूलों के समय में परिवर्तन किया है। सभी स्कूलों में 4 जुलाई तक वर्ग 8 तक पठन पाठन का कार्य पूर्वाह्न 11:30 बजे तक ही होगा। नालंदा जिले के परवलपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत मऊआ कटहरी गांव में छापेमारी कर पुलिस ने एक मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन किया है। संबंध में 4 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने मौके से कई हथियार, अर्धनिर्मित हथियार और हथियार बनाने के उपकरण तथा सामग्री बरामद की है। 28 जून से 2 जुलाई तक चलने वाले पल्स पोलियो अभियान 2026 के तहत आज विभिन्न जिलों में 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई गई। बांका, सुपौल, शेखपुरा, पश्चिम चंपारण, गोपालगंज समेत विभिन्न जिलों में पोलियो मुक्त अभियान के तहत बच्चों को जीवन रक्षक दवा की 2 बूंद पिलाने का अभियान चलाया जा रहा है। किशनगंज के जिलाधिकारी नवीन कुमार ने आज दिघल बैंक प्रखंड के कटाव प्रभावित इलाकों का दौरा किया। जिलाधिकारी ने डोडरा पुल का अप्रोच जल्द बनाने के निर्देश दिए हैं। सुपौल जिले के बीरपुर में भारत नेपाल सीमा के पास एसएसबी ने जांच अभियान के दौरान भारी मात्रा में नेपाली शराब बरामद की है। बांका जिला कार्यान्वयन समिति की आज बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता राजस्व और भूमि सुधार मंत्री सह जिले के प्रभारी मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल ने किया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा किए, कहा नालंदा विश्वविद्यालय भारत का भाग्य गढ़ रहा है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मुंगेर के टेटिया बंबर में पंचायत विकास दिवस का शुभारंभ किया, कहा प्रधानमंत्री की प्रेरणा से हो रहा है पंचायतों का विकास। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच राज्य के विभिन्न केंद्रों पर केंद्रीय चयन परिषद की सिपाही भर्ती परीक्षा संपन्न। और मौसम विभाग ने भागलपुर, किशनगंज, कटिहार और रोहतास जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। भीषण गर्मी के मद्देनजर पटना और भोजपुर में 8वीं कक्षा तक के स्कूल 30 जून तक बंद। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है मुंगेर जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे संवाददाता प्रशांत कुमार।
1: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजी 90.4 FM पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।

0: रेडियो रिमझिम सुन रहे सभी श्रोताओं को मेरा यानी रेडियो दोस्त सोनू के तरफ से नमस्कार प्रणाम। समय हो चुका है आपका संदेश मिला कार्यक्रम का, तो ठीक सही समय पे आप सभी के द्वारा संचार के विभिन्न माध्यमों से भेजे गए संदेशों को लेकर हाजिर हो चुका हूँ आप सभी के बीच। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपके द्वारा भेजे गए संदेशों पर अपना प्रतिक्रिया देते हैं रेडियो रिमझिम के प्रबंध निदेशक श्री कृपा शंकर श्रीवास्तव जी। तो सर, सबसे पहले आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: यदि आप भी इस कार्यक्रम में शिकायत, सुझाव, प्रशंसा या अपना विचार भेजना चाहते हैं तो इस कार्यक्रम में भेज सकते हैं। इसके लिए हमारा पता है रेडियो रिमझिम, बंजारी मोड़, गोपालगंज, पिन कोड 84 14 28। व्हाट्सएप नंबर है 98527 88291 और ईमेल आईडी है radiorimjhim@gmail.com। आप संचार के जिस माध्यम से चाहें उस माध्यम से अपना शिकायत, सुझाव या प्रशंसा, अपना संदेश पहुंचा सकते हैं। तो फिलहाल अपनी बातों को रोकते हैं और इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं।
2: नमस्कार आदरणीय श्रोता बंधु, रेडियो रिमझिम परिवार के तरफ से आप सभी को नमन है, प्रणाम है। आपका अपना मन पसंद कार्यक्रम आपका संदेश मिला में आप सभी मित्रों को, साथियों को, रेडियो रिमझिम सुनने वालों को नमन है, प्रणाम है। आपका संदेश मिला कार्यक्रम दो तरफा संवाद है। हमने सप्ताह भर क्या किया, कैसे किया, कौन सा कार्यक्रम शुरू किया, बंद किया, इन सब पर आप सबों से एक परिचर्चा होती है। आपके विचार सोशल मीडिया अकाउंट से, पत्र के माध्यम से, और कई हमारे प्रिय श्रोता हैं जो टेलीफोन करके अपने संदेश को रेडियो रिमझिम परिवार में लिखवाते हैं। जो हमें सुनते हैं, समझते हैं, वह तो अपनी बातों को सही और सटीक ढंग से हम तक पहुंचाते हैं। एक श्रोता फोन करके बता रहे थे कि आज के जमाने में रेडियो नहीं मिल पा रहा है, और रेडियो यदि बिगड़ जाए तो कहीं बनाना भी संभव नहीं है। वैसे गोपालगंज में मेरे जानकारी में

मोबाइल पर गूगल के प्ले स्टोर से रेडियो रिमझिम का ऐप डाउनलोड कर लेते हैं और अपने मन पसंद कार्यक्रमों को सुनते हैं। कोई भी समस्या इतनी बड़ी नहीं होती है जिसका समाधान न हो सकता है बड़ी समस्या है तो थोड़ा ज्यादा समय लगता है, छोटी समस्या है तो कम समय में समाधान हो जाता है। हम जब इतिहास के पन्नों में जाते हैं, प्रथम विश्व युद्ध हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, खूब लड़ाई चला, खूब झगड़ा हुआ देशों के बीच, लेकिन जब उसमें से 5 देश मिल बैठकर आपस में परिचर्चा किए तब जो है प्रथम युद्ध या द्वितीय विश्व युद्ध जो है समाप्त हुआ। आज जो है लोक अदालत के माध्यम से, मध्यस्थता के माध्यम से कई सुलहनीय मामले जो है सुलझ जा रहे हैं। तो जिंदगी भी ऐसी है, आदमी का जीवन इतना लंबा नहीं है कि वह जो है अमृत पी कर आया है और यहाँ से जाएगा नहीं, लेकिन यह प्रयास जरूर करना चाहिए कि कोई भी समस्या लंबी समय तक खींचना नहीं चाहिए, जितना जल्द हो सके समस्या का समाधान कर देना चाहिए अपने जीवन काल में, ताकि आने वाले पीढ़ी को फिर उसी समस्या में उलझना नहीं पड़े। यह सोच लेकर हमें जीवन में आगे बढ़ना है। आदरणीय श्रोता बंधु, रेडियो रिमझिम का प्रसारण सुबह 5 बजे से शुरू होता है, रात को 11:10 पर रेडियो पर समाप्त होता है, लेकिन जिनके मोबाइल में रेडियो रिमझिम का ऐप है वह 24 घंटे ऑनलाइन या ऑफलाइन हमें सुन सकते हैं। समय के साथ विज्ञान ने तरक्की किया, आज जो है हम कृषि में, परिवहन में, अंतरिक्ष में, पढ़ाई में, हर जगह जो है प्रगति देख रहे हैं। आज जब बिहार प्रशासनिक सेवा का परीक्षा फल आया, रिजल्ट आया, तो ऐसे ऐसे परिवार के बच्चे इसमें पदाधिकारी बने हैं जिनके बारे में सुनकर मन में अति प्रसन्नता होती है। कोई ई रिक्शा चलाने वाला का लड़का जो है SDM बना, तो कोई पान बेचने वाला का बेटी जो है राज्य कर आयुक्त बनी। यह जो है पढ़ाई एक शक्ति है, ताकत है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने कहा है कि जिसके पास शिक्षा है वह जो है शेरनी का दूध पी लेता है, यानी शिक्षा के बल पर हम संसार के महाशक्तिशाली व्यक्ति बन सकते हैं, लेकिन उसमें सच्चाई और अच्छाई होनी चाहिए। शिक्षा का एक दृष्टिकोण होता है, एक प्रकाश होता है। हमें जब प्रकाश मिलता है तो हमें सारी चीजें साफ साफ और स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, लेकिन इसी बीच में कुछ लोग धन के इतने प्यासे हो जाते हैं कि पद और अधिकार मिलने के बाद उसका दुरुपयोग करते हैं। आप अक्सर समाचार पत्रों में आजकल पढ़ रहे होंगे, सुन रहे होंगे कि निगरानी विभाग ने इतने बड़े अधिकारी को पकड़ा, इतने बड़े प्रशासनिक पदाधिकारी को पकड़ा। वह व्यक्ति जो इतना बड़ा परीक्षा UPSC या BPSC या स्टाफ सिलेक्शन क्रेक करके इतने ऊंचे पद पर पहुंचा और धन का इतना भूखा प्यासा हो गया कि उसने जीवन भर जो भी तपस्या किया वह मिट्टी में मिल गया, पद प्रतिष्ठा सामाजिक आचरण सब कुछ वह खत्म कर दिया। वह तो पकड़ा गया, जेल जाएगा, धन जब्त होगा, आर्थिक अपराध इकाई उससे पैसा का हिसाब लेगा, लेकिन हम यह सोचते हैं कि जो उनके बच्चे होंगे, जो उनकी पत्नी होगी, रिश्तेदार होंगे, वह जो है आज के डेट में शर्म से गड़ गए होंगे, लज्जा से समाज में मुंह छुपाए होंगे। चोरी करके कोई सीना जोरी नहीं कर सकता है और सच्चा आदमी का जल्दी कोई मित्र नहीं बनता है। यदि आप झूठे हैं तो आपके बहुत सारे मित्र हो जाएंगे, लेकिन सही व्यक्तित्व

0: वही है जो मित्रता बचपन में शुरू हुआ और बुढ़ापे तक पहुंच गया बिना स्वार्थ लालच का, वही जो है कृष्ण सुदामा की मित्रता है। जीवन में धन आता है जाता है, व्यक्ति गिरता है खड़ा होता है, लेकिन सच्चाई के पथ पर चलने में बहुत परेशानी होता है। यदि एक छोटा सा काम करके हम अपने परिवार को परवरिश करते हैं तो मेरे समझ से वही जो है सन्यासी है, त्यागी है, और वह व्यक्ति जो है समाज के लिए एक मिसाल है। बहुत सारा धन कमा कर यदि हम रख भी देते हैं तो इसका कोई गारंटी नहीं है कि आने वाला पीढ़ी जो है उस धन को संचय रखेगा, उस धन को सुरक्षित रखेगा, उसको आगे बढ़ाएगा। जीवन में यदि बच्चों को पढ़ा दिए, लिखा दिए और सही संस्कार दे दिए तो यह पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहेगा। लेकिन छल कपट और हेरा फेरी करके कमाया हुआ धन जो है कभी जो है अचल नहीं रहता है। आदरणीय श्रोता बंधु, जीवन का जो अनुभव है हर व्यक्ति के पास है, हर व्यक्ति में अच्छाई भी है और बुराई भी है। यह हमारे ऊपर निर्भर है कि हम किसे प्रोत्साहित करेंगे और किसे दबाएंगे। जीवन में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरे के दबाने के लिए अपना धन समय सब कुछ लगा देते हैं, लेकिन उन्हें हासिल कुछ नहीं होता है। और कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो स्वयं केंद्रित रहते हैं और जीवन में बेहतर कर जाते हैं। आज के जमाने में यह देखा जाता है, समझा जाता है कि जो धन इधर उधर से आता है, गाड़ी खरीदा गया, बुलेट खरीदा गया, घोड़ा गाड़ी खरीदा गया, बच्चा जो है तूफानी स्तर पर चला रहा है, परिवहन विभाग का कोई नियम वह मानने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन सरकार ने एक अच्छा नियम यह बनाया है कि कोई भी व्यक्ति यदि गाड़ी रखा है और अपने नाबालिग बच्चा को वह गाड़ी चलाने के लिए देता है और उसके साथ कोई दुर्घटना हो गया या पकड़ा गया तो दंड, फाइन और जेल जो है उसके माता पिता को होगा। यह नियम बहुत ही अच्छा लगा। जीवन में बच्चों को अच्छा बनाना, अच्छा संस्कार देना, समय के साथ उसके अंदर सुधार करना मानवता की जीत होती है। और जो व्यक्ति केवल अपने मूंछों पर ताव देते रहता है वह जो है व्यक्ति ज्यादा सफल नहीं होता है। सफलता उसमें है कि यदि आपके परिवार में दो चार बच्चे हैं, यदि वह बच्चे सफल हो गए तो माता पिता सफल हो गए। सफलता का माने यह नहीं कि हम घर बना लिए, जमीन खरीद लिए, तीन तरह से रंगवा दिए। सफलता यह है कि आपके पास कुछ भी नहीं है, वह बच्चे अपने पैरों पर खड़ा हो गए, इज्जत और सम्मान के साथ अपने जीवन का आचरण करने लगे, इसी में सबसे बड़ी सफलता है। आपका संदेश मिला कार्यक्रम आपके विचारों पर आधारित रहता है। हमारे जो श्रोता हैं कई बार मिलते जुलते में भी कई बात बताते हैं, कई हमारे आदरणीय शिक्षक मित्र हैं, अधिवक्ता मित्र हैं, उनका भी अनुभव हम लेते रहते हैं। इसके अलावा गांव देहात शहर में जहां भी जाते हैं लोगों से मिलना जुलना, उनकी जिंदगी का अनुभव लेना और उन सब बातों को पिरो कर आपका संदेश मिला में हम आपके सामने रखते हैं। आदरणीय श्रोता बंधु, मैं फिर इस बात को दोहरा रहा हूँ, यदि आपके मन में कहीं कोई बात है, कोई आपके जीवन का अनुभव है, वह जो है जरूर शेयर कीजिए, साझा कीजिए, ताकि आने वाला जनरेशन पीढ़ी जो है उससे सबक ले। बच्चों को अच्छी सही और सच्ची बातें इसलिए बतलाई जाती है ताकि बच्चों का मन जो है कोमल होता है और वह अच्छी बातें सुनकर देखकर सीखते हैं। जैसे बचपन में दादा दादी, नाना नानी अच्छी अच्छी वीर गाथाओं की कहानियाँ सुनाते थे, अपने देश के महाराणा प्रताप हो या APJ अब्दुल कलाम साहब हो, स्वामी विवेकानंद जी हो, दशरथ मांझी जी हो, जो हमारे आदर्श हैं, उनके बातों को, उनके जीवनी को पढ़कर बच्चे जो है अपने आप को आगे बढ़ाते हैं। कहा जाता है कि बच्चों के ऊपर घर का प्रभाव 50% पड़ता है। जिस विद्यालय में पढ़ता है, यदि वहाँ के शिक्षक उनका आचरण अच्छा है तो 25% वहाँ का प्रभाव पड़ता है, और जिस परिवार में वह रहता है वहाँ का भी प्रभाव पड़ता है। तब वह जाकर एक सच्चा और सही व्यक्तित्व का मालिक बनता है। वैसे बातें तो बहुत हैं, हमारे साथ बैठे हुए हैं मिस्टर सोनू जी, जो आप लोगों के संदेश का पिटारा लिए हैं और विभिन्न माध्यमों से बहुत सारे संदेश आए हैं, उन्हें वह पढ़ेंगे और मैं उसका उत्तर पूरी ईमानदारी से धैर्यपूर्वक दूंगा। तो मिस्टर सोनू जी, आप पढ़ना शुरू करें।
1: जी सर, हर सप्ताह की तरह इस सप्ताह भी संचार के विभिन्न माध्यमों से बहुत सारे संदेश पहुंचे हुए हैं। सबसे पहला संदेश हमारे पास है और यह संदेश फोन करके लिखवाया गया है, लाल बहादुर प्रसाद, ग्राम नदना, पंचायत कल्याणपुर, पोस्ट मुगल बिरैचा, प्रखंड बरौली से यह संदेश लिखवाए हैं। रेडियो रिमझिम के प्रबंध निदेशक सर कृपा शंकर जी को नमस्कार। हमें रेडियो रिमझिम का सभी कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है। मैंने पिछले सप्ताह आपके माध्यम से जिला प्रशासन से मांग किया था कि मेरे गांव में फाइलेरिया रोधी दवा का छिड़काव किया जाए, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। मेरा आपसे निवेदन है कि अपने माध्यम से भी प्रयास कर छिड़काव कराया जाए। धन्यवाद। तो सर, इनके संदेशों पर अपना प्रतिक्रिया दें।
0: आदरणीय श्रोता बंधु, आपके पूरे बरौली प्रखंड के सभी निवासियों को रेडियो रिमझिम परिवार के तरफ से हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। काफी अच्छा लगता है आप रेडियो रिमझिम के कार्यक्रमों को सुनते हैं, अपने विचारों को हम तक पहुंचाते हैं। रेडियो रिमझिम समाज को बेहतर बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है। कोई भी समाज आगे तभी बढ़ता है जब वह खुश रहे, प्रोत्साहित रहे और जीवन में कुछ बेहतर करने का लालसा रखता रहे। आदरणीय श्रोता बंधु, वैसे गोपालगंज जिला मलेरिया विभाग को हमने सूचित कर दिया है कि आपके ग्राम पंचायत में डेंगू का प्रकोप ज्यादा है, वहाँ छिड़काव जरूरी है। चूंकि प्रशासनिक काम है, कई जगह से अनुमति लेनी पड़ती है, कई तरह की प्रक्रिया से गुजरने के बाद विभागीय कार्रवाई शुरू होती है, थोड़ा समय लगता है लेकिन हो जाता है। आज भी लोगों को सरकार पर, सरकारी बैंकों पर, डाकघर पर बहुत ज़्यादा भरोसा है, और सरकार कोई भी काम करती है उसमें जनता को सर्वोच्च स्थान देती है। निजी कंपनी और सरकारी में यही अंतर है। निजी कंपनियां सबसे पहले अपना हित सोचती है, फिर आपके बारे में सोचेगी, लेकिन जो सरकारी एजेंसियां हैं, सबसे पहले कोई भी काम करने से पहले यह सोचती है कि यह काम करने से जनता को कितना लाभ होगा, तब वह प्रक्रिया अपनाती है। वैसे मलेरिया विभाग को सूचना दे दी गई है। इसके अलावा आपसे आग्रह करेंगे कि रेडियो रिमझिम में जो सुबह 5 बजे से रात को 11:10 तक रेडियो पर और ऐप पर 24 घंटे जो हम प्रसारण करते हैं, वह आपके जीवन में कितना बदलाव लाया, इसके बारे में भी बताएं। चूंकि रेडियो रिमझिम हालचाल के माध्यम से, रोजगार समाचार के माध्यम से, राष्ट्रीय और प्रादेशिक समाचार के माध्यम से सभी सूचनाओं को आम जनता तक पहुंचाने का प्रयास करता है और यह सूचना एक श्रोता के लिए कितना लाभदायक होता है यह तो आपको आपका संदेश मिला में बताना ही है। इसी के साथ एक बात और कह दूं कि यह तीसरी बार मैं कह रहा हूं कि सेहत सही लाभ कई एक कार्यक्रम रेडियो रिमझिम पर पिछले 2 वर्षों से चल रहा है, कहानी के माध्यम से, एपिसोड के माध्यम से, विज्ञापन के माध्यम से। उसका जो है एक सर्वे लखनऊ या दिल्ली की कोई एजेंसी है कर रही है, जहां रेडियो रिमझिम बंजारी मोड़ गोपालगंज में स्थापित है, वहां से उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम 15 किलोमीटर के आवृत्ति में या रेडियस में जितने भी गांव हैं, शहर हैं, वह लोगों से मिल रहे हैं, उनका तस्वीर ले रहे हैं, साथ में यह भी पूछ रहे हैं कि आप रेडियो रिमझिम को कैसे सुनते हैं, ऐप के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से, जैसे भी आप सुनते हैं, वह जो है सर्वे कर रहे हैं। हमें लगता है कि 2 महीना बीत चुका है और इस सर्वे में आप लोगों का काफी सकारात्मक सहयोग का पुष्टि होता है। सर्वेकर्ता रेडियो स्टेशन में भी आते हैं, हम भी पूछे आप कहाँ गए हैं, कुछ लोग कहते हैं जागीरी टोला गए थे, कुछ लोग देवापुर, कुछ लोग कोन्हवा, कुछ बसडीला, कुछ भीत भैरवा, इसी तरह विभिन्न गांवों में वे लोग घूम रहे हैं और सर्वे कर रहे हैं। जो भी हमारे आदरणीय श्रोता हैं जो रेडियो रिमझिम को सुनते हैं, उनसे आग्रह है कि जो भी आप जानते हैं सही और सटीक जानकारी सर्वेकर्ता को दिया जाए। चूंकि हम लोग जो है इसका एपिसोड, लोगो, विज्ञापन सब कुछ चलाते रहते हैं, तो वह जो पूछते हैं उसका प्रति उत्तर दे। श्री लाल बहादुर प्रसाद जी हम यही कहेंगे कि जो समस्या है उसका समाधान जरूरी है, लेकिन हमें भी अपने स्तर से प्रयास करना चाहिए। हम लोगों को प्रोत्साहित करते हैं, हर तरह की जानकारी देते हैं और आपका भी यह नैतिक दायित्व है कि एक आवेदन जो है जिला मलेरिया विभाग को देना चाहिए कि हमारे गांव में यह समस्या है। यदि विभागीय कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग भी आपका सहयोग करेंगे। आदरणीय जिला पदाधिकारी जो नए पदस्थापित हुए हैं उनसे मिलेंगे और उनसे मिलने के बाद इस बारे में भी बताया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार
1: जी। सर अगला संदेश पहुंचा हुआ है इमरान अली जी का सांखे बाजार से। रेडियो रिमझिम को लगातार और नियमित सुनता हूं, हाल चाल काफी अच्छा लगता है, सोशल मीडिया भी देखता हूं, नए नए पोस्ट, क्षेत्र भ्रमण, आप लोगों को देखकर सुकून मिलता है कि रेडियो रिमझिम लगातार नवाचारी खबरों को हम लोगों तक पहुंचाता है, आपका संदेश मिला काफी अच्छा लगता है। तो सर इनके संदेशों पर अपना विचार दें।
0: आदरणीय श्रोता बंधु, आपके पूरे परिवार को, ग्राम शाखे के सभी निवासियों को रेडियो रिमझिम परिवार के तरफ से हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। रेडियो रिमझिम का जो हालचाल है वह इतना लोकप्रिय है कि पिछले 10 वर्षों से हम रेडियो रिमझिम के नाम से एक यूट्यूब बनाए हैं, जिस पर रात को 12 बजे के पहले प्रयास रहता है कि जो समाचार हम रेडियो पर सुनाए हैं वह समाचार जो है रेडियो रिमझिम के यूट्यूब पर हम अपलोड कर दें। और हम देखते हैं 10,000, 8,000, 5,000, 12,000 तक लोग जो है उसे सुनते हैं मोबाइल के माध्यम से यूट्यूब पर, और रेडियो पर तो करीब करीब पूरे गोपालगंज की जो जनसंख्या है उसका 25% से अधिक लोग सुनते हैं। यदि मान लिया जाए अपने जिले की जनसंख्या 30-35 लाख हो तो उसका 25% आप हिसाब लगा दीजिए उतना लोग सुनते हैं और बड़ा ही सकारात्मक प्रतिक्रिया आता है। और आप देखते होंगे जो रात को 9:05 में और सुबह 7 बजे हमने जो समय निर्धारित किया है आप लोगों के परामर्श से, यदि उसमें 1-2 मिनट कभी लेट भी हो जाता है तो बहुत सारा फोन जो है आ जाता है। इससे प्रतीत होता है कि हमारे बहुत सारे आदरणीय श्रोता रेडियो रिमझिम का हालचाल सुनते हैं। दूसरा, हमारे यहाँ ऑनलाइन और ऑफलाइन यानी रिकॉर्डेड कार्यक्रम भी चलते हैं जो आप लोग पसंद करते हैं। और कई श्रोता ऐसे हैं जो हमें बीच बीच में परामर्श देते हैं कि किस तरह का कार्यक्रम का प्रसारण होना चाहिए। जब रेडियो रिमझिम की स्थापना हुई उस समय से और आज 2026 जून महीना हो गया, बहुत सारे बदलाव कार्यक्रमों में किया गया और यह जितना भी बदलाव हुआ आप जैसे आदरणीय श्रोताओं के सुझाव पर हुआ। आपका संदेश मिला कार्यक्रम रेडियो रिमझिम के स्थापना काल से और आज तक चल रहा है और आप लोग इसे पसंद करते हैं, अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि हम लोग एक दूसरे का चेहरा तो नहीं देख पाते हैं रेडियो पर, लेकिन आवाज के माध्यम से हम लोग एक दूसरे को पहचान लेते हैं। जीवन में सादा रहिए, सरल रहिए, जीवन आराम से कट जाएगा और जहां इसे रंगीन बनाइएगा तो बड़ा ही कष्टदायक हो जाएगा। मैंने अपने जीवन के लंबे समय में यह अनुभव किया है और देहाती कहावत भी है, सादा सबका दादा, यानी सादा जीवन उच्च विचार जो है जीवन को बड़ा ही अलौकिक बना देता है। आपका संदेश हमें मिला, काफी अच्छा लगा। बड़े ही आदर से हम आग्रह करेंगे कि अगले संदेश मिला कार्यक्रम में और सब कार्यक्रमों के बारे में जरूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
1: जी सर, अगला संदेश पहुंचा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम पूरे रेडियो रिमझिम टीम को, हमें रेडियो रिमझिम का सभी शो बहुत अच्छा लगता है। मैं रेडियो रिमझिम का सभी शो सुनती हूं और जुड़ती भी हूं। मेरा एक शिकायत है कि योर वॉइस योर च्वाइस शो में सोनी मैम कभी कभी मैसेज शामिल ही नहीं करती हैं, जिससे हमें काफी निराशा महसूस होता है। मेरा कहना है कि गाना बजे या ना बजे, लेकिन मैसेज सबकी शामिल होनी चाहिए। इस संदेश को भेजती हैं रेहाना खातून साधु चौक से। तो सर, इनके संदेशों पर अपना प्रतिक्रिया दें।
0: आदरणीय श्रोता बंधु, आपके पूरे परिवार को रेडियो रिमझिम परिवार के तरफ से हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। इस तरह का संदेश वही व्यक्ति लिख सकता है जो रेडियो रिमझिम से बेहद प्यार करता है, कार्यक्रमों से जुड़ता है और अपनी प्रतिक्रिया देता है। वैसे आपका संदेश काफी गंभीरता से हमने लिया है, चूंकि आज ही मिला है। सोमवार के दिन हम इस पर आरजे से परिचर्चा करेंगे, बात करेंगे। कुछ जानकारी आपको देते चले, जब ऑनलाइन कार्यक्रम में कोई भी आरजे बैठता है वह बड़े ही जिम्मेवारी के साथ बैठता है। यह हमेशा ध्यान रखता है बोलते समय डिमांड के अनुसार जो गीत की फरमाइश की गई है वही गीत बजे, लेकिन कभी कभार भूल चूक लेनी देनी हो जाता है। दूसरी बात यह है कि ऑनलाइन कार्यक्रम करते समय बहुत सारे संदेश आते हैं। हम भी कभी कभार स्टूडियो में जहां ऑनलाइन हो रहा है बैठ जाते हैं बातों को सुनने के लिए, संदेशों को देखने के लिए, तो बाई मिस्टेक हमें लगता है कि संदेश छूट जाते हैं। और दूसरी बात यह होती है कि बहुत सारे जब संदेश आते हैं 10 मिनट 15 मिनट तक, तो आरजे जो है उतना बोल नहीं पाते हैं, क्योंकि उनके ऊपर समय निर्धारित होता है, उसी के बीच आपका संदेश पढ़ना है, गीत सुनाना है, और विज्ञापन दाता भी कड़ी नज़र से हमें देखते हैं कि जो समय हमें दिया गया है उस समय पर हमारा विज्ञापन बज रहा है कि नहीं। इन सब बातों को जो ऑनलाइन आरजे बैठते हैं बड़े ही गंभीर होते हैं, और स्टूडियो के अंदर हम लोगों का प्रयास होता है कि जितना देर ऑनलाइन कार्यक्रम चले बोलने वाले आरजे को हम किसी भी तरह के दबाव में न लें, उन्हें डिस्टर्ब नहीं करें। फिर भी हो सकता है भूल चूक वजह से संदेश छूट गया हो, लेकिन यदि नियमित ही होता है तो इसे भूल नहीं माना जाएगा, इसे चूक माना जाएगा। तो मंडे के दिन यानी सोमवार के दिन हम इस पर परिचर्चा करेंगे, और आपको भरोसा दिलाते हैं कि यदि आरजे के तरफ से गलती हुई होगी तो उसके लिए हम क्षमा याचक हैं, और आरजे जो है भविष्य में कोई भी संदेश को नज़रअंदाज नहीं करेंगे। और यह भी ध्यान रखें संदेश देते समय कि संदेश छोटा हो, धीर गंभीर बातें हो, और जो सबको आनंदित करे इस तरह का संदेश दे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
1: जी सर, अगला संदेश पहुंचा हुआ है सनी कुमार सिंह मकसूदपुर। सर नमस्कार, मैं पटना में रहकर बीपीएससी का तैयारी करता हूं। आपका संदेश मिला हमें काफी प्रोत्साहित करता है। रेडियो रिमझिम के ऐप से जब जब समय मिलता है तो कार्यक्रम को सुनता हूं। समाचार हालचाल हमें काफी अच्छा लगता है। छात्रों के बारे में कुछ बताएं। तो सर इनके संदेशों पर अपना प्रतिक्रिया दें।
0: आदरणीय श्रोता बंधु, आपके पूरे परिवार को नमन है। रेडियो रिमझिम की शुभकामना आपके साथ है। जीवन में जो सपना देखें उसका पीछा करें, क्योंकि सपनों के बिना सफलता अधूरी है। आदरणीय श्रोता बंधु, बीपीएससी स्टाफ सिलेक्शन या कर्मचारी चयन आयोग, यह जो है एक ऐसी परीक्षा है जिसमें व्यक्ति का दृष्टि लक्ष्य स्पष्ट होता है, और जहाँ लक्ष्य स्पष्ट होता है वहाँ तैयारियाँ भी बेजोड़ होनी चाहिए। जहाँ लाखों लाख विद्यार्थी पदाधिकारी बनने के लिए प्रयास कर रहे हैं, अभी हाल में ही कुछ समय पहले बीपीएससी का रिजल्ट आया, अपने जिले के कई बच्चियां कई बच्चे जो है सफल हुए, उनको रेडियो रिमझिम परिवार के तरफ से हम हार्दिक शुभकामना देते हैं, और जो तैयारी कर रहे हैं उन्हें हम प्रोत्साहित करते हैं कि उनके जीवन का एक समय निर्धारित होना चाहिए और उस समय के अंदर अपने कामों का निवारण करें और लगातार प्रयास करें। शॉर्टकट रास्ते से सफलता कभी नहीं मिलती है। अभी कुछ समय पहले कुछ परीक्षाओं का पेपर आउट हुआ, कई सैकड़ों लोग जो है पकड़े गए, वह जो है शॉर्टकट रास्ता अपनाना चाहते थे, और यदि शॉर्टकट के माध्यम से वह पद और प्रतिष्ठा मिल भी गया तो उसके लायक वह नहीं है। कोई भी पद और प्रतिष्ठा जो है व्यक्ति को योग्यता के आधार पर मिलता है तो वह जो है पद और प्रतिष्ठा का शोभा बन जाता है, और जबरदस्ती किसी पद और प्रतिष्ठा पर हम बैठते हैं तो वह जो है बैठने वालों को भी अच्छा नहीं लगेगा और मिलने वालों को भी अच्छा नहीं लगेगा। तो जीवन में जो लक्ष्य बनाए हैं उस पर आप अटल रहें और लगातार प्रयास करें, सफलता आपको जरूर मिलेगी। और बीच बीच में जो राष्ट्रीय समाचार प्रादेशिक समाचार आप सुनते हैं तो प्रतियोगी परीक्षा में यह काफी लाभप्रद होगा। आप चाहे कितना ही लिख ले, पढ़ ले, कंप्यूटर की जानकारी ले ले, लेकिन जो इंटरव्यू होता है मेरे समझ से उसमें सामान्य ज्ञान की बातें होती है, हमारे दैनिक जीवन की बातें होती है, कई बार ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं बहुत साधारण जिसके बारे में हम सोच नहीं पाते हैं। और जितने भी पदाधिकारी बनने का पद है उसमें जो है इंटरव्यू जरूर होता है, और उस इंटरव्यू में जो समाचार है हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, किसी भी भाषा का, वह जो है काफी सहायक होता है। हमारा सामान्य ज्ञान जितना व्यापक होगा हमारी सफलता उतना ही नजदीक होगी, और सामान्य ज्ञान से बाहर यदि आप जाइएगा तो सफलता में संदेह रहेगा। तो आप यदि 8 घंटा पढ़ते हैं, 10 घंटा पढ़ते हैं, जितना भी घंटा पढ़ते हैं, लेकिन उसमें 1 घंटा प्रतिदिन समाचार पत्रों को देखें, अखबारों को देखें, टीवी में जो समाचार है उसे देखें, करेंट अफेयर्स देखें, यह सब जानकारी जो है आपके जीवन के लक्ष्य को पूरा करेगी, आपके सपनों को पूरा करेगी। कई बार ऐसा होता है, कई हमारी महिला सिपाही बहने हैं जो पुलिस बन गई, लेकिन वह लगातार प्रयास की। पिछले बार जो बीपीएससी का रिजल्ट आया उसमें कई महिला पुलिस जो है SDPO बन गई। तो नौकरी में जाने के बाद भी यदि लगता है कि मेरे पास जो है साहस है, अवसर है, समय है, हम इसको कर सकते हैं, तो अपनी सफलता के लिए लगातार प्रयास करना चाहिए। पढ़ने का कोई उम्र नहीं होता है। आप लोग समाचार पत्रों में तस्वीर के साथ देखे होंगे कि 90 साल की दादी जी जो थी वह 10वीं की परीक्षा दी थी, क्योंकि ललक होना चाहिए, और जिसके अंदर ललक होता है, साहस होता है, कुछ करने का जुनून होता है, वह सफलता जरूर पाता है। इतिहास इसका साक्षी है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार
1: जी। सर, अगला संदेश पहुंचा हुआ है रेशमा कुमारी यादवपुर बाजार से। सर नमस्कार, रेडियो रिमझिम के ऑनलाइन ऑफलाइन कार्यक्रम को सुनती हूँ, अच्छा लगता है, जिसमें गांव देहात की सभी महिलाएं जुड़ती हैं। सेहत सही लाभ कई हमें बहुत पसंद है, इस तरह के कार्यक्रम को हमेशा चलाया जाए। तो सर इनके संदेशों पर अपना प्रतिक्रिया दें। साथ ही देखें तो मेरे पास अभी कई संदेश है, लेकिन समय का इशारा है कि कार्यक्रम को समापन करना चाहिए, तो प्रतिक्रिया देते हुए कार्यक्रम को समापन करें और विदा लें।
0: आदरणीय श्रोता बंधु, आपके पूरे परिवार को, जादवपुर बाजार वासियों को, रेडियो रिमझिम परिवार के तरफ से हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। काफी अच्छा लगता है अपने जिले के हर क्षेत्र से कुछ ना कुछ संदेश आता है। रेडियो रिमझिम आप सभी का है, और आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों के बदौलत हम बेहतर करने का प्रयास करते हैं। आपको याद होगा जब कोरोना काल आया था तो सब कुछ बंद हो गया था, कई रेडियो स्टेशन भी बंद हो गए थे, लेकिन रेडियो रिमझिम के युवा साथियों ने यह निर्णय लिया कि हम लोग रेडियो को चालू रखेंगे और हर सूचना को आम जनता तक पहुंचाएंगे, और हम लोगों ने ऐसा ही किया जिसका लाभ कई लोगों को मिला। रेडियो रिमझिम हमेशा और हर कार्यक्रम में प्रयास करता है कि हम आपको नवीन नूतन सूचना आप तक पहुंचाते रहें, आपके जीवन में खुशियों से हम लोग भर दें। हमारा जो कारोबार है, व्यापार है, वह खुशियों का है। हमें सुनने वाले लोग यदि निराश हैं तो वह खुश हो जाए, बेहतर बने और जीवन में कुछ करने की ललक रखें। जीवन में उम्र चाहे कोई भी हो, लेकिन यदि आपके अंदर उत्साह की कमी हो गई तो आप जो है उसी दिन बूढ़े हो गए। भले आपका उम्र 40 वर्ष है, लेकिन यदि आपका उम्र 70 वर्ष भी है और आपके जीवन में उत्साह है, खुशी है, कुछ करने का जुनून है, तो दौड़ता हुआ घोड़ा और चलता हुआ आदमी कभी बूढ़ा नहीं होता है। व्यक्ति बूढ़ा अपने बच्चों के कर्मों से हो जाता है, व्यक्ति झुक जाता है अपने बेटा बेटी के कर्मों से। यदि उसके बच्चे लायक हैं तो व्यक्ति हमेशा तंदुरुस्त, स्वस्थ और निरोग रहेगा। यह जीवन का एक फॉर्मूला है। हमने देखा है कई लोग ऐसे हैं गांव देहात या शहर में, उनके बच्चे अपने अपने पैरों पर खड़े हो गए, वह जो है उसी तरह युवा है रिटायरमेंट के बाद भी। और कई लोग ऐसे हैं जो सरकारी सेवा में रहते हुए 40, 45, 48 साल के उम्र में झुक गए हैं, झुरियाँ पड़ गई है, चश्मा लग गया है। यह सब पारिवारिक दबाव से होता है। तो जीवन में अपने आप को खुश रखें, अपने परिवार को खुश रखें। और यह धन से नहीं होता है, मन से होता है। एक जमाना ऐसा था जिस जमाने में हमारा जन्म हुआ या हमारे उम्र के लोगों का जन्म हुआ कि ढेकुल चलाया जाता था, और ढेकुल से जब धान कुटाई हो जाता था तब चावल खाया जाता था, पत्थर के चक्की पर गेहूं पिसाता था, और उस जमाने के रोटी हम लोग खाए हैं। और आज तो जीवन बड़ा ही सरल और सहज हो गया है। न सड़कें थी, न बिजली थी, न मोबाइल था उस जमाने में हम लोगों ने जन्म लिया, और उस जमाने के लोग भी खुशहाल थे। एक समय खाए नहीं खाए, खेतों में अनाज कम हो, लेकिन फिर भी लोग खुशहाल थे। भाईचारा और सद्भावना बना रहता था। वे लोग विकसित हैं कि आज के लोग विकसित हैं, यह श्रोता निर्णय करेंगे, आपके ऊपर निर्णय है। लेकिन ईश्वर का शुक्र है कि हमें वह समय भी देखने का अवसर मिला और आज का दौर भी हम देख रहे हैं। लोग कहाँ खुश हैं और कैसे खुश हैं। आदरणीय श्रोता बंधु, सेहत सही लाभ कई। कहा जाता है व्यक्ति का शरीर जो है एक मंदिर के तरह है, इसे स्वच्छ और पवित्र रखना है। रेडियो रिमझिम सेहत सही लाभ कई कार्यक्रम पिछले 2 वर्षों से चला रहा है, विभिन्न मुद्दों पर अपने बातों को रखता है, नाटक के माध्यम से, विज्ञापन के माध्यम से, एकांकी के माध्यम से लोगों तक यह बात पहुंचाना चाहता है कि यदि आप कहीं बीमार हैं या बीमार होने की संभावना है, आंखों से नहीं दिखाई देता है, या गर्भवती माताएं हैं, उन्हें सही और सटीक इलाज कराना चाहिए। किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए। यदि आप स्वस्थ हैं तो आपका जीवन खुशहाल है। आज के डेट में कई लोगों को देखेंगे बहुत सारा धन है, लेकिन डॉक्टर साहब कह दिए हैं कि आपको शुगर है, मीठा नहीं खाना पड़ेगा। तनख्वाह मिल रहा है 80,000 90,000, लेकिन एक गुरधनिया वे नहीं खा सकते हैं। यह समय का फेर है। तो सेहत सही लाभ कई, इसलिए अपने शरीर पर ध्यान दीजिए, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए, और मेरे समझ से कि प्रकृति के साथ रहिए। कहा जाता है कि सूरज के पहले जो व्यक्ति जागता है वह अक्सर स्वस्थ और निरोग रहता है, और जो व्यक्ति सूरज उगने के बाद जागता है वह स्वस्थ और निरोग नहीं रहता है। यह हमारी परंपरा भी है, इसलिए अपने सेहत पर हमें पूरा ध्यान देना है। और आजकल तो सरकार द्वारा कई तरह की योजना चलाई गई है कि आप जो है उस योजना का लाभ भी ले सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है साफ सफाई, हमें अपने बिछावन को, अपने घर को, अपने शरीर को साफ और स्वच्छ रखना है और कोशिश करना है कि घर के बाहर तुलसी का पौधा जरूर लगाएं। हमने सुना है, इसमें कितनी सच्चाई है इसकी पुष्टि हम नहीं करते हैं, लेकिन इस पृथ्वी पर दो पौधा है जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, एक तुलसी जी का और एक पीपल। यह पौधा जहाँ रहता है वह जो है ऑक्सीजन देता है, जिसे हम लोग प्राण वायु भी कहते हैं। तो इन पौधों को हमें लगाना भी चाहिए, यदि जगह कम है तो तुलसी जी लगाइए, जगह ज़्यादा है तो पीपल का पौधा लगाइए। आपके साथ पूरा गांव, शहर और मोहल्ला जो है पूरा ऑक्सीजन लेगा। आदरणीय श्रोता बंधु, आपका संदेश मिला कार्यक्रम आपके विचारों पर आधारित होता है। चूँकि हमें भी सप्ताह भर के बाद कुछ बोलने का, कुछ समझने का, कुछ सीखने का अवसर मिलता है और हम भी चाहते हैं कि आप लोगों का अनुभव से हम कुछ सीखें, कुछ बेहतर करें। जो अवसर मिला है उस अवसर के माध्यम से हम जन जन तक जुटे, जो माध्यम हमें मिला है उस माध्यम से हम लोगों की सेवा करें। हम इस कार्य में कितना सफल हैं इसका तो मूल्यांकन आप लोग कीजिएगा। बस चलते चलते यही कहूँगा कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, अपने परिवार पर ध्यान रखिए, सेहत सही लाभ कही। कार्यक्रम को बड़े ही ध्यान से सुनिए। जो नहीं सुन पाए हैं यदि वे रिक्वेस्ट भेजते हैं, अनुरोध करते हैं, तो उस कार्यक्रम को हम दिन में, रात में, दोपहर में जब आप आदेश देंगे उसका पुनः प्रसारण हम कर देंगे। इसी के साथ अब मुझे जाने की इजाज़त दीजिए। शुभ रात्रि, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।
1: तो श्रोताओं, ये रहा आज का संदेश मिला कार्यक्रम। यदि आप भी इस कार्यक्रम में अपना शिकायत, सुझाव, प्रशंसा या अपने विचारों को भेजना चाहते हैं तो आप भी भेज सकते हैं। इसके लिए हमारा पता है रेडियो रिमझिम, बंजारी मोड़, गोपालगंज, पिन कोड 84 14 28, तथा व्हाट्सएप नंबर है 98527 88 291, और ईमेल आईडी है radiorimjim@gmail.com। आप जिस माध्यम से अपने शिकायत, सुझाव या प्रशंसा या अपने विचारों को भेजना चाहते हैं उस माध्यम का उपयोग करके हम तक पहुंचा सकते हैं। तो फिलहाल इस कार्यक्रम से हमें भी दीजिए जाने की इजाज़त। सुनते रहिए रेडियो रिमझिम, जो हमेशा से कहता है सुनो दिल से। नमस्कार।
2: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल, घोष मोड़, दरगाह रोड, गोपालगंज।
3: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
4: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
5: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले, गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 62042434003 62042434403।
6: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है, रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
7: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी। अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
6: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड, गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
7: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
6: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेष विशेषज्ञों द्वारा।
7: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
6: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
7: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
6: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
8: नन्ना मुन्ना लाही हूँ देश का सिपाही हूँ।
9: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
8: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
9: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
8: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
10: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
11: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
10: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
11: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम एक डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
10: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
11: जानकारी है तो कॉल करे 6052 62112 पे।
6: ओम नमः शिवाय।
7: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
6: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे सुल्तानगंज देवघर बासुकीनाथ राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
7: दूसरा रूट थावे सुल्तानगंज देवघर बासुकीनाथ तारापीठ जगन्नाथपुरी गंगा सागर काली घाट कोलकाता रजरप्पा राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
6: तीसरा रूट थावे सुल्तानगंज देवघर बासुकीनाथ गया बोधगया वाराणसी अयोध्या गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
7: चौथा रूट थावे सुल्तानगंज देवघर बासुकीनाथ गुवाहाटी माँ कामाख्या धाम दार्जिलिंग सिलीगुड़ी गंगटोक जनकपुर अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
6: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
7: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
6: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
7: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
6: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज उपशाखा NH 27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
7: बोलबम हर

0: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 9857788291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 9857788291 या 9528374088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
1: घर बन रहा हो तो सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं, टाइल्स और फिटिंग्स का चुनाव भी होना चाहिए शानदार।
2: इसीलिए गोपालगंज जिले के लोगों की पहली पसंद बन चुका है बीके टाइल्स। बीके टाइल्स, यहाँ मिलेंगे सभी प्रकार के डिजाइनर टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, बेसिन, कॉमोड, बाथ फिटिंग्स और घर सजाने के कई आधुनिक प्रोडक्ट,
3: वो भी किफायती दामों पर। और खास बात, गोपालगंज जिले में हमारी 4 सुविधाजनक शाखाएं,
2: अरार मोड़ SP कोठी के पास गोपालगंज, दूसरा ब्रांच भटवा मोड़ के पास कुचाई को,
3: तीसरा ब्रांच इस्लामिया कॉलेज के पास मेन रोड थावे मीरगंज और चौथा ब्रांच बंतरिया मोड़ भोरे।
2: और अब सिवान जिले में भी हमारी 2 शाखाएं उपलब्ध हैं, सिवान ब्रांच कुशवाहा चौक हकाम बाईपास सिवान
3: और मैरवा ब्रांच बबनौली चौक मैरवा सिवान।
2: तो आज ही अपने सबसे नजदीकी बीके टाइल्स ब्रांच पर आए और करे बेहतरीन खरीदारी।
3: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें गोपालगंज ब्रांच में 8460571406, मीरगंज ब्रांच में 9693101611,
2: कुचाई कोट ब्रांच में 9693101602, भोरे ब्रांच में 8207856404,
3: सिवान ब्रांच में 9942071405, मैरवा ब्रांच में 8207856403।
4: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य SP त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज, जैसे
5: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
4: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
6: वैद्य SP त्यागी जी से मिलने का पता
4: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
6: जानकारी के लिए कॉल करें 9955-9494-53
4: और 9097-6160-02।
7: अरे ए चाची, जब आँख से साफ नहीं खेलो को तो रोड पर लड़खड़ा के काहे चलतनी, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
8: अरे ए बबू, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला। सुनले बानी की आँख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
7: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू। अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आ गइल बनी। यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीर फाड़ कइले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करतनी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आँख में कोनो तरह के दर्द भी ना हुई और ऑपरेशन भी हो जाए।
9: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुपरसिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से। साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर MA अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने रालसन होटल के पश्चिम गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9953-69015 पे।
10: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में।
11: वाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। कहा, भारत का लक्ष्य हिंद महासागर को अवसरों का सागर बनाना है। प्रधानमंत्री मोदी को सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में कहा, राष्ट्र निर्माण में जनभागीदारी भारत की सबसे बड़ी ताकत है। भारत ने कराची में हुई हालिया घटना को लेकर पाकिस्तान के आरोपों को खारिज किया। यूरोप में भीषण गर्मी का कहर जारी, फ्रांस में 1000 से अधिक लोगों की मौत। और महिला T20 विश्व कप में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 171 रन का लक्ष्य दिया। वहीं पुरुष क्रिकेट में भारत को आयरलैंड से 155 रन का लक्ष्य मिला। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ऐसे हिंद महासागर की परिकल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ साथ आर्थिक समृद्धि भी सुनिश्चित हो और जहां साझेदारी आकार पर नहीं बल्कि परस्पर सम्मान और विश्वास पर आधारित हो। श्री मोदी विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत का दृष्टिकोण हिंद महासागर को संभावनाओं का सागर बनाना है।
12: मेरी सेशल की यात्रा का संदेश स्पष्ट है, भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चले। आवर विजन इज टू मेक इंडियन ओशन इनटू एन ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटी।
11: बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा की और पारस्परिक हित के क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और सेशल्स की रक्षा और सुरक्षा एक दूसरे से जुड़ी है। श्री मोदी ने कहा कि भारत डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना में अपने अनुभव को सेशल्स के साथ साझा करेगा। उन्होंने कहा कि दोनों देश अपने उद्योगों के लिए नई संभावनाओं की तलाश जारी रखेंगे। दोनों पक्षों ने कृषि, वित्त, अंतरिक्ष और स्वास्थ्य सहित कई क्षेत्रों में समझौतों का आदान प्रदान किया। प्रधानमंत्री ने सेशल्स में यूपीआई भुगतान प्रणाली लागू करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने पर प्रसन्नता व्यक्त की।
12: हम डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत के सफल अनुभवों को सेशल के साथ साझा करेंगे और मुझे प्रसन्नता है कि आज यूपीआई को सेशल में लागू करने के लिए एमओयू किया जा रहा है।
11: सेशल्स के राष्ट्रपति हर्मिनी ने कहा कि हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा द्विपक्षीय संबंधों में महत्वपूर्ण बनी हुई है। दोनों देशों ने समुद्री डकैती, मादक पदार्थों की तस्करी, अवैध मछली पकड़ने और सीमा पार अपराध का मुकाबला करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी ने प्रधानमंत्री मोदी को यह प्रतिष्ठित सम्मान प्रदान किया। ये पहली बार है जब किसी भारतीय प्रधानमंत्री को यह सम्मान प्रदान किया गया है। प्रधानमंत्री ने यह सम्मान पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन से संघर्षरत देशों को समर्पित किया। बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि दक्षिण विश्व विशेष रूप से द्वीपीय राष्ट्र जलवायु परिवर्तन से सबसे अधिक प्रभावित हैं। उन्होंने निष्पक्षता, उत्तरदायित्व और समानता के साथ जलवायु कार्रवाई का आह्वान किया। श्री मोदी ने कहा कि यही जलवायु न्याय का मूल तत्व है। श्री मोदी ने डिजिटल नवाचार के क्षेत्रों में भारत सेशल्स सहयोग को मजबूत

0: बिरला, गृहमंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी। श्री बिरला ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये सम्मान प्रधानमंत्री के जलवायु कार्रवाई, पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के दृष्टिकोण को परिलक्षित करता है। गृहमंत्री ने कहा कि ये सम्मान दुनिया में भारत के बढ़ते प्रभाव को दिखाता है। श्री जयशंकर ने कहा कि ये सम्मान जलवायु परिवर्तन और सतत विकास को बढ़ाने में श्री मोदी की नेतृत्वकारी भूमिका को दर्शाता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ये सम्मान श्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व और वैश्विक जलवायु परिवर्तन के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के बीच हुई वार्ता में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा हुई है। श्री मिश्री ने विक्टोरिया में संवाददाताओं को आज बताया कि दोनों नेताओं ने स्वास्थ्य, शिक्षा, क्षमता निर्माण, डिजिटल परिवर्तन, सतत विकास, सामाजिक अवसंरचना, नवीकरणीय ऊर्जा, समुद्री सुरक्षा और रक्षा क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्र निर्माण में जन भागीदारी की शक्ति भारत की सबसे बड़ी ताकत है। श्री मोदी ने आज आकाशवाणी से कार्यक्रम मन की बात में राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि ये भावना उस समय एक बार फिर दिखाई दी जब उन्होंने पश्चिम एशिया में युद्ध जैसी स्थिति को देखते हुए नागरिकों से कुछ निश्चित उपाय अपनाने को कहा।
1: पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कहा था कुछ समय के लिए सोना खरीदने से बचें, लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें, लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी, किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने प्रौद्योगिकी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में मानवीय रचनात्मकता का संरक्षण करने के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा कि नालंदा विश्वविद्यालय ने इसे हासिल करने का समाधान खोज लिया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत ने कराची में हुई हालिया घटना के संबंध में पाकिस्तान के लगाए आरोपों को स्पष्ट रूप से खारिज करते हुए उन्हें निराधार बताया है। मीडिया के सवालों के जवाब में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज कहा कि दूसरों पर उंगली उठाने के बजाय पाकिस्तान को आत्मनिरीक्षण करना चाहिए और अपने क्षेत्र में मौजूद आतंकी ढांचे के खिलाफ ठोस कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को आतंकवाद को अपनी राज्य नीति के साधन के रूप में इस्तेमाल करने की प्रवृत्ति से छुटकारा पाना चाहिए। गृहमंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के गांधीनगर में पीएम फैमिली केयर ट्रैकर की पायलट परियोजना का शुभारंभ किया। ये एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म जन्म पंजीकरण संख्या या आभा आईडी से जुड़ी एक विशिष्ट आईडी का उपयोग करके गर्भावस्था से लेकर 18 वर्ष की आयु तक लाभार्थियों के स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा पर नजर रखेगा। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि पिछले 12 वर्षो में देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार योजनाएं बनाने के साथ साथ ये सुनिश्चित करने के लिए भी प्रतिबद्ध है कि उनका लाभ प्रत्येक जरूरतमंद व्यक्ति तक पहुंचे। कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को साकार करने में गांव की केंद्रीय भूमिका का उल्लेख किया है। नई दिल्ली में आज राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि ग्रामीण श्रमिकों की आजीविका सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए ग्रामीण विकास में तेजी लाने के लिए विकसित भारत ग्रामीण योजना के अंतर्गत राज्यों के हिस्से सहित 1,51,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है।
2: इस साल बजट प्रावधान है 1,51,282 करोड़ रुपया केंद्र और राज्य का मिला के, ये 1,50,000 करोड़ से ज्यादा रुपया मजदूरों को मजदूरी देने में तो काम आएगा ही। इससे आप गांव की हालत पूरी तरह से बदल सकते हैं। 5 साल में 7,50,000 करोड़ लगभग लगे, 2,86,000 पंचायत है। एक पंचायत के हिस्से में कितना पैसा आएगा आप कल्पना कीजिए।

0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत देश को स्वस्थ और नशा मुक्त बनाने का आह्वान किया है। वे आज बेंगलुरु में राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस समारोह और नशा मुक्त भारत अभियान कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार 3 दिन की जम्मू कश्मीर यात्रा पर आज श्रीनगर पहुंचे। अपनी यात्रा के दौरान वे कश्मीर घाटी में विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त चुनाव प्रक्रिया की जमीनी स्तर पर विभिन्न कार्यक्रमों की समीक्षा भी करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। यूरोप में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी का कहर जारी है। फ्रांस, जर्मनी और चेक गणराज्य सहित कई देशों ने सप्ताहांत में तापमान के नए रिकॉर्ड दर्ज किए हैं। फ्रांस के स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि बुधवार से अब तक भीषण गर्मी के कारण लगभग 1000 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 85% बुजुर्ग थे।
1: फ्रांस के स्वास्थ्य विभाग ने आज एक बयान में कहा कि सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में इले डी फ्रांस, नोवेल एक्विटाइन, ब्रिटनी, सेंटर वॉल डे लोइरे, नॉर्मैंडी और पेस डे ला लोइरे शामिल हैं। फ्रांस के कुछ हिस्सों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया है। पेरिस में भीषण गर्मी के कारण एफिल टावर और लूवर संग्रहालय को भी शाम को जल्द ही बंद कर दिया जा रहा है। जर्मनी और चेक गणराज्य में भी तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया है। भीषण गर्मी के कारण कुछ हिस्सों के जंगल में आग लगने से आपातकालीन सेवाओं पर दबाव बढ़ा है। हंगरी में डेन्यूब नदी में बढ़ते तापमान से एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र प्रभावित हुआ है, जिससे कुछ रिएक्टरों के संचालन पर असर पड़ा। समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: फ्रांस के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में आज एक विमान दुर्घटना में 11 लोगों की मौत हो गई। आपात सेवाएं घटनास्थल पर पहुंच गई हैं और दुर्घटना के कारणों की जांच जारी है। सऊदी अरब की तेल कंपनी अरामको से संबंधित एक हेलीकॉप्टर आज हॉर्मूज जल डमरू मध्य के पश्चिम में स्थित रास तनूरा में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस दुर्घटना में 14 लोगों की मौत हो गई। असम के धेमाजी जिले में लगातार कई दिनों से हो रही तेज बारिश और अरुणाचल प्रदेश में हुई मूसलाधार बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति और अधिक गंभीर हो गई है। सिमेन नदी में आए उफान के कारण लगभग 60 परिवार बेघर हो गए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: असम के धेमाजी जिले में सिमेन नदी की उफनती धारा ने एक महत्वपूर्ण रेलवे पुल के हिस्से को बहा दिया है, जिसे क्षेत्र की रेलवे संपर्क व्यवस्था पूरी तरह बाधित हो गई है और रेल सेवाएं ठप हो गई है। राज्य आपदा मोचन बल SDRF की टीमें दिमो पंचायत के अंतर्गत उज्जवलपुर गांव में राहत और बचाव अभियान चला रही है, जहां फंसे 60 परिवारों को सुरक्षित निकाला जा रहा है। अब तक किसी के हताहत होने या जानहानि की सूचना नहीं है। हालांकि बाढ़ से संपत्ति और पशुधन को भारी नुकसान पहुंचा है। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में लंदन के लॉर्ड्स में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 171 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक ऑस्ट्रेलिया ने एक ओवर पर 9 रन बना लिए हैं। उधर बेलफास्ट में आयरलैंड के साथ दूसरे T20 क्रिकेट मैच में जीत के लिए 155 रन के जवाब में भारत ने बारिश के कारण खेल रोके जाने तक 8 ओवर में 4 विकेट पर 54 रन बना लिए थे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। कहा, भारत का लक्ष्य हिंद महासागर को अवसरों का सागर बनाना है। प्रधानमंत्री मोदी को सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में कहा, राष्ट्र निर्माण में जन भागीदारी भारत की सबसे बड़ी ताकत है। यूरोप में भीषण गर्मी का कहर जारी। फ्रांस में 1000 से अधिक लोगों की मौत। और महिला T20 विश्व कप में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 171 रन का लक्ष्य दिया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Good evening. This is Akashwani and I am Nishit Kumar with the news at 9.
4: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमझिम 90.4 एफएम पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
5: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
6: अरे तो उसे डांटते क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
7: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
8: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
7: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
5: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
9: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
10: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
9: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
10: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
9: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
10: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
9: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
10: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
11: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
12: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
9: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
10: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड, गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
9: यहां आयुष्मान कार्ड से 5,00,000 रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
10: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेष द्वारा।
9: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता, MBBS, MS, सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा, MBBS, MD, DNB, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
10: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD, IPD, ICU, मॉड्यूलर OT, अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
9: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा, भोजपुरवा, NH 27, गोपालगंज।
10: कॉल करें 70-70-75-63 या 70-70-75-42 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
13: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
14: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
13: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
14: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ 1 रुपए प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है, माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी, संपर्क करें 99-399-66-999।
15: क्या चाहते हो? मैं ना जाऊं अपने दोस्त की शादी में।
16: क्यों, क्या हुआ है?
15: तुम्ही ने तो कहा था मुझे डिजाइनर लहंगा, साड़ी और गाउन दिलाओगे।
16: अरे तो कौन सी बड़ी बात है, आज ही चलते हैं गोपालगंज में लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स, वहाँ तुम्हें तुम्हारी मन पसंद के अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाएंगे।
15: फिर ये भी ठीक है, चलो चलते हैं लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स।
7: शादी विवाह या किसी भी शुभ अवसर पर एक बार सेवा का मौका अवश्य दें, लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स, जो है मेन रोड गोपालगंज में।
17: नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल, शराब लदी हुई गाड़ी ने एक महिला को कुचला, गाड़ी पलटी, महिला की हो गई मौत। हर रविवार को अब हो रहा है पंचायत विकास दिवस का आयोजन। पल्स पोलियो अभियान की जिला पदाधिकारी ने की शुरुआत। हत्याकांड के एक आरोपी को न्यायालय ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा और हथुआ अनुमंडलीय अस्पताल में भी शुरू हो गई डायलिसिस सेवा। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र, अब हालचाल विस्तार से। उत्तर प्रदेश की तरफ से शराब की खेप लेकर आ रही एक अनियंत्रित स्कॉर्पियो गाड़ी ने कुचायकोट थाना क्षेत्र के बलथरी चेक पोस्ट के पास कुर्म टोला गांव में बाहर बैठी एक महिला को कुचल दिया। इस हादसे में महिला की मौके पर ही मौत हो गई। दुर्घटना के बाद स्कॉर्पियो पलट गई और चालक मौके से फरार हो गया। घटना के बाद ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा, उन्होंने पुलिस के खिलाफ भी जमकर विरोध प्रदर्शन किया। मृत महिला कुर्म टोला गांव के प्रभुनाथ यादव की 50 वर्षीय पत्नी सुगांती देवी बताई जा रही है। यह अपने घर के बाहर दरवाजे पर बैठी थी, इसी बीच यह शराब लदी हुई गाड़ी अनियंत्रित होकर महिला को कुचलते हुए पलट गई, जिससे सुगांती देवी की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। जानकारी के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया, स्कॉर्पियो गाड़ी को भी कब्जे में लिया। स्कॉर्पियो गाड़ी में रखी गई भारी मात्रा में शराब वहां इधर उधर बिखर गई। पुलिस ने शराब को भी जब्त किया है और अब इस मामले में आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। बिहार सरकार के निर्देशानुसार अब प्रत्येक माह के अंतिम रविवार को आयोजित होने वाले पंचायत विकास दिवस के तहत आज गोपालगंज के माझा प्रखंड के माझा पश्चिमी पंचायत भवन पर पंचायत विकास दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें जिला प्रभारी और सचिव सह राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव मुख्य रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम में जिला पदाधिकारी समीर सौरभ, उप विकास आयुक्त गौरव कुमार, अपर समाहर्ता राजेश्वरी पांडे सहित तमाम जिले के विभिन्न विभागों के पदाधिकारी भी रहे। कार्यक्रम के दौरान पंचायत स्तर पर संचालित विभिन्न विकासात्मक योजनाओं की समीक्षा की गई, ग्रामीणों से संवाद किया गया, उनकी समस्याओं एवं सुझावों को सुना गया। अधिकारियों ने सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र लाभुकों तक पहुंचाने और पंचायतों में विकास कार्यों को गति देने जैसे जन भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया। जिला प्रभारी सचिव ने पंचायत स्तर पर योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन, पारदर्शिता एवं समयबद्ध तरीके से कार्य को पूरा करने का निर्देश दिया। वहीं जिला पदाधिकारी समीर सौरभ ने संबंधित अधिकारियों को ग्रामीण क्षेत्रों की आवश्यकताओं के अनुरूप विकास कार्य सुनिश्चित करने को कहा। आज गोपालगंज के मॉडल सदर अस्पताल में जिलाधिकारी समीर सौरभ के द्वारा राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के तहत पल्स पोलियो अभियान चक्र जून 2026 का फीता काटकर शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर जिला पदाधिकारी ने बच्चों को पोलियो की दो बूंद दवा पिलाकर अभियान की शुरुआत की। कार्यक्रम में सिविल सर्जन वीरेंद्र प्रसाद, जिला प्रबंधक धीरज कुमार सहित सदर अस्पताल के तमाम चिकित्सक और स्वास्थ्य कर्मी उपस्थित रहे। जिला पदाधिकारी ने कहा कि पोलियो उन्मूलन के लिए प्रत्येक 0 से लेकर 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाना जरूरी है। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी लोग एक एक बच्चों का ख्याल रखते हुए उन्हें पोलियो की खुराक अवश्य पिलाएं। हथुआ के अनुमंडलीय अस्पताल में भी अब डायलिसिस की सेवा शुरू हो गई है। अब किडनी के मरीजों को डायलिसिस के लिए दूर दराज के शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा। इस नई सुविधा से स्थानीय मरीजों को समय, पैसा और यात्रा की परेशानी से राहत मिलेगी। यह स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे पहले गोपालगंज के सदर अस्पताल में भी डायलिसिस की सेवा दी जा रही है, जहां बहुत सारे स्थानीय मरीजों को इस सेवा का लाभ मिल रहा है। अब हथुआ के अनुमंडलीय अस्पताल में भी इस सेवा के शुरू होने से किडनी के मरीजों को काफी सहूलियत मिलेगी। गोपालपुर थाना क्षेत्र में 2024 में हुई एक हत्याकांड के मामले में आरोपी को न्यायालय ने सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 50,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया। बताया जा रहा है कि कांड संख्या 95/2024 में दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने अभियुक्त गुड्डू यादव, पिता दयानंद यादव, साकिन सिपाया ढाला, थाना विशंभरपुर, जिला गोपालगंज को दोषी पाते हुए हत्याकांड के मामले में आजीवन सश्रम कारावास और 50,000 रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड नहीं देने पर 6 महीने की अतिरिक्त कारावास की सजा भी आरोपी को भुगतनी होगी। आज जिले के 3 परीक्षा केंद्रों पर सिपाही भर्ती परीक्षा का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। हालांकि जितने अभ्यर्थियों को हिस्सा लेना था उनमें ज्यादातर अभ्यर्थी इस परीक्षा में अनुपस्थित रहे। पहली बार देखने को मिल रहा है कि उपस्थित अभ्यर्थियों से ज्यादा अनुपस्थित अभ्यर्थियों की संख्या है। दरअसल VM इंटर कॉलेज, DAV और SS बालिका उच्च विद्यालय, ये तीन सेंटरों पर सिपाही भर्ती का परीक्षा आयोजित किया गया था, जिसमें 2,352 परीक्षार्थियों को हिस्सा लेना था। इनमें से मात्र 950 अभ्यर्थी ही परीक्षा में उपस्थित हुए और 1,402 अभ्यर्थी इस परीक्षा से अनुपस्थित पाए गए। हालांकि शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षा को सम्पन्न करा लिया गया। समाहरणालय के सभागार में संभावित बाढ़ एवं सुखाड़ 2026 की पूर्व तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की गई। इसकी अध्यक्षता जिला प्रभारी सचिव गोपालगंज, सह सचिव राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग श्री जय सिंह ने की। बैठक में जिला पदाधिकारी, उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्ता और आपदा प्रबंधन पदाधिकारी सहित तमाम पदाधिकारी गण मौजूद रहे। इस दौरान संभावित बाढ़ एवं सुखाड़ की स्थिति से निपटने के लिए जिला प्रशासन के द्वारा की गई तैयारियों की विभागवार समीक्षा की गई। सचिव जय सिंह ने सभी संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि आपदा की स्थिति में आम लोगों को त्वरित सहायता उपलब्ध कराएं। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वाधान में आज कुचायकोट प्रखंड के बखरी पंचायत भवन परिसर में अस्थायी लोक अदालत का गठन, अस्थायी लोक अदालत के पीठ स्थान, अस्थायी लोक अदालत में दाखिल होने वाले वादों की विवरणी और अस्थायी लोक अदालत के सदस्यों इत्यादि के संबंध में उपस्थित लोगों को जानकारी दी गई, जिसमें जिला विधिक सेवा प्राधिकार के पैनल अधिवक्ता संजीव एवं PLV अमरेश कुमार की टीम ने उपस्थित प्रतिभागियों को लोक अदालत के संदर्भ में आवश्यक जानकारी दी। विजयपुर थाना की पुलिस ने भी हत्या के प्रयास में फरार चल रहे प्राथमिकी आरोपी कन्हैया शाह को गिरफ्तार कर लिया। यह आरोपी विजयपुर थाना क्षेत्र के नौका बंगरा निवासी श्रीनाथ सिंह का पुत्र है और इस पर 198/26 हत्या के प्रयास का मामला दर्ज था और पुलिस इसे ढूंढ रही थी। गुप्त सूचना के आधार पर गिरफ्तार कर इसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। कुचायकोट थाना की पुलिस ने हत्या के प्रयास में फरार चल रहे प्राथमिकी आरोपी मोहम्मद अफजल पिता स्वर्गीय हसरुद्दीन साकिन महुआ थाना कुचायकोट को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के बाद इसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इधर कुचायकोट थाना की पुलिस ने चोरी की एक कार को बरामद किया है और दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने वाहन जांच अभियान शुरू किया था। इसी कड़ी में कुचायकोट के भटवा NH 27 पर इस कार को पकड़ा गया। इसकी रोक कर जांच की गई तो वाहन स्वामी द्वारा वैध कागजात प्रस्तुत नहीं किए गए, जिस पर विधिवत जांच करने पर यह कार चोरी की पाई गई। इस मामले में पुलिस ने आरोपी शिव कुमार पिता रणवीर सिंह साकिन देयर थाना भटकला जिला फतेहाबाद हरियाणा और अनुज कुमार साकिन सुडौला थाना पीलू खेड़ा जिला हरियाणा जिल्द को भी गिरफ्तार किया गया। इन दोनों के पास से चोरी की कार को जब्त किया गया है और आरोपियों पर आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। इधर नगर थाना की पुलिस ने हत्या के प्रयास में फरार चल रहे प्राथमिकी अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि पकड़ा गया आरोपी अजगर कुजदा है, जो मुमताज कुजदा का पुत्र है और मठिया थाना नगर का रहने वाला है। पुलिस ने इस पर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया था और इसे अब गिरफ्तार कर लिया गया है। इस पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। बरौली थाना की पुलिस ने भी हत्या के प्रयास में फरार चल रहे प्राथमिकी आरोपी अंकित कुमार को गिरफ्तार किया। यह आरोपी बरौली के कोटवा गांव के शंभू शाह का पुत्र है और इस पर भी 2026 में ही हत्या के प्रयास का मामला दर्ज हुआ था। आज इसे भी गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इधर उचका गांव थाना क्षेत्र के छोटका साखे गांव में पुरानी रंजिश को लेकर खूनी संघर्ष हुआ है, जिसमें लगभग एक दर्जन लोग दोनों पक्षों से जख्मी हैं। बताया जा रहा है कि पूर्व मुखिया और पूर्व सरपंच के बीच भूमि विवाद और चुनावी मामलों को लेकर भी विवाद हो गया। दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे और धारदार हथियार से एक दूसरे पर हमला किए गए। इस मामले में एक तरफ से 8 लोग जख्मी हैं और एक तरफ से 2-3 लोग जख्मी हैं। सभी का इलाज चल रहा है। इसमें कुछ लोगों की स्थिति गंभीर है, जिन्हें गोरखपुर रेफर किया गया है। इस मामले में अब पुलिस ने विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। गोपालगंज शहर के बस स्टैंड के पास भी मार्ट के समीप आपसी विवाद में मारपीट हो गई, जिसमें एक महिला जख्मी हो गई है। महिला को भी सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां इनका इलाज चल रहा है। गोपालपुर थाना क्षेत्र के करवतही गांव में शराब के लिए पैसे नहीं मिलने पर पति ने खौफनाक कदम उठाया। पत्नी ने जब शराब पीने से मना किया, पति को पैसा नहीं दिया, तो उसने घर में रखे चाकू से अपने ही गला पर हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि जिसके बाद अफरा तफरी मच गई। घायल पति को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, जहाँ इसका इलाज चल रहा है। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। शराब लदी हुई गाड़ी ने एक महिला को कुचला, गाड़ी पलटी, महिला की हो गई मौत। हर रविवार को अब हो रहा है पंचायत विकास दिवस का आयोजन। पल्स पोलियो अभियान की जिला पदाधिकारी ने की शुरुआत। हत्याकांड के एक आरोपी को न्यायालय ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा। और हथुआ अनुमंडलीय अस्पताल में भी शुरू हो गई डायलिसिस सेवा। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
18: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
19: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 8604348652 पे।
20: ओम नमः शिवाय।
21: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
20: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
21: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
20: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
21: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
20: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
21: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
20: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
21: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
20: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
21: बोलबम हर हर महादेव।
22: ठक ठक।
23: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
24: अच्छा मिला ही नहीं।
23: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
25: जी हाँ, कमल श्री। याद रखिए, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
23: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
25: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
26: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
27: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
26: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
28: वीकेंड क्लासिक रेडियो शो सुन रहे हैं आप। एक बार फिर से लौट आई हूँ अपनी सुपर हिट एवरग्रीन गानों की प्लेलिस्ट और उनसे जुड़े कुछ किस्से, कुछ कहानियां लेकर। आज हम उन फिल्मों के बारे में बात करने वाले हैं विच वर आई थिंक अहेड ऑफ इट्स टाइम। वो फिल्में जो बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल रहा करती थी और ज्यादा सुर्खियां बनाती थी, उन्हीं में से एक थी गुलजार साहब की आंधी, जो 1975 में रिलीज हुई थी। ये वो टाइम था जब इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर थी और उन्होंने इमरजेंसी डिक्लेयर किया था। ये फिल्म थिएटर्स में तो काफी चल रही थी, लेकिन फिल्म के कुछ हफ्तों बाद इसे बैन कर दिया गया था। ये इसलिए हुआ था क्योंकि फिल्म की लीड एक्ट्रेस सुचित्रा सेन जी का रोल एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर का था, जिसके साड़ी से लेकर पर्सनल लाइफ सब कुछ इंदिरा जी से रिजेंबल करता था।
0: इनफैक्ट सुचित्रा जी का वॉकिंग स्टाइल से लेकर स्पीच डिलीवरी भी इंदिरा जी से मैच करता था। और आग में घी तब लगी जब मूवी के कुछ सीन्स में हीरोइन स्मोक और ड्रिंक करती हुई दिखाई थी। इंटरेस्टिंगली द बैन वॉज लेटर रिमूव्ड जब उस टाइम के इन्फॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर इंदर कुमार गुजराल जी ने ये फिल्म देखी थी। उन्हें फिल्म का इंदिरा जी की लाइफ से कोई कनेक्शन लगा ही नहीं, लेकिन स्टेट रन टेलीविजन चैनल्स पर तो तब ही रिलीज की गई थी जब 1977 में इंदिरा जी इलेक्शंस हार गई थी। वैसे इस फिल्म के हिट होने का एक और कारण था फिल्म का सरप्राइज म्यूजिक, जो कि आरडी बर्मन साहब ने दिया था। सरप्राइज इसलिए क्योंकि वो उस दौरान अपने वेस्टर्न बीट्स के लिए जाने जाते थे, लेकिन आंधी में उन्होंने पूरी तरह से क्लासिकल म्यूजिक दिया था। तो यहाँ पर सुनाती हूँ आपको आंधी फिल्म से ही सुपर हिट गाना लता जी और किशोरदा की आवाज में। और कुछ देर के बाद बात करेंगे एक ऐसी हिंदी फिल्म के बारे में जिसे पूरे होने में 16 साल लग गए थे। कौन सी थी ये फिल्म और इतना लंबा क्यों समय लगाया इस फिल्म ने रिलीज होने में, बताऊंगी आपको। सुनते रहिए वीकेंड क्लासिक रेडियो शो।

वीकेंड क्लासिक रेडियो शो सुन रहे हैं आप। एक बार फिर से मैं यहाँ पर आपका स्वागत करती हूँ आज के इस एपिसोड में, जहाँ पर मैं बात कर रही हूँ कुछ ऐसी फिल्मों के बारे में जिन्होंने सबसे ज्यादा खबरें बनाई थी, यानी कि द मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल फिल्म्स दैट इंडियन सिनेमा हैज एवर सीन। 1960 की फिल्म, वो फिल्म जिसने इंडियन सिनेमा को एक नया रूप दे दिया था, उस फिल्म के बारे में ना बात करें ऐसा कैसे हो सकता है। आखिर इस फिल्म को बनने में 16 साल जो लग गए थे। मैं बात कर रही हूँ द इटर्नल क्लासिक मुगले आजम की। आखिर इतने साल लगे क्यों इस फिल्म को बनने में? वो इसलिए क्योंकि इसकी मेकिंग में काफी सारे प्रॉब्लम्स आई थी। सबसे पहले तो फिल्म के फाइनेंसर ने बैकआउट कर लिया था, फिर कास्टिंग में काफी चेंजेस आए, चैलेंजेस आए। ऑल्सो फिल्म शीश महल में शूट की जानी थी और उसका रेप्लिका बनाने में ही 2 साल लग गए थे। इतना ही नहीं, फिल्म में मधुबाला जी की ज्वेलरी इतनी ज्यादा हैवी थी कि उसके कारण उन्हें गर्दन में प्रॉब्लम हो गई थी और वो बिस्तर में थी, बेड रिडन थी फॉर अ लॉट ऑफ डेज। ये फिल्म उस समय की हाईएस्ट ग्रॉसिंग बॉलीवुड फिल्म थी। वैसे एक ऐसी भी फिल्म थी जिसके लीड एक्ट्रेस को थ्रेटनिंग लेटर्स और कॉल आते थे, और वो भी बॉलीवुड के ही एक एक्ट्रेस की मम्मी से। कौन सी थी ये फिल्म जिसके लिए ये सब कुछ हो रहा था और कौन थी ये एक्ट्रेस, बताऊंगी आपको कुछ ही देर के बाद। लेकिन उससे पहले आइए सुनते हैं मुगले आजम फिल्म का वो आइकॉनिक गाना जिसे शीश महल में शूट किया गया था और जिसका कॉस्ट प्रोडक्शन 10 मिलियन का था। मतलब उस समय में 1 मिलियन में तो मूवीज बन जाया करती थी। इस गाने को लता जी ने बाथरूम में गाया था, क्योंकि उस समय रिवर्ब हुआ नहीं करता था, टेक्नोलॉजी इतनी थी नहीं, तो इसलिए थोड़ी गूंज आए गाने में, इसलिए इस गाने को बाथरूम में रिकॉर्ड किया था। मैं बात कर रही हूँ फॉरएवर एवरग्रीन क्लासिक सॉन्ग प्यार किया तो डरना क्या की। सुनिए ये गाना।

0: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
1: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
2: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
3: आज ही आएं गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
4: सुनिए सुनिए सुनिए,
5: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
4: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
5: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
4: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
6: घर बन रहा हो तो सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं, टाइल्स और फिटिंग्स का चुनाव भी होना चाहिए शानदार।
7: इसीलिए गोपालगंज जिले के लोगों की पहली पसंद बन चुका है BK टाइल्स।
3: BK टाइल्स, यहाँ मिलेंगे सभी प्रकार के डिजाइनर टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, बेसिन, कॉमोड, बाथ फिटिंग्स और घर सजाने के कई आधुनिक प्रोडक्ट,
2: वो भी किफायती दामों पर। और खास बात, गोपालगंज जिले में हमारी 4 सुविधाजनक शाखाएं,
3: अरार मोड़ SP कोठी के पास गोपालगंज, दूसरा ब्रांच भटवा मोड़ के पास कुचायको,
2: तीसरा ब्रांच इस्लामिया कॉलेज के पास मेन रोड थावे मीरगंज, और चौथा ब्रांच बंतरिया मोड़ भोरे।
3: और अब सिवान जिले में भी हमारी 2 शाखाएं उपलब्ध हैं, सिवान ब्रांच कुशवाहा चौक हकाम बाईपास सिवान,
2: और मैरवा ब्रांच बबनौली चौक मैरवा सिवान।
3: तो आज ही अपने सबसे नजदीकी BK टाइल्स ब्रांच पर आए और करे बेहतरीन खरीदारी।
2: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करे गोपालगंज ब्रांच में 8460571406, मीरगंज ब्रांच में 9693101611,
3: कुचाई कोट ब्रांच में 9693101602, भोरे ब्रांच में 8207856404,
2: सिवान ब्रांच में 9942071405, मैरवा ब्रांच में 8207856403।
8: वीकेंड क्लासिक रेडियो शो, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की कुछ ऐसी कंट्रोवर्शियल फिल्मों से गाने लेकर के आई हूँ मैं, जिनकी किस्से कहानियां आपको आज तक भी याद होंगे। फिल्में अक्सर एक्टर्स की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री, इंटिमेट सीन्स और एक्ट्रेसेस के बोल्ड सीन्स के लिए सुर्खियों में रही हैं, लेकिन इन सबका एक्टर्स की पर्सनल लाइफ पर बहुत बुरा असर पड़ता था। 1982 में BR चोपड़ा जी की फिल्म निकाह रिलीज हुई थी। इस फिल्म में एक औरत को समाज, परिवार और इवन पति से कैसे ट्रीट किया जाता है, ये दिखाया गया था, ये दर्शाया गया था। फिल्म की लीड एक्ट्रेस सलमा आगा जी का कैरेक्टर औरतों के लिए बहुत ही इंस्पायरिंग था। ऑल्सो इस फिल्म का टाइटल पहले तलाक तलाक तलाक रखा गया था, बट देन एक दूसरे फिल्म मेकर बना रहे थे एक फिल्म जिसका नाम था डिवोर्स, तो उन्होंने ऑब्जेक्ट किया और इसलिए इस फिल्म का नाम चेंज कर दिया गया और निकाह रखा गया। वैसे इस फिल्म के लीड रोल के लिए BR चोपड़ा जी को फ्रेश फेस चाहिए था, और तब उनकी मुलाकात हुई सलमा आगा जी से, जो कि एक टोटल न्यू कमर थी बॉलीवुड में। चोपड़ा जी ने उन्हें ट्रेन भी किया और लॉन्च भी किया एज द हीरोइन ऑफ निकाह। पर इस रोल के लिए अमृता सिंह जी की माँ रुखसाना सुल्तान जी चाहती थी कि अमृता जी को लिया जाए। शी ट्राइड रियली हार्ड टू इन्फ्लुएंस BR चोपड़ा जी, लेकिन रोल के नीड्स के मुताबिक चोपड़ा साहब एक फ्रेश फेस को ही लेना चाहते थे, और उन्होंने पहले ही जीनत अमान को इसीलिए रिजेक्ट कर दिया था कि वो इस रोल के लिए ठीक नहीं थी, क्योंकि वो जाना पहचाना चेहरा हो चुकी थी। इसलिए उन्होंने सलमा आगा जी को साइन किया, जिसके कारण सुल्ताना जी को बहुत गुस्सा आया, और वो सलमा जी को कॉल पे कॉल किया करती थी, लेटर्स भेजा करती थी, ये कहने के लिए कि वो फिल्म ना करे, छोड़ दे, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। लेटर्स में इनफैक्ट सलमा जी को वो वापस लंदन लौट जाने की धमकी भी देती थी, लेकिन इस सब का सलमा जी पर कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने सारी धमकियां इग्नोर की और वो फिल्म के रिलीज तक इंडिया में ही रही। चलिए, तो इतनी कॉन्ट्रोवर्सीज के बाद ये फिल्म रिलीज हुई थी, तो इसी फिल्म का गाना अब तो सुनना बनता ही है। गुलाम अली साहब की आवाज में सुनिए ये गाना।

राम तेरी गंगा मैली फिल्म से था ये गाना वीकेंड क्लासिक रेडियो शो पर। आज बात कर रहे हैं हम कुछ ऐसी फिल्मों के बारे में जो कि समय से पहले ही रिलीज हो गई थी। मुझे लगता है तभी एक फिल्म कंट्रोवर्सी क्रिएट करती है जब लोग ऐसा कंटेंट देखने के लिए मेंटली सोशली तैयार नहीं हुए होते हैं। वैसे ये जो फिल्म थी राम तेरी गंगा मैली, इस फिल्म के रिलीज में भी बहुत दिक्कतें आई थी क्योंकि इस फिल्म में मंदाकिनी के काफ़ी बोल्ड सीन्स थे और उससे ज़्यादा कुछ अगर कंट्रोवर्शियल था तो वो था एक बेबी ब्रेस्ट फीडिंग सीन। सेंसर बोर्ड ने काफ़ी अपोज किया था उस समय, लेकिन डायरेक्टर राजकुमार जी ने अपना स्टैंड नहीं छोड़ा। वैसे राजकुमार जी की काफ़ी सारी फिल्में कंट्रोवर्शियल रही हैं जिनमें विमेन का कैरेक्टर बहुत ही बोल्ड रखते थे, वन ऑफ विच इज़ ऑब्वियसली सत्यम शिवम सुंदरम। वैसे क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म के लिए जीनत अमान जी एक गांव की लड़की की ही वेशभूषा में तैयार होकर के पहुंची थी राज कपूर जी के ऑफिस।

सुपरस्टिशियस थे कि इस फिल्म के रिलीज होने से पहले उन्होंने पीना, दारू पीना या फिर नॉन वेज खाना खाना सभी को छोड़ दिया था भगवान को खुश करने के लिए कि बस ये मेरी फिल्म जो है ना ये हिट हो जाए। हिट तो हुई ही और इसके गाने सुपर हिट, इसीलिए सुनाती हूँ आपको इसी फिल्म से गाना भोर भय पनघट पे वीकेंड क्लासिक रेडियो शो पर।

0: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
2: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
2: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
2: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710309 या 9765665750।
3: प्रसाद क्लिनिक,
4: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
3: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंग स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज,
4: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
5: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान, पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सीरिया रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
6: टॉप रामू काका, हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
7: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लेके आओ तनी बाबू।
6: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
7: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
6: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
7: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लिया या? दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कर ले से का फायदा?
8: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
6: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
9: वीकेंड क्लासिक रेडियो शो सुन रहे हैं आप। हिंदी सिनेमा में काफी सारी पुरानी फिल्मों का रीमेक बनाया गया है, कुछ पार्ट टू कहलाती है तो कुछ अडेप्टेशन। शो की शुरुआत में आज जब हम ये कॉन्ट्रोवर्शियल फिल्मों की बात कर ही रहे हैं, तो हमने आंधी फिल्म की बात की थी क्योंकि उसे बैन किया गया था। लेकिन क्या आप जानते हैं, साल 2017 में फिर से उसी टॉपिक पर मधुर भंडारकर जी ने एक और फिल्म बनाई विद अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑन द टॉपिक ऑफ इमरजेंसी पीरियड। फिल्म का नाम था इंदू सरकार, जो जब से अनाउंस की गई थी तब से ही सुर्खियों में बनी रही। ये फिल्म मधुर भंडारकर जी के हिसाब से 70% फिक्शनल स्टोरी थी और 30% रियल स्टोरी, लेकिन फिर भी उन्हें बहुत ही डराया गया, धमकाया गया, फिल्म को ज़्यादा चलने भी नहीं दिया। सुना है कि लोग उन्हें काले पोतने की, चप्पल की मालाएं पहनाने की धमकियां दिया करते थे, लेकिन फिर भी मधुर भंडारकर जी डरे नहीं। कुछ 12 कट्स उन्हें कहा गया था कि लगाएं, वो CBFC ने कहा था कि अपनी फिल्म में लगाएं। उन्होंने इस फैसले का आदर किया, रिस्पेक्ट करते हुए ये कट्स अपनी फिल्म में लगाए और ये फिल्म रिलीज की। इंदू सरकार फिल्म से जाते जाते ये गाना सुनाती हूँ आपको, चढ़ता सूरज धीरे धीरे। सुनते रहिए वीकेंड क्लासिक।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ऐसे हिंद महासागर की परिकल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ साथ आर्थिक समृद्धि भी सुनिश्चित हो। श्री मोदी विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमीनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।
1: मेरी सेशल की यात्रा का संदेश स्पष्ट है, भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो, और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चले। आवर विजन इज टू मेक इंडियन ओशन इनटू एन ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटी।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और सेशल्स की रक्षा और सुरक्षा एक दूसरे से जुड़ी हैं। श्री मोदी ने कहा कि भारत डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना में अपने अनुभव को सेशल्स के साथ साझा करेगा। प्रधानमंत्री ने सेशल्स में यूपीआई भुगतान प्रणाली लागू करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने पर प्रसन्नता व्यक्त की।
1: हम डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत के सफल अनुभवों को सेशल के साथ साझा करेंगे, और मुझे प्रसन्नता है कि आज यूपीआई को सेशल में लागू करने के लिए एमओयू किया जा रहा है।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी पूर्वी अफ्रीकी द्वीप राष्ट्र सेशल्स की 3 दिवसीय यात्रा पर कल वहां की राजधानी विक्टोरिया पहुंचे। सेशल्स यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉ नवीन चंद्र राम गुलाम से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच चल रहे सहयोग पर चर्चा की। उन्होंने भारत द्वारा दिए गए विशेष आर्थिक पैकेज को लागू करने में हुई प्रगति की भी समीक्षा की। गृहमंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के गांधीनगर में पीएम फैमिली केयर ट्रैकर की पायलट परियोजना का शुभारंभ किया। ये एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म जन्म पंजीकरण संख्या या आभा आईडी से जुड़ी एक विशिष्ट आईडी का उपयोग करके गर्भावस्था से लेकर 18 वर्ष की आयु तक लाभार्थियों के स्वास्थ्य पोषण और शिक्षा पर नजर रखेगा। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा कल नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन में समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार ये कार्यक्रम जन्म से 3 साल तक के बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए शुरू किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत बच्चों को घर और समुदाय स्तर पर स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी। कार्यक्रम में प्रसव के बाद माताओं के मानसिक स्वास्थ्य की जांच, बच्चों के शुरुआती विकास पर नजर और डिजिटल माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं की निगरानी भी की जाएगी। भारत ने कराची में हुई हालिया घटना के संबंध में पाकिस्तान के लगाए आरोपों को स्पष्ट रूप से खारिज करते हुए उन्हें निराधार बताया है। मीडिया के सवालों के जवाब में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज कहा कि दूसरों पर उंगली उठाने के बजाय पाकिस्तान को आत्मनिरीक्षण करना चाहिए और अपने क्षेत्र में मौजूद आतंकी ढांचे के खिलाफ ठोस कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को आतंकवाद को अपनी राज्य नीति के साधन के रूप में इस्तेमाल करने की प्रवृत्ति से छुटकारा पाना चाहिए। पाकिस्तान के कराची में सिंध रेंजर्स के कंपाउंड पर आतंकवादियों के एक बड़े हमले में पैरामिलिट्री फोर्स के जवान मारे गए थे। महिला 2020 क्रिकेट विश्व कप में लंदन के लॉर्ड्स मैदान में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 6 विकेट से हरा दिया है। भारत के 171 रन के लक्ष्य को ऑस्ट्रेलिया ने 19 ओवर में 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अमृत भूषण. Prime Minister Narendra Modi today said India envisions an Indian Ocean where maritime security is ensured alongside economic prosperity and where partnership is based not on size but on mutual respect and trust. He said India's vision is to make the Indian Ocean an ocean of opportunity.
1: Meri Seychelles ki yatra ka sandesh spasht hai. Bharat aise Hind Mahasagar ki kalpana karta hai jahan samudri suraksha ke saath आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो, और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चले. आवर विजन इज टू मेक इंडियन ओशन इंटू एन ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटी.
2: Mr. Modi was addressing the joint press meet after delegation-level talks with Seychelles President Patrick Hermini in Victoria. During the meeting, the two leaders reviewed the full spectrum of bilateral cooperation and exchanged views on regional and international issues of mutual interest. The two countries exchanged several agreements in a range of fields, including agriculture, finance, space and health. On the occasion, Prime Minister Modi was conferred with the Guardian of the Blue Horizon, Seychelles' highest distinction for leadership in environmental conservation and sustainable development. The Seychelles President conferred the prestigious honour on Prime Minister Modi. Prime Minister Modi dedicated the honour to all the countries who are committed to environmental conservation and fighting climate change. Later in the day, Prime Minister Modi addressed the National Assembly of Seychelles. Speaking on the occasion, the Prime Minister said that India's vision is captured in the idea of Mahasagar, which recognizes that our futures are interconnected and interdependent. On the sidelines of the Seychelles visit, Prime Minister Narendra Modi met Mauritius Prime Minister Dr. Naveen Chandra Ramgoolam today. The two leaders discussed the ongoing cooperation between India and Mauritius. They further reviewed the progress made in the implementation of the special economic package extended by India. Prime Minister Modi underscored the importance attached by India to the development and progress of Mauritius, noting that the ongoing bilateral projects will contribute to Mauritius' healthcare, connectivity, sustainable development and blue economy. India today categorically rejected allegations made by Pakistan regarding the recent incident in Karachi and termed them as baseless. In response to media queries, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said that instead of pointing fingers at others, Pakistan should look inwards and take credible action against the terror infrastructure on its territory. He said Pakistan should rid itself of its proclivity to rely on terrorism as an instrument of state policy. Union Home and Cooperation Minister Amit Shah today launched the pilot project of PM Family Care Tracker at Gandhinagar in Gujarat. The integrated digital platform will track the health, nutrition and education of beneficiaries from pregnancy until the age of 18 using a unique ID linked to birth registration number or ABHA ID. The anti-corruption branch, ACB, Delhi, has arrested the then-Director General Health Services, DGHS, Dr. Vatsala Agarwal, and Deputy Controller of Accounts in the Central Procurement Agency, CPA, Neeraj Chopra, in the case related to alleged large-scale irregularities in procurement of medicines, surgical consumables, and medical equipment. Health and Family Welfare Minister Jagat Prakash Nadda will launch the Samagra Shishu Bal Swasthya Karyakram, SSBSK, during the 16th conference of the Central Council of Health and Family Welfare in New Delhi tomorrow. The Ministry of Health and Family Welfare said that it will carry forward the vision of Pehle Teen Saal Sampoorna Dekhbhal, recognizing the critical importance of the first 3 years of life for child survival, growth, nutrition and early brain development. In the ICC Women's T20 World Cup, Australia defeated India by 6 wickets in their final Group A match at Lord's, London. Earlier, opted to bat first, India posted 170 runs, losing 4 wickets in the stipulated 20 overs. In reply, Australia scored 172 runs for 4 wickets in 19 overs. And that is the end of this news bulletin.

रात्रि न्यूज के बाद रेडियो रिमझिम परिवार को दीजिए इजाजत केवल रेडियो से। आप हमें ऐप पर पूरी रात सुन सकते हैं। सो अगर आपने ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है तो अभी गूगल के प्ले स्टोर में जाएं, रेडियो रिमझिम लिख के सर्च करें और हमारे ऐप को डाउनलोड कर लें। उसके बाद पूरी रात आप रेडियो रिमझिम का आनंद ले सकते हैं सिर्फ और सिर्फ ऐप पर।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

अगर बात सच्ची लगे तो ताली का आशीर्वाद एक बार दे दीजिएगा सारे लोग। सुनिए एक एक वर्ड, एक एक शब्दों की रचना, सप्त प्रधान भजन है ये, सब लोग सुनेंगे एक साथ। एक बार शुरुआत में हाथ ऊपर करके एक बार ताली बजा दीजिए, बस एक बार शुरुआत में।

0: लेकिन ये सच है कि कोई किसी का नहीं है। जरूरत के लोग चंद मिलते हैं,
1: जरूरत के लोग चंद मिलते हैं, और जब आता है बुरा वक्त तो अपनों के भी दरवाजे बंद मिलते हैं, बंद मिलते हैं, बंद मिलते हैं।

तो सके पड़ोसी मित्र संबंधी सब आपके पास हैं, लेकिन जिस दिन ये शरीर काम करना बंद कर देगा ना, उस दिन सबसे पहले आपके अपने आप से दूर हो जाएंगे। क्यों? कहते कौन किसका साथ देता है कब तक, सुनिएगा। पत्नी कहते ना, पत्नी साथ भेड़ा सात वचन में बंध के आती है, सात वचन में बंध के आती है, सात भेड़ा लेके आती है, अर्धांगनी कहते हैं उसे, आधा अंग, लेकिन वो भी साथ नहीं देती। पत्नी साथ देती है तो केवल मकान तक, और बेटी साथ देती है तो केवल कन्यादान तक। सगे संबंधी साथ देते हैं तो केवल शमशान तक, और बेटा साथ निभाता है मुखाग्नि दान तक, मुखाग्नि दान तक, मुखाग्नि दान तक। इससे ज्यादा किसी का किसी के साथ

भैया अपना नाम बता दे एक बार। हाँ बता, गुप्त दान। चलिए भैया की ओर से ये आशीर्वाद आया है, कहना है

घर में शादी हो तो एक दिन में 5 कपड़े बदले जाते हैं। ये जिंदगी क्या है, पानी का बुलबुला है, यहाँ रोज लोग जी रहे हैं कपड़े बदल बदल कर, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा, कड़वा है लेकिन सत्य है, एक वक्त ऐसा आएगा जब लोग एक कपड़े में ले जाएंगे कांधे बदल बदल कर, कांधे बदल बदल कर, कांधे बदल बदल कर।

आजकल भैया आजकल ये जमाना है, लोग जितना अपने दुख से दुखी नहीं है, आजकल का जमाना ये हो गया है कि लोग जितना अपने दुख से दुखी नहीं है उतना दूसरों के सुख से दुखी है। ये बात सच है। अगर घर में झगड़ा होता है ना तो उस झगड़ा को सुलझाने कोई नहीं आता है, बल्कि इस झगड़ा में और

ऐसे हैं, ये भी सच्चाई बता रही हूं। लेकिन पैसे की बात सुनिए, पैसे में कितना ताकत है, पैसा क्या करवाता है। पैसे की खातिर कलेजा तक हिला देते हैं लोग, पैसे की खातिर कलेजा तक हिला देते हैं लोग। और जिसने पैदा किया उस माँ को भुला देते हैं लोग, उस माँ को भुला देते हैं लोग। आए दिन अखबार में आता है ना, दहेज के कारण बहू सूली पे चढ़ गई। कितना भी डाल दो, कितना भी दहेज का कुआं ऐसा कुआं है कि जितना भी दहेज डाल दो लेकिन उसका कुआं कभी बंद नहीं होता है। अगर आप इतना डालोगे तो वो इतना खुल जाएगा। पैसे की खातिर कलेजा तक खिला देते हैं लोग। और सुनिए, पैसे की खातिर सगे भाई को जहर हंस के खिला देते हैं लोग, जहर हंस के खिला देते हैं लोग। जमीन जायदाद ऐसी ऐसी बातें, ऐसी ऐसी घटना रोज घटती है, ये सच्चाई है जीवन की। तो कहा गया है क्या,

जीते जी जो भाई भाई बोलते हैं, पत्नी पति बोलते हैं, बहन भाई बोलती है, वही मरने के बाद एक ही वर्ड होता है, क्या? बॉडी, बॉडी, शरीर। इस शरीर को हटाओ, अपने कहते हैं इस शरीर को जल्दी हटाओ, इससे बदबू आ रही है। लोग जल्दी काम क्रिया करते हैं,

बार की बात है, रास्ते से गुजर रही थी और रास्ते में ही एक कहते हैं ना अंतिम यात्रा जहां हमारा खत्म होता है, जिंदगी का अंतिम यात्रा जहां खत्म होता है, उस यात्रा के द्वार पर लिखा था क्या कि मंजिल तो तेरी यही थी। सुनिएगा, मंजिल तो तेरी यही थी, बहुत देर कर दी यहाँ आते आते। मंजिल तो तेरी यही थी, बहुत देर कर दी यहाँ आते आते। और इस मतलब की दुनिया में क्या मिला जो अपनों ने ही जला दिया तुझे जाते जाते, अपनों ने ही जला दिया तुझे जाते जाते। कहते ना मतलब की दुनिया है कौन किसी का होता है, मतलब की दुनिया है कौन किसी का होता है, और धोखा भी वही देते हैं जिन पे जरूरत से ज्यादा भरोसा होता है, जरूरत से ज्यादा भरोसा होता है। ये रचना की अंतिम कड़ी है, सुनिए।

बचपन आई सत्य है, बचपन आई सत्य है, जवानी आई वो भी सत्य है, बुढ़ापा आया ये भी कड़वा सत्य है, लेकिन एक सत्य सुनिएगा क्या है। बचपन आई सत्य है, जवानी आई वो भी सत्य है, बुढ़ापा आया वो भी सत्य है, लेकिन एक दिन अंत समय आएगा तो कुछ नहीं, राम नाम राम नाम। इसीलिए किसी बड़ी प्यारी सी लाइन है, कहना है

कहते हैं ना, जब तक है जिंदगी फुर्सत नहीं है काम से। एगो रिक्शा वाला को भी देखिए, वो भी बिजी रहता है। जब तक है जिंदगी फुर्सत नहीं है काम से, और कुछ समय निकाल लो जिंदगी में, जो प्यार कर लो प्रभु राम के नाम से, प्रभु राम के नाम से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

0: एक 1 BHK, एक 2 BHK, एक में मैं रहूंगी और एक में जिम करूंगी। ओके जानू?
1: भाद दही सोनावा के सहट चाही, पटाना में दूध को फल हट चाही।
2: अरे एक करे जा, तू जतना खर्चा करेबू हम उतना खर्चा करब। ओकरा खाती हम भागल ना होई। आ जदी हमरा के छोड़ के गइलू तब बुझ लीह
3: हम संतोष पागल नहीं
4: बनब।

0: बेटा, जितना तोहरा से रात में बात कोइले बनी न, उतना केहू औरी खाती जागल ना है। लेकिन जदि तू हमार दिल तुरलू तो बुझ लीह
1: हम संतोष पागल नहीं।

0: तर
1: अरे करे जा हम बरसी ना खाली गर्जे वाला बादल ना हो आ जदि हमारा के छोड़ के गयलू तब बुझ लीह
2: हम संतोष पागल नहीं।

0: लानत हुआ कि हम ग्रेड ए पोल नहीं, पोल नियर खड़ा हो जाबे।
1: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM,
1: सुनो दिल से।

0: सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM जो हर पल का है, सुनो दिल से।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up.

0: हेलो, नमस्ते, नमस्कार, कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूं आप सबकी दोस्त भारती और आप सुन रहे हैं रेडियो रंजन 90.4 FM। और समय हो चुका है हेलो माय चॉइस कार्यक्रम का, तो बिल्कुल समय के साथ हाजिर हूं। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो नंबर है 8029-94911। जी हाँ, 8029-94911 पर कॉल करके जुड़ सकते हैं और अपनी फरमाइश सुन सकते हैं। और बढ़ते हैं आगे और लेते हैं पहला कॉल और सुनते हैं इनकी फरमाइश।
1: हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
2: जी नमस्कार, भारती जी बोल रहे हैं।
1: नमस्कार। हाँ,
2: कैसे हैं आप?
1: मैं अच्छी हूँ, आप बताइए कैसे हैं?
2: हम भी ठीक है, जकात जिंदा, एकदम ठीक, एकदम अच्छे से। देखा बारिश बढ़िया है।
1: और बताइए क्या हो रहा है?
2: अभी तो नींद आ गया था, सोए थे पंखे के नीचे, फिर 11 बजे से टूटा है थोड़ा बहुत। छह पंचायत से स्वास्थ्य अभियान से जुड़े हैं ना?
1: जी जी जी,
2: वहीं थे तो फिर आए, तो थोड़ा लेट से खाना खाए थे 9 बजे, और अभी काम खाली है। और खाने के बाद थोड़ा नींद आने लगा।
1: कोई नहीं, खाने के बाद थोड़ा आराम कर ही लेना चाहिए,
2: शरीर को तो ध्यान चाहिए, नॉर्मल है कि नहीं? बनता है।
1: कौन सा गाना सुनेंगे आज?
2: आज गाना था, पैर में बूट हो गया, कपड़े हो गए, नौकरी हो गया, छुकड़ी हो गई, यह बात हो गया, तो जवाना सीख करेगा कि सलाम करेगा, इस अंग में गाना।
1: ओके
2: जी, और तो सुनाइए।
1: और सब तो बस चल रहा है, ठीक है। तो गाना प्ले करती हूँ, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रंजन 90.4।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजीम 90.4 में।
0: नमस्कार मैम।
1: नमस्कार,
0: मैं सुधीर खोल बोल रहा हूँ, झारखंड से।
1: कैसे हैं आप?
0: आप कैसे हैं मैम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ मैम।
1: मैं भी ठीक हूँ
0: जी।
1: बता दीजिए, कौन सा गाना सुनना है आपको?
0: सुना दीजिए मैम, कोई भी सुना दीजिए। खेसारी लाल यादव और शिल्पी राज का डुएट सॉन्ग सुना दीजिएगा भोजपुरी में।
1: ओके, सॉन्ग किसी को डेडिकेट भी है?
0: जी मैम, सबसे पहले मैम आपको, आपके रेडियो रंजीम की पूरी टीम को और जितने भी रेडियो रंजीम के प्यारा प्यारे श्रोता गाने सबको सुनाना चाहता हूँ।
1: ओके ओके, चलिए फिर गाना प्ले करते हैं। सुनते रहिए रेडियो रंजीम 90.4।
0: थैंक यू मैम।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।
2: Now pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
2: Pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
4: The phone ring, they bajte hai, to kehte hai hello.
5: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
6: हेलो
7: हेलो
6: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रेंज 90.4 FM में।
7: नमस्ते मैडम जी।
6: नमस्ते,
7: नेहा बोल रहे हैं भोदर से।
6: कैसी हैं आप?
7: अच्छा, यहाँ बताइए कैसे हैं?
6: हम भी बढ़िया हैं।
7: अच्छा ठीक है, बढ़िया है तभी तो अच्छा रहेगा। तब नाश्ता हो गया?
6: मेरा हो गया है, आपका हो गया क्या?
7: आपका इंतजार कर रहा
6: हूं। अच्छा चलिए, कोई नहीं, इंतजार खत्म हुआ, कॉल लग गया। और बताइए कौन सा गाना सुनेंगी?
7: गाना सुना दीजिए, भाई भाई नक्सल भी हो।
6: अच्छा, और सॉन्ग किसी को डेडिकेट भी है?
7: आपको जितना रेडियो जिम दोस्त है, सुनते हैं सबके साथ।
6: चलिए फिर गाना प्ले करती हूँ, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
7: जी मैडम जी, नमस्ते।

0: हेलो
1: नमस्कार मैडम जी।
0: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
1: सुनील साहू, मधुसूदनगढ़ जिला गुना से।
0: कैसे हैं आप?
1: बढ़िया है बहन जी, आपकी फरमाइश सुन रहे हैं।
0: तो बताइए आज क्या फरमाइश है आपकी?
1: जी मैडम जी, पिक्चर का नाम तो याद नहीं मुझे, लेकिन गाना है भोजपुरी में।
0: जी जी बता दीजिए।
1: पवन सिंह की आवाज में गाना है।
0: कौन सा सॉन्ग?
1: ये चुम्मा ले जा गाल में, संग दिलवा ले जा निकाल के।
0: अच्छा जी, हाँ है,
1: पवन सिंह का है ये भोजपुरी में। जी, और ये गाना डेडिकेट है अपने गजराज सिंह लोधी है, मांगीलाल काकड़ है, गोपाल ओझा है, कगवासा से, और आपको भी।
0: ओके ओके, फिर गाना प्ले करती हूँ, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रंजन 90.4।
1: धन्यवाद मैडम जी।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: Jab phone ki ghanti bajti hai to kehte hain hello.
4: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: जी नमस्कार।
6: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रेंज 90.4 FM में।
5: भारती जी, मेरे साथ मास्टर बोल रहे हैं धनाव से। बोलिए, क्या हाल चाल है?
6: मेरा तो बढ़िया है, आप अपना बताइए।
5: हम लोग का भी ठीक है, गर्मी ज्यादा लग रहा है।
6: गर्मी तो है ही थोड़ा बहुत।
5: आज तो हम लोग का मौसम बहुत सुहाना हुआ है, एकदम बादल है, धूप नहीं है।
6: इधर भी मतलब थोड़ा रात को हवा चला था तो अभी फिलहाल थोड़ा ठीक है।
5: 190 बार कॉल लगाए हैं।
6: अच्छा जी, आज इतना कॉल लगाना पड़ा?
5: हम कॉल लगाते हैं लास्ट में या फर्स्ट में। फर्स्ट लगाए, एक बार बंद था, फिर दूसरी बार लगाए तो अभी कम नहीं लगेगा। आज में लगता है लगता है, बस एक दो बार कॉल में लग जाता।
6: सब बताइए, और सब ठीक है ना?
5: सब बढ़िया, अल्लाह का करम है, हम लोग काम कर रहे हैं, आपका प्रोग्राम भी सुन रहे हैं।
6: चलिए बता दीजिए, कौन सा गाना सुनना है आपको?
5: आज तो गाना सुनना है, मुहर्रम का महीना चल रहा है, मोहम्मद अजीज का एक गाना है।
7: दुनिया हुसैन की है, जमाना हुसैन का, करबल में लुट गया है घराना हुसैन का। दुनिया हुसैन की है, जमाना हुसैन का।
5: यही वाला गाना सुनवा दीजिएगा मैडम जी।
6: ठीक।
5: और सबसे पहले आपको सुनवाएंगे और जितने रेडियो रेंजिंग सुनने वाले हैं सभी श्रोताओं को।
6: ओके, चलिए फिर गाना प्ले करती हूँ, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रेंजिंग 90.4।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 FM में।
0: नमस्ते मैम।
1: नमस्ते,
0: क्या हाल है?
1: मेरा बढ़िया है, आप अपना बताइए।
0: मेरा भी ठीक है, खाना खा ली।
1: खाना हो गया है आपका?
0: मेरा भी हो गया है।
1: तो और सब बताइए, और क्या हो रहा है?
0: कुछ नहीं, धूप में बैठा है लोग।
1: धूप में?
0: नहीं, यहाँ में मतलब धूप बहुत ज्यादा है इसलिए।
1: अच्छा, हमको लगा धूप में बैठी है आप, वो भी गर्मी में।
0: नहीं।
1: अच्छा बता दीजिए, कौन सा गाना सुनना है आपको?
0: दिल में प्यार तेरा उठो पुनीतवा, यही गाना सुना दीजिएगा।
1: ओके, और सॉन्ग किसी को डेडिकेट भी रहेगा?
0: आपको, रेडियो रेंज सुनने वाली सब नेशनल।
1: ओके, तो चलिए फिर गाना प्ले करती हूँ, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रेंज 90.4 FM।

0: ध्वनि के तरंग 90.4 पर आप जिले की आवाज रेडियो रिमझिम को सुन रहे हैं।
1: Now pick it up, pick it up.
2: Hello.
1: Now pick your phone up.
2: Hello.
1: Pick it up, pick it up.
2: Hello.
1: Now pick your phone up.
2: Hello.
3: The phone ring, they watch the head, don't get the hello.
4: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 80029994911। जी हाँ, 80029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: हेलो
6: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
5: प्रणाम मैम।
6: प्रणाम,
5: क्या हाल बा?
6: ठीक बाप ने बताई।
5: हमरो ठीक है बा, आप बताई हमने सके क्या पूछ ले बनी। हमने ठीक बनी सर, रउरा लोग बस ठीक रही लोगिन, ये बा भगवान से दुआ, कैसे रउरे लोग के जरिए इतना आदमी के मनोरंजन होता है। आज के मौसम कैसन बा गोपालगंज के?
6: मौसम तो हल्का गर्मी बा, गर्मी तो बढ़ रही बा, क्या कहे, धूप निकल बा, गर्मी बा। वे
5: भारती जी ना, हमने तो एक बार 42 आदमी के पहचानी हम तो, आज मन कर भोजपुरी में बात करल जाए।
6: कौन बात नहीं है,
5: भोजपुरी में निमन लगे ला, अब आदमी बाहर रह जाला तो भोजपुरी बोले में दिक्कत हो जाला।
6: कौन बात ना, हमने के बानी सन भोजपुरी बोले
5: है तो। तो मान के चले कि हिंदी गाना तो सब जगह सुने के मिल जाला, लेकिन गोपालगंज के सुनल जाये तो काहे हिंदी सुनल जाये, भोजपुरी सुनल जाये, भोजपुरी में ही बढ़िया गीत होला, ऐसा बात थोड़े भाई सब खराब होला।
6: ना ना, भोजपुरी में भी अच्छा अच्छा गीत होला।
5: तो एगो आज हमारा गाना सुना दी,
6: बता दी।
5: बबीता सागर के ही रही आज की, ना जी अब तुम्हारा दुनिया आज बुझाई बा।
6: अच्छा,
5: धनेश कुमार मिश्रा दिल्ली
6: गाना।
5: हाँ, सुना दो।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रेंज 90.4 एफएम में।
0: मैं फरोज अंसारी बोल रहे हैं जी। हम गाना सुनना चाहते हैं।
1: ओके, और कहाँ से हैं आप?
0: हम बिहार से, बेतिया जिला से।
1: ओके, बता दीजिए गाना सुनना है आपको।
0: हिंदी गाना सुना दीजिए कोई सा, अच्छा आपको जो अच्छा लगेगा
1: आपको अपना पसंद बताना होगा। आप अपनी पसंद बता देते तो अच्छा होता, क्योंकि कॉल आपने किया है तो पसंद तो आपकी भी होनी चाहिए ना।
0: डाग दी फायर का गाना चाहिए हम।
1: उसमें का कौन सा सॉन्ग, मतलब डाग दी फायर का कौन सा सॉन्ग?
0: इसमें से कोई भी गाना होगा अच्छा सुना दीजिएगा हमको। जी जी।
1: ओके, और सॉन्ग किसी को सुनाना भी चाहेंगे?
0: जी, मेरा रियाज भाई है। आज हम लोग ड्यूटी पे जाने वाले थे, हम नहीं गए। छुट्टी में हम गाना सुनना चाहते हैं। जी
1: चलिए, फिर गाना प्ले करते हैं। सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।
1: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
2: हेलो
3: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4। वालेकुम अस्सलाम,
2: क्या हाल है?
3: मेरा बढ़िया, आप बताइए, आप कैसे हैं?
2: हम भी अच्छे हैं।
3: नाम बता दीजिए।
2: मैं मोहम्मद अली, वार्ड नंबर 1 से।
3: तो बताइए और सब क्या हो रहा है अभी?
2: ड्यूटी हो रहा है मैम, इतना गर्मी लग रहा है, पंखा चलाने को बाद क्या बताए।
3: गर्मी तो है,
2: बहुत गर्मी पड़ रही है
3: जी।
2: लगता है गाँव छोड़ के भागना पड़ेगा मेरे को पुणे, गर्मी की वजह से। पुणे में अच्छा रहता है मौसम, में हमेशा गर्मी बिल्कुल नहीं लगती,
3: वहाँ पे तो मौसम थोड़ा अच्छा रहता है।
2: पुणे में एकदम जिंदा गर्मी रहता है, शरीर से पसीना नहीं चलता है। आप नाश्ता पानी करके आए हैं, आज मेरे को सॉन्ग सुना दीजिए, डर मूवी से।
3: डर मूवी,
2: हाँ डर मूवी से गाना सुनाइए। तू मेरे सामने, मैं तेरे सामने, तुझको देख के तैयार करूँ।
3: ओके, और सॉन्ग किसी को सुनाना भी चाहेंगे?
2: सबसे पहले तो आपको और अंतरी को और कमरान भाई को, राघव जी को और दिलीप भाई को और जो भी रेडियो रिमझिम जहाँ से भी तुम सभी। चलिए ठीक है, सब गाना सुनाइए मेरे को।
3: ओके ओके, फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4।

0: हेलो
1: मैम, नमस्कार।
0: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
1: जी, हरीश कुमार बड़ापंखी से।
0: कैसे हैं आप?
1: बढ़िया है मैम, आप बताइए।
0: हम भी ठीक।
1: मौसम
0: तो अभी इधर गर्मी है।
1: मौसम गर्मी तो इधर भी है। आज गाना सुनवा दीजिएगा मुझे कि कल तू कल चला जाएगा तो मैं क्या करूँगा, या तेरी आएगी तो मैं क्या करूँगा।
0: चलिए, और सॉन्ग किसी को डेडिकेट भी है?
1: अपनी वाइफ को, आपको, पूरे परिवार को, तमाम रेडियो रंजन सुनने वाले श्रोताओं को।
0: ओके ओके, फिर गाना प्ले करते हैं। सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रंजन 90.4 FM।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: Now pick it up, pick it up.
2: Hello.
1: Now pick your phone up.
2: Hello.
1: Pick it up, pick it up.
2: Hello.
1: Now pick your phone up.
2: Hello.
3: जब फोन घंटी बजती है तो कहते हैं हेलो।
4: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: हेलो, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
6: नमस्ते मैम।
5: नमस्ते,
6: मेरा नाम प्रिया है। मेरा नाम प्रिया है
5: जी। आप प्रिया जी कहाँ से हैं?
6: दिल्ली से।
5: अच्छा जी,
6: बताइए दिल्ली से। तो मुझे गाना सुनना है।
7: बता दीजिए कौन सा सॉन्ग सुनना है आपको।
6: देख के बताई थी कैसा लगा थी, राजा राम से लगुलिया है।
7: अच्छा, और सॉन्ग किसी को डेडिकेट भी है?
6: हाँ,
7: बता दीजिए।
6: मेरी मम्मी, चाचा, मामा, पापा और आपको।
7: ओके ओके, चलिए फिर बढ़िया है। गाना प्ले करती हूँ, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रेंज 90.4 FM।

0: हेलो नमस्कार।
1: नमस्कार
0: जी, कौन बोल रहे हैं? भारती जी, स्वामी जी?
1: भारती,
0: मैं धर्मेंद्र तिवारी बोल रहा हूँ चंडीगढ़ से।
1: जी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रेंज 90.4 FM।
0: बीच बजा दिया तुमने, बड़ी बढ़िया खिड़की खोल दूंगी, एक गाना सुनवा दूंगी।
1: काम किसी को डेडिकेट भी है?
0: हाँ, अपना रंजीत तिवारी है, वरुण पांडे है, शुभम तिवारी है।
1: ओके, गाना प्ले करती हूँ, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रेंज 90.4 FM। नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।
1: Now pick it up, hello. Now pick your phone up, hello. Pick it up, hello. Now pick your phone up, hello.
2: जब फोन टिंग टिंग बजती है तो कहते हैं हेलो, हेलो, हेलो, हेलो, हेलो।
3: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
4: हेलो
5: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 FM में।
4: नमस्कार मैम।
5: नमस्कार,
4: आप कैसी हैं मैम?
5: मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं?
4: जी मैम, हम भी अच्छे हैं। और सब आगे लोग कैसे हैं?
5: सब पे ठीक है।
4: और मौसम उधर कैसा हो रहा है?
5: इधर का तो मौसम अभी गर्मी पड़ रहा है, धूप निकला हुआ है थोड़ा। तो आज मौसम मतलब हवा चल रहा है तो उतना धूप समझ में नहीं आ रहा है।
4: हवा थोड़ा चल रहा है।
5: हम्म,
4: तो गाना सुना दीजिए। आपसे तो मेरी पहली बार बात हो रही है।
5: हम्म,
4: गाना सुना दीजिए। सनम का हर लबों पे सनम तेरा नाम आए।
5: एक बार और बोल दीजिए।
4: हर लबों पे सनम तेरा नाम आए, सनम फिल्म का गाना है।
5: ओके, सॉन्ग किसी को डेडिकेट भी है?
4: अब रेडियो रिमझिम जितने सुन रहे हैं सभी श्रोताओं से, और मैंने एक अनुरोध है
5: जी, बताएं
4: सभी श्रोताओं से कि श्रोता जितने भी सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम, वो अपने छत पर थोड़ा पानी रखे, उसके चिड़िया को पक्षी उक्षी को थोड़ा खिलाए पिलाए, गर्मी बहुत है, घड़ा में या कोई बर्तन में भी पानी रखे ताकि चिड़िया पक्षी को पानी पीने में सहूलियत हो।
5: जी मैम, और सब ठीक है?
4: जी जी जी मैम, सब बढ़िया है। आपका नाम सर मैम?
5: मेरा नाम भारती है, आपका नाम क्या है?
4: जी मैं पप्पू कुमार बोल रहा हूँ, पड़ारौना से, बढ़ारिया से।
5: चलिए फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो।
4: थैंक यू मैम।

0: नमस्कार
1: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
0: भारती जी बोल रहे हैं? चलिए ठीक है, नमस्ते जी। घंटा से नको लगा रहे
1: हैं। अच्छा जी,
0: अभी नहीं रहा था, खाली दिया था, खाली दिया।
1: आज कॉल आए आ रहे हैं बहुत ज्यादा इसीलिए।
0: तो कैसे हैं आप?
1: हम भी ठीक हैं, आप बताइए आप कैसे हैं?
0: अरे हम लोग क्या बताएं, धूप में बहुत हालत बिगड़ जाता है।
1: धूप तो है ही,
0: इतना धूप है कि लाजवाब है। बिल्कुल धूप लाजवाब होता है आजकल।
1: धूप तो बहुत तेज निकल रहा है, ये धूप से बहुत सारे लोगों का तबीयत खराब हो रहा है।
0: कल तो सोनू जी से बात हुआ था, ये गाना भी सुनाई थी सोनू जी।
1: आज क्या फरमाइश है आपकी?
0: आज तो हमारा फरमाइश है, नहीं भूल जाते हैं, सोचते हैं कि बताएंगे। बोर्ड पर जाते हैं।
1: कोई नहीं, आराम से याद करके बताइए।
0: फिल्म का नाम क्या बोलते हैं? दाता। दाता फिल्म का जो नहीं होता है गाना, वो विदाई वाला गाना है।
1: हाँ हाँ,
0: उसी का।
1: वही सॉन्ग सुनना है ना?
0: हाँ हाँ, वही सॉन्ग सुनना
1: है। ओके, और सॉन्ग किसी को डेडिकेट भी है?
0: पहले तो आपको, सोनू जी को और खावे रामा जी भाई जी को। ठीक है, तो वही सुना दीजिएगा।
1: ओके, फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो रमजन 9.4 FM।

0: बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM,
1: सुनो दिल से।
2: Now pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
2: Pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
4: जब फोन घंटी बजती है तो कहते हैं हेलो,
3: हेलो, हेलो, हेलो, हेलो।
5: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
6: हेलो
7: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
6: हाँ, मैं मोहम्मद यूसुफ सिपाया डाला अपना मेडिकल हॉल पे।
7: कैसे हैं आप?
6: बहुत है। सोनी मैडम बोल रहे हैं?
7: नहीं।
6: अच्छा, आप बोल रहे हैं। हाँ तो सुनिए ना, हमको गाना सुनाइए। नदिया के पार फिल्म से कौन दिशा में लेकर चला रे बटैया।
7: ओके, सॉन्ग किसी को सुनाना भी चाहेंगे?
6: हाँ, चाहेंगे। अपना मेडिकल हॉल के सभी स्टाफ और गुमनिया के फौजी भाई रिटायर हैं, 1962 का लड़ाई लड़ चुके हैं, उनको भी सुनवाना, कन्हैया प्रसाद को सुनवाना चाहता हूँ।
7: तो और सब बढ़िया है ना?
6: हाँ, अपना सुनाइए ना।
7: हमारा भी ठीक है।
6: हाँ, हमारा ठीक है। मौसम बहुत गर्म है, बहुत मौसम खराब हो रहा है।
7: हाँ।
6: अब देखिए बरसात कब से शुरू होता है, मानसून अभी नहीं आया। बहुत मेहनत करने पर लगता है आपके यहाँ फोन।
7: अच्छा।
6: बहुत व्यस्त बिजी बता रहा था।
7: आज कॉल आए हैं बहुत सारे।
6: हाँ ठीक है, सुनवा दीजिएगा।
7: ठीक है, फिर गाना प्ले करते हैं। सुनते रहिए सबके साथ रेडियो 90.4 FM।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजीत 90.4 एफएम में।
0: जी मैम नमस्कार, सुनील कुशवाहा बात कर रहा हूँ मैं IRMP से।
1: नमस्कार
0: जी मैम, बस बैठे थे मैम, फोन लगा रहे थे, फोन बहुत मुश्किल से लगा मैम, एक घंटा हो गया फोन लगाते हुए, बहुत नंबर बिजी जा रहा है। जी जी जी मैम,
1: कॉल आ रहे हैं ना इसलिए नंबर बिजी जा रहा है, लगातार कॉल आ रहा है।
0: तो मैम चाय नाश्ता हो गया मैम?
1: हाँ हाँ हमारा हो गया, आपका हो गया?
0: जी अभी तो नाश्ता हुआ मैम, हम सोचे अभी तो 12 बजी है, थोड़ा फोन आउट ट्राई करते फिर 12:30 बजे खाना खाने चले जाएंगे मैम। तो अभी बैठे थे, सिर्फ फोन कौन भी लगा रहे थे, फोन लग गया मैम, बहुत अच्छा लग रहा
1: है। अच्छा चलिए तो बढ़िया है, तो बता दीजिए कौन सा गाना सुनेंगे आप?
0: जी आज हमको सुनवा दीजिएगा फिल्म जान, और गाने के बोल है बेईमान किया रे बड़ा जुर्म किया रे, यही गाना सुनना चाहते हैं और सुनवाएंगे कितने रेडियो रंजन दोस्त लोग सुनते हैं, सभी दोस्तों के साथ सुनना चाहते हैं।
1: ओके तो फिर गाना प्ले करती हूँ, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रंजन 90.4 FM।

0: तो श्रोताओं, अभी आप हेलो माई चॉइस सुन रहे थे और अब समय हो चुका है शो को समाप्त करने का। तो यदि आप चाहते हैं इस कार्यक्रम से जुड़ना तो आप भी जुड़ सकते हैं 8029994911 पर कॉल करके। तो फिलहाल हमें आज इस शो से दीजिए जाने की इजाजत। मिलते हैं अगले दिन, सुनते रहें 90.4 FM। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं जिले की आवाज रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

0: सुन रहे हैं जिले की आवाज रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
1: ध्वनि के तरंग 90.4 पर आप जिले की आवाज रेडियो रिमझिम को सुन रहे हैं।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

रंगत है, खुशबू है, नगमा है, जादू है।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: हम हैं इस पल यहाँ,

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

0: बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM,
1: सुनो दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM
1: सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।